ओम शांति। बाबा की हम सभी के लिए शुभ भावना है कि मेरे सभी बच्चे निर्विघ्न बन जाएं। सोचो भगवान को कैसा लगता होगा जब वो देखता है कि उसके बच्चे भी विघ्नों में जीवन जी रहे हैं, उदासी में जीवन जी रहे हैं, परेशानियों में जीवन जी रहे हैं। तो हम अपने स्वमान को पहचाने, हम तो हैं सभी के विघ्न नष्ट करने वाले, हम तो बाबा का स्वरूप बनने वाले हैं। योगी तो नेक्स्ट टू गॉड होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। हमें अपने जीवन को विघ्नों में नहीं बिता देना है। बाबा ने विशेष इशारा दिया, संकल्पों में भी विघ्न न हो। दो बातें हम याद रखेंगे, हमारे संकल्पों में भी विघ्न न हो और हम किसी के मार्ग में विघ्न डालें भी नहीं। कोई आगे बढ़ रहा है उसका रास्ता साफ कर दें, कोई आगे बढ़ता है उसे सहयोग दें, बढ़ने में मदद करें, न कि ईर्ष्या करें, क्योंकि ईर्ष्या के संकल्प हमारे अपने जीवन में विघ्न बन जाते हैं, नफरत के संकल्प हमारे अपने जीवन में विघ्न बन जाते हैं। बाबा ने हमें समय दे दिया है एक मास का, और हम इसे एक मास में अपनी स्थिति को संपूर्णतया निर्विघ्न बनाएंगे। व्यर्थ संकल्पों के विघ्न हमारे पास न हो, कोई ऐसा संकल्प न हो जो हमारे मन को अशांत करता हो, जो हमारे मन में उद्वेग की ज्वाला जला देता हो, जो हमारे चित्त के चैन को नष्ट कर देता हो। सबसे बड़ी हमारी साधना यही है, सबसे सुंदर अध्यात्म का स्वरूप भी यही है कि हम अब संकल्पों के विघ्नों से मुक्त हों। जब हम संकल्पों के विघ्नों से मुक्त होंगे तभी तो हम निर्विघ्न जीवन जिएंगे और तभी हम में शक्ति आएगी संसार के विघ्नों को नष्ट करने की। यदि हम अपने विघ्नों में ही लगे रहेंगे, यदि छोटी बात को विघ्न बनाकर अपनी स्थिति को डाउन करते रहेंगे तो हम दूसरों के विघ्न कैसे नष्ट कर सकेंगे, जबकि हमें तो एक दूसरे को सहयोग देना है। संसार में भी जो अच्छे मित्र होते हैं, जो अच्छे परिवार में संबंधी भाई बहने होते हैं, वो एक दूसरे को मदद करते हैं, जो अच्छे नहीं हैं वो विरोध करते हैं, वो दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके मन में जलन पैदा होती है। पर हम तो गॉडली फैमिली के मेंबर हैं, हमें एक दूसरे को प्यार देना है और अगर कोई विघ्नों में आ गया है तो उसे मदद करनी है। संकल्पों के विघ्नों में, इम्प्योरिटी के विघ्नों में कोई आ गया है, कोई ब्लैक मैजिक के विघ्नों में आ गया है, किसी के जीवन में ऐसे ही अनचाहे विघ्न आने लगे हैं, एक्सीडेंट्स हो गए हैं, काम धंधे ठप हो गए हैं, लोग सब विरोधी हो गए हैं, ये सब विघ्नों के स्वरूप होते हैं। हम इसमें एक दूसरे को मदद करें, और सबसे अच्छी मदद यही होती है कि हम उन्हें उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाएं, हम उन्हें याद दिलाएं कि तुम्हारे साथ तो भगवान हजार भुजाओं के साथ है, वो तो तुम्हारी छत्र छाया है। हम उन्हें याद दिलाएं तुम तो स्वयं विघ्न विनाशक हो, तुम महान हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें इन विघ्नों से नहीं घबराना है, तुमने कल्प कल्प इन विघ्नों को पार किया है। ये स्मृतियां दूसरों में जागृति पैदा करेंगी। तो आइए आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करें फरिश्ते सो देवता का। बहुत अच्छी ड्रिल है, एक दो बार बैठकर कर लें। मेरे सामने लेफ्ट साइड में मेरा फरिश्ता स्वरूप यानी फरिश्ते की ड्रेस टंगी है, राइट साइड में मेरी देवताई ड्रेस टंगी है, और यहाँ मैं अपनी इस ब्राह्मण ड्रेस में हूँ, ड्रेस माना शरीर। अब मैं इस ड्रेस से निकलकर चलता हूँ, फरिश्ते की ड्रेस पहन लेता हूँ, मैं बन गया फरिश्ता। मेरे अंग अंग से प्रकाश की किरणें फैलने लगी, अपने स्वरूप को बहुत क्लियर देखें। कुछ देर
फिर इस फरिश्ते स्वरूप से निकलकर देव स्वरूप में डबल ताजधारी बहुत डिवाइन तेजस्वी शरीर संपूर्ण पवित्र अब मैं इस देह में हूँ, फिर ब्राह्मण देह में, तीनों का हमें नशा चढ़ता जाए और फिर सारे दिन में स्मृति रखेंगे मैं फरिश्ता हूँ मुझे देवता बनना है। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबका अमृत धारा प्रोग्राम में मैं भक्ति बहुत बहुत स्नेह से स्वागत करती हूँ। स्वागत है सुस्वागतम। दोस्तों सुबह के सुंदर समय पर हम जब अपने मन को कुछ न कुछ अच्छे विचार देते हैं तब मन भी प्रसन्न हो जाता है, और जब मन प्रसन्न है तो पूरा दिन हमारा प्रसन्नता से ही गुजरता है। मन पर जितना कहे, जितना बोले, जितना हम सुने उतना कम है। कहा जाता है कि मन को अनुशासित करना चाहिए। अनुशासित मन हमें खुशी की ओर ले जाता है, और अगर मन को अनुशासन नहीं दिया है तो वो मन हमें दुख की ओर ले जाता है। इसलिए मन को भी एक डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। लोगों का क्या कहना, वो तो सही। इंसान की कीमत तभी समझते हैं जब वे अपनी यात्रा में कुछ गलत लोगों से मिलते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं, अक्सर हमें गलत इंसान ही सही सबक सिखाता है। समझौते कितना भी कर लो, जिंदगी में जिन्हें नहीं समझना है समझेंगे ही नहीं, और फिर जिद भी अपनी करेंगे। इसलिए इंसान की अच्छाई पर जब हम खामोश रहते हैं तो चर्चा अगर बुराई पर हो तो कहा जाता है कि गूंगे लोग भी बोल पड़ते हैं। यही है दोस्तों समाज की नीति नियम, और इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं कि खामोशी में ही सब कुछ ताक झाक के ही कम बोलते हैं, और जो भी कुछ हुआ उसको अपने मन पर नहीं लेते हैं। दोस्तों सचमुच ये मन क्या चीज है कोई नहीं समझ पाता, और मन पर कितना भी काबू रखे लेकिन किस समय वो बेकाबू हो जाएगा पता भी नहीं चलता। इसलिए दोस्तों साधना ये सबसे बड़ी चीज है। जीवन में साधना को महत्व देना चाहिए। हम तो आजकल साधन के पीछे दौड़ रहे हैं। धन और साधन जिंदगी में जरूर यूज करें, उसके बिना तो जिंदगी चलेगी नहीं, लेकिन उसको एक हद तक रखना ये बात हमारे मन पर निर्भर करती है। चलिए दोस्तों इन्हीं सब बातों की चर्चा हो रही है अमृत धारा में, और बहुत सुंदर सुंदर सुविचारों के द्वारा हम अपने मन को भी टटोलते रहते हैं। सुबह सुबह उसको बहुत अच्छा भोजन भी देते हैं सुविचारों का, और शास्त्रों के ज्ञान से भी कुछ न कुछ समझ अलग सी ले लेकर औरों में भी बांटते रहते हैं। इसी सिलसिले में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी, तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। ज्ञानेश्वर जी आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी मन को अनुशासित करना बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर विचार है, क्योंकि ये मन जो है वो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। ऐसे कहते हैं कि बच्चे जैसा मन होता है। कभी कभी बच्चा अगर गलत काम करता है तो हम उसे डांटते हैं, उसे अनुशासन करते हैं। अगर बच्चा गलत काम करता है तो बहुत बार आसपास के लोग जो है वो बोलते हैं माँ बाप ने उसके ऊपर संस्कार नहीं किया है। तो हमारे मन के भी माँ बाप जो है वो कौन है? हमारे श्रेष्ठ विचार और बुद्धि। हम अगर हमारे मन के ऊपर ऐसे ही संस्कार करें, ऐसे ही अनुशासन करें, तो मन हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाके देगा। मन की सेहत अच्छी होगी। ऐसे कहते हैं कि अगर आपकी सेहत ठीक रखनी है तो आपको उपवास भी करना है। हमारे पूर्वज जो है उन्होंने हमें अनुशासित जिंदगी का महत्व बताया, और इसलिए कहते थे हफ्ते में कम से कम एक दिन आपको उपवास करना है। वैसे मन का भी अगर उपवास हम रखें, एक दिन मन के अंदर कोई भी कुविचार न आए, हमेशा सुविचार आए, अच्छी अच्छी बातें आए, तो क्या होगा? हमारा मन जो है अच्छे विचार लाने की आदत रखेगा, और ये आदत जो है वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और इसलिए मन को अनुशासित करना बहुत बड़ी बात है। इसका सबक हमें लेना है और प्रयास करना है कि मन हमेशा अनुशासित रहे।
0: बिल्कुल सही कहा ज्ञानेश्वर जी आपने। ये मन जो है, मैं समझती हूँ इस पर कितना भी रिसर्च करे तो भी कम है, और जितना जितना हम मन पर रिसर्च करते जाए, लगता तो है हमें कि हमने उसको समझ लिया, लेकिन हर पल हर घड़ी मन की कुछ और ही छटा हमें पेश आती है। दोस्तों आपका क्या विचार है? तो चलिए दोस्तों, आप सब तैयार हो जाइए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही सुंदर कथा सुनने के लिए। नदी के तट पर एक भिक्षु था। उस भिक्षु ने वहां बैठे एक वृद्ध से पूछा कि दादाजी, यहां से नगर कितनी दूर है? सुना है सूरज ढलते ही नगर का द्वार बंद हो जाता है। अब शाम तो होने वाली है, आप बताइए क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? वृद्ध ने कहा, धीरे चलो तो पहुंच भी सकते हो। भिक्षु ये सुनकर हैरत में पड़ गया। वो सोचने लगा कि लोग कहते हैं कि जल्दी से जाओ, समय कम है, और ये तो दादाजी विपरीत ही बात कह रहे हैं। भिक्षु उसका न मानते हुए तेजी से भागने लगा, लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ था, पथरीला था, और थोड़ी ही देर बाद भिक्षु बेचारा लड़खड़ाकर गिर पड़ा। किसी तरह वह उठ तो गया, लेकिन क्या करे, दर्द से बहुत परेशान था। अभी उसको चलने में पहले से काफी दिक्कत भी हो रही थी। वह किसी तरह आगे तो बढ़ा, लेकिन तब तक अंधेरा हो गया था। उस समय वह नगर से थोड़ी ही दूरी पर था। दोस्तों उसने क्या देखा? उसने देखा कि दरवाजा बंद हो रहा है। उसके ठीक पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने भिक्षु को देखा तो हंसने लगा। भिक्षु ने नाराज होकर कहा, भाई तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? दोस्तों किसी ने भी अगर एक तो पराजित हो गया है, इतना भाग दौड़ कर आया, सामने दरवाजा बंद होता देख रहा है, और ऊपर से कोई व्यक्ति उस पर हंस भी रहा है, आप सोच सकते हो उसके मन की क्या अवस्था हुई होगी। बिल्कुल वो बहुत नाराज हुआ और पूछने लगा, तुम हंस क्यों रहे हो? दोस्तों उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, जरूर सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आइए, आप सबका स्वागत है और हम एक बहुत सुंदर कहानी सुन रहे हैं, जो कहानी हमें जिंदगी के लिए एक बहुत महान सीख दे रही है। तो दोस्तों, ये भिक्षु जो लड़खड़ाकर जा रहा था और सामने से ही दरवाजा बंद हो गया नगर का, इतना ही नहीं, उसके पास से जो व्यक्ति गुजर रहा था वो भी उस पर हंस पड़ा। तो नाराज होकर उसने पूछा, तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? दोस्तों, उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा, आज आपकी जो हालत हुई है ना, वह कभी मेरी भी हुई थी। आप भी उस दादाजी की बात को नहीं समझ पाए जो नदी किनारे रहते हैं? दोस्तों, अब भिक्षु की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, साफ साफ बताओ भाई, क्या कहना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, जब दादाजी कहते हैं कि धीरे चलो, तो लोगों को बड़ा अटपटा लगता है। असल में वह यह बताना चाहते हैं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है, अगर संभल कर चलोगे तो पहुंच सकते हो, और अगर भाग कर जाओगे तो उबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण पहले ही अपनी ऊर्जा को खो बैठेंगे, गिर जाएंगे और फिर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, कितनी छोटी कहानी है, लेकिन क्या सीख देती है? ये हमें बताती है कि जिंदगी में सिर्फ तेज भागना काफी नहीं है, सोच समझ कर संभल कर चलना, तब हम जिंदगी की सफर को सुरक्षित कर सकते हैं। और इसीलिए हमारी जिंदगी की सफर सुरक्षित हो, ये हर एक के प्रति मंगलमय सद्भावना भी रख सकते हैं, क्योंकि हम अनुभवी होते हैं।

0: संभल के नहीं चले तो रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे भी लोग कहते हैं कि जिंदगी एक जंगल जैसी है, वहाँ के रास्ते बड़े अटपटे रहते हैं, कौन से रास्ते पे जाए, कौन से रास्ते से फिसल जाए वो पता नहीं चलता। इसलिए जब तक हम संभलते नहीं है खुद को, तब तक हम ठीक तरह से चल नहीं सकते। वैसे जो संभलना है, चलना है, सिर्फ शरीर का नहीं है लेकिन मन का भी है। ऐसे कहते हैं कि मन को अगर हम गति तेज रखे तो गिरने का चांस है। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन की बहुत अच्छी परिभाषा किसी ने की है, वो कहते हैं कि थिंक लेस, थिंक स्लो एंड थिंक राइट। इसका मतलब यह है, कम सोचो, धीरे सोचो और सही सोचो। यही सोच जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम जैसे रास्ते में चलते समय शरीर की गति धीमी रखनी है, संभल के चलना है, वैसे हमारी जिंदगी का रास्ता जो है उसमें चलते समय भी हमारे मन की गति धीमी होनी चाहिए। जब मन की गति धीमी हो तब हम सही सोच पाते हैं, और जितने कम विचार है उतनी मन की तंदुरुस्ती भी अच्छी होती है। मन में विचारों की भीड़ होती है तब मन की तंदुरुस्ती कमजोर हो जाती है और फिर मन भटक जाता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी कभी कभी अच्छी कहानियां जो है वो भी हमें अच्छा संदेश देती है। जैसे कि शास्त्रों में ऊपर ऊपर से कथा बहुत छोटी लगती है, कथा का भावार्थ समझने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर उसके गहराई में जाए तो कथा का भावार्थ भी समझता है और कथा का लुप्त आनंद हम उठा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आजकल देखा जाए तो ये जो युवा पीढ़ी है, जनरेशन जो है, वो डिप्रेशन में इसलिए जा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और इसके कारण ही खामखा वो अपने ही मन को बीमारी में डाल रहे हैं। दोस्तों, इन सब बातों को हम तो जरूर समझेंगे, लेकिन हमारी जो धरोहर है कहो, या हमारे भारत देश की जो उज्जवल न्यू जनरेशन है, उनको भी हम ये बातें बहुत अच्छी तरह से अगर सिखाएंगे तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों को लेकर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, हम भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, दशम स्कंद और 14वां अध्याय जो है, जिसमें भागवतकार बताते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। दोस्तों, भगवान को भी स्तुति बड़ी अच्छी लगती है। वैसे मनुष्य को स्तुति अच्छी लगती है, महिमा अगर किसी ने की तो बहुत खुश हो जाता है, वो तो बात कॉमन है, हम सब जानते हैं, हम सब उसके अनुभवी हैं। लेकिन भगवान को भी स्तुति अच्छी लगती है और ये पूरा अध्याय उसी पर है। लेकिन किस प्रकार से वो भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान की स्तुति करने वाले जो शब्द है उनके पीछे का भाव क्या है, वो हमें जरूर देखना है, समझना है, जानना है। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। वो कहने लगे कि हे प्रभो, आप एकमात्र हो जो स्तुति करने योग्य हो। मैं आपके चरणों में सचमुच नमस्कार करता हूँ और मैं या और कोई भी समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। आगे वो कहते हैं कि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हो। बहुत सुंदर बात है, माना भक्त जो है या साधक जो है वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ये अटल सत्य होते हुए भी वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अनंत, आप इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए, जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति हुई नहीं, तब उन्होंने क्या किया, अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीलाओं से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई और आपके परम पद की उन्होंने बड़ी सुगमता से प्राप्ति कर ली। तो हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्ध अंतकरण से की जा सकती है। आगे वो कहते हैं कि विशेष आकार के त्यागपूर्वक आत्माकार अंतकरण का साक्षात्कार किया जा सकता है। देखो ना ज्ञानेश्वर जी, अभी ये सब शब्द का तो जंजाल लगेगा, साधारण इंसान तो बस पढ़ते जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका अगर हम भावार्थ समझे तो भगवान के जैसा बनना संभव है, भगवान बनना संभव नहीं है। और इसीलिए अनंत शब्द यहाँ उपयोग में लाया है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी तो एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो देवता और भगवान ये दोनों अलग अलग हो गए।
2: बिल्कुल, देवता और भगवान अलग अलग हो गए, और इसलिए यहाँ भागवतकारों ने बड़ी खूबी से ब्रह्मा जी के मुख में ये स्तुति पर गायन जो किया है भगवान के बारे में। और देखिए, इतने शब्द दिखने में बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव अगर हम जानने की कोशिश करें, इंद्रियों का प्रत्याहार करें, इंद्रियों का प्रत्याहार करने के बाद निर्गुण ब्रह्म जो है उसकी प्राप्ति और उसका ज्ञान हमें मिल सकता है।
1: या अगर कहे कि सिंपल शब्दों में आत्म स्वरूप में टिकना।
2: बिल्कुल, लेकिन आत्म स्वरूप में टिकने के लिए इंद्रियों का प्रत्याहार करना यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा इंद्रियों के बारे में जानकारी रहना, देहभान में आना, यह स्वाभाविक है। सुबह उठने के बाद मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरी पद क्या है, इसकी जानकारी और इसकी पहचान और इसकी स्मृति स्वाभाविक रीति से मेरे पास है। लेकिन मैं आत्मस्वरूप हूँ, ये स्मृति जो है वो बड़ी कठिन है और उसके लिए साधना करनी पड़ती है। और ये साधना जो है उसे ही हम मेडिटेशन कहते हैं। और अप्रत्यक्ष रीति से ब्रह्मा जी ने मेडिटेशन के बारे में ही इसमें कहा है कि भगवान को अगर सही तरीके से जानना है, देखिए श्री कृष्ण जी तो सामने ही थे, विष्णु जी सामने ही थे और ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे थे। और यहाँ तो भागवत कथा में जो बताया गया है ये तो श्री कृष्ण जी की महिमा कर रहे थे। ब्रह्मा जी भले ऊपर थे और श्री कृष्ण जी नीचे धरती पर थे, लेकिन फिर भी महिमा तो श्री कृष्ण जी की करते थे। श्री कृष्ण जी देह के रूप में है तो समझने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि आपका सही रूप जानने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती है। वैसे भी हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तब कभी कभी गिले शिकवे होते हैं, तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम देह के रूप में एक दूसरे को देखते हैं और इसलिए परेशानी होती है। जब हम आत्मिक स्वरूप में एक दूसरे को देखे तब परेशानी खत्म हो जाती है। और इसलिए संतों ने भी कहा है एक दूसरे को देखते समय आत्म स्वरूप में देखिए।
1: ज्ञानेश्वर जी, अगर ब्रह्मा जैसे महान देवता को भी भगवान को जानने में या उसको देखने में कहो दिक्कत आती है, या कहो कि इतना आसान नहीं है, फिर तो ये सारी बातें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आम आदमी तो जरूर ये सोचेगा कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो इस बात को हम किस प्रकार से उठाए, मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने भी इसका हल आगे दिया होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल दिया होगा, ब्रह्मा जी ने हल दिया है। क्योंकि वो देखिए छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी हम मायूस होते हैं, हमें लगता है कि परीक्षा बड़ी कठिन है, लेकिन जब पता चलता है कि ब्रह्मा जी को भी ये परीक्षा आ गई और वो पास कर गए तो हम भी कर सकते हैं, ये मन को एक तरीके से समझानी है, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए ब्रह्मा जी ये कहते कि यह जो साक्षात्कार होता है परमात्मा का, यह ब्रह्म है और मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इस प्रकार से नहीं है, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही वो होता है। तो ज्ञानेश्वर जी देखो ना, कितनी छोटी सी बात है, वरना अपने आप में टिकना, इसी से ही हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल, और ये स्वयं प्रकाशित का जो शब्दों का प्रयोग किया है, स्वयं प्रकाश, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जैसे जितने तारे हैं, जितने ग्रह हैं, उसमें सूरज की रोशनी और सूरज की महिमा अगाध है, क्योंकि सूरज स्वयं प्रकाशित है और बाकी तारे जो है, बाकी ग्रह जो है वो पर प्रकाशित है। वैसे परमात्मा को भी स्वयं प्रकाशित कहा जाता है और उनका प्रकाश जो है वो प्रकाश, एक्चुअली प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान को भी प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो है परमात्मा का स्वरूप, अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो प्रकाश स्वरूप है और इसलिए उसे निराकार भी कहते हैं। निराकार का मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उनके पास गुण ही नहीं है, लेकिन निराकार और निर्गुण की सही परिभाषा जानने के लिए हमें भागवत की गहराई में जाना है, तो फिर हमें समझ में आएगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, सचमुच कभी कभी शब्द जो होते हैं उसका भावार्थ, उसका अन्वयार्थ, उसका मतितार्थ जानना बहुत जरूरी होता है। शायद हम इन बातों में जाना भी कभी कभी नहीं चाहते, क्योंकि कोई कहते हैं इतना समय है कहाँ, चलो हम एक अध्याय पढ़ते हैं, भक्ति भाव से पढ़ते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन सचमुच ये भी एक साधना है कि शब्दों का, भले हम एक पैराग्राफ पढ़े, भले हम एक लाइन पढ़े, लेकिन अगर उसके अर्थ में हम टिक जाए तो मैं समझती हूँ दोस्तों एक बहुत सुंदर आत्मिक शांति मिल जाती है और मन जो है वो उस प्रकाश से भर जाता है जो ज्ञान का प्रकाश है। दोस्तों चलिए, बातें तो बहुत हो रही है, हो सकता है कि आपको थोड़ा बोझड़ भी लगे, हो सकता है कि आपको थोड़ी हेवी भी लगे, लेकिन दोस्तों हाँ, हमें तो बस उसके पीछे का अर्थ जानना है। चलिए इन्हीं बातों के साथ अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों चलिए, भगवान जिसकी महिमा अगाध है, जिसकी महिमा करना एक साधारण क्या ब्रह्मा जी जैसे देवता को भी कठिन लगती है, फिर भी वो महिमा तो करते ही रहते हैं। वो कहते हैं, हे प्रभो, आप केवल संसार के कल्याण अर्थ ही अवतीर्ण हुए हैं, सो हे भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान बड़ा ही कठिन है। और जैसे कि वो भगवान की महिमा करने लगते हैं, या कहो एक रूपता उनके अंदर वो भाव आ जाता है, तो उन्हें अपने किए हुए करतूत पर, कर्म पर भी पश्चाताप होने लगता है, या उनको वो एक महसूसता आती है, रियलाइजेशन शक्ति आती है, और वो कहते हैं कि हे प्रभु, देखिए मेरी भी कुटिलता कितनी है, आप अनंत हो, आदि हो, परमात्मा हो, और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में है, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा, तो हे प्रभु, मैं आपके सामने हूं ही क्या? क्या आग के सामने चिंगारी का कुछ महत्व है? और फिर आगे एक बहुत सुंदर बात वो कहते हैं, वो कहते हैं, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को ठीक ठीक जान नहीं सकता, इसी से ही अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा, मैं अजन्मा जगत करता हूं, इस माया कृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था, इसलिए आप ये समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, ये मेरा ही पुत्र है, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ब्रह्मदेव को, ब्रह्मा जी को आदि पुरुष कहा जाता है, आदि देव ब्रह्मा कहते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में वर्णन है इस सृष्टि का कर्ता जो है वो है ब्रह्मदेव है, और ब्रह्मदेव जैसे जिनको हम इतना उच्च स्थान पर रखते हैं या हमारे मन में इतना आदर भाव है, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं

0: कुटिल हो गया। आपके अधीन हूँ मैं और मैं आपका पुत्र हूँ। ज्ञानेश्वर जी, बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि आखिर देवता हो या कितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हो, हम सब भगवान के बच्चे हैं। ये जो बचपन से ही हमारे ऊपर संस्कार है, सीख हमें मिली है, वो कितनी यथार्थ है।
1: बिल्कुल भक्ति जी, ये जब मैं सुन रहा था शब्द, भागवतकारों ने शब्दों का जो प्रयोग किया है वो बहुत उच्च तरीके से किया है, ऊंचे शब्द है, शायद समझने में सुनने में कठिन लगते होंगे, लेकिन फिर भी इसके पीछे का भाव जो है वो बड़ा अच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि रजोगुण से मेरी पैदाइश हो गई, लेकिन अगर किसी को ज्ञान देना है तो स्वयं भगवान को भी ब्रह्मा जी की मदद लेनी पड़ती है। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि भगवान को ज्ञान देने के लिए किसी का आधार चाहिए, शरीर का आधार चाहिए, मुख का आधार चाहिए, और मुख का आधार और शरीर का आधार लेने के सिवाय भगवान ज्ञान भी नहीं दे सकते।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, एक प्रकाश है समझो, बहुत प्रकाश का बड़ा स्रोत है, लेकिन उसको हम तक पहुंचने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए। मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी को वो पार्ट मिला है।
1: बिल्कुल, क्यों, देखिए मीडिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों जो बात कर रहे हैं उसमें हमारी बातें हैं, हमारे श्रोताओं के पास हमें पहुंचानी है, लेकिन कैसे पहुंचाए? ये पहुंचाने के लिए हमें मीडिया की जरूरत है, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें रेडियो का उपयोग करना चाहिए और रेडियो के जरिए उनके पास पहुंचाना चाहिए, उनके पास भी रेडियो होना चाहिए, उन्हें उसे ट्यून करना चाहिए और फिर तो बात सुन सकते हैं। तो ये जो ज्ञान की बातें चाहिए और कहीं भी बातें, कोई भी बातें कहिए, मीडिया के द्वारा ही हो सकती है। और ब्रह्मा जी का महत्व इसलिए है क्योंकि वो मीडिया है, लेकिन अगर ये हमारे माइक जो है, स्पीकर्स जो है, वो अगर समझे कि मैंने बहुत अच्छी बातें की, वो हो नहीं सकता, क्योंकि जो उसके पीछे बोलने वाला है, बुलवाने वाला अलग है, बोलने वाला अलग है, लेकिन उसका जो माध्यम है, अगर माध्यम नहीं है तो भी हम बोल नहीं सकते, हम पहुंचा नहीं सकते। तो हर एक का महत्व है, बोलने वाले के जितना महत्व है उतना ही महत्व माध्यम का भी है, लेकिन यहाँ दिखाने की कोशिश ये है कि माध्यम को कभी कभी अभिमान आता है और फिर माध्यम को अभिमान आता है, उसको निकालने के लिए ये एक तरीका बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी को अभिमान आया तो हमें भी आ सकता है, लेकिन हम ये देखें कि ब्रह्मा जी जैसी पवित्र आत्मा को भी अभिमान आने के बाद उन्होंने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने में कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे पंथों में ये कहते हैं कि साल में एक बार दूसरों के तरफ क्षमा याचना करे, गलती का एहसास करे, गलती के लिए माफी मांगे, क्षमा मांगे। क्या होता है, मन स्वच्छ हो जाता है, मन में जो कोई किचड़ा है वो दूर हो जाता है। और देखिए, बच्चे भी छोटे छोटे रहते हैं, वो भी मम्मा पापा को, अपने माँ बाप को क्या कहते हैं, सॉरी कहते हैं, गले लग जाते हैं, तो गिले शिकवे सब दूर हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये मुझे लगती है कि देखिए, आदमी कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब हम बच्चा बन जाते हैं तब उसके ऊपर अधिकार पा सकते हैं। अभी देखिए, बड़े बड़े अफसर है, कलेक्टर है, मंत्री है, अभी उनके पोते देखिए। अभी बाकी सबके लिए वो कलेक्टर हो सकते हैं, बाकी सबके लिए वो मंत्री हो सकते हैं, लेकिन उनके जो पोते हैं, वो पोते दादाजी को बोलेंगे, दादाजी घोड़ा बन जाओ, और वो दादाजी भी बड़ी खुशी से घोड़ा बन जाते हैं और उसके ऊपर पोते चढ़ जाते हैं। क्या है, अधिकार है, और वो अधिकार हम पा सकते हैं प्रेम के जरिए। भगवान के तरफ भी हमारा उतना ही प्यार है तो हम भगवान के ऊपर भी अधिकार पा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। एक तो ये होना चाहिए, अहंकार तो आता रहता है, कभी ना कभी ये भूले हमसे जरूर हो जाती है, तो सबसे पहले वो महसूस करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, और भगवान की कृपा है ये हमारे मन में सदा विचार होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भगवान की कृपा है मैं तो बस बैठा ही रहूं, नहीं, यहाँ हमें दोनों बातें सिखाई जाती है। कर्म हमें करना है, बहुत अच्छी तरह खुद को संभालना है, बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस भी करनी है, लेकिन अगर कोई भूल हो जाती है तो सचमुच एक बालक बन जाना है तो भगवान तो हमारे स्नेह की डोरी में सदा बंधा रहता है और हमें भी उतनी शक्ति प्रदान करता।
1: बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ जो क्षमा याचना कर क्षमा याचना की बात है उससे मुझे एक चीज याद आई, एक कथा याद आई, रामायण की कथा है और वहाँ परशुराम जी और प्रभु रामचंद्र जी उनका संवाद है। बहुत अच्छी रीति से वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन किया है कि परशुराम जी का जब धनुष प्रभु रामचंद्र जी तोड़ देते हैं तो परशुराम जी को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद भी प्रभु रामचंद्र जी उनके सामने क्षमा याचना करते हैं। वो तो बोल सकते थे कि मेरी उसमें गलती कोई नहीं है, राजा जनक ने प्रण रखा था धनुष उठाने का, प्रत्यंचा लगाने का, मैंने प्रत्यंचा लगाने की कोशिश की, उसमें से धनुष टूट गया, तो मेरी गलती क्या है। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, क्षमा याचना की। तो ये सबक, ये सीख अगर हम हमारे जिंदगी में रखें, कोई भी बात हो अगर हम सॉरी कहते हैं, हम क्षमा याचना करते हैं, तो क्या होता है, बात का बतंगड़ नहीं बनता, बात वहां ही पूरी हो जाती है। ये भी सीख अगर हम भागवत कथा, इस कथा के द्वारा ले तो हमारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने सही बात कही। अगर हम क्षमा याचना करते हैं, वो भी दिल से करते हैं, केवल शब्दों से नहीं, तो भगवान को भी स्नेह की डोरी में बांधने की और उसके दिल को पिघलाने की शक्ति हमारे पास आती है। लेकिन दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखना है कि बार बार भूले करते रहे और क्षमा याचना भी करते रहे, ये भी ठीक नहीं है। चलिए दोस्तों, देखिए ना कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी में हमें हर पल हर क्षण उपयोग ही होती है और ये हमें भागवत कथा सिखाती है। शास्त्रों का ज्ञान हमें ये सिखाता है, लेकिन शायद ही आज तक हमने इस रीति से, इस दृष्टिकोण से, इस एंगल से इसको देखा होगा। चलिए, देर सही दुरुस्त सही, हम अपनी दृष्टिकोण को चेंज कर रहे हैं, एटीट्यूड को परिवर्तन कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ समय को देखते हुए मैं भक्ति आज के लिए अपने वाणी को विराम देती हूँ। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी बहुत ही खूबसूरत कि क्या भगवान को अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है। जैसे हमारे परिवार में 4 सदस्य, 5 सदस्य या 6 सदस्य हैं, कितना अच्छा हो यदि भगवान भी एक सदस्य के रूप में हमारे परिवार में शामिल हो जाएं। फिर तो शायद समस्याओं का नाम निशान नहीं रहेगा, या मैं ये कहूं कि समस्याओं की अविद्या हो जाएगी। जहां भगवान हो, परमात्मा हो, गॉडफादर हो, खुदा हो, वहां तो जीवन कितना सरल, कितना सहज और कितना आनंदित हो जाएगा। और यही चर्चा पिछली बार हम कर रहे थे कि भगवान से हम क्यों नहीं बात करते, भगवान से हम क्यों नहीं नाता जोड़ते, क्यों नहीं उन्हें अपने जीवन में शामिल करते। कई बार तो हम शायद इस चीज को सोच ही नहीं पाते थे, स्वप्न में भी ये बात नहीं थी कि ये संभव भी हो सकता है, क्योंकि भगवान ना जाने कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, एक आस्था हमारे मन में थी कि वो हैं, लेकिन कहाँ हैं, कैसे हैं और क्या हम उनके इतने नजदीक जा सकते हैं, इसकी तो शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं थी। लेकिन राजयोग के माध्यम से शायद ये संभव है, जिसकी ही चर्चा हम आदरणीय भ्राता जी के साथ पिछली बार भी कर रहे थे और इस चर्चा को आज भी हम जारी रखेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: भ्राता जी, पिछली बार जैसे हमारी चर्चा हो रही थी कि परमात्मा को हम अपने जीवन में शामिल कर लें, लेकिन जो बात जहां पे हमारी बात रुकी थी कि जैसे हम किसी को देख पाते हैं तब हम उनसे बातें कर पाते हैं और साथ ही हमारी हर चीज क्लियर होती है, शायद इसीलिए उसे अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं और ये भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इतना नजदीकी नाता उनसे हो सकता है।
1: बिल्कुल, हम उसे देख भी सकते हैं और उससे बहुत नजदीकी नाता भी कर सकते हैं। अगर आप कहानियां पढ़ें, जो प्राचीन कहानियां हैं, जो पुराणों से दी गई हैं, विष्णु जी आ रहे हैं, कहीं महादेव जी आ रहे हैं, कहीं ब्रह्मा जी आ रहे हैं, देवताओं का ऋषियों से मिलन हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का देवताओं से मिलन हो रहा है, तो जरूर ये बात प्रैक्टिकल में कभी ना कभी यहाँ घटित हुई है। तो ये एक समय आता है इस सृष्टि पर जब भगवान स्वयं अपना कार्य करने के लिए धरा पर अवतरित होते हैं। ये बात बहुतों को पता नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो सनातन धर्म से जुड़े हैं या वैष्णव धर्म से जुड़े हैं, वो जानते मानते हैं कि भगवान कभी श्री राम के रूप में आए थे, तो कभी श्री कृष्ण के रूप में आए थे। भारत में 24 अवतार या 10 अवतार तो फेमस हैं ही। चलो, उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान इस धरा पर आते अवश्य हैं, वो मिलते अवश्य हैं। अगर वो न मिलते होते तो उससे मिलने की इच्छा भी मनुष्य के मन में न होती। जरूर उसके मिलन में इतना सुख हुआ है, इतना अतिंद्रिय आनंद प्राप्त हुआ है कि मनुष्य चाहता बस एक बार भगवान मिल जाए। वो ये भी सोचता है जिसने सारा खेल रचा है, वो एक बार मिल जाए, उससे ये पूछूं, उससे ये पूछूं, उसने ये गड़बड़ क्यों की, उसे वो सारा गुस्सा भी भगवान पे उतारना चाहता
0: है। मतलब प्यार भी है, गुस्सा भी है,
1: गुस्सा प्यार
0: है।
1: नहीं, ये कंप्लेंट और ये गुस्सा ये प्यार की निशानी है। तो वो आता जरूर है, और जब वो आता है तो अपने आने की पहचान, अपने आने का संदेश स्वयं देता है। तो जरूर वो साकार माध्यम में ही आएगा, किसी मनुष्य तन में ही आएगा, और उसको पहचानने के लिए सद्विवेक की जरूरत है। उसे देखा भी जा सकता है। देखिए, हमारे पास उसे देखने की एक चीज है, जैसे यहाँ की संसार की चीजों को हम इन 2 नैनों से देखते हैं, भगवान को देखने के लिए हमारे पास 3रा नैन है, 3rd eye of wisdom, ये है बुद्धि का। तो बुद्धि के नैन से भी बहुत चीजों को देखी जाती है। जैसे मैं कहूं कि एक व्यक्ति लंदन घूमकर आया है, उन्हें लंदन का बहुत सुंदर वो म्यूजियम देखा है जिसमें कोहनूर हीरा भी रखा है। अब वो यहां आ गया भारत में वापस अपनी जन्मभूमि पर। मैं उसे कहूं अपनी बुद्धि के नेत्र से यहां बैठ के फिर से उसे देखो, तो वो देख सकता है ना। कोहनूर हीरा भी उसके सामने आ जाएगा, वो म्यूजियम भी उसके सामने आ जाएगा। म्यूजियम में जो कुछ रखा हुआ, उसके वो बिल्डिंग कैसी है, उसके आगे सड़कें कैसी हैं, सड़कों पे दौड़ते हुए वाहन, सब उसे यहाँ से नजर आने लगेंगे ना। इसको 3rd eye of wisdom कहा जाता है, ये बुद्धि है। तो अगर हम बुद्धि को ऐसा बना दें, बुद्धि में ऐसा विजडम भर दें, ये 3rd eye जो है विजडम की है, इसमें अगर हम ईश्वरीय ज्ञान भर दें, गॉडली विजडम, तो ये बुद्धि भगवान को देखने लगेगी, ये बुद्धि तीनों लोगों को देखने लगेगी।
0: वो लंदन गया, उसने म्यूजियम में कोहिनूर हीरा देखा, तो उसने देखा इसलिए वो अभी विजुलाइज कर पा रहा है, देख पा रहा है। यदि आप मुझे कहें और मैं लंदन नहीं गया हूं, तो शायद मैं वो विजुलाइज नहीं कर पाऊं। तो ठीक वैसे ही यदि अभी मुझे देखना है, तो यदि मैंने देखा होगा तब तो मैं विजुलाइज कर
1: पाऊंगा। अभी इसमें दूसरी बात है, क्योंकि भगवान को देखा नहीं है इसलिए उसको विजुअलाइज करना थोड़ा कठिन हो रहा है सबके साथ। लेकिन वो कैसा है ये तो हम बता सकते हैं ना। एक व्यक्ति लंदन देख आया है, वो उसका पूरा चित्र खींच देगा, लंदन ऐसा है, वहाँ सड़कें ऐसी हैं, बिल्डिंग्स ऐसी हैं, रात को लाइट्स ऐसी होती है, वहाँ ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं, वहाँ सड़क पे लोग इस तरह चलते हैं, तो मनुष्य अपनी फिर कल्पना शक्ति से उसको देखेगा। तो पहले यूज करेगा पावर ऑफ इमेजिनेशन और इसके बाद यूज करेगा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो हर चीज तो देखी नहीं जाती है, खुद हर व्यक्ति सारे संसार को नहीं देख सकता, तो कुछ चीजों को पहले इमेजिनेशन के द्वारा देखा जाएगा और फिर वही रियलिटी में बदल जाती है। भगवान के बारे में भी ऐसी बात है, पहले हम उसका ज्ञान लेते हैं, वो कैसा है और कहाँ रहता है इसके बारे में समझाते हैं। तो पहले मनुष्य इमेजिन करता है, और क्योंकि उसने भगवान को देखा था बहुत साल पहले, ये एक दूसरी सीक्रेट है कि 5000 साल पहले उसने भगवान को देखा था, तो जैसे ही उसको वो ज्ञान दिया जाता है तुरंत वो कैच कर लेता है कि हाँ वो ऐसा है, और उसको विजुअलाइज करने लगता है। फिर जैसे जैसे राजयोग की साधना बढ़ती है उसका वो स्वरूप क्लियर होने लगता है, जैसे जैसे हम उससे अपना नाता जोड़ते हैं, उसको अपना समझते हैं, उससे फ्रेंडशिप करते हैं, तो हमारे और उसके बीच की दूरी समाप्त होने लगती है।
0: चलिए हम बुद्धि रूपी नेत्र से उन्हें देखें। यदि हमने, जैसे आपने कहा कि 5000 वर्ष पहले भी हमने उन्हें देखा था, और अब हम यदि थोड़ा सा अभ्यास करें राजयोग का तो उन्हें देख सकते हैं, तो देखा जा सकता है। लेकिन परमात्मा रहते कहाँ है? कई बार एक बात आती है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, कण कण में फैले हुए हैं। कोई कहता है कि परमात्मा नाम रूप से बिल्कुल न्यारा है, कोई कहता है कि ये जो प्रकृति जो हमें सूर्य जो है उष्मा दे रही है, प्रकाश दे रही है, या जल जो है हमें पानी दे रहा है, जीवन दे रहा है, तो प्रकृति को कई लोग परमात्मा मानते हैं, कई ये कह लेते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, शिवोहम। तो इसमें बहुत ज्यादा भ्रांतियां हो जाती हैं कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी है या नहीं है या कहाँ है।
1: एक सत्य ज्ञान, जैसा आपने कहा, इस समय कंफ्यूजन है
0: जी,
1: विशेष करके स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में। परमात्मा ने आकर स्वयं बिल्कुल सरल शब्दों में अपना ज्ञान दे दिया, और सीधी सी बात सोचने की है, हम अपने से पूछें क्या मेरे अंदर भगवान बैठा है, उत्तर मिलेगा नहीं। अगर शांति का सागर मेरे अंदर बैठा है और मुझे शांति नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के पास हम बैठ जाएं तो ठंडा ठंड लगने लगेगी, अग्नि के पास बैठ जाएं गर्म हो जाएंगे, इन्हें लाल मिर्ची ज्यादा खा ली हो अंदर जलने लगेगा। भगवान किसी के अंदर बैठा हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपूर्ण निर्विकारी, और व्यक्ति का चित्त अशांत।
0: लेकिन भ्राता जी ये भी तो कहते हैं कि चलो वो सागर है लेकिन उसका अंश मेरे अंदर है, तो अंश हो सकता है, इसी बात में थोड़ी सी जो है अनुभूति,
1: इसी बात पर हम आ रहे हैं। तो सब जगह होने की उसकी बात नहीं है, फिर परमात्मा जो परम पवित्र है वो मनुष्य की गंदगी में भला कैसे रह सकता है? हर मनुष्य के मन में दिल में गंदगी समाई हुई है, जहाँ गंदगी है वहाँ परमात्मा का वास कैसे हो सकता है? ये जो बात है कि अंश है, वास्तव में परमात्मा की शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, उसको अंश कह दिया गया है। बाकी परमात्मा के तो अंश होते ही नहीं, वो कोई मोटी चीज थोड़े जिसके टुकड़े करके सब में बिखेर दिया जाए, उसकी शक्तियों का वास सब में होता है, और वो किसी में कम किसी में ज्यादा रहती है, वास्तव में वो सब में नहीं रहता। देखो भगवान को जब भी कोई याद करेगा ऊपर को, उसका एक नेचुरल अटेंशन भी ऊपर हो जाता है, कोई कहते भगवान ऐसे करेंगे तो तर्क चाहे कुछ भी हो लेकिन भगवान के लिए इशारा हमेशा ऊपर को। गुरु नानक देव जी ने भी ऊपर को इशारा,
0: जितने भी धर्म स्थापक हैं,
1: मतलब हम भी कहें भाई इसका मालिक तो भगवान, तो जाता है ऊपर को, ये नहीं कहते इसका मालिक तो भगवान इधर है, ऊपर को जाता है। तो वास्तव में तीनों लोकों में सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है जिसको परम धाम कहते हैं, जिसकी गीता में भी चर्चा है कि जिसको सूर्य चांद प्रकाशित नहीं कर सकते वो मेरा परम धाम है। तो वहीं का वो निवासी है। हम लोगों से पूछा करते हैं कि अगर भगवान सभी जगह है तो ये जो तीन लोक हैं ये क्या हैं, जरा इनका स्पष्टीकरण करो, किस लोक में कौन रहता है। तो भगवान ने स्वयं आकर अब ये सत्य रहस्य खोला है कि मैं वास्तव में वहां रहता हूँ, तुम यहाँ पाठ बजाते हो। वो परम पिता, हम आत्माएं उसकी संतान, दोनों अलग अलग हो गए। तो जब ये ज्ञान स्पष्ट हो जाता है तभी तो योग की बात आती है। अगर एक ही एक है तो योग किसका किससे, योग किसका किससे,
0: तो योग माना ये जो मतलब कहा जाए कि सर्व व्यापकता की जो बात है कि भगवान हर कण कण में है। कई लोग ये मानते हैं कि पत्ता भी भगवान की इजाजत के बिना नहीं हिलता, तो ये भी बात कहाँ तक राइट है?
1: देखिए ये सब भावनात्मक बातें हैं। लोगों ने कह दिया सर परमात्मा की लीला है, उसकी माया है, वही काम कर रहा है, वही पत्ते पत्ते को हिला रहा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। इस संसार को चलाने का एक सिस्टम है, जैसे देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, भगवान ने भी संसार को चलाने के लिए इसका एक विधान बना दिया है। उस अनुसार इस संसार में सभी काम चलते रहते हैं, बाकी इसमें परमात्मा को कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं रहती।
0: बिल्कुल। लेकिन भैया जी, जैसे कई बार मीरा की बात हम सुनते हैं कि उसने दिल से याद किया और उसे श्री कृष्ण के साक्षात्कार हो गए। प्रहलाद ने बहुत ज्यादा भक्ति की और खंभे को तोड़ के नरसिंह जी प्रकट हो गए। तो ये जो बातें आती हैं तो इससे लगता है कि हाँ, हम चाहे वो खंभा है, चाहे पेड़ है, पत्ते हैं, या हम जहाँ भी याद करते हैं भगवान वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो इससे जो सर्वव्यापकता की जो बात है उसको बहुत बल मिलता है।
1: ये सत्य है कि भगवान को जहाँ सच्चे दिल से याद किया जाएगा वो वहां प्रकट हो जाएगा, लेकिन इससे भी सिद्ध है कि वो बाकी जगह नहीं है। सर्वव्यापकता का और उसके प्रकट होने का कोई नाता नहीं है। सर्वव्यापकता मानो तो सब जगह फैला हुआ है, फिर भला वो एक जगह प्रकट कैसे होगा? फिर किसी रूप में होगा, रूप हो गया तो उसका कोई स्थान भी जरूर होगा। तो एक्चुअली सत्य यही है, ये भगवान ने स्वयं अब स्पष्ट कर दिया कि मैं सब जगह नहीं हूं। ये तीन सत्ताएं हैं, आत्माएं
0: जी,
1: प्रकृति और परमात्मा, तीनों का अपना अपना कार्य है। ये संसार का खेल आत्माओं और प्रकृति के मिलन से चल रहा है। इसमें आत्माएं स्वतंत्र हैं, अनेक हैं, हर व्यक्ति हर मनुष्य के शरीर में उसकी चेतन आत्मा विराजमान है, और हर एक का मन, हर एक की बुद्धि, हर एक का सोचने का तरीका, हर एक के संस्कार बिल्कुल अलग अलग हैं। प्रकृति से आत्माओं का मिलन है, प्रकृति और आत्माओं के मिलन से संसार चलता है। वास्तव में तो परमात्मा को इस संसार में होने की जरूरत ही नहीं है।
0: बिल्कुल, भले संसार के वो रचता हैं, संसार चल रही है अपने ढंग से, लेकिन वो यहाँ नहीं है।
1: प्रताप
0: जी, एक चीज मैं भी हमेशा सोचा करता था, गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये लगता था कि भगवान कहीं और हैं, जो हम कहते हैं कि भगवान आएंगे। तो ये सर्वव्यापकता की बात में थोड़ा सा डाउट पहले भी पैदा हुआ।
1: नहीं, बिल्कुल ठीक है, उसके यहाँ होने की जरूरत क्या है? अगर उसके होते भी संसार का इतना बुरा हाल है तो हम कहेंगे नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे होने का क्या फायदा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, भ्रष्टाचार और क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या वर्णन करें। अगर भगवान के यहाँ उपस्थित होने से ये सब कुछ है तो उसकी उपस्थिति की फायदा क्या, उसकी जरूरत क्या है? इसलिए सत्य यही है कि वो यहाँ होता नहीं है। ये तो जो गिरावट आई वो मनुष्य आत्माओं के कारण आई है, और वो सबको फिर सद ज्ञान देने, सच्ची राह पे लाने, संसार का पुनरुत्थान करने के लिए आता ही है।
0: बिल्कुल। तो भ्राता जी, मूल चीज पे बातें हैं, जैसे आपने कहा कि ठीक है, वो ये तीन लोगों की बात आपने कही और सबसे ऊपर वो रहते हैं परम धाम। तो आने का जो समय है परमात्मा का, बहुत सारी चीजें हम सुनते आए हैं, रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा कि अनेक प्रकार की चीजें बताई कि गाय विष्ठा खाने लगेगी, या कन्या अपने मुख से वर मांगने लगेगी, या अनाज पुड़ियों में मिलने लगेगा। ये सारी चीजें उसमें वर्णित की गई हैं, और गीता की भी बात आती है कि धर्म की ग्लानि

0: हैं कलयुग के अंत के, अन्नपुड़ियों में बिकेगा और कन्या अपने मुंह वर मांगेगी। एक जगह भाषण किया एक बहन ने और ये बात कही तो एक पंडित जी उठ कर आए कि बहन जी आप ठीक कहते हो, ठीक कहते हैं, शास्त्रों में तो ये है कन्या अपने मुंह वर मांगेगी, आज तो कन्या वर को लेके ही भाग जाती हैं। गाय विष्टा खाएगी, आकाश से अग्नि की वर्षा होगी, देखो मिसाइल्स और एटम बॉम्ब्स ये सब बहुत बन गए हैं। तो वास्तव में हमें कलयुग के अंत के सारे लक्षण दिख रहे हैं। मैं तो लोगों को एक छोटी सी बात कहा करता हूँ, पानी इतना दूषित हो गया है कि इस पानी को प्योरीफाई करने का तरीका कोई किसी के पास तो है नहीं। पानी बोतलों में बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, संसार में टेंशन और रोग बढ़ते जा रहे हैं,
1: पर्यावरण कितना
0: पर्यावरण प्रदूषित। अब देखिए डायबिटीज भयंकर रूप लेती जा रही है, हार्ट के पेशेंट दिनों दिन बढ़ रहे हैं, कैंसर महामारी बन रही है जिसको रोका नहीं जा रहा है। तो ये सब दिख रहा है कि हम कहीं ना कहीं एंड की ओर जा रहे हैं और एंड के बाद फिर एक सत्वप्रधानता आएगी, एक स्वच्छता आ जाएगी, देवत्व आ जाएगा, तो ये जो पाप और पापी हैं ये समाप्त हो जाएंगे और एक नवयुग की शुरुआत हो जाएगी जिसे हम सत्ययुग कहते हैं। तो परमात्मा के आने का समय यही है
1: जी। मतलब कहने का भाव सीधे तौर पे जो आप कह रहे हैं कि भगवान इस धरती पे आ गए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो भगवान को कैसे पहचाने और कैसे उनसे नाता जोड़े, भ्राता जी तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भगवान जो कि ऊपर रहते हैं अब धर्म ग्लानि का समय है और इस सृष्टि पे आ गए हैं, कैसे हम माने, कैसे उन्हें पहचाने, कैसे उनसे नाता जोड़े।
0: बिल्कुल ठीक बात है, भगवान सबका है और वो सबके लिए आता है। उसको ज्ञान देने, उसकी पहचान देने के लिए, उसके ज्ञान देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। उसने स्वयं एक रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है जिसका ही नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा है। परमात्मा का संदेश दे रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, उसे कैसे मिला जाए उसकी विधि सिखा रहे हैं। तो ये कार्य चल ही रहा है। देखिए हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सारे तरह के लोग आते हैं और मुख्य एक बात जानकर वो कहते हैं कि आप लोग ये पवित्रता की बात, ब्रह्मचर्य की बात क्यों कर रहे हो, और लोग ये भी कहते हैं अगर आप इसे छोड़ दो तो सारी दुनिया आपके पीछे आ जाएगी।
1: हमने इस पे बहुत लंबी चर्चा की भी है।
0: आपकी फिलोसॉफी इतनी सुंदर, सिंपल और प्रैक्टिकल है, सारा संसार उमड़ पड़ेगा ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान लेने के लिए, लेकिन आप ये पवित्रता की बात, ये ब्रह्मचर्य की बात, ये व्यसन मुक्ति की बात क्यों करते हो। तो हम उन्हें बताते हैं भाई ये हम नहीं करते, ये तो भगवान का आदेश है। वो भी संसार को बदलना चाहता है, बदल रहा है, उसकी कुछ प्लानिंग है अब इस संसार को, इस पाप की दुनिया को समाप्त करके पुण्यों की दुनिया स्थापित करने की। हम इस चीज की चिंता नहीं करते कि हमारे पास लाखों लोग आए, हमारे पास 100 ही आए लेकिन वो पवित्र हों, बस वो पवित्र आत्माएं संसार का कल्याण करने में समर्थ हो जाएंगी। तो ये भगवान का आदेश है ना। और देखिए भगवान की शक्ति के बिना कलयुग के इस महाकाल में कैसे लोग पवित्र बन सकते हैं, सोचने की बात है। हमारी बहनों को जब देखते हैं लोग, यंग बहनें, हर परिवार से, हर समाज से, हाईली एजुकेटेड, सब कुछ पढ़ लिख के और देखने में बहुत सुंदर, ये नहीं कोई गरीबों से आ गई ऐसी वैसी हैं और ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चल चुकी। तो ये शक्ति उनकी नहीं है, ये शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। उसकी शक्ति से क्योंकि वो इस संसार को प्योरीफाई करना चाहता है, पाप अति में चला गया है, इसको नष्ट करना आवश्यक है, नहीं तो मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा, मानव में मानवता रही नहीं, बाकी जो थोड़ी बहुत बची वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ये उसने यज्ञ रचा है जिसमें पाप की दुनिया की आहुति पड़ जाएगी और नवयुग का उदय हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही। तो परमात्मा ने इस जो यज्ञ आप कह रहे हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना की, परमात्मा चूंकि सबके पिता हैं भ्राता जी, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो ये सभी लोग फिर क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों भगवान को पहचान करके उनसे वो जो देने आए हैं नहीं प्राप्त कर।
0: देखिए हम तो सबको संदेश दे रहे हैं, मतलब चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हों, चाहे क्रिश्चियन कंट्रीज हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, सबको हम इक्वली संदेश दे रहे हैं परमात्मा के, और खुलेआम बता रहे हैं वो तुम्हारा पिता है, वो आया है, सत्य ज्ञान दे रहा है, तुम उसे पहचानो। लेकिन धर्मों में कट्टरता भी बहुत होती है, चाहे वो अपने धर्म को फॉलो करते हो या ना करते हो,
1: तो परमात्मा ऐसे में, भ्राता जी, बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, भगवान ऐसे में अपनी शक्तियों

0: को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं आ गया हूं तुम मुझे पहचानो। यदि वो चाहे तो अपनी शक्तियों के माध्यम से सभी को ये बता सकते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा पिता हूं, आ जाओ अब तुम मेरे पास।
1: नहीं, वो सचमुच बता रहा है, उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी मनुष्य की बुद्धि पर ऐसा आवरण है कि वो उस चीज को देख कर भी इग्नोर कर देता है कि हो सकता है ये इनकी कल्पना हो सकता है ये इनका जादू टोना हो, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे केस हुए जिनके सामने भगवान के स्पष्ट रूप आ गया, साक्षात्कार हो गए, और जब उसे होश सी आई, वो नॉर्मल हुआ, कहा पता नहीं क्या था, सपना था या किसी ने जादू कर दिया था मेरे पे। तो भगवान का कार्य, उसका संदेश, उसका ज्ञान सारे संसार के लिए है। तो देखिए, सत्य बात बताते हुए भी, क्योंकि असत्यता इतनी है तो सत्य में भी लोगों को असत्यता ही नजर आती है।
0: जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक,
1: जैसे बहुत सारी ज्वेलरी बनावटी बिक रही हो बाजार में और दो दुकान रियल ज्वेलरी की हो, तो उस पे जाके हर व्यक्ति शक की नजर से देखेगा, कहीं धोखा ना खा ले, कहीं इनका माल भी वही हो, इमिटेशन हो सब कुछ। तो यही होता है, क्योंकि संसार में कंफ्यूजन भ्रम बहुत फैल गए हैं, इसलिए जब हम उन्हें सत्य बात बता रहे हैं तो लोगों को विश्वास करने में देरी लगती है, परंतु विश्वास करने वालों की भी कमी नहीं है।
0: बिल्कुल। तो सत्य की कसौटी क्या है भ्राता जी? जैसे हम किसी भी चीज को कस के देखते हैं, कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो हमारे पास क्या ऐसी कसौटी है जो हम ये कहें कि परमात्मा है तो यही है?
1: देखिए, सत्य की कसौटी कई चीजों पर होती है। जैसे एक प्रसिद्ध बात है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य होगा वो कल्याणकारी होगा, वो सुंदर भी बहुत होगा। सुंदर माना बहुत इजी, और उसकी ब्यूटी अपने ढंग की होगी। दूसरा, जहाँ सत्य होता है वहां मनुष्य की खोज समाप्त हो जाती है। जितने भी मनुष्य के प्रश्न होते हैं मन में, जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं, सत्य को पाकर उन सबका उत्तर मिल जाता है और मनुष्य का चित्त शांत हो जाता है। तीसरी बात है, जहाँ सत्यता होगी वहाँ प्योरिटी अवश्य आएगी, जीवन में शुद्धि आएगी, उन बातों से मन का अंधकार दूर होने लगेगा और मनुष्य को एक आत्मिक संतोष प्राप्त होगा कि सचमुच जो पाना था वो पा लिया। इन चीजों से हम सत्यता को परख सकते हैं।
0: बहुत सुंदर बातें भ्राता जी आपने कही हैं। निश्चित रूप से हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, एक बार जरूर इस कसौटी में भी अपनी मान्यताओं को, अपनी बातों को कसकर देखना चाहेंगे। और जो एक बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन आप कर रहे हैं कि जो हमारा परम पिता है, परमात्मा है, वो इस सृष्टि पे आ चुके हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, मैं तो इसे बहुत बड़ी घटना मानता हूँ। और निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को एक बार अवश्य ही इस सत्य के नजदीक
1: बहुत बड़ी घटना, क्या इससे बड़ी घटना कोई होती ही नहीं। और हम लाखों लोगों के अनुभव से कह रहे हैं, हमने तो भगवान को इस धरा पर हजारों बार उतरते देखा है, उससे मिलन का सुख लाखों बार प्राप्त किया है। रोज सवेरे उससे मिलन का सुंदर अनुभव करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे जुड़ गए हैं। तो ये सत्य है कि यही सबसे बड़ी अनुभूति है, यही सबसे बड़ा समाचार है संसार के लिए कि संसार का मालिक अभी संसार का उद्धार करने के लिए यहाँ उपस्थित है।
0: बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही है। मैं भी पूरा प्रयास करते हुए इस चीज को अनुभव करने की कोशिश करूंगा ताकि इस बात को हम और भी गहराई तक ले जाएं। और मैं चाहूंगा भ्राता जी कि इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखें। आज वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है। मित्रों, एक बहुत बड़ी सत्य घटना जिसकी चर्चा आदरणीय सूर्य भाई जी कर रहे हैं, परमात्मा पिता का सृष्टि पर आगमन और सृष्टि का परिवर्तन। हम सचमुच देख रहे हैं कि सृष्टि कितनी दयनीय स्थिति से गुजर रही है और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि अब संसार परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़े और अब कुछ सचमुच हो। सचमुच परमात्मा को ही सृष्टि का नियंता और पिता कहा जाता है, तो ये बात दिल में अवश्य आती है कि यदि सृष्टि का परिवर्तन कोई कर सकता है तो वो परमात्मा ही है। लेकिन क्या वो सचमुच इस सृष्टि पर आकर के अपना कार्य कर रहे हैं और हम उनसे क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? इस चर्चा को हम आगे भी समाधान में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है, ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड, लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर, टक, फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल। एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is a question from the 10th chapter or not. और बस उनके आंखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या programming कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. Automatically he is in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवैपोरेट होकर उड़ने लगता है। Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं। जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, they're so damn tired. किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, somehow he comes out, और वो अपना घर देखता है, 100 meters away. 100 meters seems to him as 100 kilometers, because he's so tired. और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है, क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? No. He will run at the fastest of fast speed. If not the 100 meters world record, lekin 100 meters Indian record to usko todna hi tha. What I'm trying to communicate is, aisa nahi hai ki uske paas energy nahi tha, energy tha. But he kept on programming, I'm tired, I'm tired, I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. Jaise usne us kutte ko dekha to kya kya, ek switch off kiya, dusra switch on kiya, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, द फर्स्ट थिंग दैट इट डज इट, स्विच ऑन द टेलीविजन, राइट देयर फ्रॉम 7 o'clock टू लेट 10 o'clock, ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। 10 बजे वो रियलाइज करता है, ओ माय गॉड, टुमारो मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है, सोते सोते 12 बज जाते हैं, 6 बजे का अलार्म रखता है, और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा। और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है, 10 मिनट सोता हूं, और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स। एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली, टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला, प्लीज मेक इट श्योर दैट टुमारो यू आर रीचिंग द कैंपस शार्प 7 AM. As usual, television till 10 o'clock, he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock, he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. Mujhe bahut practice karni hogi, kya kya karna hoga. Aur 10 baje wo practice karna aaram karta hai. Har din wo 12 baje sota hai, lekin us din wo 1 baje so raha hai. He has to reach the campus 7 a.m. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. Lekin 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा। एंड बिफोर द अलार्म कैन रिंग, दिस जेंटलमैन इज सो फ्रेश। इट्स अ वे वी प्रोग्राम आवरसेल्व्स। अ सारा दिन ही इज देयर इन खंडाला एंजॉयिंग हिमसेल्फ, प्लेइंग इन द घाट्स, एंजॉयिंग विद हिज फ्रेंड्स। ही हैड हार्डली हैड 3 to 3.5 आवर्स ऑफ स्लीप, बट नो फॉर्म ऑफ टायर्डनेस। इट इज द वे वी प्रोग्राम आवरसेल्व्स। और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कहानी है। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ गुड मॉर्निंग आबू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है, 20 जून 2026 आज का तारीख है। आशा करूंगा कि आप सभी बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे और आज का दिन भी आप सभी के लिए ढेरों खुशियों भर के लेकर आए और हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती रहे। राष्ट्रीय शके 1948, शके 30, गते 5, शुद्ध ज्येष्ठ शनिवार आज है। विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पष्टी शनिवार मागा आज है। इसके साथ ही इस्लामी हिजरी 1448 4 मुहर्रम आज है। इसके साथ ही आरण्य पष्टी और विश्व शरणार्थी दिवस भी आज है। तो चलिए इसके बारे में बातें करेंगे, लेकिन आप सभी को ले चलता हूँ। आज शनिवार का दिन है तो हनुमान चालीसा आपको सुनाते हैं और वो भी वेरी फास्ट, है ना। तो आनंदित आनंदित हो जाए आप और हनुमान चालीसा को सुनकर आपका मन जो है प्रसन्न हो जाएगा और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं हनुमान चालीसा की ओर। सुनते रहो, मस्कर रहो।

0: आपने सुना शनिवार है, बड़ा अच्छा लगा होगा। आप भी गुनगुना रहे होंगे और है ना, मज़ा आता है जब हम लोग इस तरह के सुंदर अनुभव करते हैं। हनुमान चालीसा को गाते ही एक स्फूर्ति आ जाती है और स्फूर्ति में हम ऐसे खो जाते हैं जैसे लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। तो आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार।
1: अरे जी नमस्कार बाबू जी, क्या गाना सुनाया, मेरे दिल के सब पर्दे खुल गए। क्या बात करो, राम के पास में जाकर के मैं भी हनुमान बन जाऊं, ऐसा मेरे भी विचार हो गए।
0: क्या बात
1: क्या करे, आज शनिवार है गए, इसलिए मेरा भी एक भजन है सर
0: जी,
1: वो भी सुना देंगे। तो और क्या बात करो, आसमान से भी ऊपर चल जाऊंगे मैं।
0: बिल्कुल
1: राम का नाम, राम नाम लिया करो,
0: राम
1: नाम लिया करो, राम का काम किया अपना काम किया करो।
0: जी जी जी,
1: राम नाम लिया करो अपना काम किया करो। ये दया से ये हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार सा नमस्कार।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये खुशियाँ बनाने के लिए खुशियाँ बनानी पड़ती है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: खुशियाँ नहीं बनाएंगे दिन कैसे चलेगा सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसे चलाने के लिए एक दूसरे से संपर्क करना जरूरी है, आपसे मिल करके हमारे को खुशियाँ बढ़ानी पड़ेगी।
0: ठीक है, बहुत बढ़िया।
1: नमस्कार सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। आइए, ये थे गुड़ीलाल जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ रोज़ साझा करते हैं और उमंग उत्साह में रहता है। रेडियो सुनकर फ़ोन कर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो आरण्य पष्टि के बारे में बात करते हैं जो आज है। भारत में धार्मिक व्रतों का सर्वोपरि है और ये विशेष धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हिंदू धर्म का एक व्रत संस्कार भी माना गया। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पष्टि को होता है आरण्य पष्टि और राज मार्तंडेय में ऐसा आया है कि नारियां हाथ में पंखे एवं तीर लेकर अरण्य वन में घूमती है और गदाधारी पति में इसमें स्कंद पष्टि भी कहा गया है और ये व्रत तिथि व्रत होता है और विशेष रूप से स्कंद की पूजा की जाती है और इसे करने वाले अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कमल नल कंदमूल और फलों का सेवन करते हैं। तो आज के दिन इस तरह का जो है व्रत करते हैं जो कंदमूल और कमल नल काके अपने फूलों के माध्यम से सेवन करके आज के दिन व्रत करते हैं। तो ये एक विधि विधान है अपने हिंदू ग्रंथों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ प्रभु राम का एक और सुंदर गीत आप ही के नाम। और आप भी फ़ोन करके हमें बता सकते हैं कि किस तरह से आप आज का समय बिताएंगे। और एक चिंतन का विषय देता हूँ, विषय यही है कि अहंकार कैसे हमें समझ में आ जाता है। अहंकार क्या है, ईगो क्या है, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा लगेगा हमें। चिंतन कीजिएगा और साथ में ये सुंदर भजन आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और ढेर सारी खुशियां और बहुत ही प्यारा सा राम भजन आपने सुना, जैसे गुड़ीलाल जी याद कर रहे थे। राम भजन सुनकर उनका मन जो है नृत्य करने लगता है, तो वो भी अभी नृत्य कर रहे होंगे और आप भी अपने मन से नृत्य करिए। नृत्य दो प्रकार के होता है, एक आप शारीरिक रूप से नृत्य करते हैं किसी कार्यक्रम में, और एक आपको दिन भर मन से नृत्य करना, यानी खुशी के विचार करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, मन को जो है सुंदर बनाते हुए आप अपना कार्य करेंगे, तो ये भी मन से नाचना ही हुआ है ना। और नाचने के लिए आपको सत्य होना पड़ता है। हिंदी में एक कहावत है, सत्य तो बिटो नच, यानी जो सत्य है वो हमेशा नाचता रहता है। तो इस बात को हमें अगर थोड़ा सा ध्यान करके रखेंगे, तो इस पर चिंतन करेंगे, तो आपकी जीवन शैली जो है बिल्कुल बदल जाएगी। हेलो जी, नमस्कार। Hello. स्वागत है आपका।
1: हाँ जी नमस्कार साहिब,
0: मजामा केम छो?
1: इधर तालुका थी बोलो, जो
0: जगदीश भाई स्वागत छे।
1: ગોરીલાલ જે વખત આવે છે એ બધાના સાઈ, ગોરીલાલ જોડે થી ઘણું શીખવા મળે છે, અને રેડિયો માં ઘણું શીખવા મળે છે જીવનમાં।
0: જગદીશ ભાઈ બહુ સારા છે,
1: રેડિયા ઉપરથી ઘણું સાહેબ શીખવા મળે છે, ઘણા સંસ્કારો મળે છે જીવનમાં, નાની નાની ટીપ્સ છે તમે કયો છો એ પણ જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે, એટલે ખરેખર રેડિયો ની ટીમ ને હું નમસ્કાર કરું છું।
0: નમસ્કાર, धन्यवाद जगदीश भाई, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया कि कैसे जीवन के उतार चढ़ाव में रेडियो और रेडियो की बातें सुनकर हम बैलेंस कर सकते हैं, ये आपने बताया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले आज जो है विश्व शरणार्थी

जहाँ संभव हो उस अवस्था में उनको जो है ले जा सकते हैं या उनको रास्ता दिखा सकते हैं। तो आपके रास्ते दिखाने से एक व्यक्ति का या एक परिवार पूरी तरह से जो है संभल सकता है। तो आइए, इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। शरणार्थी दिवस का ये इसका उद्देश्य यही है कि 20 जून को उन लोगों का साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, शरणार्थी समस्याओं को हल करने के लिए ही ये विशेष दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो देखेंगे कि पूरे विश्व में कितने सारे देश हैं। कई बार किसी देश में कुछ हो रहा है, किसी देश में कुछ हो रहा है, तो लोग वहाँ से पलायन करके उसके पास वाले देश में चले जाते हैं। तो वहाँ पर उनको अपने जीवन यापन करने के लिए जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में हमें उन चीज़ों को समझना है, जानना है और फिर उन्हें सही रास्ता दिखाना है। तो ये है विश्व शरणार्थी दिवस का मुख्य उद्देश्य। तो आइए एक और सुंदर आपको भजन सुनाते हैं। नाम है तेरा तारनहारा, आपके लिए अभी सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। विश्व शरणार्थी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और विश्व शरणार्थी क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये दिवस आए हुए शरणार्थियों के साहस और संकल्प शक्ति को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, ताकि हर किसी का ध्यान इनकी तरफ जाए और हर कोई इनकी ज़रूरत व इनकी मजबूरी मुश्किलों को समझ कर मदद कर सके, इनकी समस्या का कोई हल निकल सके। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को आरसी से सुनिश्चित करने का काम करती है कि कोई भी इंसान अमान्य नहीं होता है। हर इंसान की अपनी कीमत होती है, हर इंसान को अपने आप में सम्मान पाने के लायक होना चाहिए। इसलिए अगर कोई भी युद्ध, हिंसा, आपदा जैसी समस्याओं के चलते पलायन करने पर मजबूर होता है तो उसका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। उसकी मदद की जानी चाहिए और उसका समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। और इस तरह से हर शरणार्थी को आम इंसान के जैसे ही सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें भी बाकियों के जैसा ही भोजन व शिक्षा जैसे बुनियादी ज़रूरतों का लाभ उठाने का अधिकार है। उनकी इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने का काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, ताकि वे मानवीय अधिकारों से वंचित न रह सके। तो साथियों, ये विशेष क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैंने बताया। और बहुत सारे ऐसे जो सिचुएशन है जहां पर हम हर लम्हा एक मोहज़िर है, आया था जो आया फिर है, तब के से बेदखल अब के, आज आपके अब के कब्ज़े में हाजिर है। तो कहने का भाव ये है कि जब भी हमारे जीवन में जैसे बाढ़ आ जाती है तो लोग वहाँ फिर रहेंगे कैसे, है ना, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह ही आएंगे शरण लेने के लिए। तो ऐसे में उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है और उन्हें जीने के लिए पूरा सहयोग देने का काम करना है, ये उद्देश्य से आज के इस दिन को मनाया जाता है। 8:27 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। चलिए मैं एक और सुंदर गीत आपको सुनाता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाबू, आज इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। शनिवार का दिन है और निश्चित तौर पे आप सभी को बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। और विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि विश्व शरणार्थी दिवस उन लोगों के लिए मनाया जाता है, ख़ास करके जो लोग बाढ़ के कारण या किसी और परिस्थिति के कारण जो है वो आते हैं, तो ऐसे में हमें उनका सहयोग देना है, सहयोग करना है। इसीलिए

0: हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो,
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति,
0: गुड मॉर्निंग। बढ़िया
2: जी, नमस्कार जी, नमस्कार।
1: हमको आपको हम याद कर रहे थे कि कमलेशन जी की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार
1: जी। दीदी नमस्कार, नमस्कार दीदी, आप आ गए, खुशी हो गई सुबह सुबह में। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। और कल भी बहुत अच्छा दिन है, लेकिन कल तो शायद आप नहीं मिलेंगे क्योंकि कल संडे है, तो कल योगा दिन है, अच्छा दिन है। रोज योग करो, रोज बढ़ाओ, अच्छा दिन है।
2: बिल्कुल, तो करना भी है, योग है ना, योग वाला, योगा डे में शुरू करोगे ना तो फिर पूरा साल
1: सुबह में करते हैं
2: जी जी,
1: हम तो
2: अच्छी
1: सुबह में करते हैं, इसीलिए तो हम बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं। अभी 10 किलोमीटर चलना है तो हम चल देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
0: दिक्कत ही नहीं है,
1: दौड़ना तो दौड़ भी लेते हैं 2 किलोमीटर तक।
0: और क्या चाहिए,
1: बस और कुछ नहीं चाहिए, खाना पीना, कुछ नहीं रहना,
0: बिल्कुल
1: और काम करते रहना। बस काम करेंगे तो अच्छे रहेंगे, वरना काम नहीं करेंगे तो निरोगी रोगी हो जाएंगे, काम करेंगे तो निरोगी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा गाना सुना दिया आपने, हर साथ में सुमरन तेरा ये बीत जाए जीवन मेरा।
0: जी जी,
1: ऐसा ही क्या रहा, मैं आपको एक दे रहा हूँ कि आजकल लोग पता नहीं कब सांस बंद हो जाती है। मैं बताऊँ तो हमारे गांव में कल परसों की बात है, एक बहन जी भजन गा के आए रात को 12-1 बजे और रात को सोया तो 2 बजे तो वो चले गए भगवान के द्वार, पता ही नहीं चला। रात को भजन करके आए, महिला मंडल का भजन था, 1 बजे भजन करके आए, सोया 2 बजे उठा तो पता नहीं चला, तो भगवान के घर पे चले गए। तो कोई सासों का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा ही जाना देता हूँ कि सासों का

0: जी
1: चलते बस वही गाना है
0: जी जी, जी शुक्रिया शुक्रिया।
1: और आपको हमारे कमलकांत जी को भी हमारा नमस्ते।
2: नमस्कार नमस्कार, खुश रहिए, प्रभु की मर्जी के मुताबिक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM। कमलेश जी क्या सुनाने वाले हैं आज हमारे सभी श्रोताओं?
2: गीत जरूर सुनाऊंगी मैं, उससे पहले कहना चाहती हूँ कि शरणार्थियों की आप बात कर रहे थे
0: जी,
2: तो मुझे
0: जी,
2: याद आ रहा है कि जब हम यूके में देखते हैं ना, इतने शरणार्थी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है उनको पूरा सपोर्ट करती है।
0: अच्छा,
2: वहाँ के लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनके खाने पीने का, उनके
0: वो आते कहाँ से?
2: वो जो यूके के साथ बॉर्डर जितने भी हैं वहाँ से वो समुन्द्र के जरिए शिप में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश आसपास गरीब देश है ना, तो वहाँ पे उनको खाने को या उनको रोजगार उनकी समस्या है, और कई बार जान के खतरे के कारण लोग वहाँ चले जाते हैं, शरणार्थी घोषित हो जाते हैं ना। तो लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी रमेश भाई कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो वहाँ शरणार्थी बनकर मत जाइए। अगर आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं या कोई आपको रोजगार में कोई टैक्टफुली टेक्निकली आप साउंड हैं तो आपको वहाँ जॉब करके अच्छे जॉब करके अच्छा जो जीवन यापन कर सकते हैं। शरणार्थी बनना कोई अच्छी बात नहीं है,
0: सही बात है।
2: हम उनको देखकर हम भी अच्छे भले लोग कह रहे थे कि मैं तो पूरे देश में मुझे लोग तंग कर रहे हैं तो इसलिए इस देश में मुझे सुरक्षा चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सोच हमारी गलत है। तो शरणार्थी तो भैया जो शरणार्थी असल में है उनको पूछिए उनके क्या दुख है, उनको क्या समस्या है ना।
0: बिल्कुल,
2: तो एक गीत आपकी नजर करना चाहूंगी
0: जी, स्वागत है।
2: ये गीत है जी, बहुत ही प्यारा गीत आपको मतलब है पसंद आएगा।
0: बिल्कुल,
2: ये गीत सारंगा फिल्म से है।
0: हाँ,
2: और बहुत ही प्यारा गीत, हालांकि सुबह सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया होता है आवाज थोड़ी कम निकलती है फिर भी कोशिश करेंगे
0: जी, जी।

0: रमेश जी, भरत व्यास का लिखा ये गीत, भरत व्यास का लिखा हुआ गीत और संगीतकार जो है सरदार मलिक, सारंगा फिल्म का ये गीत मुकेश जी ने गाया, बहुत ही प्यारा।
1: राज कपूर पर पिक्चर है इसके। जी मदन जी बोलिए, स्वागत है आपका भी।
2: मजा आ गया बोलने से पहले ही, मुझे तो मजा आ गया। क्या मुकेश की आवाज में गाना था, सारंगा तेरे यार, क्या बात, मेरा बेटन गाना है तभी। क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा आवाज निकाला। मैं कमरे से इनको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, और
0: शुक्रिया बाबा की कृपा, आप सबका प्यार।
2: कल वो भी गाना अच्छा सुनाया था, फिर प्यार का रंग
0: दिल का बहर करे पुकार। तो
2: आज हम मिल रहे हैं गुड मॉर्निंग आबू में, आप सभी को गुड मॉर्निंग दिल से, दुआ से, और सबका दिन अच्छा जाए। और आज सुबह सुबह रेडियो बजा रहे थे सभी तो सुने, मगर आज रेडियो का मतलब स्वाद अच्छा नहीं था, मौसम कुछ ऐसा था, चुर-चुर कर रहा था। तो जीवन में और आप आए और रेडियो का स्वाद अच्छा होता था, आप आके हनुमान चालीसा सुनाई, आपका आना और मेरा जाना। अच्छा नमस्कार,
1: नमस्कार, नमस्कार, जी शुक्रिया, शुक्रिया। चलिए मित्रों, ये थे मदन जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे, और 8:45 हो रहे हैं, और गुड मॉर्निंग गाबू में हम लोग अब धीरे धीरे जो है आखिरी मोड़ पे पहुंचे हैं। और गौर किशोर घोष के बारे में बात करूं तो एक कुशल पत्रकार तथा लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। एक विकासशील देशों में ईमानदारी से प्रगतिवादी और प्रभावी लेखक पर पाना अकर पाना वे केवल मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी है। सरकारों के अलावा दूसरी बहुत सी ऐसी व्यवस्था हैं जो अपनी स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाए रखने के लिए प्रकाशन और प्रसारण पर अपना अंकुश बनाए रखना चाहती है। ऐसे में गौर किशोर घोष ने अपने लंबे संघर्षपूर्ण रचनात्मक लेखन तथा पत्रकारिता के जरिए अपनी बात को निर्भीकतापूर्वक आगे रखा, और साथ ही नागरिकों तथा प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जुझारू रूप से तेवर दिखाए। और गौर किशोर घोष की मानवीय दृष्टि, उनकी निर्भीकता तथा दबावों के खिलाफ अडिग पत्रकारिता के लिए उन्हें याद किया जाता है, और 1981 में इनके इसी कार्य को देखते हुए मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये थी कुछ खास बातें।
0: पत्रकारिता जो ऐसा रोजगार है, व्यवसाय है, जिसमें अगर आप दबाव में रहेंगे तो आप सच्चाई को नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो देखिए 25 साल बाद भी आज घोष साहब को हम याद कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उन्होंने किसी भी दबाव में ना आकर समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी थी
1: और पूरी तरह से निभाई,
0: इनका शुक्रिया बहुत बहुत
1: जी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। अभी बात करते हैं, हमारे साथ गुलाटी साहब भी आ गए हैं। नमस्कार, ओम शांति जी।
1: ओम शांति
0: जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मुझे याद है 2 दिन पहले शायद मैंने एक गीत सुनाया था।
0: जी जी,
1: तस्वीर
0: जी।
1: बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती।
0: जी जी जी,
1: अब तस्वीर बननी शुरू हो गई है और अब उसमें रंग भरने शुरू किए हैं।
0: अच्छा, क्या बात
1: है। एक गाना और मुझे याद आ गया गीत।
0: हाँ हाँ, जरूर सुनाइए।
1: तो वो गीत है
0: जी

0: थैंक यू।
1: अच्छा, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गुलारी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आइए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे विशेष गौर किशोर गौर, उसके बाद लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर के बारे में बात करें तो बेलगांव जिला में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत के बहुत ही पॉपुलर उद्योगपतियों में से एक थे। किर्लोस्कर उद्योग समूह के वे संस्थापक भी थे और विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूशन मुंबई में अध्यापक के रूप में ये काम करते हुए अपने शुरुआती समय में लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर जी ने एक साइकिल की दुकान खोलकर जीवन संघर्ष शुरू किया था और बाद के समय में वे अपनी मेहनत और लगन कठिन परिश्रम से किर्लोस्कर की नई औद्योगिक इकाई की स्थापना की, जो आज खेती के जगत में इनके मशीन्स जो है बहुत पॉपुलर है। तो कहने का भाव ये है कि अगर आप अगर थोड़ा सा भी विचारवान रहते हैं और थोड़ा लगन और मेहनत करते हैं तो सीखने की आपके अंदर अगर जिज्ञासा रहती है तो आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो संभव हो सकता है। तो इस तरह से किर्लोस्कर की अगर आप बात करें तो कितने सारे मशीन्स आते हैं, जो भी इंजन्स बनते हैं या जो खेती में काम करने वाले औजारों का उपयोग होता है, तो ये किर्लोस्कर नाम से बहुत फेमस है। जी
2: जी, बहुत बहुत इनका जो है आभार है कि ऐसी पीढ़ी हमें परमात्मा ने दी है ना,
1: बिल्कुल,
2: जिन्होंने मेहनत की। मुझे रमेश भाई एक बात याद आ रही है, जैसा कि मेरे पिताजी पहले आर्मी में थे, कैप्टन रिटायर हुए, फिर उसके बाद बीएसएफ में कमांडर रिटायर हुए, तो मेरे छोटे जो चाचा जी, उनके भाई थे जो मेरे पापा के, वो ना डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे इकोनॉमिक्स के। तो मुझे याद है जब छुट्टियां होती थी ना इन दोनों भाइयों को, तीसरे भाई भी आर्मी में थे, वो भी आते थे, जब तीनों इकट्ठा होते थे तो पता नहीं चलता था कि इतनी बड़ी पोस्टों पे ये काम कर रहे हैं। घर में आके ना भैंसों को चारा डालना, खेतों से चारा लेके आना, और मैंने उनका पसीना जो देखा कि कितना वो काम करते थे घर पे आके, माँ बाप की कितनी हेल्प करते थे। तो उन्हीं लोगों से हमने सीखा कि जीवन में अगर आप फिजिकली मेंटली अच्छे रास्ते पर चलते हो तो आपको सफलता मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज गुड मॉर्निंग गाबू में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल आपका स्वास्थ्य आपके हाथ तब कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार और सलाम नमस्ते खमा गणिसा।
3: मेरा नाम इंदु है, मैं ढूंढे गांव से हूँ, आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
5: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर

अछिया न आयो रे श्रोताओ सब मल धूम मचाओ रे सब मल मंगल गाओ रे अछिया न आयो रे अरे रे रे अछिया न आ

संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा। अशियाना के साथ आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खमा गणी सा। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और समर्पण उसे ईश्वर के चरणों के तक पहुंचा देता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार बहुत ही सुंदर दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक देखिए, द्वापर युग का समय था। एक और गांडीवधारी अर्जुन थे जिनकी धनुर्विद्या का लोहा तीनों लोक मानते थे, और दूसरी ओर श्री राम जी के परम भक्त महाबली हनुमान जिनकी शक्ति और भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के हृदय में अपनी वीरता और कौशल का सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी लीला रची जिसमें केवल अर्जुन का अभिमान ही नहीं टूटता बल्कि त्रेता और द्वापर की दो महान शक्तियों का दिव्य मिलन भी होना था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनका मन कजली वन के दुर्लभ पारिजात और कमल पुष्पों से पूजा करने का है। अर्जुन ने तुरंत गर्व से कहा कि उनके लिए कोई स्थान दुर्गम नहीं है, वे तुरंत वहां जाकर के पुष्प ले आएंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा कि कजली वन कोई साधारण वन नहीं बल्कि सिद्ध महापुरुषों और प्रभु श्री राम की स्मृतियों से पवित्र स्थान है, इसलिए वहां की मर्यादा का ध्यान रखना। किंतु अर्जुन अपने सामर्थ्य पर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया और तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब अर्जुन कजली वन पहुंचे तो वहां की दिव्यता देखकर कुछ क्षण के लिए चकित रह गए। विशाल वृक्ष, सुगंधित पुष्प और शांत वातावरण मानो किसी दिव्य लोक का अनुभव करा रहे थे। किंतु उनका क्षत्रिय अभिमान उन्हें यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि इस वन में कोई उनसे श्रेष्ठ भी हो सकता है। वे सीधे एक सुंदर सरोवर के किनारे पहुंचे और वहां लगे दुर्लभ पुष्प तोड़ने लगे। जैसे उन्होंने एक पुष्प तोड़ा, पूरा वन मानो कांप उठा। उसी समय एक वृद्ध वानर ने अपनी आंखें खोली। वह कोई और नहीं, स्वयं महाबली हनुमान थे। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में पूछा कि बिना अनुमति इस वन के पुष्प कौन तोड़ रहा है? अर्जुन ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे पांडुपुत्र अर्जुन हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं। हनुमान जी ने शांत भाव से कहा कि यह वन प्रभु श्री राम जी की धरोहर है और यहाँ से कुछ भी लेने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि कुछ पुष्प तोड़ लेने से क्या अंतर पड़ता है? तब हनुमान जी ने कहा कि बिना अनुमति किसी वस्तु को लेना चोरी कहलाता है, और चोरी के माध्यम से प्राप्त वस्तु भगवान को कैसे अर्पित की जा सकती है भला? विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें माखन चोर कह दिया। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठे। उन्होंने इसे अपने आराध्य का अपमान समझा। बात आगे बढ़ी तो अर्जुन ने प्रभु श्री राम के समुद्र सेतु का भी उल्लेख किया और कहा कि यदि वे उस समय होते तो अपने बाणों से ऐसा पुल बना देते कि पूरी वानर सेना क्षण भर में समुद्र पार कर जाती। हनुमान जी ने यह सुनकर के कहा कि त्रेता के वानरों का भार कोई साधारण बाणों का पुल सहन नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उनका अकेले का भार भी किसी ऐसे पुल को तोड़ देता। अर्जुन का अभिमान और भी बढ़ गया। उन्होंने तत्काल चुनौती दी कि वे इसी समय बाणों का पुल बनाएंगे और यदि हनुमान उसे तोड़ दे तो वे अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल से सरोवर के ऊपर बाणों का एक भव्य और सुंदर पुल बना दिया। वह पुल देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी दिव्य शिल्पकार ने उसका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और अपना विराट रूप धारण कर लिया। जैसे ही उन्होंने पुल पैर पर रखा, पूरा बाणों का पुल टूट करके जल में समा गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए, उनका गर्व चूर चूर हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी हार स्वीकार कर ली
और अपने वचन के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि ये केवल एक विवाद था और इसके लिए प्राण त्यागना उचित नहीं है, लेकिन अर्जुन अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उसी समय वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उन्होंने दोनों की पूरी बात सुनी और कहा कि इस प्रतियोगिता का कोई साक्षी नहीं था, इसलिए इसका निर्णय भी अधूरा है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक बार फिर पुल बनाया जाए और इस बार वे स्वयं साक्षी बनेंगे। अर्जुन और हनुमान दोनों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस बार अर्जुन ने पहले से भी अधिक ध्यान और शक्ति लगाकर बाणों का पुल बनाया। उधर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में स्वयं श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे। जैसे ही हनुमान जी फिर से विराट रूप धारण करके पुल पर चढ़े, श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण कर सरोवर के भीतर कच्छप का रूप ले लिया और अपनी पीठ से उस पुल को सहारा दे दिया। हनुमान जी ने पूरी शक्ति लगा दी, बार बार उछले, प्रहार किए, लेकिन पुल हिला तक नहीं। कुछ समय बाद हनुमान जी की दृष्टि सरोवर के जल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जल लाल हो रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि पुल के नीचे स्वयं भगवान कच्छप रूप में अपनी पीठ पर पूरा भार सहन कर रहे हैं और उनके शरीर से रक्त बह रहा है। यह देखकर हनुमान जी के आंखों से अश्रुधारा बह निकली।

0: रखा और कहा कि वे दोनों उनके प्रिय है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि त्रेता में प्रभु श्री राम ने पत्थरों का सेतु इसलिए बनवाया था क्योंकि वह भक्ति का भार था, और जहां भक्ति होती है वहां पत्थर भी तैरने लगते हैं। वही अर्जुन का बाणों का सेतु भी केवल भगवान की कृपा से ही स्थिर रह पाया। उस दिन मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, अर्जुन ने सीखा कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती, उसके साथ विनम्रता और भक्ति भी आवश्यक है। हनुमान जी ने अर्जुन को गले लगाया और कहा कि आज से वे केवल मित्र ही नहीं बल्कि एक ही प्रभु के सेवक है। अर्जुन ने भी अपने चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि उनकी लीला पूर्ण हो चुकी थी। एक ओर अर्जुन का अहंकार समाप्त हुआ था और दूसरी ओर त्रेता और द्वापर की दो महान विभूतियों का दिव्य मिलन हुआ था। तो ये कहानी हमें सिखाती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि ज्ञान, शक्ति, पराक्रम और सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि उनके साथ विनम्रता नहीं है तो वे अधूरी है। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य का कोई सामर्थ्य स्थायी नहीं होता। जब भक्ति और कर्म एक साथ चले, जब हनुमान जी की निष्ठा और अर्जुन का पुरुषार्थ एक हो जाए, तब जीवन में विजय निश्चित हो जाती है। वही अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और समर्पण उसे ईश्वर के चरणों की तरफ पहुंचा देता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर विचार करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: मैं गायक कलाकार हाकम खान दौलत पे साथ दे रहे हैं, मदन खान खरताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये खरताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने खरताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है। हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान केसुमिला के अंदर ये बच्चों को संगीत की खरताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों खरताल, ढोलक, कमायचा, सारंगी, मोरचंग, मुरली, अलगोजा, सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निमुड़ा। ये निमुड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गाया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करो योग, भगाओ रोग। कुछ दिनों से लगातार आपको योग सिखा रही हूँ, जिसको योगा भी कह सकते हैं। अब योगा को बदल करके योग कर दिया है, जिसमें खड़े रह करके किए जाने वाले आसन आपको सिखाए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो आपने जाना है। फिर बैठ कर किए जाने वाले आसन भी आपको सिखाए हैं, जिसमें मैंने कहा था 7 प्रकार के होते हैं, उसमें 5 प्रकार का आपको सिखाया है। अब जो 2 बाकी रह गए हैं वो भी आपको सिखाने जा रही हूँ। उसके बाद 7 प्रकार के, जिसमें से 5 सिखाया आपको, ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हूँ। और 2 बाकी है, एक है हमारे श्रोता बंधु से बात कर लेते। हेलो, हेलो, चलिए जो भी है थोड़ी देर बाद फोन लगाइएगा, क्योंकि नहीं तो आपसे बात हो पा रही है ना, आप बात कर रहे हैं। तो जो 2 बाकी रह गए हैं उसमें एक है उत्तान मंडूकासन, ठीक है, जिसके अंदर मेंढक जैसा पोज बनाया जाता है। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते। जय श्री हरि। सुरेश भाई, अभी 10-15 मिनट और लगेंगे, अभी घरेलू नुस्खे देंगे, उसके बाद अंताक्षरी शुरू करते हैं, ठीक है।
1: क्या लिंक, कौन सा लिंक है
0: जी? अभी घरेलू नुस्खे दे रहे हैं।
1: नहीं नहीं, वो थीम कौन सी है?
0: थीम है शादी ब्याह के और रात्रि जागरण के गीत।
1: अच्छा, ठीक है,
0: ठीक है जी, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, तो चलिए, उत्तान मंडूकासन कैसे किया जाता है वो आप क्या करेंगे। पहले आप बैठिए, दोनों ही घुटनों को आप ऐसे उल्टा मोड़ दीजिए, ठीक है, उल्टा मोड़ करके एकदम स्ट्रेट बैठिए और अपने दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाइए। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रखना है, ठीक है, हथेलियाँ जो होती है एक दूसरे के ऊपर रखिए। तो इसको कहते हैं उत्तान मंडूकासन, जो मेंढक की पोज में किया जाता है। अब इसके बेनिफिट आप जान लीजिए। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। और अब ये जो उत्तान मंडूका आसन है, इसके क्या नुकसान है वो भी आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नुकसान है घुटनों और जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों को इस आसन से परहेज करना है, ठीक है। तो जिनके भी जॉइंट पेन है, घुटनों का दर्द है, वो इस आसन को नहीं करें। अब ये लास्ट बैठने वाला है वक्रासन। वक्रासन में आप कैसे बैठेंगे? आप एक बार तो सीधे बैठिए, फिर एक पैर को आप फैलाइए, ठीक है, जैसे राइट पैर को फैलाइए, लेफ्ट पैर को आप पास ला करके राइट पैर के जंघा पर रखिए, और पैर जितना मतलब जंघा और घुटना है तो घुटना पर रखना है, एक पैर को लंबा रखना है और घुटना और जंघा के बीच में रखिए, ठीक है। फिर जो जिस हाथ को, जिस पैर को आपने रखा है घुटने के ऊपर, उस हाथ को आप ले जाइए और ऊपर की ओर करते हुए घुटनों पर रखिए, और एक हाथ धरा पर टिका करके आप जिस हाथ को धरा पर टिकाया है उस तरफ आप देखिए। तो यह है वक्रासन। इसका फायदा यह है कि मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ता है, कब्ज और अग्निमांद को दूर करता है, और मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है वक्रासन। अब इसके नुकसान भी जान लीजिए कि इसका क्या नुकसान है, मतलब किन लोगों को नहीं करना है वो भी आप जान लीजिए। ज़्यादा पीठ दर्द और उधर की सर्जरी के बाद मासिक धर्म के दिनों में इस आसन को नहीं करना है। अब आइए पेट के बल किए जाने वाले आसन में आपको सिखाते हैं। वक्रासन आपने सीखा है, अब मकरासन। आप सीधे लेट जाइए पेट के बल, और हाथ की दोनों जो कोहनियां है, ठीक है, इनको धरती पर टिकाकर दोनों हाथ अपने मुंह की दाढ़ी पर लगाइए। दाढ़ी पर लगाकर दोनों कोनी को धरती पर टिका करके बस आप पेट के बल सो जाइए। इससे लाभ ये मिलेगा कि कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी उपयोगी है। तनाव और चिंता से संबंधित समस्याओं में नियंत्रण प्रदान करता है मकरासन। किनको नहीं करना चाहिए वो भी जान लीजिए। जिनके लो बीपी रहती है, निम्न रक्तचाप, उनको नहीं करना है ये आसन। हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित लोगों को भी ये आसन नहीं करना है। गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब आपको सिखाते हैं भुजंगासन। भुजंगासन में आप क्या करेंगे, आप पेट के बल लेटिए। लेटने के बाद अब दोनों हाथों को नीचे टिकाकर जितना आप ऊपर उठ सको, खाली नाभि का उपला भाग, ठीक है, पेट से ऊपर का भाग को ऊपर उठाना है और अपनी मुंडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमाना है। इसको कहते हैं भुजंगासन। इसका लाभ यह है कि तनाव प्रबंधन के लिए ये आसन सर्वश्रेष्ठ है। ये उदर के अतिरिक्त, उदर माने पेट, पेट के अतिरिक्त वसा को घटाता है और कब्जियत को दूर करता है। पेट दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को भी ये दूर करता है। और किनको नहीं करना है वो भी जान लीजिए। जिन लोगों की उदर संबंधी सर्जरी हुई, मतलब पेट में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो, तो उन्हें नहीं करना है, 6 महीने तक नहीं करना है इस आसन को। जो लोग हर्निया अल्सर से पीड़ित है, उन्हें भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, बाकी दूसरे कर सकते हैं। अब पेट के बल किए जाने वाला लास्ट आसन है शलभासन। मतलब पेट के बल किए जाने वाले 3 आसन है, 3 में से ये लास्ट है शलभासन। इसको आप कैसे करेंगे, पेट के बल सोइए, हाथों को पूरा स्ट्रेट रखिए और मतलब सामने की तरफ नहीं फैलाना, अपने पैर की तरफ, घुटनों की तरफ फैलाइए दोनों हाथों को, और फिर दोनों पैरों को आप जितना उठा सको उठाइए, ऊपर उठाइए, शलभासन। पेट के बल सोना है और दोनों हाथों को सीधा करके अपने पैरों की तरफ ले आइए और इधर मुंह को थोड़ा ऊपर करिए, पीछे से पैर को ऊपर उठाइए और पेट के बल वजन होना चाहिए, ठीक है, तो इसको कहते हैं शलभासन। इसके लाभ यह है, साइटिका और पीठ के निचले हिस्से की पीड़ा निवारण में सहायता प्रदान करता है। नितंबों की मांसपेशियां एवं वक्र प्रदेश को सुगठित बनाता है। झांगों और नितंबों पर एकत्रित अतिरिक्त वसा को कम करता है। शरीर के वजन को नियंत्रित बनाए रखने में यह आसन उपयोगी है, यह आसन बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। उदर के अंगों को लाभ पहुंचाता है, मतलब पेट के अंगों को लाभ पहुंचाता है। पाचन की सहायता में भी बहुत अच्छा है, पाचन की सहायता करता है। लेकिन किनको नहीं करना चाहिए ये भी देख लीजिए, सुन लीजिए। हृदय रोगियों को इस आसन को नहीं करना है। पीठ के निचले हिस्से में अधिक दर्द होने पर सावधानी पूर्वक रक्तचाप, अल्सर और हर्निया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। तो इनको नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हैं। तो यह आसन आपने सीखा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही देंगे क्योंकि अभी और भी आपको देते रहेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर आसन है। और आज का प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं, आज का प्रश्न है खड़े रहकर किए जाने वाले कितने प्रकार के आसन हैं और उनके नाम बताना है प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ठीक है। जो कल होगा, कल योगा डे है और कल योगा डे है, सरकार का निर्देश है, उस अनुसार ही आसन करेंगे सब। तो मैं उस अनुसार प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही आपको सिखा रही हूँ। कुल 84 आसन होते हैं, फिर सभी के बहुत सारे स्टेप होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 5 आसन मैंने आपको, अब मैंने जवाब भी दे दिया कि खड़े रहकर किए जाने वाले कितने आसन है उनके नाम आपको बताना है, ठीक है। जवाब एक बार दे दिया है, किसने गौर किया देखेंगे, और बाकी कितने हैं और उनके नाम आपको बताना है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और साथ ही साथ अंताक्षरी की भी आगाज करेंगे। आज की थीम रहेगी शादी ब्याह के गीत, विवाह के गीत जिसको कहते हैं, और रात्रि जागरण के, क्योंकि राजस्थान में रात्रि जागरण भी होता है वैसाख जेठ में। तो वैसाख तो पूरा हो गया, अभी हम सभी ने अदक मास किया है, वो भी खत्म हो गया और ये जेठ महीना भी उतरने को आ रहा है। तो उतरते हुए भी रात्रि जागरण किया जाता है, इसलिए रात्रि जगह के पूर्वजों के गीत और शादी ब्याह के गीत आपको सुनाना है। यहाँ पर मैं कोई अक्षर नहीं दूंगी, आप अपनी पसंद का गीत सुनाइएगा, ठीक है? तो आइए पहले तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में ज्ञानेंद्र जी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। नमस्कार ज्ञानेंद्र जी।
1: नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, कैसे हो आप?
1: बढ़िया, आप तो बढ़िया हैं?
0: हाँ जी, हम भी एकदम अच्छे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में
1: जी। खड़े होके किए जाने वाले आसन है 5।
0: अच्छा, नाम बताएंगे?
1: हाँ, ताड़ासन है, वृक्षासन, चकोड़ासन, पादहस्तासन, वीरभद्रासन।
0: अच्छा ठीक है, सही है गलत है हम कार्यक्रम के अंत में जरूर जवाब देंगे, ठीक है? और आप अपने पसंद का गीत सुना सकते हैं। शादी ब्याह की थीम है, विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत।
1: तो वो तो बाद में सुनाएंगे ना?
0: नहीं, शुरू हो गई, आपसे शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ जी।
1: आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है।
0: ओके, थैंक यू। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से। अंताक्षरी की आगाज हो चुकी है, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में आप अपने पसंद का गीत सुना सकते हैं। विवाह की थीम है और रात्रि जागरण के। हेलो, हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में
2: जी। और प्रश्न का जवाब में एक तो सूर्य नमस्कार है। हेलो,
0: हाँ जी सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, ठीक है।
2: और गीत बोलता हूँ के
0: हाँ जी।

0: करीवे जी।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। थीम आज की बहुत ही सुंदर है, विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत, और यहाँ पर मैं कोई अक्षर नहीं दे रही हूँ। तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके भाग लीजिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में जुड़कर आप अपने पसंद का गीत सुना सकते हैं। आज की थीम तो बहुत ही सरल है, मुश्किल लग रही है आपको भाई? शादी ब्याह के तो हमारे श्रोता बंधुओं को बहुत सारे गीत आते हैं, और देखते हैं कौन जुड़ते हैं। नहीं तो फिर यहाँ हम सुना देते हैं, घोड़ी सुना देते हैं।

0: चाले ससुराल चाले लखपति यारी गोड़ी। चले हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो नमस्ते।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: हाँ जी सुरेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हो आप?
1: सब अच्छे, लेकिन कल शायद बात होना बहुत हो, तो दीदी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू। मस्त रहो, निरोगी रहो, ऐसी हमारी तरफ से, हमारे सभी मित्र परिवार की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और हमारे सुरेश भाई को भी, इंदवाड़ा वाले सुरेश भाई को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं एडवांस में।
0: जी थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: संडे है, शायद बात होना हो तो
0: जी जी,
1: आज के दिन हम अच्छा
0: जी, थैंक यू, उनकी तरफ से भी धन्यवाद देते हैं, वो जुड़ेंगे तो हम बताएंगे।
1: शायद बाद में कॉल लगता है, नहीं लगता ऐसा लगता
0: हाँ
1: है।
0: जी हाँ जी,
1: तो एक तो है तादासन, तो दूसरा है वृक्षासन, तो तीसरा है तिकोणासन, तो चौथा है पद्मासन आसन,
0: अच्छा ठीक है, देखते हैं।
1: और चलो गाना तो सुना दे, शायद आज मैं दीदी भी ज्यादा हूँ, दीदी शायद जुड़े ना जुड़ू इसलिए।
0: अच्छा कहीं जाना है क्या
1: बच्चों का? नहीं बाहर नहीं है दीदी, लेकिन आज क्या है, मेरे बच्चों का संडे है, तो परसों कई सभी बच्चों को कपड़े देने हैं।
0: अच्छा जी जी जी जी,
1: क्योंकि वो स्कूल में कर दिया है कि जब कब ड्रेस नहीं होता तो दुकान नहीं आना।
0: अच्छा इतना स्ट्रिक्टली
1: नहीं देते इसलिए।
0: ओहो,
1: तो सोमवार से चेक कर दिया है, ड्रेस नहीं होगा तो अंदर गेट के अंदर दाखिल नहीं होगा।
0: अच्छा हाँ, तब तो आज तो आपको पूरे दिन लगे रहना है।
1: हाँ लगे रहना है, इसलिए शायद जुड़े ना जुड़े, लेकिन एड्रेस तो दे दिए है
0: जी।
1: तो मैं गाना दे देता हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: गुजराती गाना है कि बैना रे ता चलने जाता जो जो पापर ना ढूंढा,
0: डिकरी तो पार की थापण के वाय, डिकरी तो पार
1: डोरे त्यागाय,
0: थापण के वाय। बहुत सुंदर।
1: जी
0: बहुत बहुत आभार, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है सुरेश भाई। और आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हेलो हेलो नमस्ते। जो भी जुड़ते हैं बात करने की कोशिश करिएगा, और अगर कट जाता है तो फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर आज की थीम है विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत, क्योंकि विवाह भी देखे पुरुषोत्तम तो महीना पूरा हो गया है, विवाह फिर से शुरू हो गए हैं। हेलो
2: हेलो उषा बहन जी।
0: हाँ जी कंचन भाई नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: नमस्ते, सुप्रभात, नमस्कार
0: जी।
2: अच्छे है, दुकान पे है
0: जी जी, सुप्रभात, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: काल है जन्मदिन क्या
0: जी?
2: जी
0: हेलो। हाँ जी हाँ जी,
2: कल है, आज है?
0: आज नहीं है, कल है।
2: कल है,
0: थैंक यू
2: जन्मदिन की। और सुरेश का, सुरेश भाई का भी होगा
0: जी, उनका भी कल है।
2: सुरेश भाई को भी और आपको भी जन्मदिन की ढेर ढेर शुभकामनाएं।
0: थैंक यू।
2: और यू ही रेडियो पे आते रहे, ऐसी बातें बताते रहे।
0: थैंक यू, आपकी दुआएं मिल गई है बिल्कुल, और क्या चाहिए।
2: एडवांस में
0: अच्छा। हाँ जी हाँ जी,
2: तो कोई प्रोग्राम
0: जी जी जी, कल तो योगा डे है, योगा सिखाएंगे हम कल।
2: टीवी में देखते हैं, सामने ही टीवी है दुकान पे
0: जी,
2: बहुत योगा के बारे में बहुत आता है, तो हम सीख रहे हैं और काम भी करते हैं
0: जी।
2: हाँ तो ये तो मैं सवाल का जवाब तो ये तो देता हूँ बाद में, लेकिन एक गीत सुनाई देता हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी,
2: गणपति को याद करना पड़ेगा पहले।
0: जी जरूर,
2: हम आयोजन करते हैं जो लग्न लग्न का,
0: जी
2: गणपति जी को भी याद करो, पूर्वानो ऐसा हमारे तो बोलते हैं।
0: जी जी बिल्कुल,
2: तो गणपति जी का
0: स्थापना करते हैं ना, गणपति जी की सबसे पहले स्थापना करते हैं,
2: गणेश स्थापन बोलते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी,
2: पत्रिका में लिखते हैं ना।
0: हाँ हमारे, हम बोलते विनायक स्थापना,
2: हमारा गणेश स्थापन लिखते हैं और टाइम भी लिखते हैं।
0: जी जी, वो क्या मुहूर्त देख करके ही होता है ना, इसलिए
2: बढ़िया मुहूर्त ये करके करते है। जो गौर महाराज है ना, इसने लगन लिखा है ना, इसमें सभी टाइम लिख दिए है
0: जी,
2: पहले से कि इतने समय से गणेश स्थापन करना, ये करना है, ये करना है, तो सुनाई देता हूँ।
0: हाँ जी,
2: प्रथम गणेश बिसाड़ो हे मारा गणेश दुदाला, गणेश दुदाला ने मोटी पांदाला, गणेश जीवरदान देजो रे मारा गणेश दुदाला।
0: जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। क्या सोच रहे हैं, बहनें बता रही थी कि हम बहुत फ़ोन कॉल्स करते तब जा कर के नंबर लगता है, हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, इंतज़ार तो करना ही होगा। आज के दिन तो सभी जानते ही हैं कि सभी जुड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए लाइन व्यस्त रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम व्यस्त है, बीच बीच में स्पेस मिल रहा है। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते,
3: पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी फिरोज भाई, ओम शांति।
3: एक गीत बोलता हूँ।

0: ఎవర రాజా ఆటేలా తేలా దేశమే కోనేలదావ్యా.
1: బహుత్ సుందర్ క్యా బాత్ హై, బహుత్ బహుత్ శుక్రియా. तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से. अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं. नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं. बहुत ही सुंदर थीम है, विवाह के गीत और रात्रि जागरण के. हेलो
2: जी, नमस्ते.
1: हाँ जी, नमस्ते. नमस्ते.
2: मैंने सोचा चला लगाओ, लगी जाता ठीक है, वरना तो मैं काम कर
1: जी जी जी
2: कंचन भाई ने तो अच्छा लगा, गाना बेकार दिया था मैंने. बस एक गाना सुना दी थी

0: जी बहुत सुंदर सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। हेलो, चलिए जिनका कट जाता है फिर से वो ट्राई कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, जय श्री हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
1: आपका भी दिल से स्वागत है।
0: अच्छा, सुरेश भाई जोटाना वाले और कंचन भाई मंडाली से आपको याद कर रहे थे, आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे।
1: कल है ना?
0: कल है, वो बोल रहे संडे को नहीं जुड़ पाएंगे तो आज दे रहे हैं।
1: अच्छा, जी आज मना दो। कोई नहीं, जय जय, जब भी हो सब कबूल है
0: जी।
1: एक दिन आगे हो या पीछे हो, मगर एक्चुअल में मेरे को तो जन्मदिन की खुशी तो नहीं है, उल्टा गम है।
0: क्यों गम है?
1: क्योंकि एक साल कम हो रहा है ना।
0: अच्छा, नहीं खुशी मनाइए ना कि भाई हाँ चलिए हम अच्छा कुछ कर रहे हैं समाज के लिए।
1: हाँ नहीं, तो ठीक है, उसकी तो खुशी है कि कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है
0: जी।
1: मगर हमारा जो जीवन है ना, उसमें से एक साल तो कम हो गया ना
0: जी। वो तो है,
1: 2025 तक अपने जो साल गए हैं वो तो वापस आने वाले नहीं है
0: जी।
1: आएंगे
0: वो तो गए, जो जा रहे हैं वो नहीं आएंगे।
1: हाँ तो वही थोड़ा काम है, वो कहते हैं ना कभी खुशी कभी गम।
0: मुझे तो खुशी है, भले दिन घट रहे हैं लेकिन अपना जीवन खुशी और ऊर्जावान होना चाहिए, खुशियों से भरपूर और ऊर्जावान होना चाहिए। वो ईश्वर की कृपा से चल रहा है।
1: इस बात की खुशी है कि ईश्वर ने अपनी इतनी तो जिंदगी खुशी से काट ली
0: जी,
1: और आगे भी ऐसी खुशी से कटवा ले बस
0: जी।
1: और बस तो जिन्होंने मेरे को याद किया है उन सभी को धन्यवाद, और जिन्होंने याद नहीं किया उन सभी को भी धन्यवाद है। आज के दिन की बेहद शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं भी है। और तो कौन सा टॉपिक है
0: जी? विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत।
1: तो रात्रि जागरण विवाह का सुनाओ, गणपति का हो गया क्या? विवाह में गणपति पहले है ना?
0: गणपति जी का सुनाया है कंचन भाई ने, और भी आप सुना सकते हैं, बहुत सारे गीत है।
1: और कंचन भाई को मैं कहना चाहूंगा कि कंचन भाई आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? नंबर चेंज कर दिया गया, क्या हुआ जरा मुझे बताइएगा, ठीक है? और मैं सुनाता हूँ विवाह का गीत
0: जी।
1: ओहो नारो बाजो सियाने मोतीड़ा पिंजरियों, नारो बाजो सियाने मोतीड़ा पिंजरियों, जमके लाड़ी सोया सपत लव लाड़ी लगातन बाजो तियारो।
0: जी बहुत बहुत आभार। और आज के प्रश्न भी है, खड़े रहकर किए जाने वाले कितने प्रकार के आसन हैं और नाम बताना है।
1: खड़े हो
0: हाँ जी, प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो अभी सरकार का निर्देश है, और कल जो योगा होगा, प्रोटोकॉल के अंतर्गत खड़े रहने वाले कितने तरह के आसन हैं और उनके नाम बताना है।
1: ये ऑफलाइन बताऊंगा,
0: ठीक है? ठीक है, ओके। चलिए तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी बहुत ही सुंदर गीत बोल के सुनाया है। आइए अब यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: अभी बजे हैं सुबह के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार,

0: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
1: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
0: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में मदन भाई जुड़ चुके हैं। नमस्ते मदन भाई।
3: नमस्ते नमस्ते। आज के दिन की बोलिए सतगुरुदेव की जय।
2: क्या बात है।
3: आज हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार, ओम शांति, और आपको बहुत बहुत नमस्कार, और आशियाना को और सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। और अब चलते हैं, कौन सा गाना गाएंगे
2: जी? विवाह के गीत। विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत, हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा, जो आपको अच्छी लगे।
3: मतलब शादी के?
2: हाँ जी,
3: शादी के।
2: हाँ। और रात्रि जागरण के, पूर्वजों के,
3: बजनों के,
2: पूर्वजों के।
3: अच्छा, पूर्वजों के।
2: हाँ जी, रात्रि जगह।
3: अरे पर मंडली अरे नहीं रे बनो सारे अंधविश में गुड़ जाओगा। अरे माकारी चणगार कोयली अरे पर मंडली मत जाई जोरे। अरे उन कुवारो पानी मत पीतो कुवारो पानी डालो रे। अरे मंडली रा नहीं रे बनो सारे अंधविश में गुड़ जावा। नमस्कार दीदी जी।
2: हाँ जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार, जुड़ते रहिए। तो ये थे मदन भाई मेसाना से, आपने भी सुंदर गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। आज की थीम है विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। हेलो।
4: हाँ नमस्ते जी, पानंद से फिरोज भाई।
2: हाँ जी नमस्ते, नमस्ते फिरोज भाई।
4: हाँ
2: जी।
4: ओने रोबा जोड़ियो नहीं रे पन जड़ियो इन चंपे लारी साया थपन खेलो ला बेलड़ा मन बाजोटे बेवाड़ो बाजोटे बेवाड़ो बनाने हो गए तेरा मारो।
2: ये हो गया है, तुरंत ही आप दूसरा बोल लीजिए।

0: बहुत सुंदर। ओम शांति। आभार आपका सगुना बहन। ये थे सगुना बहन झूटाना से, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। आज की थीम बड़ी अच्छी भी है, सरल भी है। कोई अक्षर भी आपको नहीं दिया और दो दो थीम साथ में है, रात्रि जागरण के और शादी ब्याह के। हेलो,
1: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी, ओम शांति, नमस्ते।
1: हाँ, रेलगाड़ी आई मुंबई नो माल लाई, जुओ ने मारी बेनो। आ रेलगाड़ी आई गाड़ी में भरा रिंगड़ा,
0: जनैया बदा ठिंगड़ा, जुओ ने मारी बेनो।
1: आ रेलगाड़ी आई गाड़ी में भरा काकरा, जानड़िया बदा माकड़ा, जुआ ने मारी बेनो। आ रेलगाड़ी आई। जी
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज भाई, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। थीम आज की बहुत ही सुंदर है, विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत खड़े रहकर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के और उनके नाम बताना है। क्या सोच रहे हैं? इतनी सरल थीम है, उसमें भी अगर आप सोचेंगे तो फिर मुश्किल रखेंगे तो क्या होगा? अब भाई आप पर छोड़ा है, जुड़ो नहीं जुड़ो, क्योंकि वो फिर तो मुझे बहुत सारे फोन आ रहे थे कि दीदी कितनी देर से अंताक्षरी शुरू करेंगे, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी स्पेस भी है, बोले फ़ोन नहीं लग रहा है। और देखिए गैप तो मिल ही रहा है आपको, फ़ोन लगा सकते हैं।

0: की जाई, काई काई सो दोलाई राज, केर केवड़ो बोर मोगरी सेवरियो गुथलाई राज। ये सेवरे का ये विधि होती है, उसमें सेवरे का गीत है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरी।
0: हाँ जी नमस्ते, जय श्री हरी।
1: सुनाता हूँ।
0: हाँ जी सुना दीजिए।
1: बाफुल बाफुल का ये घर बहना, कुछ सिंह का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुम्हें पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर है।
0: जी बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। बहुत ही सुंदर आज की थीम है, विवाह के गीत, रात्रि जागरण के गीत। हेलो
2: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते। नमस्ते सुरेश भाई।
2: चलो मैं एक किठी का गाना सुना दूं, क्योंकि सभी गाने तो हो रहे हैं आगे वाला।
0: हाँ जी।
2: तो

0: धारा, यह रात्रि जागरण का गीत है जिसमें पूर्वज को बिठाया जाता है। हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि।
1: जूते तो फैसलो, जूते तो फैसलो, तूने की सालियो रो अरे गपट्टे वालियो, तूने की सालियो अरे गपट्टे वालियो, जूते दे दो

0: तो थैंक यू मैम।
1: जी बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। हेलो हेलो, आपस में बात मत करिए, रेडियो में नंबर लग चुका है आपका।
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी,
2: बनड़ी रे चार चार बहनों चारी चटकत नारी बनड़ी गुगर चमकाओ मुटड़ी तो पापड़ी कोई नहीं हम जे सोटकी रे मिर्च लागी रे रमली गुगरिया गमकाओ। जी
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। बहुत ही सुंदर थीम है आज की, विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। आप हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में सुना सकते हैं। आइए यहाँ पर एक अल्पविराम ले लेते हैं, उसके बाद पुनः रूबरू होते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि।
2: मैं सुनाता हूँ
1: जी।
2: मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सजन आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएंगे बाजा, भैया राजा बजाएंगे बाजा।
1: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है। अंताक्षरी कार्यक्रम की आज की थीम है विवाह के गीत और रात्रि जागरण के। तो आप क्या सोच रहे हैं, बहुत ही सुंदर और सरल थीम है। हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा में आप गीत सुना सकते हैं। हेलो।
3: हाँ दीदी, ओम शांति।
1: हाँ जी, ओम शांति। सगुना बहन नमस्ते। हाँ जी,
3: मैं गाना सुना देती हूँ।
1: हाँ जी।
3: मिया आओ तो मनरे भी बात कर लिया, पिया आओ तो मनरे भी बात कर लिया, हाजी पिया आओ तो। ऐसा कोई जा रहा है मेरे
1: पास। हाँ,

0: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। हेलो।
1: जय माता जी, जय श्री हरी।
0: हाँ जी, जय श्री हरि।
1: आज मेरे यार की शादी, मने कई रखना उड़ेंगे नोट गुलाबी, मने कई रखना आज मेरे यार की शादी हो। थैंक यू जाना।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। देखिए, समय कैसे तेजी से आगे बढ़ता है पता ही नहीं चलता है। अब आपके पास समय वैसे कम है और आप जुड़ सकते हैं अभी भी। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं है, है थोड़ा बहुत समय, तो आप जुड़िएगा। हेलो।
1: नमस्ते सुरेश भाई, बोलता हूँ जताना से।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई।
1: मैं सुनाता हूँ गाना। पीठे
0: हाँ जी।
1: भर दे जो दुनिया, बैठा मैं नीवा, दादा ए हसीने बोलाविया। पीठे भर दे जो दुनिया, बैठा मैं नीवा, दादा

0: ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਨਿਆ ਮਾਂ ਬੇਠਾ ਬੇਨੀਵਾ।
1: जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हमारे श्रोता बंधु भी बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं, जितने जुड़ रहे हैं कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हेलो, हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, नमस्ते।
2: घोड़ी पे हो के सवार चला है दुल्हा, कमरिया में थकड़ती है लैला जी।
1: जी बहुत सुंदर, आभार आपका। हाँ जी, तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है। थीम है विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। हेलो,
3: हेलो मैडम, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्ते, ओम शांति, कौन बोल रहे हैं?
3: नमस्ते मैडम, मैं पिंकी वर्मा बोल रही हूँ कच्छ गुजरात से।
1: क्या बात है पिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। आप कितने समय से रेडियो सुन रहे हैं पिंकी जी?
3: ये हम डेली सुनती हूँ शनिवार को, और 2 साल से सुन रही हूँ ये।
1: अच्छा, पहली बार आपसे बात हो रही है, 2 साल से सुन रहे हैं आप। हाँ। जी, और क्या काम करते हैं आप?
3: और कैसे हो आप कैसे हो?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए।
3: बस हम भी सब अच्छे
1: हैं। अच्छा,
3: और गाना सुनाना था
1: ये? हाँ जी, जी जरूर सुनाइए। हम पूछना चाहेंगे कि 2 साल से आप रेडियो मधुबन सुन रहे हैं, तो आपके जीवन में किसी तरह का बदलाव आया रेडियो मधुबन सुन करके?
3: जी मैडम,
1: बताएंगे क्या आया?
3: हम अच्छे ये सुनते हैं तो अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। हर एक घंटे में ओम शांति का जो 2 मिनट के लिए आता है वो भी सुनते हैं, जो मन को थोड़ा अच्छा लगता है। और गाना सुनते हैं तो काम करती जाती हूँ और गाना सुनती जाती हूँ, ये प्रोग्राम सुनती हूँ मैं।
1: जी जी,
3: अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छी बात है, ठीक है सुना दीजिए आप।
3: मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। थैंक यू मैडम,
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। जुड़ते रहिएगा पिंकी जी। तो ये थे पिंकी वर्मा गुजरात से, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। हेलो, चलिए जो भी है आप जुड़िएगा जरूर फिर से और बात कर सकते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ हाँ जी, जय श्री हरि।
4: सुनाओ।
1: हाँ जी,
4: आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। थैंक यू मैम।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। समय तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है, आपके पास समय कम बचा है, तो इस समय का भी आप चाहे तो फायदा उठा सकते हैं। हेलो,
5: हाँ जी नमस्कार दीदी जी।
1: हाँ जी मदन भाई, नमस्ते।
5: अरे दीदी जी, थोड़ा काम आ गया था
1: जी,
5: और लगा रहा फोन, कभी सीधे बोलता है कभी क्या है और कभी नहीं लगता है
1: जी।
5: तो सुना दे गाइस।
1: हाँ जी,
5: अभी ब्याह का सुना देते हैं।
1: हाँ जी,
5: रे मगनियो मकरण रेण बाे रे बीर अचन मे तोरण रे मसी जाए काशी नारी ने जरनागणी रे मगनियो मकरण इवरे माग। अरे वीर मांगणियों मत रही ले रे बात वाली नमस्कार दीदी जी
1: जी बहुत बहुत बहुत आभार बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है मदन भाई हाँ जी
5: हाँ जी जी
1: तो ये थे मदन भाई मेहसाना से अब आपके पास देखिए समय कम है जो भी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को आप जुड़िएगा क्योंकि वापस एक सप्ताह के ऊपर बात चली जाएगी तो आप जुड़ करके अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं हेलो
6: हाँ नमस्कार
1: जी ओम शांति फिरोज भाई

0: जी बहुत सुंदर, लेकिन किसी ने सुना दिया है, आप तुरंत ही दूसरा सुनाइए। तुरंत ही दूसरा सुना दीजिए फिरोज भाई, हो गया ये।
1: हाँ, बोल रहा हूँ
0: जी।
1: राज,

जी चलिए, बहुत बहुत आभार। तो ये थे फिरोज भाई, और देखते हैं अब कौन जुड़ते हैं, अंताक्षरी में भाग लेते हैं। हेलो, चलिए फिर से फोन कॉल्स कर सकते हैं जो भी जुड़ना चाहे। आपके पास समय बहुत ही कम है, और हे इस समय का जरूर फायदा उठाइएगा। तालरिया मगरिया रे वीरो मारो आवियो हो वो तो।

0: अवियो हो में तो हरिया मुंगारी रांदू दाल वीरा बिन जारा रे। आज ये फोन बार बार कट रहा है, जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा जहाँ से नेटवर्क आता है वहाँ से करिएगा। हेलो
1: हेलो नमस्कार दीदी जी।
0: हाँ जी नमस्ते। ये क्या टू टू टू टू बज रहा है आपके फोन?
1: क्या बज रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही,
0: बहुत आवाज आ रही है। तो कोई दूसरा फोन चालू है या क्या हो रहा है? जल्दी सुना दीजिए मदन भाई, बहुत आवाज आ रही है। चलिए कट गया है फिर से। फिर से आप कोशिश कर सकते हैं, आपके पास समय कम है। हम तो चाहते हैं एक ब्रेक ले लेवे, लेकिन ब्रेक लेंगे तो गीत में समय चला जाएगा। आप जो बोलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यू जुड़िए, हम ब्रेक नहीं लेंगे। हेलो
1: दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूं।
0: जाता हाँ जी नमस्ते नमस्ते। हाँ जी सुना दीजिए।
1: मोरे तारी सोना नीचाँच, मोरे तारी रूपा नीचाँच, सोना नीचाँच रे मोरलो मोती चरवा जाय, सोना नीचाँच

0: जी बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, हो जाता है। बहुत बहुत आभार, ये थे सुरेश भाई जोटाना से। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम अंतिम चरण पर है। तो आप जो भी जुड़ना चाहते हैं, स्वागत है आपका। हेलो,
1: हेलो गुरु, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हो? अच्छा, अच्छा
1: क्या करो मैं, इसलिए मेरा मजबूरी हो गई है, लग गया आपसे, लग गया लास्ट में। कोई बात नहीं, चलते रूम में हाजिर की दो गंगा जाए अपनी वनरी में, मोतिया को जरियो रुमाल हाजिर की दो गंगा जाए अपनी वनरी में। और वो पैसे बता दे बावन बोलते जो है वो सूर्य प्रणाम है, क्या प्रणाम और है, लेकिन अभी मेरे को नाम भी भूल गया मेरे फोन लगाने के चक्कर में।
0: जी तो याद आ जाए तो फिर से आप फोन लगा सकते हैं।
1: ठीक है वापस कोशिश करूंगा, फोन लगा दूंगा।
0: हाँ जी ठीक है,
1: धन्यवाद।
0: हाँ जी थैंक यू। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं, कार्यक्रम अंतिम चरण पर चल रहा है, जो भी लाभ उठाना चाहे उठा सकते हैं। हेलो
2: नमस्कार दीदी।
0: हाँ जी नमस्ते, नमस्ते मदन भाई।
2: आवाज आया ना बरोबर?
0: हाँ आया आया, बरोबर आया।
2: तो गाना गा ही लेते हैं।
0: हाँ जी सुनाइए।
2: जी जी, अरे वो भजन भजन गाएगा कि ओ,
0: अरे भजन नहीं, शादी ब्याह की थीम है और रात्रि जागरण।
2: हाँ जी, ब्याह के और वो पूर्वों के।
0: हाँ
2: चलो गा देते हैं शादी ब्याह के। अरे अजय जिया का तीजरे बदला तीरे दीवाना, अजीरे दीवाना तू तो पहचान वालो चोर दीवाना। अरे मन है कलरी मत चोर दीवाना, अजीरे दीवाना तू तो साई कल वालो चोर दीवाना। अजीरे दीवाना, अजीरे दीवाना तू तो दिल्ली की तेरी गटा तेरे दीवाना, अजीरे दीवाना तू तो पहचान वालो जोरे दीवाना, अजीरे दीवाना तू तो रुपया वालो जोरे दीवाना। नमस्कार दीदी
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे मदन भाई मेसाना से। आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। आपके पास 6 मिनट है, 6 मिनट में जो भी जुड़ना चाहते हैं, स्वागत है आपका। हेलो,
3: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि।
3: ये हो गया जी, आज मेरी यार की शक्ति
0: नहीं हुआ।
3: आज मेरी यार की शादी, आज मेरी यार की शादी, यार की शादी है पर बर्बाद, भूल गया ये।
0: यार की शादी है मेरे दिलदार की शादी है,
3: आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है।
2: ठीक है
0: जी,
2: दूसरा सुनाओ।
0: नहीं चलेगा। आभार। तो बहुत ही सुंदर गीत हम सभी ने सुना है। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
2: नमस्ते दीदी, सुरेश भाई बोलता हूँ।
0: हाँ जी सुरेश भाई, हाँ जी।
2: थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बीच में, पता नहीं। तो चलो गाना, मैंने जुड़ना कम था लेकिन फिर भी कितने के कार्यक्रम के में इसमें जुड़े बिना तो रह नहीं सकता, ऐसा प्रॉब्लम है।
0: जी जी जी,
2: जुड़ तो रहना पड़ता है
0: जी।
2: गाना दीदी, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जाओ बेटी खुश रहना, लो आशीष हमारा,
4: बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर हमारा। दौड़ के माँ का आंचल संग पिया के संग है जाना, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जी धीरे
0: जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब देखते हैं, आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट में जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। हेलो, तो कार्यक्रम अंतिम चरण पर चल रहा है, जो भी जुड़ना चाहते हैं 3 मिनट है आपके पास, जुड़िएगा जरूर। हेलो हेलो, नमस्ते। अगर फोन नहीं लगता है तो फिर से ट्राई करिएगा। कितनी बार देख रहे, टूटू की आवाज़ भी आ रही है, फ़ोन भी बार बार कट जा रहा है, आपकी तरफ से यहाँ से नहीं कट रहा है। हेलो,
5: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि।
5: सुनो।
0: हाँ जी, सुना दीजिए।
5: मुबारक हो तुमको,

0: قدم چومے یہ دنیا ساری، سدا خوش رہو یہ دعائیں ہماری. تھینک یو ویری مچ.
1: बहुत बहुत आभार आपका. तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से. आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं. आज की थीम बड़ी अच्छी है और समय भी बहुत कम बचा है आपके पास. हेलो.
2: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से.
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई
2: जी.

0: रूखड़ला देखण तो मारा पीररा पीररा। ये एक वीरा है, भाई बहन का गीत है, बहुत ही सुंदर, जिसमें इस गीत में कह रहे हैं कि भाई भाई आया है लेने के लिए और अब तो मुझे जाना है, मायके की बहुत याद आ रही है। वो कहते हैं ना मायके के पेड़, ये वृक्ष पौधे ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। हेलो, हाँ जय श्री हरि।
1: मायके की तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है
0: जी,
1: है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ, बहुत बहुत अच्छी लगती है, प्याज और सास के साथ में खाते हैं, ठंडी सास में जो रोटी चूर के खाते हैं ना, वो भी अच्छी लगती है मायके की तो
0: जी।
1: चलो, क्योंकि वो बचपन याद आता है ना।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, मैं सुना दूँ।
0: हाँ जी, लास्ट गीत
1: तो मायरा का सुना दो लास्ट
0: जी, सुना दीजिए।
1: क्योंकि मायरा का मेरे ख्याल से किसी ने नहीं सुनाया होगा, आपने ही सुनाया होगा तो
0: जी।
1: गिरता ऊंचे शहरों में जोरे जामन राजाया जोरे।

0: जी बहुत बहुत आभार। बस कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, आप कोई फोन कॉल्स नहीं करेंगे। अब समय समाप्त हो चुका है, तो आज के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है, ज़रूर आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा, और जो एक्सरसाइज आपको सिखाई है प्रोटोकॉल के अंतर्गत कौन कौन से आसन कराएंगे कल, उसी में से आपको सिखा रही थी। तो उसमें बैठ कर किए जाने वाले आसन कौन से है, पेट के बल किए जाने वाले आसन कौन से है, वो आज आपने जाना है, ठीक है। और फिर अंताक्षरी बहुत अच्छी रही, आज की थीम थी विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। हमारे श्रोता बंधुओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ दी है, बहुत बहुत आभार। नाम सुनाना चाहूँगी, कमला जी भिलवाड़ा से जुड़े हैं। एक बार प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया। सुरेश भाई जोटाना से जुड़े हैं 8 बार और आपने 3 जवाब सही दिए। वैसे आपने कहा कि भाई खड़े रहकर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के, आपने कहा 5 बार बिल्कुल सही है। फिर 3 आसन के नाम तो आपने सही बताए हैं, 2 गलत है। फिर जुड़े हैं सगुना बहन जोटाना से 2 बार, आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। कंचन भाई मंडाली से जुड़े हैं 3 बार, आपने भी जवाब नहीं दिया। फिरोज भाई पालनपुर से जुड़े हैं 10 बार और आपने जवाब, आपका भी गलत जवाब है। ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, आपने भी कहा 5 खड़े रहकर किए जाने वाले आसन 5 है और 3 का सही जवाब दिया, 2 आपने गलत बताया। मदन भाई मेहसाना से आप 3 बार जुड़े हैं, प्रश्न का जवाब नहीं दिया। पिंकी वर्मा गुजरात से आप 1 बार जुड़े हैं, प्रश्न का जवाब नहीं दिया। भूरीलाल जी मानपुर से 1 बार जुड़े हैं, आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आप 13 बार जुड़े हैं, तो आप अंताक्षरी के विनर रहे हैं, आपके लिए ढेर सारी तालियां। प्रश्न का जवाब तो आपने नहीं दिया लेकिन आप 13 बार जुड़े हैं। आप सभी जुड़े और बढ़ चढ़ कर के भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी तालियां। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 5 खड़े रहकर किए जाने वाले आसन 5 है। ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन और त्रिकोणासन, ठीक है। तो ये 5 आसन थे, उसमें से आप 2 ने फिर भी अच्छी कोशिश की, इसके लिए चलिए ताली बजा देते हैं सुरेश भाई और ज्ञानेंद्र जी के। और आज का मीठा मोती है, निरंतर परमात्मा याद में समाए, अर्थात निरंतर परमपिता परमात्मा की याद रहेगी तो सर्व दुख बीमारियां व बुराइयों से छूटे रहेंगे। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, सोमवार को फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम।
1: अभी बजे हैं सुबह के 11। एक मिनट के स्वचिंतन से टेंशन होगी 9-2-11।

नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब, कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो हैं? घर में बाल बच्चे? बहुत अच्छी बात है, बस कुशल मंगल रहे। चलिए, आपकी प्रभा पंडिताइन आपका प्रोग्राम पंडिताइन में पेश कर रहे हैं आज का प्रोग्राम, और शुरू करते हैं सकारात्मकता से। सकारात्मक सोच न केवल सबसे अच्छा होने की उम्मीद रखता है, लेकिन ये स्वीकार करने के बारे में भी है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। विश्व नाटक कल्याणकारी है, तो हमेशा का सोचिएगा, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है, लेकिन वही चिड़िया जब मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है, पर माचिस की एक तीली लाखों पेड़ जला सकती है। कोई चाहे कितना भी महान काहे ना हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। वर्तमान का कटु सत्य आपके समय का, जरा इस पर आप गौर जरूर करना, और ऐसी स्थिति से जरूर बचना जिस घर में बड़ों को छोटों से डर लगने लग जाए, उस घर में समझ लेना कि कलयुग प्रवेश कर चुका है। आपसे करबद्ध प्रभा पंडिताइन निवेदन करती है कि कभी भी अपने घर में ऐसी छवि मत बनाना जिससे कि तुम्हारे ही घर का पूज्य पुरुष तुमसे ही डरने लगे, और वो तुमसे अपने मन की बात न कह सके। यदि ऐसी छवि तुमने बना ली है तो खुद का ही विश्लेषण कर समझ लेना कि तुम कितना ही धर्म करना, एक दिन तुम्हारा पता निश्चित है। ईश्वर न्यायाधीश है। खुद का विश्लेषण करने का तरीका, अगर आपकी ओर एक उंगली उठे तो समझना कि आपका अपमान, अगर अंगूठा का इजहार हो तो समझना आप कामयाबी की ओर है, अंगूठे से उंगली मिले तो समझना आपके कार्य लाजवाब है। यह तो हमारी जिंदगी का हिसाब है कि नहीं? अगर वाकई में आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। कहे कि ठोकर खाकर जो इंसान गिर जाए वो उठ जाता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ पाता। चिंता कभी ना करो, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, लेकिन चलो उही मार्ग पर जो सत्य और मानवता का मार्ग हो। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं खुद है। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है कि नहीं? और एक बात जरूर याद रखें, माफ करें, दिल साफ करें। हम सभी से जाने अनजाने में न जाना कितना गलतियां होती है, किंतु गलती का एहसास होना, अर्थात अपने गलत कर्म का भान होना और गलती के लिए माफ़ी मांग लेना, उस गलती के बोझ को समाप्त कर देता है। गलती होना वास्तव में गलती तो है, पर इतनी बड़ी नहीं। परंतु अपनी गलती को महसूस न करना, ये उससे भी भारी गलती है। महसूस नहीं किया तो स्वयं के बदलने के द्वार बंद हो जाते हैं, और वही गलती बार बार दोहराई जाती है। तो क्या करिएगा, समझ गए? तो सच्चे दिल से माफी मांगने का अर्थ है कि हम उस गलती को इतनी गहराई से महसूस करें कि दोबारा कभी भी किसी के भी साथ वो गलती ना दोहराए। अगर एक व्यक्ति बदला लेकर दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है तो इस प्रयास में वो खुद भी नीचे उतर जाता है, और दूसरी ओर क्षमा करके व्यक्ति स्वयं भी ऊंचा उठता है और सामने वाले को भी ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। यदि चित्त में ईर्ष्या घृणा द्वेष की अग्नि धधक रही है तो चित्त को भारी कर देती है। तो सदा याद रखिएगा, ऐसा बोझिल मन भगवान के किस काम का जो पहले से ही भरा है।
भगवान उसमें और का भरेंगे। इसलिए प्रतिदिन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर और दूसरों की गलती के लिए क्षमा देकर मन को खाली अबस कर लीजिए, तभी शांति के सागर परमात्मा की शांति की किरणें अंदर प्रवेश करेगी। अपने शरणागत जीव को प्रभु हर प्रकार के अनिष्ट से बचा लेते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु आश्रित जीव के जीवन में कभी कौरव कष्ट ही नहीं आता हो। सच बात तो यह है कि प्रभु आश्रित जीव धर्म पथ का अनुगमन करता है, और जो धर्म पथ का अनुगमन करता है उसकी राह कभी भी आसान नहीं होती। ये प्रभु शरणागति की महिमा ही तो है कि दुर्गम परिस्थितियों में भी शरणागत के मन में एक विश्वास और एक सकारात्मकता सदैव बनी रहती है, और वो ये कि मेरे प्रभु मेरे साथ ही हैं, फिर मैं चिंता काहे करूं। और उनका ये विश्वास ही उन्हें पांडवों की तरफ बड़े से बड़े विघ्न से भी लड़ने का आत्मबल प्रदान कर देता है। जौन प्रकार एक अबोध बालक निर्भय होकर सर्प के संग खेलने लग जाता, सांप के संग, और अग्नि में भी हाथ डालने लग जाता है, वो नहीं जानता कि इसमें मेरा तनिक भी अहित होने वाला है। मगर उसके माता पिता अच्छे से जानते हैं कि किसमें उनके बालक का हित है और किसमें अहित। इसी प्रकार हम जीव को भले ही नहीं पता हो कि किसमें उसका हित है और किसमें अहित, फिर भी वो प्रभु को सब कुछ पता है। और माता पिता की भांति ही माँ जानकी और प्रभु राम अपने शरणागत की रक्षा करते हैं और उसको हर प्रकार के अनिष्ट से भी बचा लेते हैं। प्रभु शरणागति अथवा धर्म के मार्ग पर आपको कष्ट जरूर हो सकता है, मगर आपका अहित कभी नहीं हो सकता। ये बात गांठ में बांध लीजिए। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन ये असंभव को भी संभव कर देते हैं। एक तस्वीर देखी हम, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और एक छोटा सा बच्चा उसको माथे पे चूम रहा है। एक अपने आने वाले कल को और एक अपने गुजरे हुए कल को, यही जीवन का चक्र है तो का समझे। ये आसमान में उड़ने वाले परिंदो, ए आसमान में उड़ने वाली परिंदों, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की। इस पिंजरे का दर्द का होता है अब समझ चुका है आज का इंसान भी। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो ये दुनिया का रिवाज है। कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं, दूरी हो जाती है। ध्यान रहे कि चुभ जाती हैं बातें कभी कभी, चुभ जाती हैं बातें कभी कभी, और लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से ही हार जाते हैं। आप सब तो दुनिया में रहते हैं, बहुत कटु अनुभव से जिंदगी के इस पड़ाव तक पहुँचे होंगे, फिर भी कई बार मन में आता है कि बात भी कह दें तो कहीं लगी हो चोट तो उस पर थोड़ा सा मरहम का काम हो जाएगा। कई बार आप अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं, पर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके जैसा जीवन जीने की चाह रखते हैं। तो आज से क्या करिएगा, अपने जीवन से संतुष्ट रहें। हमारे पास परमात्मा जी ने जो दिया है लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छा दिया है। ये दुनिया नहीं चलती अगर पांच स्त्रियां हर पुरुष के जीवन में नहीं होती। कौन कौन सी? माँ, बहन, बहू, बेटी या पत्नी। चालाक बनकर तो किसी को केवल कुछ देर तक ही मोहित किया जा सकता है, परंतु जहाँ दिल जीतने की बात आती है वहाँ तो केवल सरल और सहज होना ही जरूरी होता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कई बार एक चुप्पी कई भ्रमित दूषित वातावरण को सुगम कर सही दिशा प्रदान कर देती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी दूसरे की चुगली करता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी किसी और के सामने चुगली करता होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान अपनी भूल में से भी बहुत कुछ सीख सकता है।
सबको शुभ भावना शुभकामना के गिफ्ट देने वाली अपने आप को भाग्य विधाता मास्टर भाग्य विधाता समझे। देखिए आपका जीवन कितना खुश मिजाज होगा। माटी का संसार है खेल सके तो खेल, माटी का संसार है खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में है पूरा विज्ञान उसके आगे है फेल। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और उसका सिमरन दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। तो आज से क्या करिएगा, समझ गए होंगे ना? अरे कहा नहीं समझेंगे, परमा पंडित लाइन के साथ 12 साल सुन सुन सुन के तो अब हमसे भी ज्यादा समझदार हो गए हैं। चलिए यही बात पर एक गीत व सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। सुनिएगा मीठा सा गीत, उसके बाद फिर आपसे बतियाते हैं।

से उम्मीद रखें। काहे कि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर रहें और स्वयं पर विश्वास रखें तो आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। जीवन का सत्य ही है, मनुष्य जैसे सोचता है वैसे ही गुण कर्म स्वभाव वाला बनता जाता है। यदि मनुष्य श्वास श्वास परमात्मा का गुण, उनका दिव्य कर्म तथा उनकी संपत्ति की याद में रहे तो वो भी दिव्य मन दिव्य बुद्धि वाला बन जाता है। एक राजपूत कोई निश्चय और याद होने के कारण कि वो राजकुमार है, स्वभावतः खुशी साहस धन खुमारी रहती ही है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्यात्मा निश्चय पूर्वक मनन करती है, मैं तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो त्रिलोकीनाथ परमात्मा का बच्चा हूँ, सारा ब्रह्मांड का स्वामी का बालक हूँ, तो ऊ की मस्ती आनंद अतीन्द्रिय सुख और शक्ति के अनुभव का पारावार नहीं रहता। परमात्मा हर वक्त आपके साथ है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो आपको कब कहाँ और कैसे कैसे बचाता है, लेकिन आप फिर भी उसको कोई मौका मिलता है तो गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात मन में बैठा लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और जिसमें निश्चित आपकी ही कोई भलाई छिपी हुई है। इसलिए हर तरह का अभिमान और जिद छोड़कर जो भी कुछ हो रहा है उसे खुशी खुशी से स्वीकार करें। दया और कृपा इका सागर होने के नाते वो कभी भी आपको दुख नहीं देता। कौन? परमात्मा जी, गॉड जी। अभी तो दुखों से छुटकारा पाने का राह जरूर दिखाता है। प्रभु ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। प्रभु को पाने का एक ही लक्ष्य बनाए, जीवन की सार्थकता यही में है। आप बरसों से अपने आप को कोसते आ रहे हैं पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब आप खुद का समर्थन करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अब केवल समाधान होंगे, समस्या नहीं। सदा स्मृति रहे कि आप कौन हैं, एक शांत स्वरूप और वरदानी आत्मा है। जीवन का सत्य ये भी है कि मिनट घंटे दिन माह वर्ष बदल सकते हैं, लेकिन हमारे किए अच्छे बुरे नहीं बदलते। का कर्म बुरे काम पीछा करते ही रहते हैं, अच्छे काम बचाते ही रहते हैं। आज मनुष्य जीवन के बुनियादी व नैतिक सत्यों से अवगत है परंतु इन पर अमल नहीं ना करता। इनमें जीवन में सरलता नहीं आ पाती और जो सरल नहीं होगा उसमें परमात्मा की साधना नहीं कर सकता। राजयोग सहज राजयोग की साधना के लिए मन बुद्धि का सरल और सहज होना जरूरी है, जो कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति व इसका मनन करने से ही संभव है। तो क्या करिएगा, संतुष्टता दिलाता है योग, जो कि कई जन्मों तक संस्कारों में समाई रहती है। मानव जीवन पुण्य और पाप का मिश्रण है। अज्ञान और दुर्ज्ञान से पाप उत्पन्न होता है और सद्ज्ञान से पुण्य उत्पन्न होता है। कर्मों से संस्कार बनते हैं, संस्कार ही से ही गुण बनते हैं, गुण से प्रकृति बनती है, प्रकृति से सृष्टि बनती है और सृष्टि ही शरीर है। भला या बुरा, रुग्ण या स्वस्थ, सुंदर या कुरूप, स्पष्ट है कि मनुष्य का जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका शरीर बनता है। जन्मों जन्मों से संचित कर्मों का प्रतिफल ही शरीर है। शरीर ही वो फल है जो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। सत्कर्म से सुफल और दुष्कर्म से कुफल प्राप्त होता है। वर्तमान शरीर पुराने सांस्कृतिक परिवेश का फल है। कर्मों के फल भोग सुनिश्चित होते हैं, उनसे कोई बच नहीं ना सकता। कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है, देव मानव दैत्य सभी को। जीवन में सब कुछ एक निवेश की तरह ही होता है। प्रेम, समय, साथ, खुशी, सम्मान और अपमान, जितना जितना हम दूसरों को देते जाएंगे, समय आने पर एक दिन वो ब्याज सहित हमें अवश्य वापस मिलने वाला है। कभी दुख के क्षणों में अपने को अलग थलग पाओ तो एक बार आत्मनिरीक्षण अवश्य कर लीजिएगा कि कल जब मेरे अपनों को अथवा समाज को मेरी जरूरत थी तो मैं उन्हें अपना समय दे पाया था। कहा कि हम दूसरे से तो बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कहा हम दूसरों

को कुछ दे पाए थे? का किसी के दुख में मैं कभी सहभागी बन पाया था? आपको अपने प्रति दूसरों के उदासीन व्यवहार का कारण स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कभी जीवन में अकेलापन महसूस होए लगे और आपको अपने आसपास कोई दिखाई न दे जिससे मन की दो चार बात करके मन को हल्का किया जा सके, तो आपको एक बार पुनः आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। क्या आपकी उपस्थिति कभी किसी के अकेलेपन को दूर करने का कारण बन पाई थी अथवा नहीं? अपने आप चिंतन कीजिएगा, आपको अपने एकाकी जीवन का कारण स्वयं समझ आ जाएगा। श्रीमद् भागवत जी में की कथा में हम लोग गाते हैं कि देवी द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण को एक बार एक छोटे से चीर का दान किया था और समय आए पर आवश्यकता पड़ने पर विधि द्वारा वही चीर देवी द्रौपदी को साड़ियों के भंडार के रूप में लौटाया गया। सुना है ना आप सबने? तो अच्छा बुरा, मान अपमान, समय साथ, दुख सुख के जो कुछ भी आपके द्वारा बांटा जाएगा, देर से सही मगर एक दिन आपको दोगुना होकर मिलेगा जरूर, ये तय है। तो आपको डिसाइड करे कहा है, कहा दे कहा है, वही लौट के आने वाला है। सूर्योदय के लिए सूर्य को अंधेरे से, हरियाली के लिए वसंत को पतझड़ से, और गंगा स्वरूप होने के लिए एक नाले को कंकर पत्थरों से टकराना अथवा लड़ना ही होता है। ठीक इसी प्रकार बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए मनुष्य को बुरे दिनों से अवश्य लड़ना पड़ता है अथवा तो बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ता है। प्रभु श्री राम ने लंका को जीता मगर जीतने से पहले कितनी कितनी विषमताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप सब तो जानते हैं ना। पांडवों ने महाभारत युद्ध जीता अवश्य, मगर उसके मूल में भी अनगिनत कठिनाइयां और विपत्तियां ही छुपी हुई हैं। निसंदेह जीवन यात्रा ऐसी ही है। यहाँ पर किसी चीज को वृक्ष बनने के लिए एक लंबी अवधि तक सर्वप्रथम जमीन में मिट्टी के नीचे दबना होता है। समय आने पर वो बीज अंकुरित तो हो जाता है मगर उसके बाद भी कभी तीखी धूप तो कभी कड़ाके की सर्दी का सामना करते हुए न जाने काका विषमताएं अपने ऊपर झेलनी पड़ती है। यही तो जीवन है, यही तो प्रकृति है। धीरे धीरे वो बढ़ने जरूर लगता है मगर यहाँ भी पग पग पर उसकी डगर आसान नहीं होती है। कभी आंधे, कभी तूफान, कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि का सामना करते हुए वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष का रूप ले चुका होता है। अब कभी अपने पत्तों द्वारा, कभी अपनी टहनियों द्वारा, कभी अपनी लकड़ियों द्वारा, कभी अपनी शीतल छांव द्वारा, तो कभी अपने मधुर फलों द्वारा परोपकार और परमार्थ करके एक वंदनीय और सम्मानित जीवन जी पाता है। याद रखिएगा, दिन बुरे हो सकते हैं मगर जीवन नहीं। धैर्य, साहस, सावधानी और प्रसन्नता का कवच परिस्थितियों को भी आपका दास बना सकता है। जो डटेगा वही टिकेगा और वही बढ़ेगा। समझ गए? तो तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हमारा पहला मंदिर ये कोई और नहीं बल्कि हमारा शरीर है। हम इंसानों को भगवान की अवधारणा सिखाई जाती है, सही या गलत। हम गायों के घर आने तक बहस कर सकते हैं, ये हमारी दुनिया का एक सच है। कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों को विश्वास करना सिखाया गया है और वे इसका धार्मिक रूप से पालन करते हैं। इस मुद्दे पर हमारा मत अलग है। हमारा पहला मंदिर हमारा शरीर है, हमारी आत्मा हमारा देवता है, ईश्वर का अंश है। हम प्रार्थना करने के लिए अपनी आत्मा के साथ संरेखित करते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया से, कर्मकांड से गुजरते हैं, वो मुझसे सहमत नहीं हो सकते। हमें पृथ्वी पर अपनी यात्रा के दौरान अपनी आत्मा को अपने शरीर में रखना है। इस मंदिर के रख रखाव के लिए केवल श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसे महान आकार में बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। रोजाना व्यायाम से हमारा शरीर चमकता है और आलस्य से सुस्त हो जाता है। हमें ईंट और पत्थर के मंदिर को भी बनाए रखना चाहिए लेकिन हमें पहले अपना
पहला मंदिर बनाए रखना चाहिए। कहे कि मंदिर के माध्यम से हम सर्वशक्तिवान की प्रार्थना करते हैं। तो का समझे आज से का करिएगा, समझ गए ना, खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना। जौन समय हम गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं उही समय परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। माना कि फूल की सुंदरता पंखुड़ियों से होती है, परंतु यदि फूल की धुरी ही खराब हो जाए तो पंखुड़ियां टिक नहीं पाएगी। इसी प्रकार हमारा जीवन का विभिन्न संबंध संपर्क जीवन रूपी पुष्प की सुंदर पंखुड़ियां हैं, परंतु ये सब आपके जुड़ी है। यदि आप संपूर्ण संतुष्ट व स्वस्थ नहीं तो ये सब भी मुरझा जाएगी। अतः जीवन से सब अंगों को संवारने से पहले स्वयं का वास्तविक रूप संवारना बहुत आवश्यक है। ये सही है कि जरूरतें इंसान को एक दूसरे से जोड़ के रखती है, लेकिन जब तक आपस में व्यवहारिक सरलता सहजता नहीं होती, जरूरतें भी संबंध की पकड़ को ढीली कर देती है। लाइफ में हर समस्या के अंदर उपहार अवश्य होता है, इसलिए कभी समस्या का सामना भी करना पड़े तो निराश नहीं होना चाहिए। का पता जो अंत हम अपेक्षित कर रहे हो अंत उससे भी अधिक सुंदर हो। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के गुण का अनुभव करें और सदैव आशावादी रहें। हमें नेकी करने के बदले में कुछ पाने की आस नहीं रखना चाहिए, इससे आपका किया पुण्य घट जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात नेक कर्म करके दरिया में बहा देना, उसे किसी को पता ना चले। एक हाथ से दे तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। कहे कि जितना चुपचाप दिया जाए उतना ही अच्छा है, जिसे पता चलना होगा उसे खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा दान ही वास्तव में शुद्ध होता है, इससे ही दानी व्यक्ति प्रसन्नचित होता है। उसके अंदर एक फैलाव आता है, प्रेम से भरपूर हो जाता है, वास्तविक आनंद की महसूसता होती है। जबकि अधिकांशतः लोग कुछ देते हैं तो उसके पीछे सोचते हैं कि हमें प्रशंसा मिलेगी, नाम मनसान बढ़ेगा, प्रसिद्ध होंगे, लेकिन ये दान नहीं ना है। ये भाव हमें बोझ उत्पन्न करता है, अहंकार बढ़ाता है। परमात्मा पर पूर्ण भरोसा, अपने कर्मों पर विश्वास, सकारात्मक सोच के साथ सदैव खुश रहना, ये सारी बातें आपकी आंतरिक ऊर्जा को निरंतर गतिशील और बढ़ावा देती है। तो क्या करिएगा, जान गए ना। चलिए ही बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताती है। सुनिएगा गीत, छोटा सा विराम ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।

0: जल शक्ति है, जल जीवन है, जल है तो कल है। आइए सुनते हैं रेडियो मधुबन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कहते हैं।
1: सामान्यतः हमारे परिवारों में क्या होता है, कोई बच्चा अगर एक्सट्रावेगेंट हो जाता है तो बहुत सारा खर्चा करने लगता है, तो क्या कहते हैं कि जो है पैसे को पानी की तरह बाहर है, मतलब पानी को हमने ऐसा मान लिया है कि इसका कोई मोल नहीं है। अब हमको इस मिथक को तोड़ करके समाज के मन में इस बात को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पानी को पैसे की तरह बचा करके काम में लेना है। और अगर हम इसके लिए कामयाब हो जाएंगे तो हमारे देश में जितने प्रकृति ने संसाधन दिए हैं आने वाले कई शताब्दियों तक हम देश को जल समृद्ध बनाए रख सकें।
0: रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे थे जल है तो जीवन है, जल बचाएं जीवन बचाएं।
2: देखिए भाई, जिंदगी के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो, कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। और जब ऐसा आप करिएगा तो देखिएगा अपने आप रास्ते खुलते हैं कि नहीं। ये एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोनो तैयार नहीं है। हमें ये बात पर ध्यान देकर पड़ेगा। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं है। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए ये कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को। कितनी अच्छी बात है ना, चिंता इंसान को जीते जी जलाती है और चिता तो कहती है कि मैं मुर्दों को जलाती हूँ और तू जिंदों को। किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में। कहानी तो एक दिन सभी को बनना ही है, जब चले जाएंगे तो कहानी ही ना बन जाएगी, और कहाँ याद करेंगे लोग। जैसे कहानी में कोई पात्र को याद करते हैं, ऐसे कभी कभार आपको याद करेंगे। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। बड़ा हुआ तो का हुआ, जैसे पेन खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा पर काहे में है, आपकी लंबाई चौड़ाई में नहीं, विनम्रता में। समय बहरा है कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। दिल से साफ रहोगे तो बहुत लोगों के खास रहोगे, ये बात भी बहुत पते की है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी जरूरी है। कई बार बहुत सच्चाई से भी का हो जाता है, मन उदास हो जाता है। कभी कभी गलत फहमी भी जी लिया करिएगा भाई, वो भी बहुत सुख देती है। सूर्योदय की हर्षित बेला पर आपको सभी को हम बहुत याद करते हैं और कहते हैं, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन में कुछ ऐसा ही है, समझ गए ना। एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है, ये बात को भी याद रख लीजिएगा, नहीं तो छोटी छोटी बात में उबलते पानी की तरह भाप बन के उड़ गए। बस जिंदगी तो, और चाहेंगे ही लोग भी चाहेंगे कि ऐसी आप बलबला जाएं और हवा बन के भाप बन के उड़ जाएं। धैर्यता, शांति, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, काहे कि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है ना तो प्रार्थना। हमेशा खुश रहा करिए, काहे कि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं दिल से होता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जीवन का दस्तूर है और हर कोई इसका मुक्त भोगी है। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड, बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड। आजकल हमारी जिंदगी कुछ ऐसी ही चल रही है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके हर तकलीफों का ब्रह्मास्त्र है। जीवन एक विद्यालय है, इसमें कठिनाइयां, परीक्षा और समय शिक्षक का काम करते हैं। तो भैया, परीक्षा में पास होए का है तो वो तो समझ के जीना होगा। अच्छे जरूर बनिए, लेकिन साबित करने में अपना समय मत गवाइए। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए कि नहीं? कहे कि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाए के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग पूछ ही लेते हैं, है कि नहीं? दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो। कहे कि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अभी उत्तम लोग संकट आए तो भी शुरू किया हुआ काम नहीं छोड़ते। आपका जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए परीक्षाएं आएगी, लेकिन आप उन परीक्षाओं को देखकर अपना काम, अपना लक्ष्य मत छोड़िए। और हमेशा याद रखिए, क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। इससे बचिएगा और जितना बचिएगा उतना अच्छा रहेगा। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या फिर रिश्ता। ये कौन कह रहा पता है? अब्दुल कलाम जी कहे रहे, जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। आपको तय करना है क्या करे का है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। खुपरिया में कोनो बात हो गई होगी छोटी मोटी, लेकिन बार बार वही याद कर करके आपका सामने समस्या बना लेता है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। इच्छाओं को कम कर दीजिए, जिंदगी वैसे ही हल्की है। इच्छा ही तो इंसान को अच्छा नहीं बनने देता, और ही चाहिए और ही चाहिए और ही चाहिए। अरे चुपचाप बैठ जाइए ना, भगवान जौन दिया उसमें संतुष्ट रहिए, अपने आप जीवन में शांति रहेगी। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, देखिएगा भाई अपने आप आपकी जिंदगी में हर कुछ वैसा ही घटित होगा जैसे आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए फिर जो कहा कि इन बातों को जरूर याद रखिएगा। छोटी छोटी बात कहते हैं, लेकिन आप सब तो समझते हैं ना इन छोटी बातों में कितना गहरा अर्थ होता है। और जो इस बात को समझ ले तो उसने सब कुछ समझ लिया।

0: जिसने सब कुछ समझ लिया तो अपने आप जीवन उसका तो बेहतर हुई भी करेगा ना। और यही तो पर्व पंडितान आप सबके लिए दुआएं करती है। तो देखिए भाई, जब भी कोई समस्या आए तो ये तीन काम करें। समस्या का सामना करें, उससे लड़ो और समस्या को समाप्त करो। आत्मशक्ति पर विश्वास करें और आप ये कर सकते हैं। मन कमजोर तो परिस्थिति समस्या, मन कमजोर तो परिस्थिति समस्या, मन स्थिर तो परिस्थिति चुनौती, और मन मजबूत तो परिस्थिति अवसर। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोनो बाहर से खूबसूरत आता है तो कोई भीतर से। इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर करके थक जाए और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुरा कर बोले आपसे मिलकर खुशी हुई है कि नहीं। यदि फूल को भगवान के गले की माला बनना है तो उसे अपने पेट में सुई की नोक से छेद करवाना ही पड़ेगा। सोने के टुकड़े को यदि भगवान के गले का हार बनना है तो उसे भट्टी में गलना ही पड़ेगा। और चंदन को भगवान के माथे पर लगना है तो उसे पत्थर पर घिसना ही पड़ेगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य को धर्म पर चलना है तो उसे कठिनाइयां सहते हुए त्याग के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। अर्थात हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना या सहन भी करना पड़ेगा। ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हर पल उनको याद करें। मैं आपको कभी भूलो नहीं, ये वही कमाई है बंदे जो काम तेरे आएगी, जन्म जन्म की भटकन से तुमको मुक्त कराएगी। मुश्किल हो हालात तो याद तुम आते हो, मुश्किल हो हालात तो याद तुम आते हो, मन हो उदास तो याद तुम आते हो। यूं तो जिंदगी में अपनों की बहुत भीड़ है बाबा, पर जब जरूरत पड़ती है तो साथ तुम ही निभाते हो। ऐसा परमात्मा जी को बोलिए मन की बात, जब कहीं अब ऐसी बात आए तो, भावना आए तो प्रकट करिए। परमात्मा को अच्छा लगता है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ऐसा अनुभव कहता है। अच्छे जीवन का आकलन ना ही अंग्रेजी बोलने से, ना ही अच्छे कपड़े पहनने से और ना ही ठाट बाट वाली जीवन शैली से होता है, बल्कि अच्छे जीवन का आकलन तो ये है कि कितने लोगों के चेहरे खिलते हैं जब वो आपका नाम सुनते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बात है लेकिन ही जीवन को हमारे श्रेष्ठ बनाती है। त्याग और नाश ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वयं की इच्छा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ को छोड़ना त्याग, तथा स्वयं की इच्छा ना होते हुए किसी वस्तु अथवा पदार्थ का छूट जाना नाश कहलाता है। प्रकृति का अपना एक शाश्वत नियम है और वो यही कि मान पद प्रतिष्ठा वैभव कुछ भी और कहीं भी यहाँ शाश्वत नहीं रहता। ये दुनिया प्रकृति का नियम है, हर चीज परिवर्तन होती है। सूर्य सुबह अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उदय होता है और शाम होते होते उसका प्रकाश क्षीण होने लगता है, और दिन में प्रचंड प्रकाश फैलाने वाला वही सूर्य अस्तांचल में कहीं अपनी रश्मियों को छुपा लेता है। रात्रि को चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेरता है, मगर वो भी सुबह होते होते कहीं प्रकृति के उस विराट आंचल में छुप सा जाता है, सदा कुछ भी नहीं रहने वाला। इसलिए बांटना सीखिए, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, समय हो, खुशी हो, धन हो अथवा कोई अन्य वस्तु। जिन फलों को वृक्ष मारा बांटा नहीं जाता, जिन फलों को वृक्ष द्वारा बांटा नहीं जाता, एक समय उन फलों में अपने आप सड़न आने लगती है और उस सड़कर वृक्ष को भी दुर्गंध युक्त कर देते हैं। यही प्रकार समय आने पर प्रकृति द्वारा सब कुछ स्वतः ले लिया जाएगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप बांटकर अपने यश और कीर्ति की सुगंधि को बिखेरना चाहते हैं या संभाल कर संग्रह और आसक्ति की दुर्गंध को रखना चाहता है। आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसा चाहे। दो हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु दो हाथ जोड़कर करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। शांति एवं स्थिर दिमाग जीवन की प्रत्येक लड़ाई का ब्रह्मास्त्र है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर वो साफ नहीं तो चमकता चेहरा कौन काम का। होड़ करनी है तो संस्कारों की करो, फैशन का कहा है वो तो आती है जाती है। जो स्नेह हमें दूसरों से मिलता है वो हमारे चरित्र का ही एक तोहफा है। ज्ञान का मनन, चिंतन और ईश्वरीय सेवाएं ही हमारे पुण्य का खाता बढ़ाती हैं, जिससे संस्कारों में परिवर्तन के लिए हमें हिम्मत और उल्लास मिल जाता है और परिवर्तन संभव हो जाता है। कहते हैं कि जीवन में जो कुछ करो, जितना मर्जी धन खर्च करो, सबसे सहयोग लो, वो पर जीवन से मुसीबतें तब तक समाप्त नहीं होती जब तक हमारा स्वयं का अंदर व्यवस्थित नहीं है। काहे कि ध्यान रहे कि हमारे अंदर का अस्त व्यस्त होना ही इस जीवन की हर समस्या का मूल कारण है। इसलिए हमें सर्वप्रथम स्वयं को ही भीतर से व्यवस्थित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, गजब कृपा है आपकी परम परमेश्वर भगवान। हर नई सुबह नए जीवन के समान होती है, इसलिए बच्चा बनकर हर सुबह का मजा ले। दिन में एक ईमानदार नौजवान की तरह पूरी मेहनत से काम करें और सायंकाल में एक समझदार बुजुर्ग और शांत चित संत की भांति पूरे दिन में किए कर्मों का मनन करें। कहते हैं कि जन्म के समय मात्र सांसें होती हैं, नाम नहीं, और मृत्यु के समय केवल नाम होता है, सांसें नहीं। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ध्यान रहे कि अपनी सोच को ऊंचा करने मात्र से ही हर बड़ी चीज छोटी दिखने लग जाती है। काहे कि ऊंचाई से हर चीज छोटी लगती है। तो आइए हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाए, यही बात पर चलिए गीत सुन लेते, फिर और समय बचा तो बतियाएंगे।
1: है धर्म का मूल, पाप मूल है अभिमान। तुलसी दे आमत सोड़िए रे, जब लग घट में प्राण।

0: कितना मजबूत होगा वो इंसान जो अंदर से टूटकर भी दुनिया के सामने हंसता है ना बात। फिर से कहते हैं, मेहनत उसकी लाठी है, मजबूत उसकी काठी है। मेहनत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी काठी है, विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। जिनकी गैर मौजूदगी में हर मंजिल दूर है, जो आपके ख्वाबों को पूरा करता वो मजदूर है। क्यों ना आज से हम भी कड़ी मेहनत कर अपने और दूसरों के ख्वाबों को पूरा करें। भाषा मानव का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारी, हिम्मत से पतवार संभालो, फिर कैसे रहेगा दूर किनारा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा, हम रोए ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। कहते हैं कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर सफलता का कारण भी निर्विघ्न कोशिश ही होती है। ध्यान रहे कि दूसरों पर भरोसा करते समय होशियार रहिएगा, क्योंकि देखने में फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको महत्व आप दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोनो महत्व ही ना हो। कैसा है जिंदगी का तेरा ये फलसफा, एक इंसान के इस दुनिया में आने की खबर तो सबको पहले से ही हो जाती है, मगर जाने की खबर उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। इसलिए धन्यवाद करें उस सृष्टि रूपी रचनाकार परमात्मा का, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना ऐसे अद्भुत तरीके से की है कि हर इंसान अंतिम समय तक जीने की राह पर अग्रसर रहता है। कहते हैं कि एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। ध्यान रहे कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी। ध्यान रहे कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी भी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। इसलिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। चिंता संत के जीवन में भी होती है और चिंता संसारी के जीवन में भी होती है, मगर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क भी होता है, और वो ये कि संत परमार्थ के लिए चिंतित रहता है और संसारी स्वार्थ के लिए। संसारी स्वयं के लिए चिंतित रहता है तो संत समष्टि के लिए चिंतित रहता है। संत और संसारी के बीच का जो भेद होता है वो कर्मगत नहीं अपितु भावगत होता है। दोनों में बाह्य स्थिति का नहीं अपितु अंतः स्थिति का भेद होता है। संसारी भी क्रोध करता है और संत भी क्रोध करता है। संसारी लोभ करता है और संत में भी लोभ देखने को मिल जाता है। संसारी भी अर्जन करता है और संत भी अर्जन करता है, और तो और संसारी अगर संग्रह करता है तो संत भी संग्रह करता है, मगर दोनों में क्रिया भेद शून्य होने के बावजूद भी भाव में जमीन और आसमान जैसा अंतर निहित होता है। प्रकृति का नियम है कि खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही बाहर वापस निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। लेकिन कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिनों, हफ्तों, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। मनमानियां तो बचपन में होती थी जनाब, अब तो हर बात पर मन को ही मारना पड़ता है कि नहीं। अब अंत में यही कहेंगे, मीठा झूठ बोलने से लाख गुना बेहतर है कि कड़वा सच बोल दिया जाए। ऐसा करने पर हमें सच्चे दुश्मन भले ही मिल जाएंगे, परंतु झूठे दोस्तों से मुक्ति मिल जाएगी। पुरानी कहावत है कि जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से बेहतर है किसी ज्ञानी के साथ फर्श पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि क्रोध, पछतावे, चिंता और कुरन में अपना समय बर्बाद ना करें। इस जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है, परंतु यदि खुश और मस्त रहें तो इस जीवन में सुख भी अपार मिलते हैं। ये कड़वा सत्य है लेकिन सही भी है। जीवन में आजमा कर देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन की यात्रा आरामदायक हो तो अपेक्षाओं के सामान को कम करें, संतुष्ट मनि बन संतुष्टता का अनुभव करें। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। इतनी इस बात याद रख लीजिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। रिश्ता चाहे कोई हो, एक बात पक्की है, जिनसे हम आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। और जब ये बात समझ आ जाएगी तो आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाहकर भी आपको आपके लक्ष्य से दूर ना कर पाए। दवा सिर्फ दवा की बोतलों और गोलियों में नहीं होती। व्यायाम दवा है, सुबह की सैर दवा है, उपवास दवा है, चिकित्सा दवा है, परिवार के साथ भोजन करना दवा है, हंसी और हास्य भी दवा है, गहरी नींद भी एक दवा है, एक दोस्त का साथ मिल जाना दवा है, हमेशा खुश रहना ही दवा है, सकारात्मकता ही दवा है, नियमित योग करना भी दवा है, कुछ मामलों में मौन और एकांत दवा है, और एक अच्छा दोस्त एक अचूक दवा की दुकान है। चलिए ही के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अरे लाग्यो जेठ आषाढ़ कवरते जाओ
1: राम राम भाई,
0: तो
1: राम राम।
0: लाग्यो सावण बाद वो राम राम भाई कंचन राम राम आओ भाई
1: गीत
0: आओ।
1: पूरो हो गयो।
0: अरे गीत तो चलता रहे
1: मने लाग रहे है कि जब तक जेठ है चाल रहे है जब तक सारे जेठ के महीना के गीत चाल सी
0: बिल्कुल कंचन मन तो जसो महीनो लागे वणी महीना को यो लागे अणी को गीत यो है अणी को गीत यो है तो मैं दोहराती रहूं।
1: खैर जीवन एक आनंद में रहे और मैं ज्ञान कहूं कि ज्ञान प्रकृति में विभिन्न रंग है वो विभिन्न रंग आपने भी श्रोता बंधुओं की जीवन में वे एंजॉय कर सका।
0: हाँ एंजॉय कर सका और गीत एडो माध्यम है कंचन कि मन खुश हो जावे प्रसन्न हो जावे।
1: बस बात मत पूछो और आज ही नहीं आज तो बल्कि ज्ञान कहे कि लोक गीता की फिर भी कमी आ गई है आपने तो पुरखा भी आनंद का एक बहुत बड़ा माध्यम ही गीत में चुनता।
0: हाँ बिल्कुल अरे कहीं भी बात कहनी वेती ना तो गीत का माध्यम हो कहता पर चलो अणी बात ने आपा पछे करा अपना सगला सॉरी अपना सगला श्रोता बंदोरो स्वागत करा। हाँ गावरी बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: तो कंचन जैसे ना अपने गीत की बात छिड़ी तो मैंने पारसिया याद आ रही।
1: सुना भी
0: पारसिया याद आ रही कि पारसी का माध्यम जमाईराज ने कतरी चीजा पूछ लेता जमाईराज ससुर जी ने पूछ लेता पहली मर्यादा गणी होती।
1: ओहो
0: प्रत्यक्ष रूप में हाँ
1: आड़ एक
0: आड़ ही
1: सीधे सीधे तो कोई बात ही नहीं होती और आपनो राजस्थानी कल्चर बात कह देना और बहुत होले होले से काई बात है तो मर्यादा और मान की जट बात है बट है राजस्थान में अव्वल है।
0: आप गीत का माध्यम बोलते और सामने वालों किने सुना रहे वो समझ जातो और सामने वाला के कई जवाब देनो वो भी दे देतो गीत का माध्यम से। तो देख मने अटे एक गीत याद आ रहे हो एक सेठ जी है ठीक है घना कंजूस है
1: कंजूस
0: सेठ सेठानी दो ही कंजूस
1: ओ
0: ठीक है सेठ जी के किराना की दुकान है सेठानी पड़ोस में के बच्चों हुओ जो हाँ। सूरज पूजा हो रही तो गीत गावागी
1: गीत गावगे
0: अबे अटीनू सेठ जी के बेसन छा रहे हो
1: हाँ।
0: अबे देखो घरा परो जाई तो आपने रुपया की कमाई मारी जाए तो चलो घरू लेना हूँ दुकान पे खत्म हो गयो जो घर
1: हाँ।
0: आया तो ठा पड़ी कि सेठानी जी तो पड़ोस में गीत गावा गया
1: अबे कौन
0: अबे हाँ अबे कई करा सेठ जी के वे अगर वे ऊटन आ जाये तो पता से रह जाये पहली पता सा बांटता हा जदी बचे सेठ जी क्यों अबे कई करान कई नहीं कई तो उपाय करनो पड़ी तो सेठ जी बटू आवाज दे सुनो कागा सुनो ओ सवा सेठानी ने तो बोल जो तो सेठानी का आवाज गी के तो सेठ जी की आवाज लाग रही
1: सेठ जी की आवाज लाग
0: तो सेठानी जी विचार की दो सेठ जी कई कई काम आया पर हाँ। अबे है गीता को एंड
1: और एंड को उठो मतलब आपनो बस ये बात नहीं भाई मैं महिला हुआ के वास्ते घनी अच्छी तरह पहचान
0: बिल्कुल तो या तो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: काकड़ी मतीरा आपी खावा चला ए, काकड़ी मतीरा आपी खावा चला ए, सखीरी सखीरी सखीरी खेता मेले चालू आपी धूम मचावा रे, सखीरी खेता मेले चालू आपी धूम मचावा रे।
2: वाह वाह वाह भाई, गर्मी और वटे बात कर रही है तू, खेता मचान खीरा और काकड़ी खावा की।
3: हाँ बिल्कुल, तो कंचन चलो अपने सगला श्रोता बंधुओं पाछो स्वागत करा है घावरी बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
2: 107.8 एफएम,
3: सुनता रहो
2: मुस्कुराता रहो।
3: तो भाई देखो, आप गर्मी की बात कर रहा और गर्मी के सीजन में के तो सुबह सुबह खेत में जावा के शाम को जावा तो घणो अच्छो लागे,
2: घणो अच्छो लागे।
3: एक तो ठंडी ठंडी हवा चले और एक कहिए कि खेत में ताजा चीज तोड़ी खादी छुट्टी।
2: बस पूरी मौसम में भाई ज्ञान मान ले कि जटे पानी है नहीं बठे तो खेता के अंदर खीरा काकड़ी लागेड़ा ही होवे।
3: हां बिल्कुल,
2: खीरा तरबूज है।
3: हां तो एड़ी चीजा देखो, आपा खेत मु घरे तोड़न लान खावा और खेत में बैठन खावा वणी को भी स्वाद तू देख जे घणो फर्क आ जावे,
2: घणो फर्क आ जावे। और देख प्रकृति में मैं ध्यान कहूं कि वे प्रकृति भी काई प्लानिंग सु चले,
3: वो तो है।
2: अबे गर्मी है तो देखो खीरा आ रहा है बाजार में।
3: हाँ।
2: जो पानी को भंडार है,
3: बिल्कुल
2: जी में पानी पानी भरेड़ो है।
3: खरबूजा है,
2: खरबूजा है, तरबूज है।
3: हाँ।
2: जी में 90% पानी है,
3: बिल्कुल
2: है। तो ये सब आपा खावा तो आपने पानी की तो कमी हो वही को नहीं,
3: कमी भी नहीं होवे, स्वास्थ्य भी अपना आछू रहे। और देख गर्मी में कहिए कि ज्यादा अपने भोजन नहीं भावे।
2: हाँ वो बात बिल्कुल सही है।
3: तो एक आधी रोटी खा ला, ये चीजा खा ला ना, जितना आप काम हो जावे,
2: बस पेट भरो भरो रहो।
3: हाँ पेट भरो भरो रहो और ऐसे ठंडी ठंडी और पानी वाली चीजें लेवा की इच्छा हो।
2: बस तो वही मैं कहूँ कि देखो प्रकृति भी क्या, अभी गर्मी पड़ रही है तो पानी से भरपूर फ्रूट्स मिल रहा है।
3: देखो प्रकृति के तो कमाल ही है। हाँ। सीजन का अनुसार फल देवे,
2: सीजन के अनुसार की भी कई खाने हो।
3: हाँ।
2: खावा को टाइम
3: यही सियालो वे चौमास वे फ्रूटी चेंज हो जावे। हाँ।
2: तो अभी सियाला में तो तरबूज खानो पसंद कर सी
3: ये वो क्या है, तासीर का अनुसार, देखो
2: तासीर के अनुसार। और हाँ। देख तरबूज का ये मीठो भी जदी हो है। पुराना लोग कहता है कि अबे लू चालवा लाग गई तो तरबूज और खरबूजा मीठा हो गया।
3: हाँ
2: तो जान की गर्मी पड़े नी तो वे प्राकृतिक रूप से मीठा हुआ है।
3: बिल्कुल,
2: अभी तो ठीक है कि केमिकल सुकाई का ही नहीं हो रही हो तू भी।
3: हाँ, अभी तो 12 ही महीना सब चीजा मिल रही कंचन।
2: हाँ।
3: पर फिर भी आपा आटे यही के वो छावा सीजनेबल चीज ही खानी।
2: हाँ सीजनेबल चीज का ही है कि बिना किसी केमिकल सु, बिना किसी पेप्टिसाइड सु, बिल्कुल एकदम प्राकृतिक तरीके से पकेड़ी जो चीज आपने लाभ करे नी, लाभ भी करे सस्तो भी पड़े,
3: सस्तो भी पड़े। ऑफ सीजन में लो यही तरबूज 100-100 रुपए किलो भेजा यहाँ करे,
2: वही तो ये वास्ते आपने मौसम के अनुसार खानी चाहिए। और नई पीढ़ी ने भी वही संदेश है अपना कि भाई हाँ बजाय आकर्षण के कि भाई आप बेचाल मैं सीजन से हट के कोई चीज खा रही हूँ, अरे थे खा रहे हो पिया भी ज्यादा दे रहे हो और साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी खिलवाड़ कर रहे हो।
3: अरे कंचन बात पे मैंने बात याद आ रही कि मैं दो छोरिया ने

0: की, मॉडर्न जमाना की, ठीक है, दो ही पनियोड़ी ही, पर आजकल देखो पनीर नहीं पनीर था ही नहीं पड़े भाई आजकल, पेरवेस चेंज हो
1: गया,
0: फल फ्रूट खरीद रहे है सब ऑफ सीजन का, एडी गर्मी में भी ऑफ सीजन का फ्रूट, और सीजन को एक भी फ्रूट नहीं खरीदा।
1: अरे भी वठे कही है, स्टेटस को मान लो,
0: बस वही बात है, एक दूसरी सखी भी ने पूछो कि तू सीजन का अनुसार तो फ्रूट ही नहीं खरीद रही, और सब बिना सीजन को ही तू खरीद रही, तो कहे भाई स्टेटस को मामलो है, ये तो बनवा एड़ा सस्ता है, अब एप्पल है 200 रुपया किलो, अनार है 250 रुपया किलो, तो यहाँ की वैल्यू है, तो सीजनेबल चीज का ही खानी। मैंने सुन रही वे बात, मैंने आश्चर्य हुआ कि ये पड़ोड़ी छोरिया भी एडी गड़बड़ करे, भाई था सस्तो महंगो क्यों देखो, ज्यादा पैसा है तो कि मैं भी सदुपयोग करो भी को
1: चीजें मैं सदुपयोग कर रही हूँ,
0: पर फायदा तो वो ही करी जो आप सीजनेबल खाओ, तो मौसम का अनुसार चीज नहीं खाओ तो बाकी सोच पे मैंने आश्चर्य
1: हुआ, तो भी न्यूट्रिशन कतरो कम हो जाए। अरे भाई आपने विज्ञान तो बतावा है कि भाई एक घंटा के अंदर ही कोई चीज आप वो पेड़ से अलग कर दिया ना, तो काफी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाए।
0: बोलो,
1: और तो आप स्टोरेज करा खाली का ये कई बार तो आप रफेज काम में ले रहा वा चीज ने, खाली एक भौतिक रूप से काम में ले रहे वा को न्यूट्रिशन तो टोटली जीरो पा आ जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो पीसा भी ज्यादा देनो आ रहे,
0: हाँ, और वे के चेहरा की प्रतिक्रिया देख उन्होंने एडो लागियो कि मैंने यूं सस्ती चीजें हूं जाने एलर्जी वे,
1: हाँ,
0: जबकि वह मौसमी फल है वही फायदो करे, पर देखो अपनी अपनी सोच है,
1: सोच है, सोच है,
0: वहां मैं भी देख रही तो मैं भी क्यों अच्छा या कि एडी सोच है, पर या की सोच आप नहीं बदल सका,
1: खैर बचपन मान सका आप एक अनुभव है,
0: हाँ,
1: तने और मने अनुभव है बेटाबर है,
0: बिल्कुल, और कह रहे हैं कि मेहमान आई काले,
1: हाँ,
0: तो मेहमान ने ये रखो गई
1: स्टेटस क्या दिखाओ,
0: हाँ, तो भाई मेहमान आओ चाहे कोई भी हो, मेहमान भी जब खुश हो कि आपने हाँ भाई मौसमी फल है,
1: और देखो आत्मिक रूप से अगर आप मेहमान ने भी सच्चे रूप में प्यार कर रहा है तो कहिए भाई वाने भी अठे सस्ते और महंगे की बात नहीं है, स्वास्थ्य वर्धक चीज देवा ना,
0: बस आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो रहा,
1: हाँ,
0: तो सबके हेल्थ को ध्यान रखा,
1: सही बात है, बजाय आकर्षण के आकर्षण थोड़ी परोसनो, हाँ, मेहमान क्या कहे,
0: पर चलो आपा अटे खैर आपा की क्या आलोचना नहीं करा, एक सोच है जो आपा सबने बताई, हाँ कि भाई यदि सोच है तो अच्छी बात है, लेकिन आप सोच ने बदलो मौसमी फल खाओ,
1: मौसम
0: वहाँ कोई सीजन आए यदि आप प्लान खा जो, क्योंकि अब गर्मी है और गर्मी में पानी वाली चीजें ही फायदो करे,
1: मतलब प्रकृति भी आगे हाथ बढ़ान देवे,
0: हाँ,
1: कि एक खाओ अब थे,
0: बिल्कुल,
1: या थोड़ा समय
0: थोड़ा समय जाए और देखो जामुन ही जामुन,
1: बस
0: खजूरिया खजूरिया लागी,
1: खजूरे खजूरो,
0: तो सीजन का अनुसार ही फल देवे ना प्रकृति, तो भी कोई इशारा ने समझो,
1: समझो सही बात है,
0: और देख भाई कंचन मौसमी फल खावा तो आप ये सब बीमारियों बचा रहे, क्योंकि गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो या कोई भी ऋतु हो, इंसान को काम कभी नहीं रुके,
1: हाँ सो तो है,
0: वो दौड़ते ही रहे चलते ही रहे, भी को काम वो करी है, ठीक है, कोई भी काम नहीं रुके, पर स्वास्थ्य को ध्यान अपना हाथ में,
1: हाँ आप थोड़ा ध्यान दे ले, तो भाई जो दवा दारू पर अपना पैसा लग गए या स्वास्थ्य ने जो हानि हुआ है अपन बच सका,
0: बिल्कुल, और बच्चा भी बचे, आपा खावा बच्चा ने खिलावा तो बच्चा भी वे समझ आई कि हाँ अणी मौसम में यो फल खाना,
1: यो फल खानो है,
0: आज आपा कई भी बात करा तो आपा प्रैक्टिकल आपने साथ में जो भी वही बात आपा करा,
1: बात करा, और कठे कठे तो कहिए मैं यान भी देखी हो, कठे में गई 24-25 साल को एक टाबर पूछ रहे हो, बाकी वहां पूछ रही भाई कई सब्जी बनाऊ, गवार फली बनाऊं या वो कई चमड़ा की फली बनाऊं, वो बोलियो ये दोनों सब्जी मैंने तो ठाई को नहीं, कौन सी सब्जी हो, गवार फली कौन और चमड़ा फली कौन, तो ज्ञान की नई पीढ़ी की स्थिति है 24-25 साल का टापर पूछ रहे,
0: बोलो
1: हैं वठे कहिए कि बाकी माता जी बना दिन, और मैंने भी वठे रवा को अवसर मिलो जब मैं देखी है सारी प्रैक्टिकल में चीजा, तो वो बड़े चटकारे ले खा रहे हो,
0: हाँ नई साग लागी ना,
1: नई साग लागी, हाँ। अच्छा मैं पूछू कि आज ये सब्जी गवार की फली भी है और चमड़ा की फली भी है साथ ही मिक्स कर बनाई,
0: हाँ।
1: और इनमें कतरो रफेज है हार्ट के वास्ते ब्लड प्रेशर के वास्ते, तो वो काई कहो माता जी थे मने अतरा दिन में क्यों ही या से परिचय करायो,
0: दो सब्जी बना दो थोड़ी थोड़ी तो बच्चों खा रहे हो नहीं खा रहे हो आप ध्यान रखो
1: बस बस
0: तो अपने आप ही खाए। और कंचन मन्ने तो अटे भात याद आ रही कतरा ही फल जो पहला मलता वे तो बिल्कुल ही बंद हो गया।
1: हाँ भाई बिल्कुल सही।
0: अब देखो रायना बहुत कम देखवा मिले टिमरू देखवा ही नहीं मिले
1: तो गायब ही हो गया
0: खतरा फल गायब हो गया
1: डांसरा फालसा रानी मेवा
0: वही तो। और जो है मौसमी फल वे भी आप नहीं लावा तो यहाँ क्यों बच्चा जैसे गवार फली के साग की ठाई नहीं पड़ी के कई हो वे वही स्थिति आ जाए
1: वही स्थिति आ जाए।
0: तो आप सबने रेडियो का माध्यम यही मैसेज देवा कि भाई मौसमी फल लाओ मौसमी सब्जियां लाओ तो बच्चा को भी नॉलेज बढ़ी और आप सब स्वस्थ रहे। वो
1: अभी देखे तू मोटी मोटी बात करूं तो ठेला पे का ये मोटी मोटी सब्जियां मिले अरे अपना सहतूत नहीं देखा पूरी गर्मी बोलो
0: सहतूत देखो ही नहीं मिल रहा कटे कावे एक आधी बारन खत्म
1: बस। तो अभी यहाँ बता कि भाई नई पीढ़ी ने का ही आप परोसा
0: सही है वो पचे एक इतिहास बनन रह जावे कहानियां जो आप कहवा वे पचे कहानी बन जावे।
1: तो यहाँ के वृक्ष लगावा पे भी ध्यान देना चाहिए अपनी संस्कृति और ये चीजा यहाँ से संचित रही।
0: बिल्कुल पौधा का प्रति तो आजकल ज्यादातर लोगों को प्रेम बढ़ रहे है। और खेरापा और भी बात करा पर बस यो गर्मी को मौसम है ध्यान रख जो सावधानी रख जो और भाई तू भी ध्यान उजाजे
1: बिल्कुल
0: आप जे भाई राम राम
1: राम राम भाई।
0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो आइए, कार्यक्रम सफलता का आधार मूल्य शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और पिछले एपिसोड में उन्होंने सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है, इस विषय को लेकर बहुत ही अच्छी बातें शेयर किया था। तो आज हम लोग चाहेंगे कि हम सफलता क्यों चाहते हैं। आज का हमारा जो विषय है, जो आप सभी को भी लग रहा होगा कि ये ऐसा कैसा विषय है ना, हम सफलता क्यों चाहते हैं, सभी सफल बनना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो चाहत है, क्या रीजन है कि हम सफल होना चाहते हैं या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके इर्द गिर्द हम लोग बातचीत करेंगे। और आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, एक नया जो है आयाम आपको मिलने वाला है आज के इस विषय को सुनने के बाद। तो आइए राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा में।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया।
0: चलिए, मेरा सवाल वही रहेगा कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, इस विषय पे क्यों बोलना चाहते हैं आप?
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, चाहना ही क्यों है।
0: हाँ,
1: ये इच्छा ही क्यों है कि हम सफल ही हों। तो इसके पीछे पहले हम थोड़ा, जैसे हमने हमारा जो पहला एपिसोड हुआ
0: जी जी जी जी,
1: उसमें हमने चर्चा की थी, तो आज भी थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं।
0: हाँ,
1: ताकि हम उसको क्लियर कर सकें और हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको समझ लग सके और उसको हमारे पिछले एपिसोड के साथ वो लिंक कर सके।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं।
0: जी जी जी,
1: जैसे फॉर एग्जाम्पल, सफलता क्यों चाहते हैं लोग, वैसे दुनिया में देखते हैं कि लोग सफल हैं। एक बहुत बड़ा जो ड्रीम हमारे आजकल के यूथ्स के मन में है, या जो मीडिया में दिखाया जाता है, नॉर्मली एड्स में दिखाते हैं, कोई सफल व्यक्ति होता है तो दिखाते हैं उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी होती, कोट पैंट पहना होता है, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, बहुत बड़ा घर होता है, बंगला होता है, वो ऐसे चलता है जैसे पता नहीं उसको दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति वही हो। तो बच्चों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में, यूथ्स के मन में ये होता है कि सफलता माना कि बहुत सारा मेरे पास धन हो जाए, पैसा हो जाए, मैं पैसा कमा लूंगा, या कोई मैं जो बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या जो उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, वो मैं बन जाऊंगा। या फिर तीसरा एक तरह का हम कहें, जब हमने स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में जाकर के पूछा तो कहते हैं हम इसलिए सफल होना चाहते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स का नाम होगा, मान होगा, शान होगा, या हमारा भी मान शान होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई अगर आपके पास धन होगा तो क्या होगा, आप कहते हैं बहुत बड़ा पैसा होगा तो बहुत बड़ी गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा उससे क्या होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो फिर हम आराम से रहेंगे, घर होगा तो आराम से रहेंगे, बहुत बड़ा घर होगा तो अच्छा आराम से रहेंगे तो उससे क्या होगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अच्छा उससे हमें शांति रहेगी, खुशी रहेगी और संतुष्टता रहेगी, अच्छा खुशी रहेगी, शांति रहेगी, संतुष्टता रहेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अल्टीमेटली उनसे हम जब ये सवाल पूछते हैं कि अगर आप किसी प्रोफेशन में भी हो तो इंजीनियर बन जाओगे तो फिर क्या, सपोज वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, अगर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगी बहुत अच्छी मेरे को, मैं बहुत अच्छी जॉब करूंगा, बहुत अच्छी से क्या मतलब है, जिसमें ज्यादा पैसे हो, ज्यादा पैकेज मिले, 40 लाख, 50 लाख, तो ज्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही बात कि बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, माँ बाप आराम से रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर हम आराम से रहेंगे, आराम से क्या मतलब है, खुशी होगी, शांति होगी, संतुष्टता होगी। तो ऐसे ही जब उनको पूछते हैं, माँ बाप को इज्जत मिलेगी तो फिर क्या होगा, हमें भी इज्जत मिलेगी ना, अच्छा इज्जत मिलेगी तो क्या होगा, स्वाभिमान होगा, स्वाभिमान से क्या मिलता है, स्वाभिमान से अपने आप को संतुष्टता मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो अल्टीमेटली सफलता क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम खुशी चाहते हैं,
0: शांति चाहते,
1: प्यार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आ रही है कि हम बाहर से चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम दूसरों से चाहते हैं, हम चाहते हैं पैसे से हमको खुशी मिल जाए, हम चाहते हैं हमें प्रोफेशन से खुशी मिल जाए,
0: बिल्कुल
1: हम चाहते हैं कि दूसरे हमें दें। जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा या मेरा बड़ा घर होगा, जैसे कई बच्चों ने स्टूडेंट्स ने हमें जवाब दिया कॉलेज में कि अपने लिए वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, बट दे हैव ए ड्रीम फॉर द पेरेंट्स, अपने माँ बाप के लिए कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, तो वो इज्जत चाहते हैं।
0: आई थिंक मुझे लगता है राजेश जी आपने जो बात छेड़ी है और इस पर लग रहा है कि हम लोग अगर अल्टीमेटली हम खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन बात हो जाती है उसको, उसका जो मेन सोर्स है उसको ना जानकर हम आधारित हो रहे हैं, डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। पैसा होगा तो ये होगा, फिर ये करने से ये होगा, माना ऑलवेज हम लोग डिपेंड कर रहे हैं बाहर की चीजों से,
1: राइट
0: और हमेशा हमारी जो चाहना है वो अंदर की है, शांति प्रेम की,
1: राइट,
0: जो कहीं बिकती नहीं है और मिलती नहीं है बाहर,
1: राइट।
0: तो शायद यहां ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोग जो है सफल होने का सही अर्थ को समझ सकते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस,
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्र अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये जो विषय है, मैंने कहा था कि आपको एक अंतर्दृष्टि मिल जाएगा, एक इनसाइट की तरफ आपका जो है फोकस राजेश जी आपको करना चाहते हैं, तो शायद आप उस फोकस की तरफ ध्यान देंगे। अगर आप अपना टारगेट क्या है, आपको क्या चाहिए, अगर इस पर आप अगर फोकस करेंगे तो वो चीजें तो बाहर से मिलनी ही नहीं है। फिर इसका मतलब हमारा जो हम जो सफल होना चाहते हैं, चाहे पैसा कमा लिया, गाड़ी बंगलो वगैरह सब कुछ आ गया, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं फिर भी हमारा जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होगा,
1: राइट right.
0: तो उस पर्पस तक पहुंचने के लिए हमें जो है कुछ और चीजें करनी है, जो राजेश जी ही शायद बताने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग अब सफलता क्यों चाहते हैं ये तो आप समझ गए होंगे, इसके पीछे का जो मोटो है वो आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, राजेश जी सुनाइए।
1: तो हमने सफलता को जैसे हमने अभी जाना कि खुशी है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, संतुष्टता है, हम ये चाहते हैं, लेकिन हम बाहरी रूप से चाहते हैं और हमने इसको कंडीशन्ड कर दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कंडीशन माना ये होगा तो ये होगा, जैसे हमने कल माइंडसेट की बात की थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि मैं अगर 1000 रुपया कमाऊंगा तो ही मैं खुश होऊंगा, लेकिन हमने देखा था कि एक 210 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी जिसने 800 रुपये कमाया उससे क्या है, वो खुश है। तो हमने कंडीशन कर दिया है अपने आप को,
0: बिल्कुल,
1: कि मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो ही मैं खुश हो सकता हूं, अगर मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा तो मैं खुश नहीं हो सकता। कंडीशन कर दी, शर्त रख दी हमने कि ये होगा तो ही ये होगा, लेकिन ये भी माइंडसेट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है, तो फिर सच्ची शांति, खुशी, आनंद है कहां? बाहर तो हम भटकते ही रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: अगर आज ये है तो कल ये है, परसों ये, हमारी नई नई कंडीशंस बनती रहती हैं। अगर आज आपने जैसे मान लिया 12th के स्टूडेंट है, आपने डिसाइड किया 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होऊंगा, नहीं आए तो आप दुखी, आ गए तो आप खुशी, उसके बाद आपने नई एक माइंड सेट कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे को यही IIT में एडमिशन चाहिए
0: और यही जगह पे चाहिए
1: और यही, और उस जगह पे नहीं मिला मेरे को, किसी छोटे से कॉलेज में मिल गया तो मैं दुखी। हमने तो यहां तक देखा है कि स्टूडेंट सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, अरे मेरा तो लाइफ का ड्रीम ये था, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि ड्रीम मेरा क्या है, क्या मुझे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या अंदर जो मुझे चाहिए, क्योंकि बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो भी क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन अगर छोटे में भी मिल गया तो खुशी शांति वो कहां है, प्रश्न यही आता है ना? क्या बड़े कॉलेज में, ज्यादा पैसे में, बड़े घर में खुशी शांति आनंद है या कहीं और है? तो आजकल के स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को असफल समझते हैं, असफल इन द सेंस के मान लीजिए इंजीनियर नहीं बना, वो तो उसका मीन्स है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: खुशी शांति आनंद प्राप्त करने का जो आपने माइंडसेट कर लिया था वो तो उसका मीन्स है, लेकिन अल्टीमेट हमारा एम नहीं है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारा एम इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, अगर मैंने वो नहीं प्राप्त किया तो मैं क्या हूं, असफल हो गया। लेकिन सफलता वो नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आज लोग पैसे को मीन्स मान रहे हैं, अपने प्रोफेशन को मीन्स मान रहे हैं, दूसरों से प्राप्त हुई इज्जत को मीन्स मान रहे हैं, तो यहां बहुत बड़ी गलती हो रही। इस चीज को हमें लिए समझना जो है वो बहुत बहुत बहुत जो है वो
0: जरूरी है,
1: जरूरी है।
0: राजेश जी, काफी अच्छा आपने बताया और मुझे लगता है कि यहां पर एक आत्मचिंतन की बात मेरे समझ में आ रही है कि हम लोग जो ड्रीम्स देख रहे हैं, हम लोग जो सपने सजाए हैं और जो छोटी छोटी हमारी गोल्स आते जाते हैं और हम लोग एक के बाद एक गोल्स हमारा नया बनता जाता है और उसमें कहीं ऊपर नीचे हो जा रहे हैं तो हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि हम लोग अपनी जो मेन जो पर्पस है उससे भटक कर और फिजिकल चीजों में कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इच्छाओं को रख रहे हैं और वो पूरा नहीं होने के कारण हम लोग बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड केस जैसे आपने बताया ये सारी चीजें कर रहे हैं। कई बार माता पिता की भी अपेक्षा बच्चों से रहती है कि डिस्टिंक्शन में आना चाहिए, मेरा बच्चा बना सबसे हाई अच्छा एजुकेटर। तो अब वो बच्चा अगर हाई नहीं कर पाता है, डिस्टिंक्शन में उसका नंबर नहीं आता, तो माता पिता के डर से भी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं।
1: उसका भी कारण ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, और एक्सपेक्टेशंस बचपन से डाल देगी। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारा कंपटीशन का जमाना,
0: बिल्कुल,
1: तो कंपटीशन बच्चों में आया कहां से? कंपटीशन आया बचपन से। मुझे याद है एक बार मैं स्कूल में गया, वहां पेरेंट्स की मीटिंग हो रही थी, एक फर्स्ट ग्रेड का छोटा सा बच्चा होगा। तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग खत्म होती है, बच्चा बाहर निकलता है अपनी मम्मी के साथ, और जैसे ही उसकी मम्मी बाहर निकलती है उसको मारना शुरू कर देती है कि तू तो फेल हो गया मैथ्स में, मैंने तुझे इतने बढ़िया स्कूल में डाला, हम तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, तू फेल हो गया। तो बच्चे को ये लग गया कि जब तक मार्क्स नहीं आएंगे
0: तब
1: मेरे को
0: माँ
1: बाप प्यार नहीं मिलेगा, मेरे को चीजें नहीं मिलेगी, मेरे को खुशी नहीं मिलेगी।
0: तो ये रॉन्ग प्रोग्राम भी क्रिएट हो गया उसके साथ।
1: ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग, ये कंडीशनिंग जो अभी आपने भी बात की कि जो हमने कंडीशनिंग कर दी है
0: जी जी जी
1: कि खुशी कहीं और है, और हमारे समाज ने ही, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे सिस्टम ने उसको जो एक अनकंडीशन चीज है जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इस पहलू को क्लियर करें, जैसे आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि व्हाट आर द रीजंस, ये कंडीशनिंग के रीजंस क्या है, ये बचपन से हम में जो है वो
0: ये ऐसे लगता है कोई एडवर्टाइजमेंट हो गई भाई, फ्री में आपको ये मिलेगा, और छोटे अक्षर में लिखा रहता है कंडीशन सप्लाइड, और वो हम पढ़ते नहीं, हम तो ऊपर की चीजों को देख रहे हैं और जंप कर दिया। जब वो कंडीशन अप्लाइड में हमको सारी चीजें पता चल जाती आ रही है तो गड़बड़ है। तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं आज के समय में, माता पिता हो या बच्चे हो, सभी लोग जो है ना एक टारगेट अचीव करने के चक्कर में अपने मूल्यों को, माता पिता को अपना बच्चों से प्यार है वो जताना है। जब एग्जाम में पास हो गए तो मेरा बच्चा होगा, ऐसा थोड़ी अपन ने कंडीशन करके प्यार किया था इस बच्चे को जन्म देने का, ये थोड़ी तुमने एप्लीकेशन डाला था।
1: इसीलिए तो कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ने रखी है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और उनको ये लगता है कि बच्चा मेरा आईआईटी में जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, एम्स में जाएगा तो बहुत सारा धन कमाएगा, तो धन कमाएगा तो बहुत सारा पैसा होगा। हमने जो पेरेंट्स के मन में ये हमने जो मुश्किलें झेली हैं, दुख झेले, इनको ना झेलने पड़े, लेकिन वो दुख सुख जैसे हमने लास्ट एपिसोड में पाया वो कहीं और है, और उनके मन में भी ये गलत फहमी है, उन बेचारों को भी समझ नहीं है, इसलिए ना समझ होने के कारण वो ऐसा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लैक ऑफ नॉलेज, माना खुद का नॉलेज नहीं है, और
1: रियल ट्रू नॉलेज है वो नहीं है, सत्य नॉलेज नहीं है,
0: नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है एक दौड़ की तरह रन कर रहे हैं लेकिन कहीं शांति नहीं मिल रही।
1: राइट। और एक जो दूसरा कारण मैं बताना चाहूंगा, एक साइकोलॉजिकल रीजंस है, हम सफलता क्यों चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन एक साइकोलॉजिकल रीजंस है। जैसे एक शब्द सफलता है, जैसे सफलता शब्द हमारे माइंड में आता है, हमारे मन में आता है, तो वो सफलता शब्द जुड़ा है एक खुशी के साथ, एक शांति के साथ, एक संतुष्टता, नेचुरल है,
0: नेचुरल है।
1: और ब्रेन हमारा जो है, जिसको न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जो अच्छे शब्द हैं, जब हम सुनते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए सफलता शब्द है, वो एक पॉजिटिव शब्द है, किसी की हम प्रेज करते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने आज शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, है ना, तुमने आज बहुत अच्छा भाषण किया है, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम किसी की भी किस तरह प्रशंसा करते हैं, पॉजिटिव शब्द बोले जाते हैं, तो वो पॉजिटिव वर्ड जो है ब्रेन में एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उन चेंजेस को हम न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं, जब ब्रेन की एमआरआई की जाती है तो पता लगता है हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एग्जीक्यूटिव स्किल्स बढ़ जाती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, और जिसके कारण पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स हमारे ब्लड में जो है रिलीज होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन और उसका अपोजिट क्या है, नेगेटिव शब्द। जैसे सफलता का जो नेगेटिव शब्द है वो असफलता है। जैसे ही हमारे मन में असफलता शब्द आता है, या तो हमें वो दिखता है, मन में सोचते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमको रियलाइज कराते हैं, या हमारे दोस्त या हमारे समाज हमको रियलाइज कराते हैं कि ये व्यक्ति असफल हो गया है, इसको इज्जत नहीं मिलेगी, वो हमें इज्जत नहीं देते, वो हमें खुशी नहीं देते। कई बार हम अपने अंदर अपने आप से नहीं डरते, लेकिन दूसरों से डरते हैं। दूसरों का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, पेरेंट्स का प्रेशर, समाज का प्रेशर, कि वो हमें इज्जत नहीं देंगे, हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमको बड़ा नहीं समझेंगे, हमें अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे। तो उनके डर के कारण ही भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, सफलता ही चाहिए। क्योंकि ये जो असफलता वाला शब्द है, ये जो नेगेटिव वर्ड है, जब हमारे अंदर जाएगा, या तो हम उसको सोचेंगे, क्योंकि तीन कारण है, या तो आप सोचते हैं, या तो आप बोलते हैं, या आप सुनते हैं। दूसरे माना आपके माँ बाप आपको बोलते हैं, आपके दोस्त आपको बोलते हैं, आपको समाज वाले आपको बोलते हैं, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ब्रेन के ऊपर, जैसे पॉजिटिव इफेक्ट बोला पॉजिटिव वर्ड्स का, ऐसे उल्टा होता है नेगेटिव। तो जैसे पॉजिटिव वर्ड्स जाते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे जब नेगेटिव शब्द जाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ये जो है ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, ये रिलीज होते हैं, जो कि हमें एंग्जाइटी पैदा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं। और यही स्ट्रेस अगर लगातार बना रहे तो ये लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी बन जाती है, टेंशन बन जाती है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे हमें चिंता हो जाती है, या कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहेंगे वो उदास हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम असफलता शब्द को सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, काफी अच्छी बातचीत आपने की आज, और मुझे लगता है कि सफलता क्यों चाहते हैं, ये आपने वास्तविक जो स्वरूप है उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया। इनसाइट मना हमारी अंतर्दृष्टि को आपने जगाने की कोशिश की इसके साथ में, और बहुत सारे पहलू हैं। मुझे लगता है कि आगे हम लोग अनेक पहलुओं पर बात करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते राजेश जी, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे।
1: मैसेज, जैसे हम चाहते क्या, खुशी चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं आनंद, तो उसको प्राप्त करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थियों से या जो भी हमारे श्रोतागण हैं वो करें। हम चाहते हैं खुशी, लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि वो हमने कंडीशन कर दी, लेकिन वो अनकंडीशनड होनी चाहिए, उसका निराधार होनी चाहिए, उसका कोई आधार नहीं चाहिए,
0: होना चाहिए।
1: तो उसको हम बताने से पहले हमारे श्रोतागण, हमारे विद्यार्थी इसके ऊपर प्रयोग करें, और खुद ही खुद हम चाहते हैं कि वो समझें इसको, इससे पहले कि हम अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करें, वो इसको खुद ही समझे और जान लें, और हम जो बातें बताएं वो हमारे साथ रिलेट कर सके कि हाँ ये जो बात करी हमने अनुभव कर लिया। तो उसके लिए एक उनको संकल्प देंगे कि आई एम ए हैप्पी बींग, मैं एक खुशी का सितारा हूं।
0: क्या बात,
1: आई एम ए हैप्पी स्टार। अपने आप को ये संकल्प भी देंगे और देखेंगे भी अपने मस्तिष्क के मध्य में, जैसे सितारे चमकते सबको बहुत अच्छे लगते हैं, खुशी देते हैं, तो मैं भी एक खुशी का सितारा हूं। आई एम ए स्टार ऑफ हैप्पीनेस। दिन में 10 बार इसको सोचें, और समय मिले तो बैठ करके देखें अपने मस्तिष्क के मध्य में सितारा चमक रहा है, और बार बार उसका अनुभव करने की कोशिश करें, रियलाइज करने की कोशिश करें, न केवल स्वयं को लेकिन जो भी व्यक्ति सामने आता है घर में, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, जैसे वो सामने आए, जैसे मैं खुशी का सितारा हूं, सामने वाला भी खुशी का सितारा है। और दिन में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करें, और सुबह भी 10 बार लिखें उठते ही, रात को सोने से पहले 10 बार लिखें, और मैं समझता हूं नेक्स्ट डे व्हेन यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपने अंदर एक अजब सी खुशी, एक अजब सी सफुर्ती, एक अजब सा उमंग और उत्साह पाएंगे।
0: चलिए राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया, और जो बातें आपने बताई हैं वो मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा जो सफलता क्यों चाहिए उसके पीछे का रीजन उनको समझ में आ गया। और आखिरी में जो संदेश में आपने बताया कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, निराधार है खुशी, प्रेम, शांति, आनंद पाने के लिए आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को थॉट दीजिए, जिस तरह के थॉट राजेश जी ने बताया, आई एम अ हैप्पी सोल, मैं बहुत ही खुशनुमा आत्मा हूं, इस तरह से अपने आप से कनेक्ट होते रहें, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर आपके साथ। जुड़ेंगे। और फिर से एक बार राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आप सभी को अपने निराधार खुशी सफलता को प्राप्त करने के लिए ढेरों खुशियां। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अभी बचे हैं दोपहर के 1।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता है क्या देखा, कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया, उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ा।

सर, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते।
1: दोस्तों, जब एक परिवार शुरू करने की बात होती है तो माता पिता दोनों की आंखों में कई आशाएं होती है। हमारा बच्चा ऐसा होगा, हमारा जीवन ऐसा होगा, हमारा घर ऐसा होगा, बच्चे का फ्यूचर भी वो देख चुके होते। क्या होता होगा उस परिवार के साथ जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा जो है मानसिक रूप से असंतुलित है? क्या होता होगा उस परिवार को या उनके सपनों को जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका जो सपना है वो पूरी तरीके से अब अलग है, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो कई तरीके से मानसिक रूप से कई ऐसे अंदरूनी परेशानियों से जूझ रहा है जिसका समाधान माता पिता के पास नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आता है जो अपनी उदारता से, अपनी दृढ़ता से और अपनी समझ से उनके जीवन की इस परेशानी को कम करने में या उसका सामना करने में उस माता पिता को मदद करता है। और इस मदद के दौरान सबसे बड़ा मदद का जो भागीदार होता है वो बच्चा होता है, जिसे खुद को नहीं समझ कि वो किन चीजों से गुजर रहा है या उसके जीवन में क्या हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ आज हमारी मुलाकात होने जा रही है। स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एपिसोड में, जहां हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर पी हनुमंत राव से, सिकंदराबाद के बहुत ही प्रतापी हॉस्पिटल स्वीकार। हॉस्पिटल ही नहीं, एक स्कूल भी है, एक इंस्टीट्यूट भी है, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, पुनर्वास का एक यज्ञ है जहां कई ऐसे बच्चों का पुनर्वास किया जाता है, उनके माता पिताओं का काउंसलिंग किया जाता है। और अपने इस समाज सेवी प्रयत्न की वजह से डॉक्टर पी हनुमंत राव जी को भारत सरकार ने वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर पी हनुमंत राव जी का। डॉक्टर पी हनुमंत राव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोता साथियों की तरफ से और रेडियो मधुबन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना टाइम शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक्स।
2: मुझे भी बहुत खुशी है, मैं बहुत मेरे शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: अक्सर ये ऐसा होता है डॉक्टर हनुमान जी दैट हम सोचते हैं कि हमारा दिन कैसे शुरू होगा, कैसे जाएगा, कैसे होने वाला है, बट मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि मुझे और हमारे श्रोता साथियों को इस बात का यकीन जरूर होता है कि रेडियो मधुबन जैसे ही हम खोलते हैं दिन की शुरुआत तो अच्छी होती ही है, लेकिन दिन भर में भी जो कार्यक्रम रेडियो मधुबन प्रस्तुत करता है उसके जरिए दिन हमारा बेहतर से बेहतर बनने लगता है। और जब कार्यक्रम यशस्वी भारत का हो, जिसमें हम भारत के यशस्वी पुत्र आप जैसे डॉक्टर पी हनुमंत राव जी से मिलते हैं, तो हमारा दिन बेहद खुशनुमा हो जाता है। जैसे कि आपकी कहानी में आता है कि आपने भारत के सैकड़ों ऐसे बच्चों का जीवन सुधारा है जिनके लिए लोगों ने उम्मीद या आस छोड़ दी थी, और तब जबकि उनके खुद के परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी, तब आपने उनका हाथ थामा और उनको एक ऐसे जीवन की दिशा दी, जीवन को जी करके न केवल वो लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम की या ऐसे सेवा की जो शुरुआत है वो कैसे हुई ये हम जानना चाहेंगे, इसलिए हम शुरू करना चाहते हैं आपकी कहानी आपकी जुबानी।
2: मेरा पैदाइशी तो ओल्ड सिटी में हुआ, हैदराबाद में, चार मिनट से एक 3-4 किलोमीटर, पूरे डॉक्टर्स के परिवार में मैं पैदा हुआ। मेरे फादर मेरे अंकल पूरे आरएमपी थे। वो जमाने में एमबीबीएस बहुत कम लोग थे, पूरे आरएमपी थे और बहुत पॉपुलर थे, बहुत नाम था। वो जमाने में डॉक्टर्स ही कम थे, तो हमारा एक 40 रूम्स का नर्सिंग होम था। जब हमारा जॉइंट फैमिली ब्रेकडाउन हो गया, मैं मेडिसिन में जॉइन हुआ, सेकेंड ईयर में ब्रेकडाउन हुआ, तो बहुत तकलीफों के सामना करना पड़ा। पूरे हमारे अंकल सब सेपरेट हो गए, तो बहुत आर्थिक तकलीफों में शुमार हो गया। एक मरतबा मेडिकल कॉलेज से निकाले गया, दो मरतबा हॉस्टल से निकाले गया, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहने से। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं आई एम ए कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोडक्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। तो मैं सोचा भी नहीं था मेडिसिन कम्प्लीट करता हूँ। मैं वरंगल में मेडिसिन कम्प्लीट करके काकतिया मेडिकल कॉलेज से हैदराबाद आया, गांधी मेडिकल कॉलेज में जॉइन हुआ। वहाँ के सुपरिटेंडेंट बोले, भाई मैं हॉस्पिटल वो हॉस्टल के लिए पूछा, हाउस सर्जन हॉस्टल, नहीं नहीं तुम हैदराबाद के ना हॉस्टल क्यों? मैं बोला नहीं सर, मैं वरंगल का हूँ, हॉस्टल चाहिए। तो फिर बाद में मैं ओल्ड सिटी गया नहीं, मेरे मेडिसिन में जब जॉइन हुआ ओल्ड सिटी नहीं गया, तो इधर ही मैं सिकंदराबाद में ही सेटअप हो गया। मेरा हाउस जॉब हो गया, सीनियर हाउस जॉब हो गया। मेरे फादर को ओल्ड सिटी से सिकंदराबाद आया, मेरे फादर बोले नहीं गवर्नमेंट जॉब आया, तुम्हारा कॉल आया, चले जाओ। मैं बोला गवर्नमेंट जॉब अभी करना नहीं है मेरे को, मेरे को आगे पढ़ना है। नहीं नहीं मैं तो पढ़ा नहीं सकता, मैं घर भी चला नहीं सकता। तो मैं पूछा भाई घर चलाने में कितना पैसा चाहिए? 600 रुपये। ठीक है मैं वो दे दूंगा, मेरे को आप डिस्टर्ब मत करो। तो वो लोगों को सिकंदराबाद लाया, मगर माँ नहीं ठहरा, मैं हॉस्टल में ही ठहरा, गांधी हॉस्टल में। तो मेरा स्टाइपेंड जो आता था पूरा 600 वो लोगों को देता था। हम चार बहन है, चार भाई हैं, हम लोग टोटल 10 मेंबर्स का फैमिली है। तो मैं हाउस सर्जन से ही प्रैक्टिस शुरू करा था, बिकॉज आई एम बॉर्न इन ए जॉइंट फैमिली। मैं जब से ही डॉक्टरी करता था, इंजेक्शन देना, दवाइयाँ देना, मिक्सर वही बनाना। तो इमिडिएटली मैं जैसा औरंगल से आया और जब शुरू करा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी शुरू करा। तो थोड़ा कुछ जो भी कमाता था मेरा लिविंग चलता था, मेरा स्टाइपेंड फैमिली को देता था। वैसा मैं MD पीडियाट्रिक्स में जॉइन हुआ। हालांकि पीडियाट्रिक्स मेरा इंटरेस्ट नहीं था, MD जनरल मेडिसिन था, मगर उसमें ढकले गया, मेरा सीट और कोई दिए। वो जमाने में इतना कंपटीशन नहीं था जो मनमाने करते थे, तो मेरा सीट और एक इन्फ्लुएंशियल आदमी लिया। मैं 3 महीने तक रेगुलर नहीं गया, मेरे को पीडियाट्रिक्स इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जनरल मेडिसिन जाना है। बाद में मेरे सीनियर लोग एडवाइस करे, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने, नहीं तुम लड़े तो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाता, तुम्हारे को फेल कर देंगे, तुम तो जो मिला हो ईश्वर की कृपा समझो, चैन हो जाओ। तो फिर मैं कॉन्सेंट्रेट करके MD पीडियाट्रिक्स कर लिया। सोचा मेरे फादर और ये लोग जो है आरएमपी रह के इतना सेवा करे, सर्दी खांसी बुखार ये रूटीन एलिमेंट्स को देखते थे। मैं MD पीडियाट्रिक्स करा, मैं भी वही काम करूंगा, ये पीडियाट्रिक्स होने के बाद कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करा, बॉम्बे गया, मेरा प्रैक्टिस को और एक दोस्त को बिठा के बॉम्बे गया। बॉम्बे में एक 4 महीने PG डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन। जब भी वो 3-4 साल के नीचे खुला था,

मालूम नहीं था, स्पेशल स्कूल मालूम नहीं था। लोग मेरे को आके, डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को एडमिशन दो। अरे मैं बोला ये ऐसा नहीं भाई, ये स्पेशल बच्चों के वास्ते है, ये ऐसा नॉर्मल बच्चों के वास्ते नहीं। तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरे प्रैक्टिस में एक शॉप लिया और एक शॉप लिया और एक शॉप लिया, चार शॉप्स पीछे जो है, और दो घरा भी ब्लॉक्स ले लिया था किराए को। बाद में सोचा ये मेंटली टायर्ड एक ही नहीं है, डिप बच्चों को भी मैं अपनी सेवा जरूरत है बोल के डिप स्कूल स्टार्ट करा, पोलों को हॉस्टल भी स्टार्ट करा। और बहुत भीड़ बढ़ने लगा तो मैं सोचा गवर्नमेंट को अपील करेंगे। मेरे नेबर थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर मिस्टर डी के रेड्डी, बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर। उन्होंने मेरे को गाइड करा, डॉक्टर साहब आप इतना काम कर रहे हैं, आप डिफेंस का जमीन के वास्ते अपील करो। तो उन्होंने बहुत सहायता करे, डिफेंस का लैंड 1 एकड़ लैंड सिकंदराबाद में जुबली बस स्टेशन के सामने, वो जब तो वैल्यू नहीं था, अभी बहुत बड़ा वैल्यू है उसका, सबकी नजर अपने ऊपर ही है। और अब उस तरीके से अपन बहुत लोगों की ईर्ष्या के शिकार हुए, मगर सबका सामना करा, ईश्वर की कृपा है कि अपने को गिराया नहीं। तो आगे बढ़ते गया आगे बढ़ते गया। एक मरतबा हमारे CM डॉक्टर YSR रेड्डी को बुलाया था। हम एक बिल्डिंग 5 माले का 5 स्टोरी बिल्डिंग को मैं अग्रीमेंट करा एक दोस्त से। अरे भाई वो दोस्त पंडित राव बोल के थे, उन्होंने भाई इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया 2 साल से खाली रखे, मेरे को दे दो। तो इतना पैसा आप कहाँ से दे सकते डॉक्टर साहब? मैं बोला भाई एवरी मंथ देगा मैं थोड़ा। तो अग्रीमेंट करे हम, वहां पर जो है ड्रग रिएक्शन स्टार्ट करा, ये नशीली दवाइयों के शिकार होकर बहुत से लोग तकलीफ उठा रहे थे। जहां जहां मेरे का दिल को तकलीफ हुआ, ये काम करना है या कुछ करना है, ये किसी का दुख बांटना है, तो वहाँ ड्रग रिएक्शन चलाया, डेव स्कूल यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया, मेंटली रिटायर्ड स्कूल भी शिफ्ट कर दिया, हॉस्टल शिफ्ट करा वहाँ पर, और होम फॉर द एजेड भी बनाया वहीं। तो बहुत से काफी बिल्डिंग था, 5 स्टोरी बिल्डिंग था, 45 फ्लैट थे उसमें, काफी एक 15-20 साल चलाया वहाँ। चलाने के एक 10 साल के बाद जब मैं पूरा पैसा पे कर दिया, जब चीफ मिनिस्टर को बुलाया तो डॉक्टर साहब आप तो 10 साल से बिल्डिंग में ऑक्यूपाई करा हुआ है, आज हमारे से इनॉग्रेट कर रहे हैं। मेरा साहब अभी तक हम ओनर नहीं थे, अभी स्वीकार इज ओनर, उस वजह से आपसे डेडिकेशन करा है। तो बहुत उन्होंने खुश होकर क्या करा, नहीं, ये सब कुछ आने दो, मैं आपसे बात करना है। तो मेरे बाजू बिठा के बात करा, ऐसा सेंटर आप कड़प्पा में खोलो। तो कड़प्पा में अपने को जमाने में 40 साल के नीचे मेरे को अलग ही इंप्रेशन था, लोग मार लेते, मर्डर कर लेते, सब बहुत फैक्शनिस्ट। वो मैं बोला मैं नहीं आता था बोला, तो ये परस्यूट देन मेरे मेरे में भी कुछ लालचीपना हुआ, अरे ये आदमी को तो अपन यूज करे तो और आगे इंस्टीट्यूशन को ले जा सकते, उससे मैं क्या करा, ठीक है चलाएंगे। तो कड़प्पा में जाके एक सेंटर ओपन करा, उन्होंने पहले तो जगह नहीं दिया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टार्ट करा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस चार्ज नहीं कर सकता, फ्री रहता, 2 फ्लोर्स मेरे को दे दिया। तो मैं, 2 कंपोनेंट्स थे मेरे स्वीकार एक्टिविटी में, स्वीकार एक्टिविटी में सेवा, एक जो है सर्विस है विकलांग को, हर तरीके के विकलांग को सेवा देना है। मेरा मोटो ये था रिहैबिलिटेशन फ्रॉम टूम टू टूम, फायदा हुए से जब से उन्होंने जब टूम में जाता है, ग्रेवयार्ड को जब जाता है, तो कितने भी कहीं भी हर किस्म का रिहैबिलिटेशन, दैट इज द नेम आई कॉल इट स्वीकार। बोलो तो ये लोगों को एक्सेप्ट करने की क्षमता रहना अपने पास, दिल रहना चाहिए। तो स्वीकार के बाद उपकार बोल के लगा और एक ऑर्गेनाइजेशन, तो सेवा करना है। उसके बाद क्या है आश्रय, उसको आश्रय देना, नहीं तो बिगड़ आदमी, ही विल बी लॉस्ट। आश्रय के बाद सुरक्षा देना है। तो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन आई मेड इज सुरक्षा, स्वीकार उपकार आश्रय सुरक्षा, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन करा। ये सब मेरे जो सर्विस यूनिट्स थे सब 4 ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया, तो के इजी मैनेजमेंट के लिए। अभी मेरा डायनेमिज्म मेरा एनिमी हुआ, जैसा मैं कड़पा गया पूरा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट मेरा था, ऑपरेशनल कॉस्ट मेरा था। अब CM साहब पैसे दे तू बोले, उन्होंने बहुत बिजी हो गए थे सेकेंड टाइम इलेक्शन में, तो पैसे उधर से नहीं आए। मगर एक 5 साल के बाद जमीन दिया हूँ, 10 एकड़ का जमीन दिया हूँ, वो बहुत वैल्यू चीज है, मगर उसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, मैं बेच नहीं सकता और कुछ कमर्शियली नहीं कर सकता। तो वो भी क्या करा, मैं बोला साहब ये फ्री फ्री दे दो बोले CM। मैं बोला नको साहब कुछ नॉमिनल चार्ज करो, अब कोई यार NGO को दे देना,
ये चार्ज 1 रुपया।

0: रुपीज आप कितना चार्ज करो? मतलब 50,000 पर एकड़ लगाओ सब बोलो। नहीं यहाँ तो 1 करोड़ पर एकड़ है ना डॉक्टर साहब। सब 1 करोड़ है तो मैं तो प्लॉटिंग वाटिंग करके तो नहीं बेच सकता, मैं हैदराबाद भी नहीं ले जा सकता। तो इनिशियन को आगे आपके बाद मेरे बाद कोई भी चलाएगा। तो फाउंडेशन स्टोन उन्हीं से कराया। उससे पहला क्या करा, वो सर्विस यूनिट अपने शिंदे साहब गवर्नर थे, वो नया गवर्नमेंट प्रोविंसेस गवर्नर साहब से इनॉग्रेट कराया सर्विस यूनिट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्वीकार, स्वीकार रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड। उसके 3 महीने के बाद सीएम साहब से और एक इनॉग्रेशन कराया। डॉक्टर साहब ये क्या 3 महीने नीचे कराया, गवर्नर जी को बुला के अभी मेरे से करा रहे हैं सब? आप जो है ट्रेनिंग कॉलेज को इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक डॉक्टर हनुमंतराव कितने लोगों को सर्विस देगा? एक कहावत है, इफ यू गिव ए फिश इन चैरिटी यू विल ईट इन द मॉर्निंग शिट इन द इवनिंग। इफ यू टीच ए पर्सन फिशिंग ही विल कैच फिश फॉर हिमसेल्फ फॉर द फैमिली फॉर द सोसाइटी लाइफ लॉन्ग एंड ही विल टीच 100 पीपल फिशिंग। तो विद्या दान इज द ग्रेटेस्ट दान द अन्नदान। नो बहुत से स्वामी जी भी अग्री करते हैं ये जमाने में तो विद्या दान बहुत बड़ी महत्व है। क्यों बोल तो खाना फ्री खिलाए तो हर एक आदमी बैठ जाता है उसमें। वो एक कहावत है, इंडिया हैज इनफ फॉर द नीडी नॉट फॉर द ग्रीडी। देयर इज अ शॉर्टेज बिकॉज ऑफ मोर ग्रीडी पीपल आर देयर। मैं इतने मरता हुआ देखा, मैं 2 दिन जगह फेल हुआ। मैं सोचा सोसाइटी सामने आएगा एक हेल्पिंग हैंड देते समझा, मगर चलो डिसअपॉइंट हो गया मैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो और क्या कह रहा, मेरा डायनेमिज्म से कौशल आंध्र से बहुत से लोग आ रहे थे। मैं बोला भाई वहाँ एक सेंटर खोलेंगे, गुंडर में जाके खोल दिया सेंटर। और मेरे वाइफ का नेटिव प्लेस तांडूर बोल के है, विकाराबाद के करीब है वो, एक 250 किलोमीटर है। तो वहां जाके खोला, एक 5 एकड़ जमीन खरीदा स्वीकार के नाम पे मेरा पैसे से। तो अच्छा बिल्डिंग बनाया 1-2 करोड़ से, वहां भी स्टार्ट करा, वहां भी सीएम स्टार्ट करे। और गुंटूर का जो है वहां के कलेक्टर और वाइस चांसलर इनॉग्रेट करे। तो तीनों सेंटर्स को चलाते गया। मैं सीएम साहब को पैसा पूछा, दे दो बोले, और उन्होंने देहांत हो गए पास देवे। देन मेरा मिशन में बहुत बड़ा रुकावट शुरू हो गया, मगर मैं रोका नहीं। मैं बोला ये मिशन तो चालू रखना है। तो अभी बैंक लोन्स लेना शुरू करा, कड़प्पा में बैंक लोन लेके, तांडूर में बैंक लोन लेके बिल्डिंग बनाया, कड़प्पा में जमीन दिए। जमीन दिए तलक भी सीएम साहब थे, मगर बाद में बिल्डिंग मैं बनाया मेरे पैसे से। 1-2 फ्लोर्स का बिल्डिंग, 10,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनाया। यहाँ भी एक 5,000 का स्क्वायर फीट तांडर में बनाया, मगर गुंडर में बिल्डिंग ओन बिल्डिंग नहीं बनाया, किराए का बिल्डिंग। मेरा एक दोस्त का नर्सिंग होम क्लोज हो गया तो वो लिया। 25,000 रेंट पर मंथ देता था, वो भी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट था, उन्हें भी काफी सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट दिया। अब हर जगह सब मेरे दोस्त बोले अरे बंद कर दो तुम, पूरा फाइनेंशियली क्या कर रहे तुम, मुश्किल हो जाता, बंद कर दो। मैं बोला नहीं नहीं कहीं ना कहीं से हेल्प आएगा। ये तो आई हैव डन ऑलवेज आई हैड ए फेथ, आई हैव डन गॉड्स वर्क, आई नीड नॉट लुक आउट, ही विल टेक केयर। वो मेरा बहुत बड़ा जिद था, वो मेरा फेथ था। आलो आलो 25 करोड़ लोन कर दिया मैं, और कौन सा भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं था। अभी लोन से ज्यादा लोग प्रेशर करना शुरू करे। प्रॉपर्टीज में बहुत बनाया था स्वीकार के नाम पे। मेरा दोस्त में बोलते थे क्या तुम रियल एस्टेट कर रहे क्या? मैं बोला ये मैं तो स्वीकार के वास्ते खरीदा पैसा पूरा प्रॉपर्टीज। तो 32 एकर्स लैंड था स्वीकार, हैदराबाद से 30 एकर्स के डिस्टेंस में, 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे 32 एकर्स जमीन लेके वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रूरल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मेंटली चैलेंज्ड। पूरे आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से भी आते थे लोग, बड़े बच्चे। तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर द मेंटली चैलेंज वो भी चलाया, काफी साल चलाया, ऐसे 25 साल से ज्यादा चलाया। मगर जैसा मैं आगे बढ़ते गया तो आई स्टार्टेड सिंकिंग। अब मैं एक सर्विसेज पे नहीं रुका, और एक मिस्टेक नहीं, आई हैव डन मेनी मिस्टेक्स बट आई डोंट थिंक अगेन इट इज नॉट ए मिस्टेक। हु एम आई टू डू, ही मेड मी डू, आई हैव डन, आई डोंट हैव रिग्रेट्स। तो खाली सर्विस करे तो क्या फायदा बोल के टीचिंग शुरू कर। डिप्लोमा से शुरू करके एक दो तीन डिप्लोमा, डिप्लोमा इन हियरिंग इम्पेयर्ड, जो पढ़ते हैं वो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड को ट्रेनिंग देते हैं। मेंटली डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं नॉर्मल लोग, वो मंद बुद्धि बच्चों की सेवा करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। वैसी देन साइकोलॉजी, अब इतने लोगों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सुइसाइड, मर्डर, स्टैबिंग, स्कूल ड्रॉपआउट, बच्चे मिसबिहेवियर और ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते थे, अल्कोहलिक्स हो जाते थे। मैं बोला ये सब दवाएं रोकना है, ये सब रोकना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ स्टार्ट कर। दैट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन प्राइवेट इन आंध्र एंड तेलंगाना। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था एर्रागड्डा, दैट इज बहुत पुराना है, वो ब्रिटिश टाइम से था। मैं प्राइवेट में स्टार्ट करा जो मैं एक ही था, और रूरल में वहाँ भी लगाया। वहाँ लगाने के बाद क्या है, मेंटली इल लोग थे, मेंटली हैंडीकैप थे, तो एक आदमी बॉडी में गिर के सुइसाइड कर लिया। तो उन्हें नोट लिखा, नहीं डॉक्टर इज वेरी काइंड, दे आर ऑल लुकिंग आफ्टर अस वेरी वेल, ही क्रिएटेड शेल्टर फॉर अस, वैसा ऐसा अच्छा ही लिखा, अच्छा लिख के मर गया। तो मेरे को वहाँ से, अब जब सेलफोन वेलफोन नहीं था, मैसेज आया ऐसा ऐसा एक आदमी मर गया। अरे मैं बोला निकाल दो आदमी को अंदर से, बोल से निकालो। वो एक्सीडेंटली मेरे साथ एक इंस्पेक्टर था, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं निकालना पड़ता, अब पंचनामा कराओ, आप इंस्ट्रक्शन बराबर दो, वो लोगों को पुलिस को बुला बोलो, गांव वालों को बुला बोलो, पंचनामा करके जब भी बॉडी निकालना है। सो इट वॉज ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। सो वो जमीन था, बहुत साल वहाँ भी चला। अब कोर्सेज बढ़ाते गया, डिप्लोमा से डिग्री, डिग्री में से पीजी, पीजी में से डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी स्टार्ट करा। ये कोर्सेज स्टार्ट करने में अपने वाई एस आर रेड्डी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों बोले तो मेरे को कौन सुनता था, यूनिवर्सिटी वाला कोई नहीं सुनता, आई एम नॉन एंटिटी। तो उन्होंने सेक्रेटरी बोला, डॉक्टर साहब जो भी सपोर्ट होना बोलते दे दो डॉक्टर हनुमंतराव को, कोई चीज़ रुकना नहीं है। तो मैं कोर्सेज स्टार्ट करा, यूनिवर्सिटी वाले रिफ्यूज करते थे, क्यों भाई हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, आप कोर्स कहा स्टार्ट करते, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। बोला भाई हम स्पेशलिस्ट देगा, ऑल ओवर द कंट्री से स्पेशलिस्ट को आपके बोर्ड में रहेगा, दे विल मॉनिटर दिस। तो ऐसा कोर्सेज का परमिशन तो मिला उनका। स्वर्गवासी होने के बाद हम बहुत उलझन में फंस गए, अब लड़ाई लड़ते गए, बहुत से प्रॉपर्टीज बेच दिया, गुंडूर का क्लोज डाउन कर दिया, तांडूर का क्लोज डाउन कर दिया, 17 ईयर चला है सब। आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग निर्माण वो भी क्लोज कर दिया, उम्फर्दी क्लोज कर दिया, बहुत से क्लोज करा। अभी थोड़े कोर्सेज चल रहे हैं स्वीकार में, सिकंदराबाद में, उसमें भी क्या बहुत से बाधाएं आ रहे हैं। ये जो इंस्पेक्शन को आते हैं मेडिकल काउंसिल के, वैसा रिहैबिलिटेशन काउंसिल बोल के है, वो दिल्ली में है, उससे पहले ही मैं स्टार्ट कर रहा था ये सेंटर। रिहैबिलिटेशन काउंसिल जन्म नहीं हुए से पहले हम सोचा बिकॉज हमें चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कोई नहीं था सिकंदराबाद हैदराबाद में, मैं ही स्टार्ट कर रहा था। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली चैलेंज खोले, मैं खोलने के 10 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोले, मगर किसी में नजर में नहीं आए, लोगों कोई ध्यान नहीं दिए, कोई सपोर्ट नहीं आया किसी भी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से आता था, दैट वाज पिटेंस, ओनली फॉर स्कूल को आता था, मेंटली चैलेंज स्कूल को आता था, डिफ स्कूल को आता था, बाकी सब इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई डायनेमिज्म। आई क्रिएटेड प्रॉब्लम एंड माई डायनेमिज्म बिकेम माई एनिमी, बट आई सक्सीडेड। नाउ स्लोली आई हैड टू वाइंड अप। Now I asked people, invite करा, मैं बोला देखो भाई मेरे को कुछ मत दो, आप इसमें भागीदार बनो, अंडर CSR corporate social responsibility आप नाम ले, managed and sponsored by नाम लिख लो। मैं तो अपना नाम कहीं नहीं लिखा हनुमंतराव बोल के, अपना कर्म निभाया हमने, हम कर दिया, पर जो भगवान हमसे करा हम कर दिया, नाम हमसे कोई, आई डोंट बिलीव इन दैट। तो बहुत से कंपनी को बोला चेक पावर दो, कमिटी में ज्वाइन हो, मगर अभी तक तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं आया। मगर लोग बहुत से थोड़े एक्सपर्ट करने को देते, हमारे कमेटी में मेंबर दो, तुम्हारे पास कमेटी मेंबर्स क्या सेवा करे, कुछ भी नहीं करे, खाली नाम दर्शन मूर्ति है। मैं बोला वो सब एक्शन मूर्ति है तो काम आगे नहीं बढ़ता।
1: लेकिन आपकी जो इस कहानी में मैंने एक चीज देखा कि देखने में लगता है कि ये तो कितना अच्छा काम है, ये तो मैं भी करना चाहूंगा, ये तो बहुत सुंदर सेवा है, मुझे भी करना चाहिए, ये भाव लोगों में जरूर आएगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस सुंदर सेवा के पीछे कितना कठोर परिश्रम है, कितना मेहनत है, कितना चैलेंजेस है, और इन सभी परिस्थितियों को पार करने में एक व्यक्ति के अंदर कितनी दृढ़ता होनी चाहिए, तब जा करके वो कुछ ऐसा कर पाता है, ये एक बहुत बड़ी सीख है। लेकिन जब मैं आपकी कहानी को सुन रहा था तो मेरा ध्यान उस टाइम पे गया जब आपने बताया कि आपके परिवार में सभी चिकित्सक थे, सभी डॉक्टर थे, और इसलिए चिकित्सक बनना या डॉक्टर बनना जायज ही लग रहा था। लेकिन आपने ये भी बताया कि उस दौरान आपको बहुत मॉनेटरी सिचुएशंस आए, बहुत सारा आपके सामने ऐसा परिस्थिति आया जहाँ पर धन की वजह से आपको कॉलेज से निकाला गया या हॉस्टल से निकाला गया, लेकिन फिर भी आप उठ खड़े हुए और अपने पढ़ाई की। बार बार ये जो गिरना और उठना चलता रहा, उसमें आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से गिरने के बावजूद भी आप खड़े हो जाते थे, या आपके अंदर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप कभी झुके नहीं?
0: बस मैं ईश्वर की कृपा ही समझता हूँ, और कुछ नहीं है। अपन तो बिल्कुल स्मॉल है, वी आर वेरी स्मॉल। इट इज ऑल ही इज द पावर, इट इज द पावर विद इन अस। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा नाम हनुमान है, बोला भाई ये तो शक्ति है
1: जी, जैसे
0: बस।
1: हनुमान के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं था, वो
0: हाँ
1: उन्होंने पर्वत भी दिखा, ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने पर्वत हाथों में उठाया और संजीवनी बूटी एक लेने गए थे, पूरा पर्वत ले आए। तो ऐसे ही आप एक का भला करने निकले थे और आपने पूरे पर्वत समान लोगों, मतलब एक बहुत बड़े हिस्सा का आपने जीवन कल्याण किया है, बहुत बड़े समुदाय का जीवन कल्याण किया है। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है कि जब आप बॉम्बे गए पढ़ने के लिए और आपके परिवार को आवश्यकता थी उस समय एक ऐसे व्यक्ति की जो कि कमा करके डायरेक्टली उनको सपोर्ट करे, बट उस समय आपने अपना बहुत बड़ा जो मोटो है या आपके जीवन का उद्देश्य है, आपने समाज सेवा भले चिकित्सा के द्वारा ही हो, लेकिन आपने उन बच्चों के प्रति अपना जीवन और अपना समय अपनी शक्ति को लगा दिया जिनके प्रति लोगों का इतना भाव नहीं होता है, लोग उन लोगों से बहुत बेउम्मीद होते ही हैं, उनके परिवार वाले भी बेउम्मीद होते हैं कि ये तो मेंटली चैलेंज्ड हैं, मानसिक रूप से ये थोड़े से उतने परिपक्व नहीं हैं, आगे चल के क्या कर पाएंगे, तो परिवार वाले काफी दुखी होते हैं। ऐसे में आपने उनका हाथ थामा, आपके परिवार
0: मेरा
1: ने क्या साथ दिया आपका, या आपके परिवार वाले थोड़े
0: मेरा ये एक बड़ा यज्ञ है, मैं तो बोलता हूँ ये बड़ा यज्ञ है। यज्ञ में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग मदद करे। अकेला यज्ञ एक आदमी नहीं करता है, एक यज्ञ जो है बहुत ग्रुप से बनाया जाता है। उसमें ज्यादा भागीदारी तो मेरे पत्नी है, डॉक्टर पशुपति निर्मला राव। तो बाद में मेरे बच्चे, मेरा पत्नी भी डॉक्टर है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है। मैं बिफोर मैरिज इंटरव्यू करा, मैं शी कम्स बहुत बड़े फैमिली से भी आते, उन्होंने उनके दो ब्रदर्स मिनिस्टर थे। तो बहुत बड़ा योगदान मेरे बीवी का था कि मुझे तो मेरे ओन प्रॉपर्टीज भी बेचना पड़ा, बहुत से मरता हुआ मेरा ओन हाउस भी मैं हाइपोथिकेट करना पड़ा। परसों जनवरी में रिलीज करा, फिर अभी परसों मैं ज्यादा अभी सैलरीज नहीं दे सक रहा था, वैसे स्टेज में आ गया। तो क्या करा मैं, एक बैंक को ओवरड्राफ्ट देने के लिए, एक फ्रेंड जो है डॉक्टर राम करी बोल के है, उन्होंने एक बैंक से इन्फ्लुएंस डाल के, मैं भाई डॉक्टर साहब को मिनिमम 1 करोड़ ओवरड्राफ्ट दो, मेरे को सैलरी टाइम पे देने का है, मेरे को थोड़ा 1-6 महीने में संभाल लिया ना आगे आगे जा सकते। तो ओवरड्राफ्ट के फैसिलिटी करने के लिए फिर मेरा घर हाइपोथेकेट करना पड़ रहा, अभी वो प्रोसेस में है। तो कभी मेरे मिसेज, मेरे पत्नी जो है बीच में नहीं आए, ये मत करो वो मत करो, मैं जो भी करा उसके साथ दिए, वो लोग मेरे साथ भी तकलीफ उठाए। मेरे को दो डॉटर्स है, एक जो है ऑस्ट्रेलिया में है, वो जो है फैशन डिजाइनर है। मेरे सेकंड डॉटर जो है, तो बड़ी डॉटर का नाम ममता राव है, छोटी डॉटर का नाम नम्रता, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है वो भी। उसको भी मैं सुपर स्पेशलिटी कराया, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशन। ये बहुत डिमांड ब्रांचेस थे, नियोनेटोलॉजी वो है। मैं बोला नहीं, जो सोसाइटी में शॉर्टेज है उसको तो तुम ज्यादा लोगों को सर्विस कर सकते। वैसे मेरे सन इन लॉ भी है, मेरे दामाद जी डॉक्टर आनंद प्रसाद, उन्होंने भी नियोनेटोलॉजी करना चाह रहा था, तो आई हैड टू बैप्टाइज हिम।
1: अच्छा
0: बैप्टाइज करके न्यूरोलॉजी में शिफ्ट कराया। वो टाइम पे काउंसलिंग जरूरत रहता, गाइडेंस जरूरत रहता, और एक सज्जन, मैं सब लोग मेरे बहुत से दोस्त आते इंग्लैंड में, अमेरिका में, नहीं नहीं इंग्लैंड को अभी आना मुश्किल है, वो ये बोले तो मैं इंटरनेट में सर्च करके 6 इंडियन कंसल्टेंट को ढूंढ निकाला, न्यूरोलॉजिस्ट को। उसमें जो 3 लोग बहुत बड़ा इंटरेस्ट बताया उसमें, और एक केरला का आदमी बहुत इंटरेस्ट बताया, डॉक्टर साहब यू सेंड बैक योर सन इन लॉ, आई विल टेक केयर ऑफ हिम एंड आई विल बी हैप्पी टू ट्रेन माई बॉयज बैक होम, इंडिया नीड्स। वो आदमी अभी अमेरिका में है, वो बहुत हेल्प करा हमारे सन इन लॉ को, विद इन 15 दिन में उन्होंने वीजा भेजा दिया, वो हम भेजा दिया, वहाँ जाके हॉस्टल में अकोमोडेशन दिया, यू हैव टू पे ओनली फॉर द हॉस्टल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द हॉस्पिटल। तो मेरा सन इन लॉ न्यूरोलॉजी बना के, वो न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हैदराबाद में नहीं था।
1: इसका मतलब ये केवल ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पहले भी कहा कि केवल आपका सामर्थ्य नहीं है, कई लोगों का योगदान है इस यज्ञ में, जिसमें आपका पूरा परिवार भी है सम्मिलित और आसपास के आपके दोस्त साथी सभी सम्मिलित हैं। लेकिन ये जो बात आपने कही कि जब लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई बार वो केवल धन संपदा और वैभव ऐश्वर्य ये सब कैसे प्राप्त हो उसके लिए सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि समाज में अभी किस चीज की आवश्यकता है, समाज में किस चीज की नीड है, उस आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए मैं अपनी उच्च शिक्षा का समय लगाऊं। ये सोच जो है बच्चों में या युवाओं में डेवलप करना बहुत जरूरी है, जो कि आपने किया अपने बच्चों में भी और अपने जैसे परिवार वालों के लिए आपने कहा, और इसके वजह से आज उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ। लेकिन आपके साथ जब उच्च शिक्षा का समय आया, जब आप MD करना चाहते थे और आपको बच्चों के लिए उच्च शिक्षा करना, पीडियाट्रिशियन बनने का आपको भाग्य मिला, उस समय आप वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन
0: हाँ
1: आज अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर मुझे पीडियाट्रिशियन नहीं बन करके अगर मैं जनरल फिजिशियन का MD कर लिया होता तो क्या आपका लाइफ डिफरेंट होता, और आप कुछ बदलना चाहते अगर आप बाय टाइम मशीन पहुंच जाए तो?
0: नहीं, इतना कर नहीं पाता था। ये बच्चों में, एक बच्चे भगवान के स्वरूप है, ये दैव, स्वामी जी साई बाबा जी बोलते थे, दे आर दैव स्वरूपास। ये लोगों को कोई आशा नहीं रहता, ग्रीड नहीं रहता, नीड नहीं रहता। सो एनीथिंग विदाउट नीड एंड ग्रीड इज डिवाइन।
1: कि कोई भी चीज जो कि लोभ और आकांक्षाओं से जो परे है वो बहुत दिव्य होता है, और बच्चे जो है बड़े दैवी स्वरूप के होते हैं। इन
0: बिल्कुल
1: बच्चों की जब आप सेवा करते हैं तो ये स्पेशल बच्चे हैं, इनकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं दूसरे बच्चों से, इनके प्रति समय और सामर्थ्य और व्यक्ति का जो उदारता है वो, उसका सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा चाहिए रेगुलर बच्चों से। कैसे कंपेंसेट कर पाते हैं आप समय को
0: नहीं,
1: या
0: बहुत से
1: एनर्जी को?
0: बच्चे, वो मैं जब टाइम पे स्टार्ट करता था, मंदबुद्धि बच्चे बहुत रहते थे। अभी मंदबुद्धि बच्चे कम हो गए, क्यों बोले तो साइंस बहुत एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, मगर दूसरे किस्म के डिजेबिलिटीज आ रहे हैं। अभी ऑटिज्म बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फीचर है। बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल रहता, दिखने में बिल्कुल नॉर्मल रहता, मगर उसका प्रवर्तन बहुत अजीब रहता है। एक जगह नहीं बैठता है, ऊब तोड़ता फोड़ता, घर से बाहर निकल जाता, एक बंगले से और एक बंगले में कूदने को भी जाता, उसको को ये डेंजर है बोल के पता नहीं लगता है, गर्म की चीज भी पकड़ लेता है, लोगों को मारता काटता, ये बहुत बड़े वो दुख की बात रहता है। फैमिली में एक बच्चा ऑटिज्म है तो अब उसके अंदर में बहुत बड़ा रिसर्च करा, तो अभी दवाएं लिखता हूँ मैं, बहुत से दवाएं लिखता हूँ, बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट भी है दवाएं नहीं लिखना। मेरा लॉजिक क्या है, मैं तो दवाएं कोई चीज नहीं बना रहा हूँ, द अवेलेबल मेडिसिन आई एम यूजिंग, दोज मेडिसिन वर यूज इन एडल्ट्स आर बीइंग यूज इन एडल्ट्स इवन टुडे, वही दवाएं को कम मात्रा में बच्चों को दे तुम। तो ये आर्टिस्टिक बच्चे हैं, अभी मेडिसिन यूज करता हूँ, अभी लोगों को मैं समझाने को कोशिश कर रहा हूँ, जो भी चांस मिला वो एडल्ट मेडिसिन से कम मात्रा में बच्चों को यूज करे तो क्या है, उन्हें स्टेबल हो जाता। अभी 90% बच्चों को क्या, 90% बच्चों को क्या कर रहे हैं ये लोग, तो मेडिसिन से क्या है, अभी मेडिसिन के एक मेंटेलिटी है, रिहैबिलिटेशन फील्ड में अभी मोस्ट ऑफ लेडीज आर डोमिनेटिंग, लेडीज एंड नॉन डॉक्टर्स, तो उसमें क्या वो लोगों को मैसेज नहीं जा रहा, वो लोगों को कन्विंस करना बोल तो बहुत पब्लिसिटी करना पड़ता, ये जो जो बच्चों को बेनिफिट हो रहा है वो लोगों को बताना पड़ता। देर शुड बी लॉट ऑफ सेशंस दैट मेडिसिन्स आर यूजफुल फॉर दिस चिल्ड्रन। मैं पीडियाट्रिशियन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट एंड आई हैव डन पीएचडी इन साइकोलॉजी आल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी एज ऑफ एट द एज ऑफ 50 आई हैव रिटन एग्जाम फॉर 5 डेज देन आई टुक 3 इयर्स टू सबमिट माई थीसिस एंड गॉट द पीएचडी। Not an honorary PhD as a showering name. I got President of India award 7 times. Ye Padma Shri person aaya. 5 times it was recommended. Abhi 6th time bola main ye last chance leta hu self nomination. Ab Modi ji sahab ke ye haya mein self nomination bhi hai. To main mera PA ko bola, wo mere computer utna naya tha. To bola bhai to chalo upload karte ja. किसी को नहीं बोलेंगे। आई डिडंट टेल माय वाइफ आल्सो। जनवरी में फोन आया, होम मिनिस्टर से फोन आया, देयर इज अ गुड न्यूज, वी वांट टू वी विल कांग्रेचुलेट यू। मैंने बोला सर क्या बात है, बोलता है ऐसा यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर पद्म अवार्ड। वो ये बोले तो मैं डू यू एक्सेप्ट, मैं बोला श्योर इट इज ऑनर। तो वैसा हुआ, जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ, उगादि के दिन एग्जैक्टली 1 ईयर नाउ टूडे। और एक चीज क्या है, इंसिडेंटली युगादि के दिन मैं स्वीकार स्टार्ट करा।
1: अच्छा। तो स्वीकार को भी युगादि के दिन पे उसके जन्मदिन की बहुत
0: मार्च बधाई। मार्च 17, 1977, 47 इयर्स हो गए अभी। तो अभी तक तो चल रहा है, अभी तो ज्यादा लोग ऑल ओवर द कंट्री से, फॉरेन से भी आ रहे हैं लोग ये मेडिसिन दे रहे हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो सम्मान है, जैसे आपने बताया 7 बार आपको राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ और इस वर्ष 2023 का आपको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, क्या इन सम्मान और पुरस्कारों की वजह से आपकी जो जर्नी है, जो यात्रा, वो थोड़ी सहज होती है या मुश्किलात उतनी ही आते रहते?
0: मुश्किलात में तो कुछ कमी नहीं हुआ, मगर एक ही क्या है, मैं आई गॉट रिचार्ज, माय एनर्जी गेट्स रिचार्ज। मैं डिमोरलाइज हुआ तो ये सब चीजें मेरे को रिचार्ज कर देते, आगे बढ़ाते रहते, प्रोपेल करते रहते, तो कहीं रुक नहीं पाया। ये जर्नी तो चलाते जा रहा हूँ आज तक भी। तो ये पद्मश्री पुरस्कार आने के बाद बहुत से लोगों को मालूम हुआ, उससे पहले बीच राय अवार्ड भी आया था, वो भी बहुत बड़ा अवार्ड है, प्रेसिडेंट से दिए हुए, मेडिकल फील्ड में बड़ा अवार्ड है वो भी, मगर पब्लिक को, जनरल पब्लिक को नहीं मालूम।
1: जब आप तो, राष्ट्रपति भवन गए पद्मश्री सम्मान लेने के लिए और जब आप राष्ट्रपति महोदय से मिले, तो क्या बातचीत हुई आपकी या कैसा रहा आपका?
0: नहीं अभी सब तो मैं आपको भिजाना, मैं भिजाता हूँ, मेरा वीडियो है अभी सब थे।
1: हाँ जी, आपका स्वीकार का मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा है, बट ये पुरस्कार का आप बता रहे?
0: पुरस्कार थे, पीएम साहब थे, अमित शाह थे, पूरे जयशंकर जी थे, सब शांतिवनम के दाजी थे
1: जी।
0: उनको मैं सामने देखा था, तो उनको भी जाके चरण प्रणाम करा, क्यों बोलते सब डिवाइन सोल्स है, वो लोगों को मिलना तो मुश्किल है। मैं बोला अपोजिट में, मेरे अपोजिट में बैठे थे, मैं उठ के जाके उधर चरण प्रणाम करके आया। तो वो एक सौभाग्य है, जब दर्शन हुआ तो भाई चलो अभी पीएम साहब और सबको मिले, एक एक को आके एक एक को करचालन करे, तो उनके सामने अपन बात नहीं कर सकते, इतना बड़ा पर्सनालिटी है ना, अपन अपना मुंह बंद हुआ था। तो फिर भी बोला मैं सो एंड सो और क्या बात कर सकते उनसे
1: जी।
0: सच्चे पर्सनालिटी एक, बस अभी क्या बोल सकते, अभी देखना है अभी कैसा कैसा अपना कंट्री तो आगे बढ़ रहा है। अब उन्होंने इतने चीजों के सामना कर रहे हैं, हम तो नाचीज है, हम जो चीज को हम सामना कर रहे हैं तो ये तो बहुत कम है।
1: ये मुझे जो चीज समझ में आता है कि आप वास्तव में आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आप उसका बिल्कुल भी अभिमान नहीं करते हैं और आप बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही नम्र चित्त हैं। इसीलिए मुझे ये उत्सुकता थी कि आपके सामने जब राष्ट्रपति महोदया थे, क्योंकि वह भी एक बहुत ऐसी नम्रचित्त व्यक्तित्व है जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन बिल्कुल ही निर्माण है, कोई अभिमान नहीं है, बहुत ही परेशानियों का सामना करते हुए आज वो उस मुकाम पे पहुंची है। तो मुझे वही लगा कि जब ऐसी दो हस्तियां आमने सामने होती है तो कैसा अनुभव होता होगा, इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा।
0: जी।
1: मुझे एक और चीज ये जानना था कि ऐसे आपके जीवन में आपने इतने सारे बच्चों के साथ समय गुजारा है, उनको समय दे करके, उनको चिकित्सा के द्वारा, उनको काउंसलिंग के द्वारा आपने बेहद मदद पहुंचाई है, स्वीकार, उपकार, रक्षा
0: आश्रय
1: और
0: सुरक्षा
1: आश्रय और सुरक्षा, इन चार माध्यमों से आपने उनके जीवन को एक सर्वांगीण विकास का रास्ता दिया है। इस दौरान आपके सामने कोई ऐसा केस, ऐसा कोई बच्चा आया हो जिसकी कहानी आपके दिल को छू गई या जिसके द्वारा एक आपको शिक्षा मिली, कोई ऐसी कहानी आई एक या दो?
0: ऐसा तो बहुत से है, एक तो आध बोल के भी नहीं है, बहुत से है। मैं एक दिन एक स्वीकार के नाम पे एक प्लॉट लिए थे वो साइट को जाने के लिए एक हार्डवेयर शॉप के पास रुका, वो इंक्वायरी कर रहा था, एक बच्चा आके नमस्कार करा, साहब मैं स्वीकार में पढ़ा, मैं स्वीकार में स्वीकार का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ अभी स्टील शॉप में काम कर रहा हूँ। तो मेरे साथ और एक दोस्त थे, उन्होंने बहरेन से आए जो थे, आनंद बाला बोल के, बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्होंने बोले डॉक्टर साहब कितना खुशी होता, वो आदमी आके हंसते हुए आपको विनम्रता से नमस्ते कर रहा है। मैं बोला हाँ भाई मेरे भी खुशी होता, वही आनंद है, वही हमारा प्रॉपर्टी है, हम तो ज्यादा कुछ कमाए नहीं है, मगर भगवान नहीं गिरा है हमारे, आनंद है। तो आत्मतृप्ति बोलते हैं ना, आत्मतृप्ति है, जब
1: जी, आत्मतृप्ति ही आनंद है और
0: आत्मतृप्ति जब
1: दूसरों
0: नहीं
1: का
0: रहता
1: जो
0: आदमी दुखी
1: खुशी है।
0: रहता, हाँ
1: जी,
0: दुखी रहता आदमी।
1: आत्मतृप्ति ही आनंद है और आनंद जो आपने बताया वो दूसरों की खुशी में।
0: बस
1: मुझे इसमें एक और चीज जानना था कि जैसे ये तो एक आपने ऐसा किस्सा बताया जो कि किसी बच्चे ने, जिसने कुछ उपकार प्राप्त किया है स्वीकार के द्वारा और उसके जीवन में संवर्धना हुई और फिर वो आपके सामने आया, क्या कभी कोई ऐसे लोगों की कहानी आपको सामने आती है या आपको याद आता हो कोई ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा किस्सा जहां लोग आपके जो अगेंस्ट थे, जो आपके विपरीत दिशा में खड़े थे, आपके कार्य को देखते हुए धीरे धीरे वो बदल गए, कोई ऐसा कोई कहानी आपको याद आता हो?
0: नहीं, ये कहा एक सेइंग है, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ, नो गुड वर्क कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिसिज्म, नो गुड वर्क कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिसिज्म, नो गुड वर्क कैन प्रोग्रेस विदाउट रेजिस्टेंस। मेरे को जितना क्रिटिसाइज कर रहे थे उतना आगे बढ़ते गया, मेरे को जितना रुकावट बढ़ते गया, मेरा प्रॉब्लम और इजी होता गया, मेरे ऊपर कोर्ट केसेस है, मैं एक्सेस बनाया बिल्डिंग, मैं बोला था मेरा प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो गिराने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया गया, इसको डिसमेंटलिंग नोटिस, वो भी बनाने के 15 साल के बाद। मैं बोले थोड़ी दुष्ट शक्तियां रहते, ये दुष्ट शक्तियां क्या है, यज्ञ भंग करने के लिए राक्षस संतान भी रहता ना, ये मैं कर रहा था यज्ञ है, वो यज्ञ को भंग करने के लिए बहुत से दुष्ट शक्तियां पैदा होते। तो मेरे को कोर्ट को खींचे, मैं बोला चला था गया, अब कड़पा में 10 एकड़ तुम्हारे कई को हमारे को दे दो, 9 एकड़, कलेक्टर नोटिस दे दिया, वहां भी केस चल रहा, तो केस मेरे फेवर में आया, मगर दुखी हो जाते हम, कितना परेशान होना पड़ता, कोर्ट को जाना, वो ये सब बड़ी चिंता की बात है। अब बिल्डिंग गिराना बोल के बोल नोटिस दिया तो कोर्ट को जाना पड़ता, मैं एक तीन चार मरता गया, मैं बोला भाई मैं कोर्ट को नहीं आता, क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या, हम अच्छे भावना से बनाए, मेरा तो प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक कुर्सी भी मेरा नहीं है। तो मेरा पीए को लगाया, एक बच्चा है, यंग बच्चा है, पूरा उन्हें कोर्ट को घूमता, उसको पर वो जीपीआई दे दिया, वो पूरा कोर्ट को उन्हें फिरता है। तो इतने संघर्ष करना पड़ा मेरे को, कहीं इजी वर्क नहीं चला मेरा, आज भी बहुत से बड़े बड़े बहुत पैसा ऐसे वाले नहीं दिए मेरे को पैसे, छोटे आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, उन्हें मंथली पेंशन रहे तो साल को एक मरतब आके 1-20 हज़ार दे के जाता था। डॉक्टर साहब अब मैं डॉक्टर साहब को मिल सकता हूँ क्या, नहीं बराबर मिल सकते, मेरे फोन आए नीचे से, एक एक साहब है हर साल अपने को 20 हज़ार देते, उन्हें मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो हम ठीक है भाई लेको चलते के व्हील चेयर में लाओ, नहीं नहीं विद सपोर्ट इज वॉकिंग, नहीं व्हील चेयर में लेके आ बोला, ये रिफ्यूज टू कम ऑन व्हील चेयर। तो आदमी को पकड़ के सपोर्ट से आ गया ऊपर, मैं उठ के नमस्कार करा, पेट में मुंडी डाला, नहीं, आप उठना नहीं, आप महान है, मैं बोला मैं कहाँ से महान हूँ, आप ईंधन है, मैं इंजन हूँ, बगैर ईंधन का इंजन नहीं चलेगा, बोला
1: इंजन नहीं चलेगा, बगैर फ्यूल के तो नहीं चल सकते।
0: आपके आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बहुत एजेड था आदमी, मैं ऐसा झुक के नमस्कार किया तो वो रो लिया आदमी। मैं बोला नहीं नहीं ये आप भी भागीदारी है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। एक ने एक आदमी से नहीं होता, बार बार बोलता हूँ। कोई लकड़ी डालता, कोई घी डालता, कोई पंचदान डालता, कोई प्रेयर पढ़ता, बोला आप सब लोग भागीदारी है इसमें। तो अपने अपने अकाउंट सेपरेट है, उसके बाद ईश्वर के पास ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, बेनामी अकाउंट नहीं है वहाँ। जो आप ठीक काम करते हैं, नेकी करते हैं, वहीं जाता है, सेपरेट अकाउंट में जाता है। मैं तो खाली एक इंसान हूँ। तो दूसरे लोग मेरे को एक दिन नीचे आ रहा था बंगले, वो थर्ड फ्लोर से, मेरा ऑफिस थर्ड फ्लोर पे, डॉक्टर साहब आप इतने लोगों को पैसा पूछते, मैं अकेला दे सकता हूँ पैसे, ऐसा देखा मैं। ठीक है, तो मैं मेरे बच्चे अच्छा कर दो देता हूँ। मैं बोला मैं नहीं कर सकता आपके बच्चे, ईश्वर मेरे को सब कुंजिया नहीं दिया, थोड़ा ज्ञान दिया है, थोड़ा बुद्धि दिया है, थोड़ी कुंजियां दिया है, उसी को ऑपरेट करता हूँ, वो उसी की कृपा है, अब उसी को पूछो, मैं नहीं दे सकता, अब मैं आपके पैसा भी नको। तो फिर एक बात बोला, आप ऊपर वाले से बिजनेस कर रहे हैं, आप मेरे से बिजनेस नहीं कर रहे, आपके जरा बुद्धि जो है चेंज होना है। मैं हमेशा ये करता हूँ कि किसी को तो नहीं छोड़ता, उसको एक झलक तो देता हूँ। क्यों बोलते हो, विद्यादान हर एक को एक झलक दे दू। बस मैं ये तो समझा दिया, देखो आपका बच्चे को मैं अच्छा नहीं कर सका, देखा बहुत से बच्चों को तो फायदा हो रहा ना, ये स्वार्थ छोड़ दो आप। जब आपका नियत ठीक रहता है, भगवान की कृपा आपके ऊपर आता है।
1: ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब व्यक्ति का नियत साफ होता है तो मुराद हासिल होता है, अर्थात जब उसकी नियत साफ है, दिल साफ है, तो ऊपर वाला भी बैठा होता है मेहरबानी उसके ऊपर झड़काने के लिए, उसके ऊपर मेहरबानी होती रहती है। मुझे आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना है, वो ये कि आज कई लोग, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, युवा जो है, एक दिशा ढूंढ रहा होता है, वो अपने जीवन में कोई जॉब ढूंढ रहा होता है या कोई स्टार्टअप करता है, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हो, उद्देश्य तो उसका यही होता है कि इससे लोगों का भला। लेकिन उस रास्ते में चलते चलते कई बार वो इतने उलझ जाते हैं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया था उस काम को, वो उद्देश्य पीछे रह जाता है और भागम भाग दौड़ ये बहुत आगे निकल जाता है। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, कौन सी चीजें एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिससे वो किसी भी समस्या का समाधान कर सके, या कौन सी वो बातें एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिससे जो उन्होंने उद्देश्य लिया है उस उद्देश्य को वो मूल रूप से पकड़ के रखे, उसमें कोई घोल मेल या उसमें कोई जो बाहरी तत्वों का सम्मेलन हो जाता है वो ना, उसकी प्यूरिटी को कैसे मेंटेन करे, किसी भी यज्ञ के भाव को कैसे संजो करके रखा जा सके।
0: मैं इंडिया में 32 कोर्सेज स्टार्ट करा था, वही माध्यम से क्या है, ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग करूंगा, ज्यादा लोग जाके सर्विस करेंगे। एक डॉक्टर मतलब कितने लोगों को सर्विस कर, तो बहुत से स्पेशलिस्ट आना बोल के 9700 स्पेशलिस्ट को मैं डेवलप करा। देयर इज एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वीकार टू द सोसाइटी, बट वेरी फ्यू रियलाइज माई कंट्रीब्यूशन। लोग समझते कि पैसा आता, पैसा कहाँ से आता, 25-35 thousand दिए तो मैं डिग्री बताया, आज एक एक बच्चा जो है महीने को 2-3 lakh भी कमाता है, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी क्लिनिक लगा के, एक एक को 6-6 क्लिनिक भी है हमारे स्टूडेंट मेरे पास जो पढ़े, जो 25,000 साल को दिए। मैं तो आज बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्पॉन्सर करता हूँ, क्वार्टरली मैं 25,000 देता हूँ हाई स्कूल बच्चे को। मैं उसको डिग्री कराया और कड़पा में कराया डिग्री, गुंडूर में कराया, मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, मेरा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट क्या है, वो कोई नहीं सोचा। बच्चे अभी ज्यादा परिवर्तन है जनरेशन में, कोई चीज की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। मैं परसों मीटिंग लगाया तो बोला, मैं बोला भाई तुम समझ रहे हैं कि मेरे पास 25,000 में तुम डिग्री खरीद लिए, क्या कॉस्ट हुआ मेरे को तुमको पढ़ाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इज माइन, ऑपरेशनल कॉस्ट इज माइन, और कितना हम कितने चीजों का सामना करा, कितना दुखी हो गए तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो मगर अभी बहुत ये लोगों में स्पिरिचुअल नॉलेज के वैक्यूम हो गए, दे आर स्पिरिचुअली सार्व्ड दिस जनरेशन। तो मैं परसों बोल रहा था कृष्णा बहन से, माधवी बहन से और 2-3 लोगों से, हमारे पास ये लोगों का में परिवर्तन लाना है, अपना भी गलती है। क्यों बोलो तो भगवान सबको सद्बुद्धि नहीं देता, दे नो द सब्जेक्ट व्हाट इज इन द बुक्स, दे डोंट नो व्हाट इज इन बिटवीन लाइंस, दैट इज ह्यूमन साइंस। ह्यूमन साइंस जो ज्ञानी रहते हैं वही दे सकते, ह्यूमन साइंस कोई किताब में नहीं पढ़ा हुआ रहता।
1: ये आपने बहुत ही अंदरूनी बात को टच किया आपने, कि व्यक्ति किताब पढ़ सकता है लेकिन किताब के अंदर में जो ज्ञान निहित है उसको समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं होती। और आज का जो जनरेशन है उसे आवश्यकता सबसे ज्यादा अधिक आध्यात्मिक बल की है, आत्मिक बल की है, जिसके वजह से ही लोग इतनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर आध्यात्मिक बल है, आत्मिक बल है, तो वो समस्या कोई समस्या नहीं लगेगी, व्यक्ति उसका सामना आसानी से कर सकता। और दूसरी जो बात आपने कही कि महत्व, कोई भी चीज का जो गूढ़ महत्व है उसको समझना, उसे उस महत्व से सम्मान देना, ये हमारे में कहीं कमी रह जाती है। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई। आप भारत के कई स्थानों का भ्रमण कर चुके हैं, भारत में कई जगहों पर जा चुके हैं, कौन सी ऐसी बात आपको अनोखी लगती है पूरे भारत में जो कि पूरे भारत को एक करती, भारत को अनेक या विविध बनाने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोई एक चीज जो पूरे भारत देश को जोड़ती है आपके हिसाब से वो कौन सी बात?
0: वही सनातन धर्म है, वही स्पिरिचुअल नॉलेज है। विनी पीपल द प्रेजेंट जनरेशन स्पिरिचुअली स्टार्ड, दे आर रनिंग लाइक मैड रेस। पैसा पैसा पैसा कितना जरूरत है, हाउ मच यू ब्रॉट, हाउ मच यू आर गोइंग टू टेक, हाउ मच हैप्पीनेस इट गिव्स। द मोर मनी आई हैव सीन पीपल, दे आर मोर अनहैप्पी। Happiness is not bought with money. तो अभी मैं देखता हूँ, अभी जनरेशन में, अभी आगे जनरेशन में चेंज लाना है बोले तो अपने वैसे लोगों ही लाना, आध्यात्मिक धार्मिक ये सब स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेना है, बहुत से सनातन धर्म को रिवाइव करना है। अब मोदी साहब ये 5-10 साल में तो बहुत परिवर्तन लाए, बहुत से परिवर्तन लाए। अब मैं माउंट आबू भी गया था, कितना शांति रहता, कितना एक किस्म का आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। See, every human is not a human. In every human being, there will not be humanity. एक हिंदी में कहा, हर एक आदमी इंसान नहीं होता है, हर एक इंसान में इंसानियत नहीं रहता है। So, people think that by having degrees, he is not a human being, in my view. Having degree, having qualification, having money, is inhuman. तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अब मैं 96 lakhs patients को सर्विस दिया, 9,700 स्टूडेंट्स को पीजी डिप्लोमा, पीजी पोस्ट पीजी डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अमिटी यूनिवर्सिटी और माई, ये कोर्स। अभी क्या है, अभी बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ क्लैश इन देम, बिकॉज द मास्टर ट्रेनर्स आर वेरी फ्यू, दे आर नॉट हैविंग स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस गैप इज इन टर्मॉइल। बगैर अटेंडेंस के बच्चे पास होना चाहते, क्लासेस को नहीं आना चाहते, और टीचर सीख रहा है उसके ऊपर कुछ तो भी एलिगेशन लगाते, तो उसको कहीं तो भी फंसा देते। अब टीचर रिजाइन हुआ था, मेरे को मैन पावर नहीं तो कहाँ से लाना, बहुत बड़ा मुश्किल होता। अभी यही साल से मेरा एक कोर्स डी रिकग्नाइज करे स्पीच एंड ऑडियोलॉजी का, भाई ऑनलाइन उन्होंने दिल्ली से करता है, मेरे पीपल नॉट ट्रेन टू गिव ऑनलाइन इंस्पेक्शन को ट्रेन नहीं है, जो आदमी उन्हें इंस्पेक्ट कर रहा उन्हें भी ट्रेंड नहीं है। मेडिकल काउंसिल के वजह से रिहैबिलिटेशन काउंसिल है संस्था, भाई संस्था में मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ गैप्स आ रहा है सोसाइटी कैसा डैमेज हो रहा है। अब जितना मैं दुखी होगा, इतना तकलीफ मैं उठाया, मैं बोला भाई कोर्सेज बंद कर दो, ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद कर दिया, अब दूसरे प्लेयर से चला ना दो। मैं अब 79 ईयर्स हूँ, अब कितना वजन उठा सकता हूँ, फिर भी मेरे भगवान जो शक्ति दिया ज्यादा ही उठाया। अभी फर्स्ट कोर्स मैं ये स्पीच एंड ऑडियोलॉजी का बंद कर दिया, मैं बोला नेक्स्ट ईयर से मेरा कोई कोर्स रन नहीं करूंगा, बिकॉज ये जो परिवर्तन है बच्चों में, यंगर जनरेशन में पढ़ रहे भी नहीं, डायरेक्ट एग्जाम को जाता हूँ बोलते, कैसा करता हूँ दूसरे को, कैसा सर्विस देता हूँ, पैसा कमाता, तो इसको मैं अपने अकेले चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत बड़ा मोदी जी तो कर रहे हैं, उन्होंने अकेले भी करना कर रहे हैं, कोई तो भी करना पड़ता, एक नहीं और 10 लोगों के साथ करना पड़ता। वी कांट गो नेगेटिवली, ऑलवेज वी मस्ट हैव पॉजिटिव वाइब्स, आई बिलीव आई एम अ पॉजिटिव थिंकर।
1: दो चीज जो आपने बताई जो भारत को एक करती है, एक तो आध्यात्मिक भूख लोगों की या आध्यात्मिक आवश्यकताएं लोगों की जो की समान बनाती है, और दूसरा जो आपने बताया कि वही आवश्यकता जो है जब सामर्थ्य में बदल जाती है तब पूरे भारत देश में हम परिवर्तन ला सकते हैं। भारत को यशस्वी बना सकते हैं जैसे कि आपने बनाया। हम चलते हैं एक रैपिड फायर राउंड की तरह, जिसमें मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द में देना होगा। आर यू रेडी?
0: यस।
1: सबसे पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: सेवा विच यू शेयर अदर पर्सन प्रॉब्लम, विच यू मेक अदर पर्सन लाइफ इजी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज सेवा, निष्काम सेवा। भाई कुछ अपन कोई लोगों से अपना आनंद क्या है, किसी का दुख बांट दिए, किसी को कुछ वेलफेयर का कुछ इसमें अपन हिस्सेदार बने, उसका दुखी में भागीदार कम करे, किसी को संतोष ऐड करे, बस वही सेवा। किसी कोई एक्सपेक्टेशन करना सेवा है, नहीं तो भाई को बहन को मैं सब भाइयों को सबको ऊपर लाया, वो सेवा नहीं है, वो मेरा धर्म था।
1: आशा से परे व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को अगर हम समाधान कर सके तो वो सेवा है।
0: हाँ, विदाउट आशा वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। भाई बहन को करना तो धर्म है, कर रहे हैं। रियल सर्विस इज वन विच यू डू समथिंग टू समबडी हु इज नोबडी टू यू, समथिंग टू समबडी इज नोबडी टू यू, दैट इज सर्विस। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग मीन्स लविंग, लविंग इज डिवाइन, डिविनिटी इज गॉडलीनेस।
1: बहुत सुंदर आपने बताया, ये बहुत ही सुंदर बात बताई कि उसके लिए कुछ करें जो आपके लिए कुछ भी नहीं हो, और जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हो उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वही सेवा है।
0: बस
1: दूसरा सवाल, शांति क्या है?
0: जब आत्मतृप्ति रहता है शांति रहता है।
1: आत्मतृप्ति ही शांति है। सुख क्या है?
0: जब तुम कोई चीज अपेक्षा करते हैं, कोई चीज नहीं पाते हैं, वो जब दुखी होता आदमी, सो ज्यादा कोई चीज को न्याय कुछ फीलिंग होना नहीं अपने पास, ग्रीडी नहीं, कुछ जो जो भी दिया भाई वो दे दिया, बस मेरा भाग में इतना ही। हाँ, तो उसमें दुखी होने का सवाल ही नहीं है, बस अरे के कर्मा कर्मानुसार कर्म सिद्धांत जो करते रहते ना, बस अरे को आना है जाना है, अपना टाइम टेन्योर में अपना जर्नी जब है जितना करे अपन आनंद है। गॉड हैज गिवन मी अ चांस टू डू समथिंग टू समबडी हु इज नोबडी टू मी, एंड दैट टू द नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जब मदर बोलती है मेरा बच्चा बात कर रहा है अभी बहुत अच्छा है, तो हमारा दिल भर जाता है। मैं बोलता हूँ फीस आज क्यों बढ़ा है, मैं आज फीस बढ़ा है, मैं क्यों बढ़ा है, मैं तुम लोगों से अभी क्या करता हूँ, अभी कमा के क्या करता हूँ मैं पैसा, इतने साल ही मैंने नहीं करा, मेरा 200-300 फीस था 40 साल तक, अभी मैं बढ़ा है क्यों, बोलते मैं वैल्यू करने के लिए एवरीथिंग, एनी डॉक्टर क्योर्स फ्री क्योर्स नथिंग, कोई चीज पकड़ में आया ना उसका वैल्यू नहीं रहता, उसका वैल्यू रहना बोल तो पार्टिसिपेशन रहना।
1: इसलिए लोगों के अंदर ये जागरूकता लाने के लिए कि जो चीजें उनके सामने रखी जा रही हैं वो बहुत बहुमूल्य है, इस वजह से उसका मूल्य आपने थोड़ा बढ़ाया। अगले कुछ सवाल जो है वो बड़े ही शॉर्ट है, जिनका जवाब आपको एक या दो शब्द में ही देना है, तो स्वीकार क्या है?
0: स्वीकार to accept the persons who are not cared, who are rejected in the family, even by their own parents, disowned, I want to accept them. They are God's lesser children, forgotten children of society. So that is Swikar. One must have a big heart. Mother is dejected, she is frustrated, she is cursing the God. Kyon diya mere ko aisa bachcha? Usme you are creating a hope to the people who lost hope. You are creating a smile on their faces.
1: तो इसका मतलब स्वीकार जो है वो आशा है, एक शब्द में अगर बोले तो।
0: हाँ।
1: उपकार क्या है?
0: भाई मैं एक्सेप्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है उसको, अगर मैं कोई अच्छा नहीं करूंगा कोई मतलब ही नहीं है। आई हैव टू गिव बैक, गॉड हैज गिवन मी टैलेंट, गॉड हैज गिवन मी एनर्जी, गॉड हैज गिवन मी मनी आल्सो, सो लेट मी गिव इट, लेट मी क्रिएट अ रे ऑफ होप ऑन द अदर्स।
1: इसका मतलब अगर स्वीकार किया लेकिन साथ में कुछ वैल्यू नहीं ऐड किया, उसमें कुछ उपकार नहीं किया, तो उस स्वीकारने का कोई
0: मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं।
1: इसका मतलब स्वीकार अगर आशा है तो उपकार उसका अर्थ है, उस स्वीकारने का अर्थ जो है वो उपकार है, कि सही मायने में स्वीकारना अर्थात उसका कुछ उपकार करना। भारत क्या है?
0: एक भारत पुण्य भूमि है, ये जो अपन भारतवासी है, भारत में जन्म लिए, भारत माता के सुपुत्र है अपन, धन्य है अपन।
1: आखिरी सवाल, हनुमंत राव कौन? एक शब्द में।
0: हम कुछ भी नहीं है।
1: नहीं नहीं कुछ तो है, क्या है वो सोच के बताइए।
0: भगवान का देन है और कुछ नहीं।
1: बहुत सुंदर, हनुमंत राव जो है भगवान का दिया हुआ एक देन है समाज को, जिसके द्वारा समाज में इतना प्रकाश फैल रहा है जो कईयों के जीवन के अंधकार को मिटा रहा है। डॉक्टर पी हनुमंत राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद दोबारा हम करना चाहेंगे। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, अपने जीवन के इतने गूढ़ ज्ञान को हमारे साथ शेयर किया। लेकिन स्वागत इसलिए करना चाहेंगे कि आपने जो कहा कि बाकी लोग दुनिया का बहुत भला कर रहे हैं लेकिन आप भी कर रहे हैं, तो आप भी उसी दल का एक हिस्सा है, और मैं तो कहूंगा केवल हिस्सा नहीं, आप एक नेता हैं जिनके नेतृत्व में बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा स्वागत इसलिए भी करना चाहेंगे कि आप दोबारा माउंट आबू आए, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में दोबारा आए और दोबारा हमारे श्रोता साथियों के साथ जुड़े, हमसे बातें करें और भी कई विषयों पर बात करें। आज तो समय की सीमा थी इसलिए हम बात नहीं कर सके, लेकिन अगली बार हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार से हम ऐसे लोगों का जो हमारे आसपास में है, जो कई प्रकार के मानसिक समस्याओं का शिकार है, उन्हें हम कैसे थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। अगले एपिसोड में दोबारा हम मिलेंगे आपके बीच में एक और ऐसी हस्ती को लेकर के आएंगे जिनके जीवन से हम हमारे जीवन को रोशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो मधुबन। हर कार्यक्रम ही रेडियो मधुबन का शानदार होता है, लेकिन जी हाँ जरूर, यशस्वी भारत कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा 107.8 FM पर रेडियो मधुबन।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: नमस्कार, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। संगीत प्रत्येक मानव जीवन में अपरिहार्य है। संगीत मानव को रूप, रस, छंद में सूक्ष्ममंडित करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि मानव को पूर्णता प्रदान करता है। संगीत से ही हमें आनंद की अनुभूति कर औरों को भी हम आनंदित करा सकते हैं। संगीत जैसा निष्पाप साथी और बंधु संसार में और कोई नहीं बन सकता, इसलिए संगीत इतना सर्वप्रिय होता है। तो आइए, संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: हाँ जी गीता जी, आपको भी और सबको दिल से स्वागत करती हूँ।
7: आज श्यामली जी हमें आगे क्या सिखाने वाले हैं?
8: हाँ, पिछले एपिसोड में हम राग केदार शुरू किया है, आज तो उसका स्वरलिपि दे दिया था, आज तो बंदिश दे देंगे, थोड़ा तान करेंगे, विसर करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा जानकारी दे देते हैं। ये जो राग है कलन ठाटकी है, करीमा सुधमा दोनों ही यूज होता है। और गा थोड़ा वीक है, इसलिए हमने कहा था वर्जित है, गा अवरोह में एकदम वीक, जैसे गा वर्जित स्वर है लेकिन कभी कभी गा वीक है, इसके लिए ज्यादा ठहरते नहीं है, जो स्वर में ठहरते हैं वो ठहरते नहीं है। तो हम तो करके सुनाएंगे, फिर दोबारा समझा देंगे। और जो नी विवादी स्वर है उसको भी थोड़ा दिखाएंगे, कैसे करना है, कैसे लगाना है
7: जी।
8: तो और भी एक वाइटल मैसेज है कि इसमें जो हम जब कोई राग करते हैं, सा पा सा गुटी दबा कर करते हैं हारमोनियम में, तो इसमें माँ वाइटल स्वर है, इसलिए क्या करेंगे, माँ को सा मा सा करके करेंगे
7: जी,
8: पानी लगाएंगे, सा मा ज्यादा ब्यूटी आती है, सा मा सा करके करेंगे। ठीक है, तो आगे थोड़ा जो आज स्थाई अंतरा दे देते हैं, जो बोल है बंदिश जो है बोल थोड़ा सुना देते हैं लिसनर को। अगर किताब पेन लेकर बैठते हैं तो अच्छा है
7: जी।
8: तो स्थाई का जो बोल है, मोड़ा बोले रे सावन की रूते वन वन डार डारे, बहुत सुंदर जो बंदिश है। सावन की महीने की जो है, जब मोरा बोल रहे हैं, मोर बोलते हैं, इसका छवि इसमें है। मोरा बोले रे सावन की रूते बन बन डार डार, बन बन में मोरा बोलते हैं सावन की ऋतु में। और अंतरा जो है, आज पिया घर आए मोरे सजनी ले हू बलैया बार बार, दोबारा बोलती हूँ। आज पिया घर आए मोरे सजनी ले हू बलैया बार बार। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने पिछले एपिसोड में जो स्वरलिपि दिया है, शायद लिसनर बहुत अच्छा से उसको निभाया है, प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस बिना तो कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करना चाहिए। और आ करके हमने बताया कि आकर सहित करेंगे तो बहुत अच्छा है
7: जी।
8: तो अभी हम क्या करेंगे, जब स्वरलिपि के साथ ये दे देंगे, ये बंदिश बैठा देंगे, बहुत सहज से वो कर सकते हैं। ठीक है
7: जी जी।

हमने जो स्थाई का थोड़ा दिखाया है पहले रिसर्च को पिछले एपिसोड में बताया कि ये जो एक तल की ऊपर जो विलंबित है इसमें एक तल के जो 12 मात्रा है 12 के साथ अगर 4 इंटू करेंगे तो 48 मात्रा होंगे। तो एक एक मात्रा में चार चार मात्रा प्लस होता है। तो हमने बताया कि मुकरा जो होता है सोम के चार मात्रा आगे से शुरू होता है, जैसे मोरा बोली बो के ऊपर मोरा बो के ऊपर सोम है। फिर से मैं दोहराती हूँ, ठीक है।

0: ये हमने जो स्थाई का जो है, स्थाई का जो बोल है, हमने जो धुन दिया था, स्वरलिपि दिया था, उसमें बैठा दिया। अगर लिसनर बहुत अच्छा से वो प्रैक्टिस किया है स्वरलिपि को, ये जो हमने बंदेज दिया है वो बैठन में कोई मेहनत नहीं लगेगी, आसानी से सहजता से बैठ जाएंगे
1: जी।
0: ठीक है
1: श्यामली जी, आपसे और भी आगे केदार राग में सीखेंगे, मगर अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक में हम केदार राग से संबंधित एक मीठे से प्यारे से गीत का आनंद लेंगे। पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में।

0: उन आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले श्यामली जी से हमने केदार राग की स्वर लिपि के साथ बंदिश भी सीखी। अब आगे श्यामली जी हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, स्थाई तो हो गया, अभी अंतरा बाकी है
0: जी।
1: अंतरा फिर से स्वर लिपि करके रिपीट करती हूँ और उसके साथ बंदिश बैठा देती हूँ।

0: काही किया, स्थाई के बंदिश किया, अंतरा का बंदिश किया, उसके सब विस्तार किया। इतना जल्दी नहीं होंगे, गुरु के पास तो शिक्षा जरूर लेना है। थोड़ा सा नमूना दिखाया, थोड़ा दुगुण चार गुण ऐसे किया, थोड़ा आकर के किया है, थोड़ा लिसनर अच्छे से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, गुरु के पास शिक्षा लेंगे तो कर सकते हैं बहुत अच्छा से। क्योंकि ये विलंबित जो है 48 मात्रा की है ना, पूरा आवर्तन घूम के आना है, एकदम मैथमेटिकली उसको करना है।
1: आप जैसे बोलते हैं वैसे अभ्यास भी हमारे श्रोता मित्र करते होंगे, रियाज भी करते होंगे। श्यामली जी, आज आप हमारे लिए खास कौन सा गीत लेकर आए हैं जाते जाते?
0: हाँ, बहुत सुंदर एक हमने भजन लाए हैं, नरसी भगत जो अच्छा। फिल्म है बहुत पुराने फिल्म है, हेमंत कुमार जी और के साथ मानना जी, मानना दे जी भी है और के साथ और भी साथियां हैं, तो बहुत सुंदर। दर्शन दो घनश्याम, बहुत सुंदर
1: जी।

0: आप ऐसे गाएंगे तो जरूर घनश्याम भी देंगे दर्शन। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, भक्तिमय वातावरण हो गया
1: जी।
0: श्यामली जी, समय करता है इशारा इजाजत लेने का। पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9914151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 107.8 एफएम द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक महिला अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था के बीच किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
1: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी माँ रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की माँ बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती है और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहाँ क्या चल रहा है।
2: बीनणी, ए बीनणी, कटे परी की, मारा पग घना दुख है, थोड़ा दबा तो।
3: माँ जी, मने घना चक्कर आ रहा है माँ जी, मारी तबियत ठीक कोनी, सुबह 4 बजा की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजा तक काम कर रही हूँ, अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
2: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, अनि दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 60 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी।
3: माँ जी, आपको समय अलग हो।
2: सामने बोल रही थू, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोले।
4: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
3: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रो, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठा ही रहा हूँ।
4: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
3: थाने खबर है कि मारो पूरो टाइम चल रो, मारो सु काम कोनी हो रहो, क्या समझाऊ थाने, आ आ मारो पेट दुख रहो। आ
4: पुष्पा, पुष्पा कई होयो थारे, माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई होयो।
2: अरे कई नहीं होयो, जा दाईमा ने बुला ला, बालक ने जन्म दिवारी पीड़ा है। बीनणी सुन, मारे तो पोतो ही चाहिए।
5: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
2: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
5: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बीनणी और बालक दो घना कमजोर है, या को ध्यान रख जो, मैं जाऊं। राम राम।
2: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान रखो।
3: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
2: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता दर्दता मूर्ति छोरिया ने घने माथा पर नहीं बिठानी।
3: सो जाए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम नई दुनिया नए जमाने में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मध्य हैं एनवायरमेंटल साइंस एंड PhD इन कंजर्वेशन बायोलॉजी से डॉक्टर सुनील दुबे जी, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एनवायरमेंटल साइंस में, और प्रीवियस एपिसोड में भी हमने उनसे बातचीत की थी और हमने अरावली की कहानी जाना था, कैसे अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति के बारे में भी जाना था। इसके साथ साथ क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं प्राणी जगत में भी जो अरावली के क्षेत्र में रहा करते थे, और इसके साथ साथ इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हमने जाना था, परिवर्तन के बारे में भी सर से सुना था, और जनमानस रहा करते थे, और चंद्रावती नगरी के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना था। तो सर, मछलियों के बारे में भी पिछले एपिसोड में जिक्र किए थे, तो आगे हम सर से जानेंगे कि ये सब चीजें जो हमारे यहाँ हुआ करता था तो वो क्षय होने लगे हैं, और क्यों, और उसको कैसे हम बचा सकते हैं, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: देखिए, अरावली के उत्पत्ति से लेकर के और अभी तक उसमें जो बदलाव आए हैं वो पृथ्वी के उद्विकास, पृथ्वी के अपनी प्राकृतिक जो गतिविधियां हैं और उनसे होने वाले इसके जो भौगोलिक बदलाव हैं वो हमें दिखाई देता है। जब गोंडवाना लैंड यानी पूरी पृथ्वी पर ऊपर जो परतें बनी, फिर उनमें दरारें पड़ी, फिर वो प्लेटों के रूप में इधर उधर सर के अरेंज हुए, और आज जो अरेंजमेंट है महाद्वीपीय प्लेटें जो कहलाती हैं, लेकिन ये महाद्वीपीय प्लेटें जो वो स्थलीय भाग है जो हमको दिखाई देता है, लेकिन समुद्र भी उन्हीं प्लेटों पर ही भरा हुआ पानी है, और इस पूरे इन प्लेटों के नीचे दहकता उबलता लावा आज भी है, और ये जो ऊपर की जो पतली परत पृथ्वी की जो है ठंडी हुई, जिस पर हमारी अब तक 4 अरब साल में जो भी सभ्यताएं विकसित हुई है, अरावली का जो फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में यहाँ पृथ्वी पर जो जीवन की प्रारंभिक अवस्थाएं विकसित हुई थी लगभग 3.5 अरब साल पहले से लेकर के और अभी तक भी वो चल रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी उन अवस्थाओं का विकास अरावली के फॉर्मेशन के समय लगभग 2 अरब साल पहले अरावली के क्षेत्रों में भी हुआ, जिस पर मैंने पहले बात रखी। फिर अरावली का जो आज भारतीय उपमहाद्वीप जो एशिया से लग के टकरा करके जो हिमालय बना, और ये टकराहट अभी भी जारी है एशियन प्लेट के साथ में भारतीय उपमहाद्वीप की, और उसके कारण हिमालय में तो जो सेटलमेंट हो रहा है उस टकराहट से और गुरुत्व के प्रभाव में उनका नीचे सरकना और वहां पर भूस्खलन होना वगैरह, लेकिन उसके साथ अरावली के अंदर भी और बाकी के देश में भी जो पर्वतमालाएं हैं उनमें भी उन कंपनों से जो है वो बदलाव आते हैं। दूसरा, पृथ्वी के नीचे की प्लेट जो ठंडी हुई है वो नीचे और ठंडी होती जाएगी। जैसे दूध पर मलाई पहले बनती है तो पतली बनती है, फिर मोटी बनती जाती है जब तक दूध पूरा ठंडा ना हो, तो उसी तरह से इन अंदर भूगर्भीय प्लेटों के बदलाव के कारण ये दो तरह की है। एक तो ये कि जो एक दूसरे से दूर जा रही है टूट करके, दूसरी जो तैरती हुई एक दूसरे की तरफ आकर के टकरा भी रही। तो अरावली के अंदर इन सब हलचलों से जो प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं वो तो है, और आज जो अरावली का फॉर्मेशन है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसके अनुसार भी अरावली का जो पूरा राजस्थान के पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव है, पूरे राजस्थान का पारिस्थितिकीय तंत्र एक जैसा नहीं है। आज जो 12-13 हजार साल पहले जहां पर सिंधु और सहायक नदियों का पूरा बड़ा बहाव क्षेत्र था और वो फिर थार मरुस्थल में बदल गया, वो आज रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जिसमें लूनी और जो लूनी नदी आज भी थोड़ा सा बची हुई है जो अजमेर के नाग पहाड़ों से उसका पर्वत श्रेणियों से उसका उद्गम है, और आज वो अरब सागर में न जाकर के रेगिस्तान में ही समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ ये जो अरावली का जो अभी पहाड़ियों का जो ओरिएंटेशन है राजस्थान में, उनमें जो का उत्तरी भाग है, मध्य भाग है, दक्षिणी भाग है, लेकिन अरावली के पूर्व की तरफ में बहुत सारी नदियां जिनमें बनास है, माही है, बाणगंगा है, साहिबी है, गंभीरी है, वराह नदियां, इन सब के कैचमेंट बेसिन एरिया जो कहलाते हैं, यानी पानी इकट्ठा होकर के बहकर के इन नदियों के माध्यम से जाता है, और दक्षिण पूर्व में अरावलियों के दक्षिण पूर्व में जो चंबल नदी का बेसिन है और नदी घाटी है जिसको डांग क्षेत्र भी आगे हम कहते हैं। ये अरावली पर्वतमालाएं जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों की जल विभाजक रेखा का काम करती है राजस्थान से, तो ये इसका जो भौगोलिक महत्व रहा, उसके साथ में जो परिवर्तन प्राकृतिक आए उनके कारण आज जो अरावली में फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरावली के राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल लेस देन 5% एरिया में हमारा वन क्षेत्र है, यानी जिनको हम सघन, मध्यम सघन और छितराया जंगल कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो पूरे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.86% ये लगभग का जो है, इसे आप लेस देन 5% ले लें क्योंकि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं, ये केवल इतना वन क्षेत्र है। और ये वन क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ है राजस्थान में भी, वो है अरावली के जो पूर्व दिशा से लगे हुए जिले हैं, पूर्व दिशा में स्थित जिले हैं, उनमें राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 75% फॉरेस्ट वहाँ पाया जाता है। यानी वेस्टर्न पार्ट्स में बहुत कम वन क्षेत्र है जो अरावली के पश्चिम की तरफ जो कहलाते हैं, इसीलिए वो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, मरुस्थलीय जिले कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर शुष्क परिस्थितियां हैं, अर्ध शुष्क परिस्थितियां हैं। आज वहां रेगिस्तानी इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ रहा है, शुष्कता और बढ़ रही है, और उसके कारण जो है ये अरावली उस रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र और फिर इसके पूर्व की तरफ जो सघन वन, जो राजस्थान के कुल फॉरेस्ट का 75% है, और इसमें आपके पाली और सिरोही जिसमें माउंट आबू और यहाँ का जिला भी है, इनको भी मिला लें तो कुल वन क्षेत्र का 95% तो इन 22 जिलों में मिलता है। यदि आज राजस्थान के 50 जिले हुए, पहले हम 33 जिले थे उसमें से देखें, तो पूर्वी और दक्षिणी जिलों को मिलाकर केवल इनमें वन क्षेत्र बचा हुआ है, वो भी अरावली की कृपा से। क्यों? क्योंकि ये अरावली जो इसके वेस्टर्न पार्ट में जो परिवर्तन आया, प्राकृतिक परिवर्तन, नदी का जो बहाव क्षेत्र था वो मरुस्थल में बदला, लेकिन उस मरुस्थल के प्रसार को पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकने में अरावली एक अवरोधक के रूप में काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। और आज की जो लोगों की आजीविका है अरावली के कारण, पूरे राजस्थान का जो ज्योग्राफी आज प्रभावित होता है, वो सीधा सीधा लोगों की आजीविका को, यहाँ के लाइव स्टॉक को, यहाँ के अलग अलग मौसम के जो बदलाव हैं उनके साथ हमारे अनुकूलन, हमारे जीने की क्षमता को सीधा सीधा प्रभावित करता है। आज भी इस अरावली के कारण जो फॉरेस्ट मेंटेन्ड है उसके कारण और जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों को सपोर्ट मिलता है इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण, उसका फल है कि आज राजस्थान में देश की दूसरी सर्वाधिक पशुधन संख्या, 10% से भी ज्यादा देश का पशुधन राजस्थान में है। और उस पशुधन में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी पशु प्रजातियां जो हैं उनके पालन में राजस्थान पहले नंबर पर है। बकरी, ऊंट, गधा, इनके पालन में राजस्थान की पशु जो लाइव स्टॉक है, बकरियां, ऊंट और गधों की संख्या में वो राजस्थान देश में टॉप पर है। यहाँ पर भैंसों के पालन में राजस्थान देश में सेकंड नंबर पर है। आप सोच लीजिए, पूरे देश के, पंजाब, हरियाणा, मध्य भारत के, उत्तर प्रदेश के जो गंगा के और इनके मैदान है, बड़े बड़े सघन जन है, वहाँ भरपूर चारा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भैंस, जिसको इंडियन वाटर बफेलो भी कहा जाता है, यानी वो पानी में रहने की शौकीन है दिन में काफी समय, और वो उसको काफी चारा चाहिए होता है, लेकिन उसके पालन में भी राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है भैंस पालन में, और घोड़े और खच्चर के पालन में तीसरे नंबर पर है, भेड़ के पालन में चौथे नंबर पर है, गाय बैलों के पालन में भी देश में छठे नंबर पर है। आप जरा थोड़ा सा सोचें कि ये सारा जो पशुधन है, और आपको बहुत आश्चर्य होगा, श्रोताओं को भी ये बहुत आश्चर्य होगा जान करके कि इतना पशुधन इसके पालन में राजस्थान देश में अग्रणी है। और बड़े मजे की बात यह है कि इन अरावली इकोसिस्टम के कारण, अरावली के कारण राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्रों का जो वितरण है उसमें कुल पशुधन, यानी 51% से ज्यादा राज्य का जो पशुधन है, राजस्थान के आधे से ज्यादा पशुधन जो है वो शुष्क क्षेत्रों में पलता है।
0: जी,
1: आप सोच सकते हैं कि उन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आज भी कितनी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, कि वो ऊंटों का, राज्य के जो ऊंट है लगभग उसमें से 85% ऊंट उस शुष्क क्षेत्र में है। राज्य की कुल भेड़ पॉपुलेशन का 75% अरावली के वेस्टर्न पार्ट में पलता है, 54% बकरियां वेस्टर्न पार्ट में पलती हैं, 40% के ज्यादा

0: का जान करके कि यहाँ पर जो औसत मछली उत्पादन है वो देश के राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। आप सोच लीजिए, जो स्वच्छ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमारे यहाँ है, आर्टिफिशियल या बहुत सारे नेचुरल, जो अरावली के सपोर्टेड है, यहाँ के रिवर बेसिन्स के साथ में वो सपोर्टेड है, वो हमारा जो औसत उत्पादन है वो देश के औसत मछली उत्पादन से ज्यादा हमारे यहाँ पर राजस्थान में है। इन सब का जो नियमन है, इन सब का जो सपोर्ट है, उसको देने में अरावली इकोसिस्टम का बहुत बहुत बड़ा रोल है। अब इसके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसके कारण हो क्या रहा है कि राजस्थान में जो जैव विविधता की स्थिति है वो देश की लगभग 5% से ज्यादा पादप प्रजातियां राजस्थान में मिलती है। देश की जंतु प्रजातियों का लगभग 1% राजस्थान में मिलता है।
1: जी
0: यहाँ पर जो एल्गी है, पानी में रहने वाली शैवाल है, 280 से ज्यादा वेराइटी है। यहाँ पर 146 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां हैं। यहाँ पर 27 से ज्यादा छिपकलियां हैं, 35 से ज्यादा सांप हैं, 510 से ज्यादा पक्षी हैं, 95 से ज्यादा यहाँ पर स्तनधारी प्रजातियां हैं। इन सबको कौन सपोर्ट देता है? और फ्रेश वाटर पानी के कछुए और जमीन के कछुए दो तरह के होते हैं, टर्टल एंड टॉर्टोइस, वो भी 11 स्पीशीज अभी तक रिकॉर्डेड है। इन सब का सपोर्ट कौन करता है? अरावली। लेकिन वो आज की स्थिति में आपको ये सारा डाटा बता रहा हूं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, कमिंग टू पॉइंट, कि जो बदलाव है वो जब ये अरावली अपनी मूल संरचना में था, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान से लेकर के दक्षिण तक इसी तरह की माउंटेन सिस्टम थे, जो आज दक्षिणी राजस्थान और गुजरात से लगे एरिया में आपको अरावली के दिखाई देते हैं, राइट? हाई एल्टीट्यूड, बड़ी लंबी माउंटेन रेंजेस, कई किलोमीटरों तक जो पर्वत श्रेणियां हैं उस तरह की। ये जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लैंडस्केप तक इनका प्रसार उसी तरह से था, तब आप सोच सकते हैं कि यहाँ की जैव विविधता का कितनी प्रचुरता रही हो। और जो मैंने आपको बताया कि इसके पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के इसके ईस्टर्न बॉर्डर तक, और वेस्टर्न में सहारा से लेकर के अरावली के वेस्टर्न बॉर्डर तक, ये दो बड़े इकोसिस्टम, बड़े ज्योग्राफिकल जोन की जो जैव विविधता थी, ये उनका कॉन्फ्लुएंस जोन, सम्मिश्रण जोन, यहाँ आकर के उनका वितरण मिलता था, ये उसका जोन रहा है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान करके कि आप उत्तर पूर्वी राज्य, जो आज बहुत सघन वन क्षेत्र से आच्छादित हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विशेष रूप से या वेस्टर्न घाट के, लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा कि वहां की जैव विविधता से ज्यादा डाइवर्सिटी हमारी अरावली की जैव विविधता में,
1: जी
0: क्योंकि ये दो बड़े बड़े ज्योग्राफिकल रील्स का कॉन्फ्लुएंस जोन बनती है। और यही अरावली जो है, वेस्टर्न पार्ट में जो डेजर्ट बन गया, सहारा, गल्फ का डेजर्ट और थार का मरुस्थल, जो पाकिस्तान और भारत, आज भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, पूरा थार उधर भी प्रसारित है, इसके फर्दर एक्सपांशन टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की तरफ इसके एक्सपांशन को ये अरावली ही रोक करके बैठा हुआ है। अब इसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, आज जो मैंने आपको मछली, मेंढक, कछुए, छिपकली, सांप, पक्षी, है ना, पानी के शैवाल, है ना, पादप
1: जी
0: प्रजातियां, इनकी जो स्थिति बताई और लाइव स्टॉक की जो स्थिति मैंने आपको बताई, आज ये हमारे अरावली के जो ज्योग्राफी में जो चेंजेस हैं, अब मैं आपको बताता हूं उसका प्रभाव कहाँ आया।
1: जी
0: आज जब ये अरावली के पश्चिम में मरुस्थल नहीं था, तब यहाँ का पशुधन यही पलता था, लेकिन आज की स्थिति क्या है, जब इसके पश्चिम में जब शुष्क परिस्थितियां बढ़ रही हैं, तो उसके कारण बहुत सारी हमारे जो पशुपालक समुदाय हैं, पेस्टोरल जिनको हम कहते हैं, पशुपालक समुदाय, वो इन पूर्वी अरावली के पश्चिमी क्षेत्रों में जब जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, तो ये अरावली से पूर्व की तरफ पार करके अरावली को मध्य भारत तक अपने पशुधन को ले जाते हैं हर साल। इनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ अरावली के पश्चिम में इनका पशुधन आज की तारीख में पूरी साल नहीं पल सकता है, उसका चारा, खाना, पानी वहां उपलब्ध आज नहीं हो पाता है। लेकिन आज भी ये पशुपालक, जो मैंने आपको बताया कि बकरी, भेड़, ऊंट, गधे, घोड़े, खच्चर, इनकी संख्या में आज देश में अग्रणी है, लेकिन उसके बावजूद ये पशुपालक इन पशुओं को कैसे बचा के रखते हैं, ये एक मजबूरी है कि आज इनको देश के मध्य क्षेत्रों तक, मध्य भारत तक इनको लेकर के जाना पड़ता है। ये प्रवासन पहले नहीं था, और ये प्रवासन की प्रवृत्ति जो है अभी भी

0: रही है, यानी आज भी। अब उसके कारण अब मैं अपने मुख्य उस पर आता हूं कि जो बदलाव है, इस बदलाव से हुआ क्या? हमारा हमारे पशुधन का चारा तो खत्म हुआ और हमारी पशुपालक समुदायों को आज प्रवासन के लिए आज भी जाना पड़ता है, ये मजबूरी हो गई है। और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब ये हजारों लाखों का पशुधन हमारा मध्य भारत तक जाता है, आप क्या सोचते हैं कि ये पशुपालक जो है वो कहीं दर दर भटकते होंगे, या ये कैसे कहाँ कहाँ पड़ाव डालते होंगे, कहाँ रुकते होंगे? ऐसा नहीं है, जहां जहां ये पड़ाव डालते हैं वहां लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे खेतों में जो अभी खाली पड़े हैं बुवाई से पहले, जब आप ये प्रवासन उसी काल में करते हैं, तो लोग कहते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे खेतों में पशु को बिठा लो, 2-4 दिन यहाँ पड़ाव डाल लो। आप अंदाजा लगाएंगे ऐसा क्यों होता है?
1: क्योंकि पशुओं से ही फायदा होता है और जमीन भी उर्वरक बनता है इस रिजल्ट
0: यानी
1: के कारण।
0: उनका जो एक्सक्रीटा है, उनका जो एक्सक्रीटा है, उनका जो गोबर है, वो वहां पर मुफ्त की खाद उन खेतों को मिल जाती है।
1: बिल्कुल
0: ये एक बड़ा, ये आपस का जो मतलब, ये जो एडजस्टमेंट है, ये हमारे पशुपालकों को का जो है जब ये प्रवास पर जाते हैं बड़ा उनको मिलता है। लेकिन हम इसे जो है अवसर ना देखें, हम इसको समस्या ही समझें, क्योंकि उनको प्रवासन जो करना पड़ता है, ये परिस्थितियां हम अब बढ़ती जा रही हैं, जिसको हमें रोकने की जो है वो आवश्यकता है।
1: जी
0: अरावली इकोसिस्टम में ही जो हमारी महत्वपूर्ण पादप प्रजातियां थी पहले, यहाँ पर के अरावली के जो फुटहिल एरिया और प्लेन एरिया थे, और इनके चौड़े घाटी वाले जो एरिया थे जहां पर मिट्टी की मोटी लेयर होती थी, पानी रहता था, वहां पर महुआ के चिरौंजी, जिसको अचार भी कहते हैं, चिरौंजी के, महुआ के, बहेड़ा के, हरड़ के, तेंदू के, ये बीजा साल के, अर्जुन के, इनके बड़े बड़े जंगल थे।
1: जी
0: सीरीज किलोमीटरों तक इन पेड़ों की लाइनें रहती थी उन नमी प्रचुर एरिया में, और जो इनके हिल टॉप्स हैं उन पर कड़ाया, जो आप गर्मी में गम कड़ाया, कतीरा जो गोंद कहते हैं ना, जिसे पानी में
1: जी
0: भिगोते हैं, फूल जाता है, फिर उसे खाएं तो पेट में ठंडक रहती है, कतीरा गम कड़ाया कहलाता है, वो पेड़, कड़ाया का पेड़ अरावली के जो अपर स्लोप है जहाँ तेज धूप आती है गर्मी में, वहीं मिलता था। लेकिन हमने वो सब क्या किया, खत्म किया। आज हमारे ये सारे जो वृक्ष हैं, जो इनके फुटहिल एरिया में, मैदानी क्षेत्रों में, या इनके ढलानों पर, इनके टॉप पर जो हमारे मिलते थे, जो महत्वपूर्ण पेड़ थे, वो हमारे पेड़ भी धीरे धीरे खत्म हुए। जब बड़े पेड़ खत्म हुए तो उनके साथ जो एसोसिएटेड मध्यम पेड़, बेलें, छोटी शाक भाजियां, हर्ब्स जिनको कहते हैं, झाड़ियां, इनकी डाइवर्सिटी में भी कमी आई है। और उसके साथ में जैसे नष्ट हुए, तो वहां पर जो घुसपैठी अदेशज, यानी जो भारतीय लैंडस्केप में जो जिनका उद्गम नहीं हुआ है, विश्व के अन्य भागों में हुआ है, उनकी घुसपैठ बढ़ती जा रही है। इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो मध्य अरावली के भाग हैं, जयपुर, अजमेर, सीकर से लेकर के जयपुर, अजमेर, पाली, सिरोही, राजसमंद, यहाँ तक के जो मिडिल अरावली के भाग हैं, इनमें विलायती बबूल, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, और दक्षिणी राजस्थान में जो सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लगा इलाका, और ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद का जो इलाका है अरावली का दक्षिण, इसमें लेंटेना झाड़ी, जो विश्व की 10 सबसे खतरनाक घुसपैठियों में से एक है सेंट्रल अमेरिका की, वो
1: जी
0: लेंटेना झाड़ी की घुसपैठ, उसके साथ में हिप्टिस सुआवियोलेंस एक घुसपैठी हर्बे जिसे बन तुलसी कह देते हैं, इत्यादि, ये जो घुसपैठी प्रजातियां हैं वो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट के नष्ट होने के साथ साथ ये बढ़ती जा रही है। अब जो मैंने आपको बदलाव पहले के हमारी बातचीत में भी मैंने आपको बताया कि हमारे जो बड़े बड़े एनिमल्स थे उनका कैसे यहाँ विनाश हुआ, उनके आवास नष्ट हुए, फिर उनके
1: जी
0: शिकारों के कारण जो उनका समापन हुआ, आज स्थिति क्या है कि हमारे राजस्थान में जो बचा है इन अरावली के सपोर्ट से, लेकिन बहुत सारी जो मानवीय दबाव है उसके कारण हमारे यहाँ पर ये जो बदलाव आ रहे हैं, नकारात्मक बदलाव, मानव जनित बदलाव, ये बड़े खतरनाक हैं।
1: जी
0: तो इन बदलावों में जो अभी जो आ रहे हैं वो है अवैध निर्माण, राइट,
1: जी
0: यानी हिल्स को मॉडिफाई करना। मैं आपका
1: बिल्कुल
0: ध्यान दिलाना चाहता हूं, माउंट आबू के ऊपर जो नक्की झील है कितनी हाइट पर है, आप सोचिए, देश की सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर माउंट आबू, और वहां गुरु शिखर से कुछ किलोमीटर नीचे रोड साइड में, मतलब कई मीट कुछ मीटर, अगर वर्टिकल एल्टीट्यूड देखेंगे तो कुछ मीटर नीचे, और सड़क मार्ग से देखेंगे तो कुछ किलोमीटर नीचे नक्की झील है, इतने ऊंचे पहाड़ पर। और ये केवल नक्की झील नहीं है, बहुत सारे गुरु शिखर तक और हाई पीक तक जाते हैं, तो वहां रास्ते में जगह जगह बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं। इतने ऊंचे पहाड़ में इतने बड़े बड़े जो वाटर रिजर्वायर हैं वो कैसे बने हुए हैं, है ना। दूसरी तरफ अगर हम उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और ये डूंगरपुर, हमारे राजसमंद, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों को देखें, तो इनमें भी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, उनमें भी वाटर बॉडीज की संख्या गजब की है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो हिल रेंजेस हैं, इनके नीचे इनका जो चट्टाने हैं, वो चट्टाने इतनी कठोर, इतनी सॉलिड हैं कि उनके ऊपर वो इतना बड़े बड़े जलाशय के वो सपोर्ट दे सकती हैं, उनके स्टोरेज को वो सपोर्ट दे सकती हैं। और इसी के कारण है कि हमारे इन जलाशयों के कारण हमारे अरावली इकोसिस्टम में, दक्षिण अरावली का एक और ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है।
1: सर, ये जो हरियाली की बात आप कह रहे हैं और पानी को जो स्टोर करके रखने की बात करें, नक्की झील जैसे 1200 मीटर अगर हम अबव द सी लेवल कहें तो उतनी ऊंचाई पर ये है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कई जगह पर अवैध निर्माण के कारण और मानवीय हस्तक्षेप के कारण, और कह सकते हैं हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी इन स्टेशन को और बाकी जगहों को यूज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ आसपास की अगर हम बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात करें, जो आप बेसिन की बात कर रहे थे, तो एक जवाई और लूनी बेसिन की भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, और जिसको बचाने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत सोशल वर्कर लगे हुए हैं, इसके कारण आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, आपने जवाई का नाम लिया, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको वहां बताना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी जवाई क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ कि यहाँ पर तेंदुए बहुत रहते हैं,
1: जी
0: लेपर्स।
1: जी
0: लेकिन जिन्होंने कभी जवाई जाकर के देखे, तो एक होता है कि आपको वहां पर बढ़िया स्टे, लग्जरी, और दिन या रात में टॉर्च डाल के, रोशनी डाल के, कैसे भी आपको यथा संभव जो है लेपर्ड दिखा दें, बढ़िया खिला दें, और आप पैसा फेंक के आ जाए तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर वहां कुछ देखने के लिए जाएंगे, तो वहां पर जवाई क्षेत्र में आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो पहाड़ियां हैं जहां जिन पर तेंदुए रहते हैं, वो 40-50 किलोमीटर के विस्तार में टुकड़े टुकड़े में ये पहाड़ियां स्थित हैं।
1: ओके
0: इनका कोई
1: टुकड़े टुकड़े
0: कंटिन्यूअस, जैसे दक्षिणी राजस्थान में माउंट आबू, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, अजमेर में जो लंबी बड़ी बड़ी हिल रेंजेस कंटिन्यूअस सैकड़ों किलोमीटर तक जो है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वहां नहीं है,
1: जी
0: कराया हुआ है। लेकिन वहां जो पहाड़ मिलते हैं, और चारों तरफ कैसा जंगल है, शुष्क, अर्धशुष्क, कांटेदार
1: जी
0: वनस्पति, वहां पर छोटे चरने वाले जानवर ज्यादा हैं, बड़े चरने वाले जानवर वहां के पशुपालक पाल ही नहीं सकते, तो भेड़ बकरी का पालन वहां बहुत ज्यादा है, घोड़े कच्छर का भी थोड़ा बहुत है, भैंस पालने का तो सोच नहीं सकते। ऐसे क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या ज्यादा होना, पहली चीज आवास कहाँ है, दूसरा भोजन कहाँ है, तीसरी सुरक्षा कहाँ है, तो उसका एक बड़ा यूनिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जवाई क्षेत्र में अरावली का जो विस्तार है, भले ही चितराई चितराई पहाड़ियां हैं, ये असल
1: जी
0: में जो आपको दूर से पहाड़ी दिखाई देती है वो एक पहाड़ी नहीं, यानी वो एक लैंड मास नहीं है,
1: जी
0: बड़े बड़े शिला खंडों के टुकड़े हैं ढेर में रखे हुए, और ये ग्रेनाइट की फॉर्मेशंस हैं, ज्यादातर इनमें ग्रेनाइट की प्रचुरता है, यानी पृथ्वी के जब उद्विकास में, जब जो चट्टाने लावा के ठंडे होने से और उसके कायांतरण से बनी, और उनमें और उसके उससे जो ग्रेनाइट, जो हार्डेस्ट रॉक भी कहलाती हैं, उन बड़ी बड़ी चट्टानों के ये ढेर हैं, इन ढेरों को कहते हैं टोर, TOR, टोर। और इन बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेरों के ऊपर धीरे धीरे जो है वो धूल, मिट्टी, वनस्पति और उनके होने के कारण धीरे धीरे इनके बीच की जो दरारें फिल हो गई, तो आज आपको दिखता है पूरी एक पहाड़ नहीं,
1: जी
0: लेकिन आपको उसमें दिखता है छोटी छोटी गुफाओं में कहीं कहीं लेपर्ड अंदर घुस रहे हैं। हाँ, तो अपन सोचते हैं कि वहां छोटे छोटे पॉकेट होंगे, कहीं कहीं ये घुस के बैठ जाते होंगे, उनमें रेंग करके घुस के, और बस उसमें रह रहे होंगे।
1: जी
0: ये पॉकेट अंदर इन चट्टानों के ढेर के बीच में इतने बड़े बड़े इंटर स्पेस है अंदर, जिसमें आप मतलब बड़े बड़े कमरे निकल जाएं।
1: ओके जी
0: अगर आप माउंट आबू में अर्बुदा देवी की पहाड़ी पर जाएं,
1: हाँ
0: एक
1: जी
0: स्थान में बता रहा हूँ,
1: जी
0: अर्बुदा देवी की पहाड़ी, रात में भी भालू आते रहते हैं और वहां मंदिर क्षेत्र में भी विचरण करते हैं, बड़ा प्रसिद्ध जगह है अर्बुदा देवी का। उस मंदिर में खुद जब वहां जो विग्रह देवी जी का अंदर रखा हुआ है, उनमें भी उन चट्टानों के नीचे से खिसक करके अंदर जाना पड़ता है, और अंदर आप देखिए आप अच्छी खासी 15-20 फीट तक की हाइट का जो है वो वहां चैम्बर है जहां
1: जी
0: पर वो मूर्ति स्थापित है।
1: हाँ जी
0: ये एक समझने की बात है, एक एक एग्जाम्पल है कि जवाई क्षेत्र में भी, अरावली के वेस्टर्न पार्ट में, ये जवाई क्षेत्र में ये इतना इम्पोर्टेंट जो हैबिटाट, ये गर्मी में ठंडी रहते हैं पॉकेट्स और सर्दियों में गर्माहट में रहते हैं, और यहाँ पर लेपर्ड सुरक्षित रूप से अपना प्रजनन कर सकते हैं। रही
1: जी
0: बात खाने की, तो वहां का पशुपालक समुदाय इनके साथ में बड़े आराम से रहता है, क्योंकि वहां पर जो वन्य पशु हैं और पालतू भेड़ बकरी भी हैं, वो लेपर्ड उनको हंट करते हैं और उससे उन पशुपालकों को कोई दिक्कत नहीं है। कारण कारण इसका बड़ा यूनिक है। ये माना जाता है कि यदि बकरियों के झुंड में, भेड़ों के झुंड में लेपर्ड के घुसने से उससे जो पैनिक, उनमें डर और हार्मोनल एकदम इंक्रीज जो उनके अंदर होता है, उसके कारण वो बीमार नहीं पड़ते साल भर।
1: जी जी
0: उसी तरह से जैसे अरावली के कुछ भागों में, जिसमें हम अलवर की बात करें, वहां पर जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है जहां पर पशुपालक भैंसे खूब पालते हैं, वहां पर भी यही है कि वो उनको समस्या नहीं होती कि जंगल में भैंस चरने गई और टाइगर ने या लेपर्ड ने मार दी। क्यों? क्योंकि उनका जो परंपरागत ज्ञान है उसके अनुसार उनका ये कहना है कि जब अन्य भैंसों के झुंड में, जब अन्य मादा भैंसों को जो ये पैनिक क्रिएट होता है उस टाइगर के अटैक या उसके कारण होने वाले भय के कारण, तो अगले सीजन में वो फीमेल काफ को ही जन्म देती। तो उनका ये
1: जी
0: कहना है कि साहब हमारी तो एक भैंस मारती है तो 4 पाड़ी जन्मती है। अब आप ये
1: जी
0: सोचिए कि ये जो जवाई का क्षेत्र है, ये अरावली इन लेपर्ड, एक जो हमारी आज बिग कैट्स में यही मुख्यतः राजस्थान में बचा है, टाइगर तो बहुत थोड़े से रह गए हैं, इनको एक सुरक्षित हैबिटाट रिफ्यूज देने का काम करती है। माउंट आबू का जो इलाका है वो इन लेपर्ड के साथ साथ में भालू की बहुत बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट करता है।
1: जी
0: दक्षिण अरावली का जो भाग है वो इनको बड़ी संख्या में सपोर्ट करता है, और यही इसकी ब्यूटी है अरावली की, कि इसका जो फॉर्मेशन है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, चट्टानों का जो फॉर्मेशन है, बदलता हुआ जो फॉर्मेशन है, वो यहाँ जीव जंतुओं के आवास प्रदान करने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, तो हमें ये भी समझना चाहिए।
1: जी तो ये लूनी और जवाई बेसिन की बात आपने कही, वहां पे गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो भी समझते हैं इन चीजों को, और ये साइंटिफिक तरीके से उन्होंने समझा है। अगर हम पढ़े लिखे लोगों की बात करें और जो अभी राजस्थान के इस क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे माउंट आबू सिरोही के क्षेत्र में है और चाहे लूनी और जवाई बेसिन की भी बात कर ले, हम जाते हैं वहां देखने के लिए और वो एक टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन टूरिज्म के साथ साथ हमें और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए
0: हाँ,
1: स्पेशली बताने के
0: ये
1: लिए।
0: बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कुछ चीजें हैं, जैसे पहले मैं ध्यान दिलाता हूँ आपका कुछ कुप्रथाओं के बारे में, परंपरागत कुप्रथाओं के बारे में,
1: जी
0: कि दक्षिणी राजस्थान में ये कुप्रथा बहुत ज्यादा है। यहाँ एक पेड़ मिलता है, बड़ा इम्पोर्टेंट पेड़ है, सेमल बॉम्बेक्स सीबा, जिसका तना, उसकी आदत है कि वो सीधा ग्रो करता है। उस पेड़ पर छोटे छोटे कांटे भी लगते हैं, उस पर बड़े सुंदर फूल आते हैं, औषधीय महत्व भी है और हमारे हिल इकोसिस्टम का बड़ा महत्वपूर्ण पेड़ है। लेकिन उस सेमल को हमारे यहाँ होली में, होलिका का जो स्तंभ बनता है उसे बनाने के लिए काटा जाता है, और ये होड़ रहती है कि सेमल का ही स्तंभ लगाएं। सवाल ये है कि पूरे देश में जहां सेमल नहीं है, अरावली उत्तर से लेके दक्षिण तक, बाकी के अरावली में, मध्य में और उत्तर में कहीं सेमल नहीं है, या चित्रा कहीं कहीं इक्का दुक्का होगा, वहां पर होली का स्तंभ कैसे लगता है? ये कहीं प्रिस्क्राइब भी नहीं है धर्म में कि सेमल का स्तंभ लगाएं। ये एक जो बैड हैबिट है, इसने सेमल की पॉपुलेशन को अरावली से खत्म कर दिया। एक कुप्रथा है कि होली के पहले, मतलब होली के पहले के साल में कभी भी ये मान्यता मानना, दक्षिण राजस्थान के कई इलाकों में जो है वो ये कुप्रथा प्रचलन में है कि मेरी ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं मगरा बावजी यानी हिल गॉड को पीलिया पीलिया चढ़ाऊंगा। ये पीलिया चढ़ाना क्या होता है, मैंने जो मन्नत मांगी वो पूरी हो गई तो मैं हिल टॉप पर जाऊंगा, उस अमुक हिल टॉप पर जाकर के मैं पीला कपड़ा चढ़ाऊंगा, अगरबत्ती लगाऊंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, मेरी मन्नत पूरी करी मगरा बाबूजी आपने, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको अग्नि स्नान कराऊंगा, यानी मैं नीचे आकर के और उस मगरा बाबूजी को आग के हवाले कर दूंगा, अग्नि स्नान।
1: जी
0: सो ये जो कुप्रथा है ये हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अरावली का जो यूनिक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसको बड़ा तेजी से नष्ट कर रही है ये कुप्रथा। ये जो सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग है, जैसे कड़ाया खत्म कर दिया हमने जंगलों से, एक पेड़ होता था खिरनी राइट या टिंटोरिया, उसकी लकड़ी से खिलौने बड़े अच्छे बनते थे, कार्विंग उसमें बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन ओवर एक्सप्लोइटेशन ने उस पेड़ को समाप्त करके रख दिया। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्वाद है कि हमें सीताफल स्वाद में बड़ा अच्छा लगता है, आप इसके नाम पर मत जाइए, फल के नाम पर मत जाइए, किसी भी धर्म से मत जोड़िए, ये सेंट्रल अमेरिका का ओरिजिनेटेड प्लांट है और ये बड़ी घुसपैठी प्रवृत्ति का है, इसके पत्ते बकरी भी नहीं खाती है, इसकी झाड़ियों में कोई पक्षी निवास भी नहीं करते हैं, और ये पारिस्थितिकीय जो विकास होता है उसमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो हमारे मॉस और फर्न है उनके डेवलपमेंट का सबसे बड़ा अवरोधक है, और ये गजब का घुसपैठिया प्लांट है जो आज हमारे स्वाद के कारण अरावली के इकोसिस्टम में फैलता जा रहा है, क्योंकि हम इसे
1: बिल्कुल
0: पसंद करते हैं खाने के लिए, और इसलिए ये जंगलों में बहुत बेतहाशा रूप से हमारी नेटिव जो सैकड़ों दर्जनों दूसरी प्रजातियां हैं उनको हराता हुआ ये प्रसारित होता जा रहा है। जिस तरह से अरावली इकोसिस्टम जो है वो हमारे यहाँ के पहाड़ जहां पर बर्फ नहीं है लेकिन फिर भी ये पहाड़ बरसात में पानी पीते हैं, और उसके बाद भी ये जो मॉइस्चर को रिटेन रखते हैं क्योंकि उनकी रॉक्स ऐसी हैं जिसमें जियोलॉजिकली बाउंड वाटर, इनके अंदर चट्टानों के बीच में जो जगह है उनमें जो भरा हुआ पानी है, उसके कारण हमारे यहाँ साल भर बहने वाले झरने इन्हीं अरावली में पाए जाते हैं। आप सोचें कि वो साल भर बहने वाले झरने, ये जो नदियां हैं, बनास नदी ये कहाँ से निकलती है, कुंभलगढ़ के एरिया से निकलती है, ईस्ट बनास और वेस्ट बनास दोनों तरफ में इसके जो शाखाएं जाती हैं, एक बंगाल की खाड़ी में पानी जाता है, एक अरब सागर में जाता है, इसमें साल भर पानी कहाँ से फीड होता है, कहाँ से आता है, कोई बर्फ के पहाड़ थोड़ी जमे हुए। हमारे जो इन अरावली इकोसिस्टम से जितनी सारी नदियां निकल रही हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, चंबल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, बाणगंगा का कहाँ से हो रहा है, लोनी का कहाँ से हो रहा है, गग्गर का कहाँ, ये सब जो नदियां हैं इन नदियों का उद्गम इन अरावली पर्वतमालाओं में संचित होने वाले जल से है, ये उसी से फीड होती हैं, और ये इन पहाड़ियों पर जो पाई जाने वाली जो वनस्पति है, जो हमारी नेटिव वेजिटेशन है, जो प्रकार है टॉप से लेके बॉटम तक और प्लेन तक, इन वनस्पतियों में आपस में जो तालमेल है, इनकी जड़ों के साथ में जो फंगस कवक जिसको हम कहते हैं वो एक एसोसिएशन में रहता है, जैसे माइकोराइजा कहते हैं, एक प्रजाति का माइकोराइजा दूसरी प्रजाति के माइकोराइजा के साथ में भी तालमेल करके किलोमीटरों तक ये फंगस परी बारीक कवक के तंतु जो हैं ये किलोमीटरों तक से पानी और न्यूट्रिएंट लाकर के इन पेड़ों को देते रहते हैं, और अरावली के जो नॉन ग्लेशियल ये पहाड़ हैं जहां पर साल में आधे से ज्यादा सूखा और गर्म रहता है, तब भी ये सघन जंगलों से, हरे भरे जंगलों से दक्षिण अरावली जो है वो भरी रहती है। यही मध्य अरावली के उन क्षेत्रों में भी है जहां पर अभी भी जंगल बचे हुए हैं, तो वो अपना खुद से सर्वाइवल कैसे करते हैं, उसमें अरावली का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात। जो जवाई का या जो लूनी का जो बेसिन आज जो खत्म हुआ हमारे कारण, पहले लूनी बेसिन जो है ये सरस्वती नदी का एक महत्वपूर्ण पार्ट था, हिमालय से जो फीड होने वाली नदियां थी उनके साथ में राजस्थान से अरावली से ओरिजिनेट होने वाली लूनी नदी ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाती थी, लेकिन आज ये बरसाती नदी बन के रह गई। उसका नुकसान क्या हो रहा है, आज हमारे पशुपालक सब पलायन कर रहे हैं, आग लगाने से क्या हो रहा है कि हमारे अरावली के जंगल सूख रहे हैं, जल रहे हैं, उनसे जो ओरिजिनेट होने वाले नदियां हैं, झरने हैं, साल भर जो जल धाराएं फूटती थी समाप्त हो रही हैं, मॉइस्चर घट रहा है, हीट बढ़ रही है, उसके साथ हमने इन पहाड़ों को खोद खोद करके अपने हित के लिए हमने उन पर बड़े बड़े भवन बना दिए, बहुत सारे पर्यटन स्थल बना दिए, अपनी मर्जी से हम उनका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उन पहाड़ों का। डेवलपमेंट के कई तरीके हो सकते हैं, सघन वन क्षेत्रों से ऊपर के होकर के एलिवेटेड रोड बन सकते हैं, लेकिन उन्हीं सघन अरावली के जंगलों को काट करके, पहाड़ों को काट करके राजमार्ग निकाले जाते हैं एलिवेटेड रोड के बारे में सोचने की बजाय। ये बड़ी विचलित करने वाली

0: स्थितियां जो है वो जो बन रही हैं, इसके कारण अरावली इकोसिस्टम बहुत बड़े थ्रेट में है, खतरे में।
1: जी सर, जैसे शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है ना, फिर लूनी जबाई है, फिर शेखावटी वाला है, फिर जो घग्गर कहते हैं, हाँ, तो इन सब में जो आपने टोटली बदलाव के बारे में बोला है, लेकिन इन सब में हमें क्या योगदान देना है, ये क्षेत्र और शुष्क
0: हाँ,
1: ना हो जाए।
0: जो हमारे 5वीं 6ठी कक्षा से जो हमारे भूगोल पढ़ाया जाता है ना,
1: जी
0: वो भूगोल हमें किताब में पढ़ाया जाता है। आप
1: जी
0: याद करें, क्या आपको कभी भी स्कूल समय पर भूगोल आपको पढ़ाया गया? क्या आपको आसपास के एरिया में भी ले जाके भूगोल दिखाया गया?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, कायांतरित चट्टाने आपको पढ़ाई गई, आपने कभी देखी?
1: नहीं
0: आप जहाँ रहती हैं वहां पर मिलने वाली चट्टानों को क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकती हैं कि आग्नेय है, कायांतरित है या अवसादी है? मैं आपको कहूं कि माउंट आबू में जो ज्यादातर चट्टानें, जो पर्वत श्रेणी है सब बनी हुई है, ये अभी भी इनमें अवसादी चट्टानों का बाहुल्य ज्यादा है, कायांतरित चट्टानों का बाहुल्य कम है। और माउंट आबू का गुरु शिखर, ये पूरा एरिया भी धीरे धीरे अभी और सेटल होगा, ये खिसकेगा,
1: जी
0: खलन
1: जी
0: होंगे,
1: जी
0: ठीक है? तो ये जो मैं आपका ध्यान क्या करें, उसके पहले जरूरी है कि हमारे दिमाग में, हमारे ज्ञान में, हमारी नॉलेज में इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को
1: थोड़ा
0: समझाएं,
1: और
0: भरा
1: बेहतर
0: भरा
1: होगा।
0: जाए।
1: जी
0: इतिहास आप पढ़ती हैं, आहड़ सभ्यता आपने पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता और ये सब आपने पढ़ी, कभी कोई अटेम्प्ट आपने देखा हो स्कूल जीवन में या हिस्ट्री में? जब आपने ग्रेजुएशन भी किया हो, मैं गारंटी देता हूँ ग्रेजुएशन तक में भी, एमए तक में भी, कई जगह, ज्यादातर जगह कोई हिस्टोरिकल प्लेस ले जाकर के आपको बताया गया हो और उसकी हिस्ट्री पे आपको डिसर्टेशन करने के लिए बोला गया हो स्कूल में, कोई प्रोजेक्ट या कॉलेज में? नहीं होता। हमारे हिल स्केप्स को देखना, समझना, वहां के इकोसिस्टम्स को समझना, यानी अब जंतु विज्ञान विषय में हम केवल जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जंतु के आवास के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जंतु जिन पादप प्रजातियों पर निर्भर होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जंतु के भीतर जीवन को प्रभावित करती हैं, उसकी बायोलॉजी को करते हैं, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे।
1: जी
0: उसी तरह से पादप विज्ञान में भी यही कहानी होती है, उसी तरह से भूगोल में होती है, उसी तरह से इतिहास में होती है, उसी तरह से समाजशास्त्र में होती है कि आप समाजशास्त्र में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, इन सभ्यताओं के बारे में पढ़ लेंगे। मानव सभ्यताएं थी, क्या पहनते थे, ओढ़ते थे, क्या करते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि उस समय उनका जो नेचुरल बायोडायवर्सिटी थी वो क्या थी, इनका वहां पर सेटलमेंट वही वही अमुक जगहों पर क्यों डेवलप हुए थे। तो जो
1: जी
0: हमारा रोल है वहां से शुरू होता है कि हम हमारे जो स्कूल क्यूरिकुलम है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो क्यूरिकुलम है, इनमें इन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को जो है वो बढ़ाएं, ठीक है? बच्चों को ज्ञान लेने के लिए कॉन्टेक्स्ट दें, स्पून फीडिंग ना करें, रॉट
1: जी जी
0: लर्निंग ना करें, रटाने की कोशिश ना करें। मैं आपको और बड़े आत्मविश्वास से मैं आपको ये बता रहा हूं कि आयुर्वेदाचार्य जो औषधियों के बारे में ज्ञान रखते हैं, वे उस औषधि पादप को पहचानना और उसका जो भौगोलिक वितरण है वो किस हैबिटाट में मिलेगा वो नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जो जानते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ,
1: जी
0: लेकिन अधिकांश परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपने भूगोल पढ़ा और आपके सामने जो है आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आपने वनस्पति विज्ञान पढ़ा है लेकिन आपको सामने जो फ्लोरा दिख रहा है, कहीं आप जा रहे हैं तो आप उन स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम ध्यान नहीं देते, हरा हरा देखते हैं। तो ये जो चीज हम क्या कर सकते हैं, इस ज्योग्राफिया को समझना आवश्यक है, बच्चों को हम वहां ले जा करके उन चीजों के बारे में बताएं, समझाएं, अपनी हिस्ट्री को जाने, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इकोलॉजिकल हिस्ट्री जो कहलाती है, इनको हम जानने समझने की कोशिश करें। इकोसिस्टम लेवल पर हम भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, उसके साथ में जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, उनको उस पर समझने की कोशिश करें, इकोसिस्टम के लेवल पर, राइट? आप उनको टुकड़ों टुकड़ों में करके समझने की कोशिश ना करें। यदि ये करेंगे तो फिर हम लोगों को ये समझ में आएगा कि आज हम हमारे घरों के बाहर जो अच्छा दिखने वाले सौंदर्यात्मक एक्सोटिक प्लांट लगा रहे हैं, हम वो नहीं लगाएंगे। हमारे जंगलों में जो विलायती बबूल, लेंटेना झाड़ी और ऐसी दर्जनों घुसपैठी प्रजातियां बढ़ रही हैं, ये कुछ प्रजातियां हमारी दर्जनों सैकड़ों अन्य देशी यहाँ की प्रजातियों को जो खत्म कर रही हैं, तो हमको समझ में आएगा कि क्या इन दो चार घुसपैठी प्रजातियों से फिर हमारा इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ये जो नॉलेज है। दूसरी चीज ये तो देखिए, प्रशासनिक निर्णय लेने होंगे कि यदि आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आप इको फ्रेंडली डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते, आखिर उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच सकते, राइट। सघन वन क्षेत्रों से होकर के पहाड़ों को काट के राजमार्ग निकालने की बजाय आप एलिवेटेड रोड और टनल, उनके बारे में ज्यादा क्यों नहीं सोचते, है ना। इसका बहुत बढ़िया मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपके राजस्थान में हमारे मावली एक जगह है, इधर उदयपुर चित्तौड़ के बीच में, वहां से आपके पाली मारवाड़ स्टेशन है वहां तक ट्रेन चलती है। और ये ट्रेन जब मावली से होकर के यहाँ एक जगह है राजसमंद जिले के पास में गोरम घाट, और उसके पहले कामली घाट स्टेशन पड़ता है। ये जो कामली घाट स्टेशन है उसके बाद कुंभलगढ़ सेंचुरी का बड़ी बड़ी ऊंची और गहरी गहरी घाटियों वाला सघन वन का क्षेत्र आता है मारवाड़ से पहले। तो यानी कामली घाट से मारवाड़ के बीच में ये बड़ा सघन वन क्षेत्र है। आप जानते हैं वहां पर रेलवे लाइन ब्रिटिश टाइम की डाली हुई है। कैसे डाली है? वहां पर करीबन आप समझ लीजिए कई दर्जन तो छोटे बड़े पुल हैं जिन पर से पटरी निकाली हुई है, जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया है, ठीक है। चार पांच बड़ी टनल है और 10-12 छोटी छोटी टनल है जिनमें से होकर के रेल निकल जाती है। ऊपर नीचे चारों तरफ सघन जंगल ज्यों का त्यों इंटैक्ट है। बरसात के सीजन में और पोस्ट मानसून सीजन में कामली घाट से और इस जंगल के बीच में एक स्टेशन आता है गोरम घाट, वहां तक जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये भीड़ क्यों उमड़ती है? वो केवल मजा, हरा बहते हुए बड़े ऊंचे झरने वहां गिर रहे हैं उन पहाड़ों में और बह रहे हैं, हरियाली हो रही है, और गोरम घाट स्टेशन पर उतर के घने जंगल में उतर गए, झरने में नहाने उतर गए, वापस आ रहे हैं। यानी इस रेलवे लाइन का महत्व आप समझ सकते हैं, ये रेल लाइन किस सोच के साथ में कितना इको फ्रेंडली तरीके से डाली गई। ये चीज हमने अरावली के संदर्भ में, अन्य क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? राजमार्गों के बारे में हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? राजमार्गों के निर्माण में भी जब हमारे इकोसिस्टम, ये अरावली, हमारे वन्य जीव रहते हैं मैडम, हर साल हमारे सैकड़ों जीव जंतु रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: दर्जनों हमारे तेंदुए, हमारे जो छोटे जानवर हैं, सेही हैं, तेंदुए हैं, जंगली बिल्लियां हैं, बिच्छू हैं, सांप तो अनगिनत, छिपकलियां तो अनगिनत, आप समझ लीजिए ये मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। इसके साथ में हमारे जो डियर एंटीलोप्स हैं वो भी मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि इनके वितरण के क्षेत्रों के बीच बीच में आपने क्या करा, चौड़े चौड़े सड़क मार्ग बना दिए। अरे तो इनके लिए अंडरपास या ओवर ब्रिज आप नहीं बना सकते थे क्या? वो डाइवर्सिटी, उसको वहां पर रहने का हक नहीं है क्या? ये जो एक हिल माउंटेन इकोसिस्टम है जिसके साथ में हमारे दूसरे सारे जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी जुड़ी हुई है, क्या इसके अंदर हम ऐसे डेवलपमेंट करेंगे जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दे? तो वो डेवलपमेंट हमारे किस काम का? एक सीमा भी होनी चाहिए कि हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में भले ही आपके पर्यटन स्थल हो, भले ही आपके निवास स्थल हो, भले ही आपकी कमर्शियल एक्टिविटी हो, एक लिमिट के बाद में आगे उनका फर्दर एक्सपांशन नहीं होगा। एक लिमिट हो कि इसके अलावा इतने क्षेत्रफल से ज्यादा और ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और झुंझुनू सीकर तक अरावली की हालत हो गई है, वो दक्षिणी अरावली तक बहुत जल्दी हो जाएगी। जो मैंने आपको लास्ट बात में भी कहा था कि ये बहुत जल्दी हो जाएगी, ये कितना जल्दी हो जाएगी, ये बड़े जानलेवा जो बदलाव है हमारे खुद के कर्मों से, इसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। जिस गति से हम जो विनाश कर रहे हैं अरावली का, तो ये स्थिति कुछ सालों में ही हो सकती है, दशक भी ना लगे इसमें, और ये हम इसका खामियाजा बस फिर भोगने के लायक रह जाएं, क्योंकि ये रिवर्ट बैक वो परिस्थितियां लाने में फिर तो हमको शताब्दियां लग जाएंगी।
1: जी सर, बिल्कुल। हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसे टूरिज्म का बढ़ावा हो रहा है और आपने जिक्र किया कि रास्तों के कारण जब जानवर रास्तों में आ जाते हैं, या फिर कई बार
0: डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट
1: डेवलपमेंट के कारण, और कई बार रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी है, हम जानवरों को रास्ते में खाना भी खिलाते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें पुण्य जमा होता है, तो इस प्रकार से भी हम उनको हानि पहुंचा रहे हैं, हम उनके पास जाकर के भी उनको हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे जवाई में हम देखने जाते हैं तेंदुआ, लेकिन टॉर्च डालते हैं, फिर लाइट जलाते हैं रात को, तो वो भी हम सभी जानते हैं कि जानवरों के लिए सही नहीं है। और इसके साथ साथ अगर शुष्क की बात कर रहे हैं, मरुभूमि के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो बहुत कम समय में ये विस्तार हो सकता है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो किन किन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है?
0: देखिए, ये एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि ये समझ बढ़ाने में शुरुआत होती है हमारे घर से,
1: जी
0: क्योंकि आज जो माता पिता की आज की जो पीढ़ी है, यानी जो 40 साल, 50 साल और 60 साल तक के भी माता पिता हैं, खुद उनके दिमाग से जो परंपरागत ज्ञान और अपनी जो इकोलॉजिकल हिस्ट्री है, पारिस्थितिकीय इतिहास, जियोलॉजिकल भूगर्भीय इतिहास, चट्टानों की बनावट, जो भूगोल उन्होंने देखा बचपन में, खेला, पले बड़े, पुश्तैनी मकान, जमीन जायदाद जो भी उनका रहा, वो आज 50-60 साल तक की जो माता पिता की पीढ़ी है, उनके दिमाग से ये चीजें लुप्त तो हो रही है। उसका इफेक्ट पड़ रहा है कि आने अब उनके छोटी जो जनरेशन है, युवा और बच्चे, इन सबके दिमाग से ये ज्ञान जो है वो निकल रहा है। सब्जेक्ट हो गया है स्कूल कॉलेज में केवल पढ़ने और पास होने के लिए, और पढ़ करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पास हो गए, फॉर एग्जाम्पल आप IAS बन गए और आप कलेक्टर बन गए, तो आप तो होशियार हो गए, आप पढ़ के
1: जी
0: पास होके आए हैं, और जो उसको पास नहीं कर पाए वो तो मौट हो गए, क्यों आप कलेक्टर बन गए तो आप होशियार हो गए। और वो कलेक्टर, अब आप ये बताइए कि वो कलेक्टर अपने किसी सलाहकार के कहने से या अपने फायदे को ध्यान में रख करके आपके लैंडस्केप में हजारों की संख्या में तंजानिया अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र का कोनोकार्पस पेड़ ला करके आपके यहाँ पर ठोक दे, लगवा दे बहुतायत
1: जी
0: में
1: जी
0: एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन करके, और विरोध करने वालों को जेल में सड़ा दे, थानों से उनको धमकी दिलवा दे, या उनको दूसरे तरीकों से जो है वो चुप कर दे,
1: जी
0: तो आप उस ज्ञान का क्या कहेंगे? क्या वो व्यक्ति ज्ञानी हो गया और होशियार हो गया और देश और समाज के लिए लाभदायक हो गया? नहीं होगा। यदि पारिस्थितिकीय दृष्टि से देखेंगे तो वो सबसे बड़ा शत्रु हो गया। आज मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं राजस्थान वन विभाग के साथ 25 साल से मेरे रिलेशन बने हुए हैं, मैंने ऐसे ऐसे अधिकारी देखे हैं और उनमें मेरे गुरु भी हैं, एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश शर्मा, जिनसे आप किसी भूगोलिक क्षेत्र का नाम लो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम भूल जाओ गम। जी हाँ साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कौशल के बारे में, एक ऐसे करियर के बारे में जो खास आप सभी उसे जानते हैं, आईटी। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या इसके बारे में, और ये आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी जिसे शॉर्ट में आईटी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आज के डिजिटल युग की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शाखा है। आईटी का अर्थ है सूचनाओं का संग्रह और भंडारण, सुरक्षा और संप्रेषण, कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से इन चीज़ों को करना। आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आईटी का प्रभाव ना हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, मीडिया, बैंकिंग, शासन, संचार, मनोरंजन और सामाजिक सेवा तक इसके माध्यम से किया जाता है। आईटी की शुरुआत कंप्यूटर के आविष्कार से मानी जाती है। शुरुआत में कंप्यूटर केवल मैथमेटिक्स, गणना तक सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, इंटरनेट, मोबाइल तकनीक, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी में आईटी को एक विशाल और शक्तिशाली क्षेत्र बना दिया। आज आईटी केवल तकनीक नहीं बल्कि सोचने का तरीका और समस्या समाधान की कला है। तो आइए इसके बारे में आज जानते हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आईटी सेक्टर में विशेष रूप से जो अलग अलग डिविजन्स हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मोटे तौर पे बड़े विभागों के बारे में बात करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब मोबाइल एप्लीकेशंस भी इसके साथ में जुड़ते हैं, हार्डवेयर और नेटवर्किंग का भी इसमें आता है, ये सेकंड दूसरा विभाग है। तीसरा डेटाबेस और डेटा साइंस की बात इसमें आती है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात आती है, साइबर सुरक्षा की बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग की बात आती है, आईटी सपोर्ट और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर होती है। तो इन सभी जो विभाग है इसमें आपकी ज़्यादा मात्रा में आईटी सेक्टर वालों की, आईटी सिस्टम समझने वालों को बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इस क्षेत्र में आप कहीं भी इस तरह के विभाग में आप काम कर सकते हैं और इसमें आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप इसमें काम करते करते कोई एक जगह पे आपको लगता है कि इसमें मैं हार्डवेयर और नेटवर्किंग में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप इस फील्ड में मास्टरी करिए और इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा डिमांड आपकी है। कोई समझता है कि मुझे साइबर सुरक्षा के अंतर्गत काम करना है, आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं इससे लोगों को बचाना है और भारत का जो डाटा

वो सुरक्षित रहें, इस पर आपकी निगरानी है। इस पर आप सोचते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ऐसी जगह पे भी काम करने के लिए मौका मिलता है जहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आपका हो जाता है। देश का डाटा बचाने का काम भी आप कर सकते हैं अगर साइबर सुरक्षा के अंदर आप एक बहुत ही अच्छा मास्टरी हासिल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये आज के इसमें डिमांडिंग जो जॉब है इसमें आता है और ये आज करियर का एक बूम भी इसमें है और इसके लिए हमने पूरा एपिसोड भी आपको शायद पहले सुनाया है। तो एक बार आप इन चीज़ों को लेकर काम कर सकते हैं, इन चीज़ों पे आप वर्कआउट कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आईटी सपोर्ट और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की भारी मांग रहती है, इसलिए आप विशेष रूप से जब भी इस फील्ड में आईटी में आप एंट्री करते हो तो आप देखिए एक स्पेशलाइजेशन होकर निकलिए, है ना। साधारण सा काम करके आप निकलने से अच्छा है कि आप स्पेशल बन के निकलिए, किसी एक सेक्टर को अच्छी तरह से करके उसमें मास्टरी हासिल करके आप निकलेंगे तो आपकी जो है करियर बहुत ग्रोथ करेगा, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को कुछ और बातें थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर आपके कोई मन में प्रश्न है तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, जीवन कौशल करियर ऑप्शन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

खुशियों मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।

मैं आईटी का समाज में योगदान। आईटी ने समाज को तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाया है। ऑनलाइन शिक्षा ने दूर दराज के बच्चों तक ज्ञान पहुंचाया है। टेलीमेडिसिन ने गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई है। ई गवर्नेंस ने सरकारी सेवाओं को आम जनता तक सरल बनाया है। डिजिटल भुगतान ने नकदी पर निर्धारित निर्भयता का काम कम की है। जैसे कि डिजिटल अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसमें जो कैश लेके जाने वाली जो बात होती थी वो अभी बिल्कुल धीरे धीरे कम हो गया। लोग पैसे ही नहीं ले जाते हैं, सिर्फ मोबाइल ले जाते हैं और आराम से अपना भुगतान भी करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट लोगों के लिए है जो आईटी और डिजिटल सेक्टर का वरदान है। मीडिया और रेडियो भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोगों तक पहुँच रहा है। जैसे पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, जैसे हमारा ये रेडियो स्टेशन भी कम्युनिटी है जिसे आप सुन रहे हैं, तो इसकी रीच 40 या 30 किलोमीटर तक अच्छी पहुंच रही है। लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से एप्लीकेशन के माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड में रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन की कमाल है, घर बैठे आप किसी भी रेडियो को आराम से सुन सकते हैं। तो ये है खास आईटी का एक मजबूत स्तंभ। भारत में आईटी का महत्व तब बढ़ा जब भारत विश्व का मुख्य आईटी केंद्रों में से एक है। जैसे कि भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम जैसे शहर आईटी हब बन चुके हैं। भारतीय आईटी कंपनियां विश्व भर में सेवाएं दे रही हैं। इससे न केवल रोजगार बढ़ रहा है बल्कि भारत की वैश्विक पहचान भी मजबूत हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर में कितना कुछ हो रहा है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सुन रहे हैं साथियों। तो आगे मैं कुछ ऐसी स्टोरीज भी आपको शेयर करूंगा जिससे आपको लगेगा कि आईटी सेक्टर कितना बड़ा है और इसमें एक जीवन शैली को अगर हम इस सेक्टर में अच्छे से समझ रहे इसको तो हम कितना बड़ा करियर बना सकते हैं। आईटी में करियर की संभावनाएं बहुत हैं। आईटी सेक्टर युवाओं के लिए असीम संभावनाओं को लेकर आता है। इसमें प्रवेश के लिए केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल सीखने की इच्छा और नवाचार की सोच आवश्यक है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कोडिंग, डिजाइनिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी सीख सकता है। फ्रीलांसिंग और सॉफ्टवेयर ने भी नए रास्ते खोले हैं और स्टार्टअप्स भी बहुत सारे हैं जिससे नए नए रास्ते, नए नए नौकरियां उपलब्ध हो गई है। आप सुनाए हैं रिडमॉट 107.8 FM। तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष जीवन कौशल कार्यक्रम में। आईटी सेक्टर में आप कैसे अपने आप को बहुत अच्छा स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए बातें हो रही हैं। और आईटी एक बहुत ही सुंदर करियर का ऑप्शन है आप सबके लिए, जीवन कौशल का। तो मैं अभी आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाला हूँ नारायण मूर्ति के बारे में। आप देखेंगे ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। सादगी से सफलता तक का सफर नारायण मूर्ति का आपको अभी सुनाते हैं। इंफोसिस के संस्थापक रहे, आईटी जगत का एक प्रेरणादायक नाम है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले मूर्ति जी ने सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने देखे हैं और 1981 में उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इंफोसिस की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में ऑफिस के लिए फर्नीचर तक नहीं था, लेकिन उनके पास ईमानदारी, अनुशासन और तकनीकी दृष्टि थी और यही उनको आगे ले चला। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंफोसिस ने वैश्विक पहचान बनाई। नारायण मूर्ति ने न केवल एक सफल कंपनी बनाई बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नैतिकता और मानव मूल्यों को आईटी सेक्टर में स्थापित किया। उनकी कहानी सिखाती है कि तकनीक के साथ साथ मूल्य और दृष्टि भी जरूरी है। और इनकी पत्नी भी बहुत अच्छी तरह से लोगों की सेवा करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और नारायण मूर्ति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। तो साथियों, जब आपका सपना अच्छा हो और आपके अंदर ईमानदारी और नैतिकता का मूल्य हो तो आप हर चीज़ बहुत सुचारू रूप से करते हैं और आसानी से लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपको ईमानदार लोगों की एक जो है कम्युनिटी मिल जाती है, जिससे आपका जीवन बेहतर बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर कहानी की तरह। एक गांव का लड़का जो डिजिटल क्रांति में अपना विशेष अहम भूमिका निभाता है। जैसे आप देखेंगे, राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला अमित और साधारण किसान परिवार से रहने वाला ये अमित, गांव में इंटरनेट भी बहुत मुश्किल से उनको मिलता। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिवेश में अमित ने अपना जो है डिजिटल करियर कैसे बनाया? तो अमित ने पुराने मोबाइल और साइबर कैफे से ऑनलाइन वीडियो देखकर वेब डेवलपमेंट सीखा। कई बार असफल हुआ लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि जब आप साइबर से या फिर मोबाइल ऐप से, आप इंटरनेट के माध्यम से सीखना शुरू करते हैं, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। अगर नेटवर्क अच्छा है तो अलग बात है, अगर नेटवर्क थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो सीखने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। आप भी देखेंगे, आपका नेटवर्क अगर कम हो जाता है, बंद चालू होता है, तो तब आप क्या करते हैं, है ना? तो तब आपको लगता है कि अरे यार, इसको चलाने से अच्छा बंद कर दे, तो आप बंद कर देते हैं। लेकिन अमित ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जितना भी उनको समझ में आया वो नोट करते जाते थे और पढ़ते हुए आगे बढ़ते थे। बहुत बार उनको ये चीज़ें करने में मुश्किलें आई लेकिन हार नहीं मानी। यही एक सफलता का राज है। धीरे धीरे उसने छोटे प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए। आज अमित एक सफल फ्रीलांसर आईटी प्रोफेशनल है और गांव के युवाओं को डिजिटल कौशल सिखाता है। उसने अपने गांव में एक छोटा डिजिटल सेंटर खोला है जहां किसान ऑनलाइन फॉर्म और फसल जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। अमित ने दिखा दिया कि आईटी केवल शहरों तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। तो इस तरह से अमित ने हार नहीं मानी और प्रयत्न करते करते, कोशिश करते करते, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये साबित किया। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बात यही कर रहे थे कि आईटी और नैतिक जिम्मेवारी। जहाँ आईटी ने सुविधा दी है वही चुनौतियाँ भी लाई हैं। इसमें बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपका घर है, घर से चोरी हो जाता है, आप सुनते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी आईटी सेक्टर में जो डाटा है उसको अगर हम सेफ नहीं रखते हैं तो वो कई बार चोरी भी हो जाती है। डेटा चोरी होना, फेक न्यूज़ आना, साइबर अपराध, ये सारी चीज़ें इसमें एक चुनौतियाँ हैं। इसीलिए आईटी पेशेवर की जिम्मेवारी है कि वे तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए करें। तकनीक तभी सार्थक है जब वह समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। निष्कर्ष यही है कि सूचना प्रौद्योगिकी आज केवल एक करियर विकल्प नहीं है बल्कि भविष्य की दिशा है। ये ज्ञान, सेवा, रोजगार और सामाजिक बदलाव का शक्तिशाली साधन है जो युवा आईटी को केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि समस्या समाधान और सेवा के भाव से अपनाते हैं, वही इस क्षेत्र में बेस्ट बनाते हैं। आईटी हमें सिखाती है सोच डिजिटल हो, दृष्टि मानवीय हो। आप सुनाए हैं रिमोट 107.8 FM पर। जी हाँ, करियर कौशल इस
कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए करियर कौशल इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक नए ट्रेड के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के।

0: विकास के जन कल्याण
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
5: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: रही मन पानी राखिए।

चातक हंस अमीन। पानी की अजब कहानी, पानी से है जिंदगानी। पानी ना होता भू पर जल जाता सब बेपानी। पानी बिन जीवन सूना, मोती मानस और चूना। उबरे नहीं बिन पानी, जो उतरे इनका पानी। पानी की अजब कहानी, पानी से है जिंदगानी। पानी ना होता भू पर जल जाता सब बेपानी। हो पानी है अनमोल, ये समझा जिसने सबसे पहले। वो थे भागीरथ धरती पर। पानी है अनमोल, ये समझा जिसने सबसे पहले। वो थे भागीरथ धरती पर। गंगा की एक निर्मल धारा स्वर्ग से लेकर आए ब्रह्मा। भोलेनाथ का तप कर योजना थी बड़ी, मुश्किलों से भरी। योजना थी बड़ी, मुश्किलों से भरी। कर दिया हिमालय से सागर तक पानी ही पानी। पानी की अजब कहानी, पानी से है जिंदगानी। पानी ना होता भू पर जल जाता सब बेपानी। पानी बिन जीवन सूना, मोती मानस और चूना। उबरे नहीं बिन पानी, जो उतरे इनका पानी। पानी की अजब कहानी। जिन पांचों तत्वों से बनता ये शरीर मानव का, भक्तो है उनमें एक पानी। धरती वायु अग्नि आकाश है।

0: दिन ना चले, जीव हो जड़ भले हो, धरती पे ये जीवन है जो पानी की निशानी, पानी की अजब कहानी, पानी से है जिंदगानी, पानी ना होता भू पर जल जाता सब बेपानी, पानी बिन जीवन सूना, मोती मानस और चूना, उबरे ना ही बिन पानी, जो उतरे इनका पानी, पानी की अजब कहानी, पानी से है जिंदगानी, पानी ना होता भू पर
1: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: सकता हूँ और मेरे दोस्त, मैं आपका होस्ट शरद त्रिपाठी और आपके साथ तो हर बार हम मिलते ही ना, और प्रोग्राम का नाम होता है जुनून, और हमारी मुलाकातों में हर बार होता है कोई जुनूनी और उस जुनूनी से बात होती है कि उसके जुनून की शुरुआत कैसे हुई और दुनिया को कैसे बदलना चाहता है और वो क्या सोचता है, क्या जानता है और उसकी काबिलियत क्या है। तो हमारे साथ हैं हमारे एक नए दोस्त और नए जुनूनी, और इस जुनून प्रोग्राम में आपका स्वागत है मिस्टर यश।
1: थैंक यू सो मच सर, एंड नमस्कार सभी को। मेरा नाम यश गर्ग है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ।
0: जी यश, एक यंग एंटरप्रेन्योर है सिल्वर ट्री कंपनी के, और सिल्वर ट्री इनका ब्रांड है, और वो क्या करता है वो हम इनसे जानेंगे। और यश जो है वो बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर हैं और उनको यूथ आइकन अवार्ड मिला है और इतनी कम उम्र में एक जुनून इन्होंने पाल लिया। और आपको तो पता है ना श्रोताओं कि हमारे संग जितने भी जुनूनी आते हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में एक तैयारी कर ली होती है और एक जुनून सेट कर चुके होते हैं और उस पर वो निकल पड़ते हैं, लोगों का साथ उनको मिलता है और वो एक बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। तो हमारे साथ जो यश गर्ग हैं, आप 2024 के राजस्थान के यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं और हम यश को तब से जाने हैं कि यश ने जब से बताया कि आपकी जो कंपनी है वो एक राजस्थान में एक नई मुहिम शुरू कर रही है। तो आइए हम उसे जानते हैं कि सिल्वर ट्री क्या कर रही है और सिल्वर ट्री ने कैसे हमारे देश के पर्यावरण को बदला है और यूथ आइकन अवार्ड इनको क्यों मिला है। जी यश, बताइए आपकी कहानी, सिल्वर ट्री क्या है?
1: सर, सिल्वर ट्री के अंदर हमारी छोटी सी कंपनी है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी स्टार्टअप कह सकते हैं हम इसको। हम इसके अंदर रिसाइकल प्लास्टिक, जो अपना सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उसके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बेंचेस हो गए, ट्री गार्ड्स हो गए, वॉशरूम्स हो गए, डस्टबिन, आउटडोर फर्नीचर, इनडोर फर्नीचर, ये सारे हम मैन्युफैक्चर करते हैं और ये सारा रिसाइकल प्लास्टिक से होता है। हमारा कंपनी का लोगो स्लोगन भी यही है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, मतलब चाहे कितना ही छोटा हो या कितना ही प्लास्टिक का कितना ही बड़ा टुकड़ा हो, हम सब चीजें रिसाइकल करते हैं
0: जी।
1: तो बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि सब जानते हैं हम कि प्लास्टिक जो मल्टी लेयर सिंगल यूज प्लास्टिक होता है डीकम्पोज नहीं हो पाता है वो काफी 100-200 सालों तक, तो उसको हम कुछ नई टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, कुछ केमिकल्स के थ्रू हम उसको एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर उसको शेप देते हैं कि वो अपने यूज आ सके। जैसे हम गवर्नमेंट के थ्रू हम बेंचेस सप्लाई करते हैं, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देते हैं। तो बेसिकली मोटिव यही है सर कि जितना जल्दी हो सके हम प्लास्टिक को यूज ले लें इससे पहले कि हमारे ऊपर हावी हो जाए। काफी जगह, जैसे मैं ये आइडिया भी, मेरे को काफी जगह में ट्रैवल करते हैं, जैसे हम तो हम देखते हैं कि कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। जैसे आप दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पे जाएंगे आपको वहां पे दिखेगा कि एक पूरा प्लास्टिक के कचरे का एक पहाड़ बना हुआ है, उसकी हाइट अप्रोक्स 500 मीटर हो चुकी है
0: जी।
1: तो यही है कि सर हमारा मेन मोटिव यही है कि जैसे भी हो अपन सिंगल यूज प्लास्टिक को रीयूज ले सकें और उससे कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स बना सकें।
0: निश्चित रूप से आपने बताया कि आपकी जो कंपनी है एक छोटा स्टार्टअप है, कंपनी बड़ी नहीं है, बट वही मैं फिर से कहूंगा कि स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। तो आपने शुरुआत करी ना, वो कितनी छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो ये बहुत अच्छा पंच लाइन और एक अच्छा पंच आपने दिया समाज को, ये पंच पॉजिटिव पंच में से कहूंगा। इस पंच में ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नेचर को ठीक करने के लिए प्रयास किया है, और देखिए प्लास्टिक के साथ में आपको हम सब जानते हैं कि हम उसको निकाल नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो कैसे भी करके उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका एक ही सोल्यूशन है रिसाइकल। और रिसाइकल करके एटलीस्ट वो पहाड़ की फॉर्म में या गंदगी की फॉर्म में यहाँ वहाँ ना सड़के, वो एटलीस्ट हमारे समाज में ही एक पॉजिटिव भूमिका में हमारे साथ आ पाएगी। तो कुछ वैसा ही एक स्टार्टअप आपका है और आप इसमें प्लान कर रहे हैं। तो मैंने भी निश्चित रूप से, जब मैं दिल्ली पोस्टिंग के दौरान था, मैंने दिल्ली और अहमदाबाद में मैंने एक बड़े बड़े पहाड़ देखे कचरे के, हर बड़े शहर के बाहर कचरे के पहाड़ आपको मिलते हैं, शहर के बीचों बीच या शहर के बाहर, कुछ वैसा ही समस्या हमारे देश की और समाज की है। तो आप उस समस्या को ठीक करने का पीड़ा आपने उठाया, ये शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
1: सर, शुरू से एक आप कहते हैं आपके जैसे शो का भी नाम है जुनून, तो एक वो शुरू से एक जुनून था कि खुद से कुछ नाम कमाना है, खुद से कुछ अच्छा करना है। कुछ ऐसा ऐसा काम करना है जो हर कोई नहीं कर रहा हो
0: जी।
1: तो वही सोच के, और बाकी मेरे को मेरी मदर से भी काफी मोटिवेशन मिली, क्योंकि वो भी प्लास्टिक को लेके काफी कंसर्न रहती हैं। वो सेग्रीगेशन करती है हमेशा, जैसे जब भी वो कचरा, हम कचरे वाली वो गाड़ी आती है हम उसके अंदर देते हैं, तो वो सेग्रीगेट करके फिर डालती है। मतलब सूखा कचरा अलग होता है, जो हमारा सब्जियों का कचरा होता है वो अलग होता है, और जो ये प्लास्टिक वेस्ट होता है वो अलग होता है, गीला कचरा होता है वो अलग होता है। तो ये अपना जो, अगर यही अपन चीज हम सभी लोग हमारे घर से चालू करें कि हम ड्राई और वेस्ट अलग अलग करके कचरे की गाड़ियां फेंक रहे हैं, तो काफी कुछ हद तक जो हमको सेग्रीगेशन में बाद में दिक्कत आती है, जैसे नगर निगम को भी आती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इन फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी काफी ये सेग्रीगेशन की दिक्कत आती है, वो सेग्रीगेशन की जो इशू है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि जो प्रोसेस है सेग्रीगेशन का उसके अंदर सर काफी कॉस्टली भी पड़ता है, और उसके अंदर ये भी रहता है कि आप जो, आपको यूटिलाइजेशन लेने पड़ता है, जैसे वाटर का आपको क्लीन करने के लिए आपको यूटिलाइज लेना पड़ता है। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक इको फ्रेंडली, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी कम यूज हों और हम रिसाइकिल भी करें, तो अगर हम लोग घर से ही ये चीजें स्टार्ट करेंगे कि अपन सेग्रीगेट करें वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट को, तो काफी कुछ हेल्पफुल हो सकता है नेचर के लिए, हम काफी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इस चीज के थ्रू।
0: जी, कि समाज में ये तो इम्पोर्टेंट है, और हमारे देश की जो स्वच्छता को लेकर जो पॉलिसी है उसमें ये भी है, स्पष्ट है कि हमें गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, कांच, ये हमें अलग अलग बिन्स में करने हैं, और क्लिनिकल वेस्ट के लिए तो पूरी अलग नीति बनी हुई है, लेकिन शायद हमारी जागरूकता की कमी की वजह से हम लोग सब नहीं कर पाते। और एक आप एक युवा है, और आप एक युवा का यही फर्ज है, यही उसकी पॉलिसी है, नीति है, या उसका विचार भी यही होना चाहिए कि वो कुछ समाज में बदले या बदलाव की तरफ अग्रसर हो, और आपने वो कदम उठा लिया है। तो आपका जो कंपनी है इसका नाम सिल्वर ट्री कैसे हुआ, सिल्वर लाइनिंग कैसे बना रहे हैं आप? जी
1: सर, हमारी जो शीट्स होती है रिसाइकल प्लास्टिक से, उसके ऊपर एक टेक्सचर भी आता है सिल्वर, आप कभी, आपको मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे
0: जी।
1: उसके ऊपर टेक्सचर भी आता है सिल्वर कलर का। तो सिल्वर ट्री हमने ये सोच के रखा कि पेड़ों की तो वैसे भी कमी हो ही रही है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर
0: जी,
1: तो एक हम ऐसी कंपनी चालू करते हैं जो चांदी का पेड़ हो
0: जी,
1: जिसके थ्रू आप एक अच्छा मैसेज दे पा रहे हो, एक कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो अपने सोसाइटी के अंदर, एक अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एक नई पहल चालू कर पा रहे हैं
0: जी। निश्चित रूप से आप बात आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी है, और आप तो बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये यूथ आइकन अवार्ड राजस्थान सरकार ने किस लिए दिया और क्यों दिया?
1: सर, यूथ आइकन अवार्ड मेरे को राजस्थान यूथ बोर्ड ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसी वर्क के ऊपर दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में दिया था मुझे, और ये जो मैं रिसाइकल प्लास्टिक का स्टार्टअप कर रखा है मैंने, इसी के ऊपर मेरे को ये अवार्ड मिला गया था। ये 12 जनवरी 2025 के अंदर हमको ये मिला था अवार्ड बाय सीएम भजनलाल एंड मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर
0: जी। ऑनरेबल सीएम ने आपको सम्मानित किया, तो निश्चित रूप से एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रही है कि आपने नए युवाओं के सामने भी एक आइडिया रखा है, आइडिया, और हम तो और भी युवाओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ऐसी और कंपनीज बनाएं और आपके कंपटीशन में आए, और जिससे कि बाजार में लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें रिसाइकिल करना है, और निश्चित रूप से जब प्रतियोगिता बढ़ेगी तो इस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है वो करने में हमको सबको आसानी
1: अच्छा रहे।
0: तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, और जानना भी चाह रहा था आपसे कि आपने ये शुरुआत कहाँ से की, मतलब ये कब से आप प्लान कर रहे थे, कैसे आपने कंपनी बनाई, और प्रोडक्ट डेवलप कैसे हुए कि ये प्रोडक्ट हमें जब बनाना है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे किया गया, ये सब मुझे जानना है बारीकी से थोड़ा बता।
1: कंपनी की डेवलपमेंट काफी 2023 के अंदर मैंने ये स्टार्टअप ऐसे फुली एग्जीक्यूट कर दिया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए थे। उसके एक साल पहले से हम रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर रिसाइकल प्लास्टिक के ऊपर इतना फोकस नहीं है। अगर आप दूसरी कंट्रीज के अंदर, जैसे आप सपोज बाली जाते हैं या आप जापान के अंदर देखते हैं, तो ये नाइजीरिया के अंदर जाते हैं, नाइजीरिया के अंदर जैसे सर रबर रिसाइकलिंग का काफी अच्छा प्रोसेस है, तो ये सारी कंट्रीज के अंदर सर रिसाइकलिंग के ऊपर गवर्नमेंट के थ्रू अच्छी पॉलिसीज बनी हुई है जो एंटरप्रेन्योर्स को काफी सपोर्ट करती है।
0: जी
1: तो वहीं से मैंने देखा कि रिसाइकलिंग, जैसे वो दूसरी जगह हम दूसरी कंट्रीज में देख रहे हैं कि वहां पे प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, सपोज बेंच ट्रिगर, तो मैंने वही सोच के वहीं से मैंने ये आइडिया लिया कि हम क्यों ना हम ये इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक की तो कोई कमी है नहीं कि रॉ मटेरियल हमको मिल नहीं पाएगा, प्लास्टिक तो हमारे यहाँ लिमिटेड है
0: जी।
1: तो वहीं से हमने थोड़ा इसको आइडिया लेके हमने इसको यहाँ अपने राजस्थान में एग्जीक्यूट किया है। और मेन ये हमारा फोकस है कि एक नेटिव है ये, जैसे हम लकड़ी का प्रोडक्ट यूज लेते हैं, सपोज अपन बेड बनवाते हैं, वैसे ही आप सेम बेड आप रिसाइकल प्लास्टिक से भी बना सकते हैं
0: जी।
1: तो ये हमारा मोटिव ये है कि हम पब्लिक के एक एक अवेयरनेस है कि हाँ लकड़ी की जगह भी कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो लॉन्ग लाइफ रहेगा, टर्माइट प्रूफ रहेगा, जिसको आप और अच्छे से यूज दे सकते हैं एज कम्पेयर टू वुड, और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा
0: जी। तो क्या आप रिसाइकल प्लास्टिक से बेड बना पा रहे हैं?
1: बिल्कुल सर, हम बेड भी बनाते हैं, अलमीरा भी बनाते हैं, रैक्स भी बनाते हैं, लाइब्रेरी शेल्फ बनाते हैं, आउटडोर फर्नीचर बनाते हैं, जैसे टेबल चेयर सेट हो गया फार्म हाउस के हिसाब से, और इंडोर फर्नीचर भी बनाते हैं। काफी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम वो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं।
0: क्या बात है। अगर हमारे श्रोता अभी जानना चाहें तो क्या है मिनिमम कॉस्ट आपके बेड की?
1: बेड की सर एक आप एक अपन सिंगल पर्सन के हिसाब से साइज लेके चले तो आपको अप्रोक्स वो 7,000 to 10,000 का आपको पड़ता है।
0: बहुत बढ़िया। और उसकी लाइफ भी लॉन्ग लाइफ होगी?
1: लाइफ भी सर लॉन्ग लाइफ रहती है सर, बिकॉज टर्माइट प्रूफ रहता है प्लास्टिक है, उसमें टर्माइट की कोई इशू रहेगा नहीं। वाटर प्रूफ रहता है, जैसे अपनी लकड़ी फूलती है तो ये फूलता नहीं है, प्लास्टिक का पानी का कोई इफेक्ट है नहीं। और इसके अलावा फायर रिटार्डेंट भी है, और एक और इस चीज का ये फायदा ये है कि अगर आप इसको कहीं बाहर रख भी, सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट आपने अपने घर के बाहर लगा रखा है, सपोज ट्री गार्ड ही लगा रखा है, तो हमारे इंडिया में क्या चोरी चकारी काफी ज्यादा होती है, आपको पता ही होगा। तो हमारे ये प्रोडक्ट का एक ये फायदा है कि ये एंटी थेफ्ट बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसको क्या कबाड़ी वाला नहीं खरीदेगा
0: जी।
1: तो अगर चोरी करके इसको कबाड़ी वाले को बेचना भी चाहे तो वो कर नहीं सकता, वो ज्यादा ज्यादा अपने घर में ले जाके उसको इस्तेमाल ले सकते हैं
0: जी। बिल्कुल। तो एक इंटरेस्टिंग बातचीत के मोड पर हम अब आ गए हैं, लेकिन श्रोताओं आप फिर से बता दूं जो हमसे लेट से जुड़े हैं वे जान लें, हमारे साथ हैं मिस्टर यश। यश यंग एंटरप्रेन्योर है, एक स्टार्टअप है सिल्वर ट्री, माइंड सोल सब कुछ है, और मैं कहूंगा कि वो ही उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इनके इस स्टार्टअप को देखते हुए, इनके इस प्रयास को देखते हुए और ये युवा चेतना को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आपको 2024 में यूथ आइकन अवार्ड से भी नवाजा। तो श्रोताओं आप अपने सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन और आपका फेवरेट प्रोग्राम 107.8 FM पे, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। और आप इंटरनेशनली अगर आप हमें सुन रहे हैं माउंट आबू की वादियों से तो आप हमें सुन सकते हैं 107.8 FM पे, और आप यदि सुन रहे हैं हमें देश के बाहर से तो आप हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन से हमें सुन सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो यश मुझे बताइए कि ये जो पूरा आपने बोला कि दो आपने एक लंबे समय से आपने ये शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, 2-3 साल लगभग आपको होने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के, इस प्रोजेक्ट के साथ में, इस कंपनी के साथ में, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं आपके इस पूरे प्रोसेस में? आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है भारत का?
1: सर चैलेंजेस तो देखो काफी है जो शायद मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर भी ना पाए, क्योंकि वो कई चैलेंजेस अनएक्सप्लेनेबल होते हैं। तो जैसे एक सर सपोज अभी जैसे नया नया प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको कस्टमर फेथ काफी कम होता है मतलब नए प्रोडक्ट पे कस्टमर्स का, सपोज मैं आपको एक बेंच बेचना हूँ तो आपको लगेगा कि ये तो रिसाइकल प्लास्टिक है कि ये चलेगा कैसे, नया नया प्रोडक्ट है अभी मार्केट में, चले ना चले, अपन तो लोहे की बेंच लेके ही अपना काम चला देंगे। तो एक तो सर वो कस्टमर का एक विश्वास जीतना कि नहीं हाँ ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, आप इसको ले सकते हैं, मतलब वर्थ इट प्रोडक्ट है, ये काफी मुश्किल है आज के टाइम पे
0: जी।
1: और सर इसके अलावा जैसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंदर भी करते हैं, गवर्नमेंट पार्क्स भी डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर भी सर मेन ये इशू रहता है कि गवर्नमेंट हालांकि प्रमोट तो कर रही है कि रिसाइकल प्लास्टिक को प्रमोट कर रही है, उससे बने हुए प्रोडक्ट काफी प्रमोट कर रही है, पर कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक ये भी है कि कोई भी नए प्रोडक्ट के अंदर इतना रिस्क उठाना नहीं चाहता
0: जी।
1: मेन सर यही है, मार्केटिंग काफी ज्यादा होती है और कंपटीशन, हालांकि मेरे प्रोडक्ट में अभी तो काफी ना के बराबर है, अगर हाँ कंपटीशन बढ़ता तो शायद मार्केटिंग भी अपने आप ही हो जाएगी।
0: जी जी
1: यही सर इशू। और सर इश्यूज तो और भी होते हैं, जैसे आपके कॉम्पिटिटर, अब आप लकड़ी हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, सस्ती काफी अवेलेबल हो जाती है पर वो ब्रांडेड नहीं होती है, तो अब अगर आप इसको लकड़ी से कई बार कंपैरिजन करेंगे तो लोकल प्लाईवुड का बोर्ड आपको सस्ता पड़ सकता है एज कम्पेयर टू हमारे रिसाइकल प्लास्टिक का बोर्ड, पर उसकी लाइफ ड्यूरेबल हो या ना हो ये इसका कुछ गारंटी नहीं देती। मतलब हमारे इंडिया के कस्टमर को सस्ता और अच्छा चाहिए, पर वो सस्ते के चक्कर में अच्छा भूल जाते हैं।
0: अनीश तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं ना, यास ने कितनी अच्छी बात बोली है।
1: ये सर हमारी सबकी मेंटालिटी है, हालांकि मेरी भी कहीं ना कहीं है, मैं कोई सपोज कपड़े लेने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि सस्ते से सस्ता मिले, पर हाँ ये क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से।
0: जी निश्चित रूप से आप ने एक मिसाल कायम की है, एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं और आपको एक समय के बाद निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलना तय है, और डेफिनेटली जो हमारे फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करने में हमें कुछ समय लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी।
1: और जी सर अभी अभी हम हमारे इंडिया में सर हालांकि काफी हम मतलब इस चीज में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के अंदर काफी आगे बढ़ चुके हैं, पहले कंपैरिजन करें आज से 3-4 साल पहले, पर अभी भी सर काफी वो एक लोगों की मेंटालिटी चेंज करना और गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिलने में काफी अभी और हमको काफी अच्छा करने की जरूरत है जैसा अभी तक मुझे फील हुआ है। मतलब पॉलिसीज तो क्या बन जाती है, पर पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होना काफी ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि हो नहीं पाती है बेसिकली, कई बार ऐसा मेरे को फील हुआ है। मतलब ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ जो अभी तक मेरे को एक्सपीरियंस किया मैंने।
0: जी निश्चित रूप से कुछ चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी,
1: बिल्कुल सर,
0: लेकिन हम तो जुनूनी है ना, हम तो जुनून के साथ निकल पड़े हैं और देखते हैं कि बाजुए कातिल में कितना दम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ हम उसको, हम लोग जुनूनी जो है निश्चित रूप से उसमें बदलाव भी करते हैं, मिलके काम करेंगे।
1: बिल्कुल सर।
0: तो श्रोताओं इस कहानी में एक नया मूड हम ये भी लेना चाहते हैं कि ये जो प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी, इन्होंने बताया कि इनके इनके प्रयासों में ये एक चैलेंजेस इन्होंने देखा है कि इनको एनवायरनमेंट, लेकिन मेरे मैं फिर से वहीं पर आना चाहूँगा यश, कि ये जो कीड़ा है कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है, तुम्हारे जैसे युवा तो बस घूम रहे हैं इधर उधर, गाड़ियों में तेल जला रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लंबे लंबे वीकेंड छुट्टियों पर जा रहे हैं, तुमने ये क्या पाल लिया है ये समस्या, ये क्या है, ये कहां से?
1: जी मेरा मोटिव ऐसा है सर कि ऑनेस्टली कि हाँ एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न हूँ मैं, पर ये भी है कि मेरे को मेरी कंपनी और खुद की एक ब्रांड वैल्यू भी बनानी है, मतलब बेसिकली अपन शॉर्ट फॉर्म में कहें तो पैसा भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है कि कुछ अच्छा काम करके निकले सर, बस बेसिकली यही है बात। और
0: नहीं, लेकिन तुम पैसा कमाने के लिए तुमने इनोवेटिव क्रिएटिव और एक एथिकल आइडिया चुना है।
1: जी सर जिस आइडिया ऐसा चुना है कि सर जिसमें एनवायरनमेंट को लेके जो हमारा कंसर्न है वो भी पूरा होए, और एक हमारा जो पर्सनल कंसर्न है कि पैसा कमाना है तो वो भी पूरा हो।
0: तो ये एनवायरनमेंट का कंसर्न तुमको था पहले से या तुमने देखा कि लोगों में कंसर्न है इसलिए मुझे ये बिजनेस शुरू करना चाहिए?
1: सर अब एंटरप्रेन्योर हूं तो हम तो एक नया आइडिया ही खोजते हैं कि कुछ एक नया मार्केट में जो चीज नहीं है वो लेकर आए कि एक खुद का ब्रांड वैल्यू बन जाए जिसकी वजह से। तो मेरी थिंकिंग थोड़ा वो बिजनेस माइंड को लेकर भी है कि अच्छे काम के साथ साथ खुद की भी ग्रोथ हो रही है तो उसमें बुरा क्या है, और आप अपने साथ साथ 10 लोगों को और आगे बढ़ा रहे हो तो मुझे नहीं लगता था उसमें कुछ गलत कर रहा हूँ मैं।
0: तो मतलब तुम एनवायरमेंट के लिए पहले कंसर्न नहीं थे, अब ज्यादा हो गए जब से तुमने
1: एनवायरमेंट के लिए? हाँ सर हाँ, ये आप कह सकते हो, पहले बेसिकली मोटिव यही था कि यहाँ से खुद का डेवलपमेंट, क्योंकि सर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में कम सोचते हैं। फिर मुझे लगा कि हाँ ये ये जो रिसाइकल प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ अभी है नहीं इतना, ना कोई कर रहा है, तो मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं पहले ये लगता था कि आसानी रहेगी कि हाँ कोई और कंपटीशन नहीं है तो सिर्फ एक होल एंड सोल प्लेयर हम ही होंगे मार्केट में, तो हम मोनोपोली चला पाएंगे, पर ऐसा नहीं है सर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नया प्रोडक्ट है, तो नए प्रोडक्ट के ऊपर एक कस्टमर का विश्वास लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है सर। और नए प्रोडक्ट को आपको मार्केटिंग करना कि आपको लोग नाम से जाने, जैसे अपन ग्रीन प्लाई का नाम आपने सुना होगा, ग्रीन प्लाई का प्लाईवुड की बोर्ड की कंपनी है
0: जी,
1: तो उन्होंने अपना वो उनका भी जैसे काफी टाइम स्ट्रगल रहा होगा कि उन्होंने एक कस्टमर का फेथ लिया, उन्होंने इतनी मार्केटिंग करी कि अब जाके पब्लिक उनको जानने लगी, तो मेरा भी एक वही मोटिव है कि हाँ कभी इन फ्यूचर 5 से 5 साल बाद रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में लेके कभी कोई बात आए राजस्थान के अंदर, तो उसके अंदर मेरा नाम और मेरी कंपनी का नाम लोग जाने।
0: सरकार से क्या सहयोग मिला आपको इस पूरे आपकी मुहिम को लेकर, कितना आप उनसे सहयोग ले पाए?
1: सर ऑनेस्टली अभी मैं सरकार से मैंने इससे रिलेटेड कोई सहयोग लिया नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ खुद से ही कर रहा हूँ। हाँ हालांकि मैं सरकार को मेरे प्रोडक्ट सप्लाई जरूर करता हूँ फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ पार्क या अदर पब्लिक प्रीमाइसेस जहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका नगर परिषद डेवलपमेंट करती है, तो मैं उनको मेरे प्रोडक्ट सप्लाई जरूर करता हूँ।
0: आपकी क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट जुड़ गए हैं अभी?
1: सर क्लाइंट लिस्ट में हमारे नगर पालिका भी हैं, नगर परिषद भी है, नगर निगम्स भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जैसे कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, और स्कूल्स भी हैं कई, तो धीरे धीरे सर ग्रो कर रहे हैं
0: जी।
1: वो सर वो कहते हैं ना कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो, तो बस यही सोच के चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, ये तो प्रभु श्री राम की बात है और आपने वही बात आज हमारे बीच में रख दी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी फैमिली भी आपको काफी सपोर्ट करती रही है और आप एक यंग माइंड हैं, तो आपके क्या प्लानिंग है और क्या योजना है आपकी, क्या योजना है आपकी इस प्रोजेक्ट को लेकर
1: आने वाले टाइम पे? सर यही है कि मेरा मेन फोकस अभी तो ये है कि जैसे हम हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें हम मेटल प्रोडक्ट यूज लेते हैं, जैसे मेटल बेंच हो गई या मेटल ट्री गार्ड हो गए, तो वो उनका वो मेन ये देखा आती कि साल भर के अंदर अंदर तो चोरी चकारी हो जाते हैं या वो लोहा है तो जंग खा के वो खत्म हो जाता है। तो मेरा मेन फोकस यही है कि हम एक पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस फैला सकते हैं उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही, कि आप सपोज कोई पार्क डेवलप कर रहे हैं तो आप इको फ्रेंडली पार्क डेवलप करो, उसके अंदर आप बेंच भी रिसाइकल प्लास्टिक लगाइए, आप डस्टबिन भी उसमें रिसाइकल प्लास्टिक के लगाइए, इवन फ्लावर पॉट्स हो गए आप वो इससे लगाइए, तो वो अपने आप जब पब्लिक देखेगी तो हाँ उनको लगेगा कि अगर सरकार ही पब्लिक प्रीमाइसेस डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोडक्ट यूज ले रही है तो हम खुद के घर के अंदर भी यूज ले सकते हैं
0: जी।
1: तो एक मेन मोटिव यही है कि एक रिप्लेस कर रहे हम लोहे के प्रोडक्ट्स को हमारे रिसाइकल प्लास्टिक से, और जो अपना वुड जिसमें अपन प्लाईवुड यूज लेते हैं, हालांकि प्लाईवुड यूज आना तो कभी बंद नहीं होगा, पर कुछ हद तक हम ये कर सकते हैं कि रिसाइकल प्लास्टिक के बोर्ड्स भी जो हम बनाते हैं वो आप यूज ले लें एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाईवुड बोर्ड।
0: बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही बढ़िया आइडिया और बहुत ही शानदार आपकी शुरुआत। श्रोताओं जुनून में हमारे साथ हैं आज यश गर्ग और आप जयपुर से हैं और आपने अपनी कंपनी बनाई है सिल्वर ट्री, और सिल्वर ट्री इन दोनों रिसाइकल प्लास्टिक के साथ में बहुत सारे हमारे होम प्रोडक्ट बना रही है जो कि हमारे घर में काम

0: इस वेंचर के लिए आपने आगे क्या सोचा है, मतलब इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे या क्या कमी आपको भी महसूस हो रही है?
1: सर अभी एट प्रेजेंट तो मेरे को लगता है कि थोड़े प्रोडक्ट रेंज या ये भी लगता है कि हम और क्वालिटी के अंदर थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि नया नया प्रोडक्ट है तो थोड़े कस्टमर से रिव्यूज आते हैं या हम भी खुद नोटिस करते हैं कि यार ये इशू आ रहा है सर, क्या ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी तो सर जैसे 3 साल भी मेरे को कंप्लीट नहीं हुए तो एज सच मैं मेरी आगे की कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर हाँ ये है सर कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, ये तो सोचा हुआ है, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, निकल पड़े हैं बंदे तो कुछ कर गुजरेंगे। तो श्रोताओं, यश से हम विदाई लें, लेकिन उससे पहले यश एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि
1: जी सर।
0: आप जो केमिकल कर रहे हैं अपने इस प्रोसेस में रिसाइकल प्लास्टिक को लेकर, वो
1: हाँ
0: केमिकल्स क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं या वो भी वातावरण को
1: जी सर,
0: फर्दर
1: जी
0: उनमें?
1: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं वो एक बस एक एज अ एजेंट काम करते हैं वो प्लास्टिक जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में, और वैसे आप देखोगे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हमारे एनवायरनमेंट को लेके, और ये सारे प्रोडक्ट्स वापस रिसाइकलेबल भी होते हैं।
0: जी
1: अगर सपोज आप 3 साल बाद टूट जाती है तो आप उसको वापस रिसाइकिल कर सकते हो। अब
0: बढ़िया।
1: सर हाँ अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि यार चोरी चकारी नहीं होता ये आइटम, तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे इसको कबाड़ी वाला भी खरीदने लग जाएगा तो मैं ये मानूंगा कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ। होने लग गई तो सर ये सोच लेंगे कि आप कुछ हमने एस्टैब्लिश कर लिया
0: जी, तो श्रोताओं आपने सुना यश गर्ग को और सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। जुनून में अब हम यश से विदा लेना चाहेंगे। यश, आपको कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद, और भविष्य में हम ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: आपसे फिर एक रिव्यू लेंगे कुछ समय बाद कि क्या अनुभव रहा और क्या अभी
1: बिल्कुल
0: हम
1: सर बिल्कुल।
0: कहाँ, मंजिल कितना दूर है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, योर होस्ट शरद त्रिपाठी साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू, ओम शांति।

0: नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं आपका होस्ट और हमारे फेवरेट शो जुनून का दोस्त, और आप सभी तो हमें जो सुनते रहते हैं, मेरी आवाज तो कुछ लोग पहचानते भी होंगे, हमारे श्रोताओं को तो मालूम ही है। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून और आपका दोस्त शरद। तो हमारे साथ आज है एक नई आवाज रेडियो मधुबन के इस प्यारे से प्रोग्राम में, और जुनूनी है मुकेश। मुकेश एक एथलीट है और मैराथन एथलीट है, मैराथन करते रहते हैं और बहुत सारे देश के अलग अलग इलाकों में इन्होंने अपने साहस और अपने स्टैमिना का झंडा बुलंद किया है। आपका प्रोग्राम में स्वागत है मिस्टर मुकेश
1: जी। नमस्ते सर।
0: तो आप आते हैं राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर से, और आपका जो सूरज है वो मैराथन के क्षेत्र में ऊंचा करता जा रहा है, तो इसलिए हम चाहते थे कि आपसे बात की जाए और जुनून में आपके साथ जाना जाए कि आपका प्रकाश कहाँ तक पहुंचाए। वेलकम मुकेश, बताइए मुकेश अपने बारे में, अपनी इस एथलेटिक्स की यात्रा के बारे में, और आप कौन सा इवेंट खेलते हैं?
1: मैं अभी तो ट्रैक में 10 किलोमीटर इवेंट करता हूँ और हाफ मैराथन फुल मैराथन भी खेल रखी है
0: जी।
1: हाँ जी सर,
0: 10 किलोमीटर इवेंट जो है वो एक ओलंपिक इवेंट है, राइट?
1: हाँ जी, 10 किलोमीटर और मैराथन भी ओलंपिक।

0: जी
1: जी तो दो इवेंट्स में आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हुई मुकेश? अभी
0: 24
1: आपको कभी साई जाने का अवसर मिला? SAI की ट्रेनिंग में गए हैं आप?
0: नहीं नहीं सर, नहीं गए। एक्चुअली हुआ क्या सर, हमारे को मतलब बिल्कुल ग्रामीण एरिया से आते हैं हम, हमारे को पता ही नहीं था। और हमने 12th करके जब जोधपुर में आए तो थोड़ा बहुत ऐसे पता चला गेम होता है जो, उसके 12th करने के बाद नहीं पता चला गेम के बारे में। मैं 2020 से ही स्टार्ट किया गेम, जब मैं ऑलरेडी 3 ईयर हो चुका था। ज़्यादातर साई में मतलब जूनियर लड़कों को अवसर मिलता है, मैंने गेम शुरू ही 3 ईयर से ही किया।
1: जी हाँ, साई के ट्रायल के लिए आपको 12वीं कक्षा के बाद आप जा सकते हैं, या फिर आप 11वीं कक्षा में भी वहाँ जा सकते हैं। एम आई करेक्ट मुकेश जी?
0: हाँ
1: जी, तो आपका कहना है कि आप की ट्रेन छूट गई, तो फिर
0: हाँ
1: तो इस ट्रेन में आप चढ़े कैसे? भाग कर या आपने ये रिस्क कैसे ली, बताइए? आपने भागती हुई ट्रेन कैसे पकड़ी और कब पकड़ी?
0: मैं तो सर ऐसे शुरू से स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्ट्रोंग था, तो यहाँ जोधपुर में आया था मतलब ऐसे आर्मी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, जो आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के थे यहाँ, कोच थे दिनेश परियार नाम का कोच था। उन्होंने
1: जी
0: मतलब ऐसे में वर्कआउट करता था, उन्होंने देखा भाई ये बच्चा मतलब बहुत तगड़ा दौड़ रहा कर रहा है, क्यों नहीं इसको बताए, ऐसे ऐसे गेम भी होता है, ये सब कुछ होता है। तो उन्होंने एक बार ट्रायल दिया तो मैं फर्स्ट हो गया उन सब में। तो
1: जी
0: फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे गेम होता है, यूनिवर्सिटी से होता है, ओपन से होता है, उनमें जॉब भी मिलती है, हर कुछ सब कुछ होता है। तो उस टाइम से मैंने ऐसे स्टार्ट कर लिया। फिर स्टार्ट किया तो मैं मतलब कम से महीनों में ही नेशनल खेल लिया मैंने, 6 मंथ के अंदर नेशनल खेल लिया बस।
1: जी
0: फिर ऐसे खेलने जाता तो अपने आप में खुद में अलग से जुनून और देखने को मिलता था, वो ये तो ऐसे होता है गेम है, बहुत अच्छा, खुद से शौक होने लग गया, मतलब यही शौक हो गया रनिंग का ही बस।
1: जी तो आपका मानना है कि आपने देर से अपनी ट्रेन पकड़ी, लेकिन आप सही रास्ते पर हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: हाँ
1: आपका सफर सही चल रहा है और आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट है।
0: जी
1: तो
0: सर,
1: मैं इसको लेकर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मैराथन और लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स जितने भी हैं, ये स्टैमिना का गेम है ना, कि आप
0: हाँ
1: कितने लंबा चल सकते हैं, कितना लंबा दौड़ सकते हैं। तो इसमें स्पीड मैटर नहीं करती, इसमें स्टैमिना मैटर करता है। तो ये स्टैमिना लाते कहाँ से हैं, कैसे तैयार किया आपने अपना स्टैमिना, क्या आपका शेड्यूल होता है?
0: सर, शेड्यूल तो सर मेरी तो पूरी अलग ही कहानी है सर। हम तो विवाह शादी जागरण जब मैं कुछ में घर भी नहीं जाता हूँ। मैं तो अभी दीपावली को भी घर नहीं गया, क्योंकि तो हमारे को मतलब इतना अधिक ऐसे लग रहा कि घर जाने के लिए हमारे पास टाइम मिलेगा, हमारे को वो भी हमारे लिए टाइम आएगा। अभी हमारी उम्र है, एज है, और ये दीपावली तो बहुत सारी दीपावली आगे हमारे को मनाने के लिए मिल जाएगी, लेकिन जो अभी ये टाइम है ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। एज निकलने के बाद में पिस्ता में कहला कुछ नहीं मिलेगा हमारे को देखने के लिए। मेरा खुद का ही डिस्कशन है कि आप जितना हो सके इस उम्र में मेहनत करें।
1: जी, बड़ी प्रेरणादायी बात आपने कही मुकेश। अगर भविष्य की दिवालियां मनानी है तो आज की दिवाली को हमें त्यागना होगा।
0: जी सर,
1: निश्चित रूप से आप दिवाली पे घर नहीं गए, लेकिन आपने उस समय का सदुपयोग किया। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसे, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपके कोच कौन हुए और आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है?
0: कोच तो सर अभी जब शुरू से स्टार्ट किया था तो वो जैसे जैसे कोच चेंज होते गए, सबका सब कोच हो गया, अच्छा सपोर्ट रहा मेरे को, क्योंकि मैं जिस कोच के पास गया ना वो खुद कोच ही से मेरे से संतुष्ट है और मैं कोच से संतुष्ट हूँ। क्योंकि वो जो भी वर्कआउट बताते थे मैं तुरंत कर लेता हूँ, उनसे एक्स्ट्रा ही करता था, ऐसे कभी नहीं बोलता कोई सा मेरे से होगा नहीं, वो बताते ऐसे ही बोलते थे कर लूंगा। वर्कआउट के बाद में भी कई बार बोलते थे कि अभी ये और वर्कआउट करना, मैं कोच अप कर दूंगा, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा, ऐसे कभी मना किया ही नहीं। मैंने कभी मना नहीं किया, मैं मेरे से नहीं होगा।
1: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.9 FM, और हमारे साथ हैं एथलीट मुकेश, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। तो आज हम उनसे कर रहे हैं बातचीत, उनके सफर के बारे में और उनके जीवन के बारे में और उनकी तैयारियों के बारे में और भविष्य के सपनों और आकांक्षाओं के बारे में। करता हूँ, मजा आ रहा है ना उनसे बात करने में, तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। और मेरे साथ है मुकेश। तो मुकेश, निश्चित रूप से आपने एक बात की, सफर की बात की, और आपने बताया कि आप एक कठिन प्रशिक्षण के से गुजर रहे हैं। वो कठिन प्रशिक्षण होता क्या है, मतलब मैं सुबह 5 बजे से लेकर आपकी पूरे दिन की यात्रा समझना चाहता हूँ, आप कैसे अपनी तैयारी करते हैं?
0: नहीं, अभी तो ठीक है सर, जब शुरुआती का दिन थे ना, तभी मेरे को कम से कम 3 बजे उठना था, क्योंकि मैं जब घर से निकला था ना तो हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी है, लगभग मैं समझता हूँ कि मेरी कंडीशन कही है, शुरुआती में ऐसे ही होते हैं, ऐसे कोई नहीं जो पूरे कमाने वाले या फिर पूरे VIP घर से होकर के कोई गेम नहीं करेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा कष्ट था, एक जीवन यापन है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी जो शौक से कर रहा है, शौक से कर रहा है तो वो आगे के नहीं बढ़ पाएगा, बस वो ये डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहेगा। क्योंकि जब शुरुआती पल थे तो मैं तो किसी पड़ोसी से 1000 रुपये लेकर के शहर में आया बस, और वहाँ पे एक शॉप पे 8000 रुपये में पर महीने काम करता था, तो वहाँ पे

0: वो 3 बजे उठ के बना के, उसके बाद में सुबह 4 बजे 5 बजे ग्राउंड पहुंच के जो भी वर्कआउट होता वो करके, उसके बाद में सीधा मैं वापस रूम नहीं जा सकता था क्योंकि सीधा उसी शॉप पे जाना था, क्योंकि मेरे को वहां पे रह करके काम करना था, काम करने के बाद में शाम को और ग्राउंड जाता था।
1: जी, ये तो बड़े परिश्रम की कहानी है आपकी और बड़ी प्रेरणादायी कहानी है। लेकिन मुकेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह की शॉप पर काम कर रहे थे और आपने वहां से क्या सीखा?
0: जी सर, वो एक फायरवर्क्स की शॉप थी, वहां पर ही काम करता था। वहां से भी उन्होंने मतलब उनसे भी मेरा इतना लगाव होगा, मेरा क्यों व्यवहार मेरे से मतलब लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रहा है आज तक, और उनसे इतना लगाव हो गया वो मतलब सेठ से मैं चाहता था कि ये शॉप से अब मैं छुटकारा पा करके मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ सर, तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं जा मुकेश मत जा, तेरे को जो सही है वो हम दे देंगे लेकिन ये छोड़ के मत जाओ। फिर मैंने बोला मेरे को जाना पड़ेगा कि मेरी लाइन अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये अब मैराथन खेल के कैसे भी पैसे का मैनेज करके और मेरे को आगे बढ़ने और ऊंचे लेवल पे जाने के लिए ये जगह छोड़नी पड़ेगी, और उस टाइम मैं दिल्ली गया था प्रैक्टिस के लिए।
1: जी, तो आप भविष्य के सफर के बारे में बात हो, श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि आप हैं श्री मुकेश जो कि जोधपुर से आते हैं और देश के प्रतिष्ठित मैराथन दादी प्रकाश मणि मैराथन के आप उप विजेता रहे हैं, और इस मैराथन में पिछले दिनों मुकेश ने 2025 की मैराथन में अपने साहस और अपने स्टैमिना का झंडा बुलंद किया। तो मुकेश, कैसा अनुभव रहा आपका दादी प्रकाश मणि मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद?
0: वो तो सर उस टाइम क्या थोड़ा ऑब्सेशन था और मैं थोड़ा प्योर में था, और जो हमारे इलाइट ग्रुप की कोऑर्डिनेट है सुनीता बोदारा मैम, उनका खुद का कॉल आया था कि मुकेश तुम्हारे राजस्थान में मैराथन हो रही है, तुम भाग नहीं ले रहे हो। तो मैम ने बोला था कि ये मैराथन खेलनी जरूरी होगी मुकेश तुम्हारे को। मैंने बोला मैं फिट नहीं हूँ, मैं अभी बुखार में चल रहा हूँ, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आ रही हूँ, तुम भी आ जाना, जितना हो सके उतना भाग लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा ठीक है, ऐसे ही मैं तो भागा, फिर फिनिश कर ली उसी हिसाब से सेट करके हुआ, तो मैं उप विजेता रह गया, वह भी बहुत अच्छी बात है।
1: आपने बताया कि आप एलीट ग्रुप के सदस्य हैं, ये एलीट ग्रुप क्या है और आप इससे कैसे जुड़े हुए हैं?
0: ये एलीट ग्रुप ये होता है कि सर ये इंडिया के टॉप 10 एथलीट होते हैं, जो इंडिया के टॉप टॉप एथलीट होते हैं उनको ये फैसिलिटी मिली जाती है एलीट ग्रुप की, हर किसी को नहीं दी जाती है सर।
1: तो इसमें क्या सुविधाएं आपको दी जाती हैं?
0: सुविधाएं ये होती है सर, जो मैराथन होती है उसमें अपने अभी आजकल ये एंट्री फीस लगती है उससे, वो हमारी मैडम के थ्रू ही होती है एंट्री और रहने का, और व्यवस्था सारी मैडम करती है अपना आप ही, और सुविधा देती खुद से ही।
1: जी
0: सर,
1: बहुत बढ़िया। तो भविष्य में आपकी क्या सपना है, आपकी क्या योजनाएं हैं, आप क्या करना चाहते हैं?
0: सर देखो धीरे धीरे कर रहे हैं भविष्य के लिए, तो अब देखो हम तो जो एकदम से आप होकर के जाना वो तो है नहीं, अब धीरे धीरे नेशनल मेडल आया, आगे धीरे धीरे एशियन गेम तक पहुंचेंगे, जितना हो सके समय देंगे, अभी तो 24 साल एज हुई है, 35 साल तक खेलेंगे, 35 साल का टारगेट है हमारा, 10 साल और करेंगे तो लगभग ओलंपिक तक पहुंचने का हमारा टारगेट है, वहां तक पहुंचेंगे तो अपना देश का नाम रोशन करेंगे सर।
1: आपका बेस्ट टाइम क्या निकाल रहे हैं आप 10 किलोमीटर इवेंट?
0: 10 किलोमीटर सर 29 मिनट 41 सेकंड।
1: जी,
0: आप मैराथन का 1 घंटा 3 मिनट 27 सेकंड सर।
1: जी,
0: 2025 का फास्ट रनर हुआ रहा।
1: तो आप अंतरराष्ट्रीय बेस्ट से कितना पीछे हैं अभी?
0: सर ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस तो परफॉर्मेंस है, अप डाउन होती रहती है इधर उधर, बस पास में ही है, ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल निशाने के पास पास घूम रहे हैं।
1: मैं जानना चाहता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है उनका क्या टाइमिंग है और आप उससे कितना पीछे हैं?
0: सर उनका तो 27 मिनट के आसपास है, 27 से 20 यही चलता रहता है, और अभी मेरा 29 मिनट आ रहा है, तो मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, इसको टाइम देना पड़ेगा और अच्छे लेवल पे जाके प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, हर कोई सुविधा है आस पास से जो भी बातचीत करके करेंगे प्लानिंग कोई अच्छी आगे से करेंगे।
1: ये जो ओलंपिक के बेस्ट मेडलिस्ट होंगे ये मुझे लगता है अफ्रीकन होंगे, राइट?
0: जी सर।
1: तो अफ्रीकन देशों की तो तैयारी है, क्या थोड़ा बेटर है उनकी तैयारियां या हम कहाँ पीछे हैं?
0: नहीं, उनका सर स्टार्टिंग से ही लेवल अलग है, उनका उनका रहन सहन अलग है, और उनकी मतलब अलग ही लेंथ वगैरह सब कुछ अलग ही है, उनका सिस्टम अलग है पूरा, और अपना इंडिया का सिस्टम अलग है, उनका क्लाइमेट पूरा अलग है, अपना अलग है पूरा क्लाइमेट। तो उनमें ज्यादा ही स्पीड है, हमारे में कम स्पीड है, तो उसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसीलिए सर मेन मेन इंडिया के एथलीट है वो बाहर जाके भी प्रैक्टिस करते हैं, क्लाइमेट का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर।
1: नामीबिया के एथलीट?
0: हाँ जी सर, इंडिया के भी एथलीट वहाँ बाहर प्रैक्टिस, यूएसए में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
1: आपको भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना को लाभ मिला है अभी तक अपने संघर्ष को?
0: नहीं हमारे को सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिल रहा सर। सरकार की तरफ
1: खेलो इंडिया प्रोग्राम में क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं?
0: खेलो इंडिया तो सर वो तो यूथ गेम हो गया 18 साल कम एज वालों का, उस चीज का तो मैं हिस्सा बन ही नहीं पाया जी सर।
1: टॉप स्कीम में आपने कभी आवेदन नहीं किया?
0: ये तो सर सरकारी चीजें हैं, इनमें सिर्फ कागजी काम होता है सर, धरातल पे कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावटी है और उसमें कुछ नहीं है। सरकारी सब जो भी लगे हुए हैं वो सिर्फ अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं, सिर्फ कागज कागज पे ही काम होता है और धरातल पे 0% काम होता है।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आपने कभी आवेदन नहीं किया?
0: नहीं सर।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में आप जानते हैं?
0: नहीं नहीं सर।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से भारत सरकार कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक मेडल के लिए तैयार करती है और उसके लिए उनके मापदंड है क्वालिफिकेशन और सभी चीजों के लिए। तो मैं श्रोताओं को बता दूं कि जो भी हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनके मापदंडों पर अगर यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको टॉप स्कीम में के अंतर्गत चयनित होने का मौका मिलता है, और टॉप स्कीम में भारत सरकार की ओर से हर तरह की सुविधाएं और इसके साथ साथ आपको एक अच्छा सुंदर सा मानदेय भी महीने का दिया जाता है, जिससे कि आर्थिक रूप से संबल प्राप्त हो सके खिलाड़ी को और एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। तो आप टॉप स्कीम के बारे में निश्चित रूप से मुकेश पता करिएगा और मैं चाहूँगा कि आप उसके लिए आवेदन भी करें और किसी प्रकार के सहयोग अगर हम कर पाएंगे तो हम आपको गाइड भी करेंगे। तो आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया और मुझे अच्छा लगा, और बताइए आपकी क्या तैयारियाँ हैं, आप अपने टाइम को बढ़ाने के लिए कम करने के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे इसको आगे बढ़ने जाएंगे?
0: अभी तो सर जो इंडिया के चीफ कोच है यूनिस खान सर, उनका वर्कआउट कर रहा हूँ, उन्हीं से गाइड होके उनका ही वर्कआउट कर रहा हूँ, और जो भी है खाना पीना जो भी हर चीज पूछ के उन्हीं से ही कर रहा हूँ, तो बेहतर से बेहतर हो सके
1: जी। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है अभी, फैमिली क्या करती है, और आपको कोई आर्थिक संबल मिल पाया है इन दिनों में?
0: सर आर्थिक स्थिति के बारे में बताए तो सर ऐसा स्थिति है कि एक तो होता है गरीब और हम आते हैं अति गरीब में, बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे पास, ऐसी कंडीशन हो रखी है।
1: क्या करते हैं आपके माता पिता?
0: कोई गांव में सर, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट तो जैसलमेर लगता है ऐसे सर, दोरों की धरती है, बिल्कुल ट्यूबवेल का पानी नहीं है हमारे, जो बरसात होती है तो थोड़ी बहुत खाने पीने का हो जाता है बस, और कुछ नहीं है, वो भी साल में एक बार
1: जी।
0: और फादर साहब का पहले आज से 3-4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, तो दिमाग में लगी हुई है, इतना कुछ काम कुछ कर नहीं पाते, वैसे कोई कमाने वाला है नहीं घर में।
1: श्रोताओं जुनून में हम ऐसी ही कहानियों को लेकर आते हैं और हम जान लें कि हमें ऐसे ही जुनूनियों की आवश्यकता है कि जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और माता पिता कभी संबल प्राप्त नहीं है, फिर भी एक जुनून है कुछ कर गुजरने का, कुछ देश के लिए कर गुजरने का और साथ में तिरंगे की आन बान शान को आगे बढ़ाने का। तो ऐसे ही हमारे युवा साथियों का हम इस्तकबाल करते हैं हमारे फेवरेट प्रोग्राम जुनून में। विषय गंभीर है और निश्चित रूप से भावुक कर देने वाली बातें हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर यदि आपके अंदर हौसला है तो आप हर मंजिल को पा सकते हैं, और हमारे जैसे जुनूनी मुकेश की कहानी तो अलग ही है। मुकेश मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कौन कौन सी अभी तक इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और मैराथन को लेकर आप में ये जुनून कब आया?
0: इवेंट सर 10 किलोमीटर ट्रैक एंड फील्ड भी खेल रखा हूँ और क्रॉस कंट्री होती है 10 किलोमीटर की, उसमें भी नेशनल में पार्टिसिपेट भी कर चुका हूँ, और पिछली बार हमारे राजस्थान टीम से मेडल भी आया था, और हाफ मैराथन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल है 2024 में, और अभी फिलहाल तो एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाए उसके बाद में मैं सीधा मैराथन में आऊँगा, क्योंकि फुल मैराथन में सीधा उसके लिए करूँगा ताकि कि मेरे भविष्य के लिए आगे ओलंपिक में क्वालिफाई हो, एशियन गेम और ओलंपिक के लिए, क्योंकि मैं मेरा पूरा पूरा टाइम है जो भी आज से 5 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए, कि मेरा एक ही टारगेट है, मैं उसी टारगेट पे चढ़ रहा हूँ, मैंने सब कुछ इधर उधर सब कुछ देखना जो भी करना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक ही टारगेट है बस, और कहीं जाना करना, फोन पे बात तक नहीं होती है 7-7 दिन घर वालों से। बहुत सीरियस होकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है एकदम से। ऐसा समझो कि एक कैदी जेल में बंद होकर के कैसे रहता है, उसी स्थिति में एक एथलीट को रहना पड़ता है, तब जाके सीरियसली गेम होता है। अब लाइफ से मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर भटक गए तो आप नहीं कर पाओगे
1: जी। आपने अपने देश के पूर्व एथलीट्स मिल्खा सिंह और श्री गोपाल सैनी के जीवन से क्या सीखा?
0: उनसे हर कंडीशन में मैं सीखना देखता था तो कि भी वो अपने आप में कितने मजबूत हैं, वो टूटते नहीं है, कितनी कंडीशन खराब हो जाओ लेकिन टूटते नहीं है, लास्ट तक मरते तक आप करते रहो सही, कितनी भी कंडीशन है, वो इंसान तब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक करते रहना, बस मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, आगे जाके पिछता नहीं होना चाहिए कि मैंने किया क्यों नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने करा है, बस यही होना चाहिए।
1: और अब तो भारत के एथलीट्स ओलंपिक में ही बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप तो जानते ही हैं नीरज जी ने पिछले साल कमाल करके दिखाया, तो आपका क्या तैयारियां हैं और आप क्या सोचते हैं कि हम भविष्य में आपको किस तरह की सुविधाएं या सहयोग की आवश्यकता है जिससे कि आप एक बेहतर एथलीट बन के निकल।
0: सर फिलहाल तो कंडीशन ऐसी हो रखी कि

0: करके फिर उसमें जाके अपनी मतलब जो ये स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी आती है उसमें आवेदन के लिए भी ऐसा कर दिया है। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, इसमें भी हम फॉर्म नहीं लगा सकते, ऐसी कंडीशन कर रखी है। और जैसे हम डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं और स्टेट खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, तो क्या हमारी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि हम खिलाड़ियों के लिए गेम करवा रहे हैं, उनके लिए खिलाड़ियों से ही पैसे लिए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए 200 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ रही है, स्टेट राजस्थान स्टेट खेलने के लिए 700 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ रही है, और हम नेशनल में एंट्री करवाएंगे तो हमारे से 1200 रुपये एंट्री फीस ली जा रही है, ऐसी कंडीशन कर रखी है गवर्नमेंट। तो हमारा तो यही है कि भी मैं भी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें आप कुछ सुविधाएं दी जाए खिलाड़ियों को। ये इंडिया में मतलब गिने सुने खिलाड़ी है, इतने ज्यादा कोई खिलाड़ी नहीं है, और अभी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। आने वाले लड़के मतलब कोई ऐसे किसी में जोश नहीं है, खिलाड़ी बहुत कम पड़ रही है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, खिलाड़ियों में कोई जोश नहीं है, बहुत कम पड़ रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं अभी आजकल के एसोसिएशन में, मैराथन में भी बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है।
1: अपनी कठिन परिस्थितियों और अपने जीवन के बारे में हमें बताया, और श्रोताओं इस प्रेरणादायी कहानी से हमें जानने को मिलता है कि जुनून यदि है तो आप हर मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो आप सुनते रहें और मुस्कुराते रहें, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। और मुकेश ने बताया कि जिस प्रकार से फीस ली जा रही है सरकार के द्वारा विभिन्न इवेंट्स में या जो आयोजक हैं उनके द्वारा, उससे वो थोड़ा नाखुश हैं और बताते हैं कि उनके लिए फीस भी जुटा पाना कई बार मुश्किल होता है और इस फीस में राहत दी जानी चाहिए। आशा है कि जो हमारे खेल प्रबंधक हैं और जो खेल प्रशासक हैं इस बात और इस मांग के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। तो श्रोताओं केस से बात करते हैं। मुकेश आप बताइए ना, आपने कई सारी मैराथन में भाग लिया है, सबसे अच्छा अनुभव और यादगार अनुभव कौन सी मैराथन में रहा आपके लिए?
0: सर अगर देखी जाए तो इसमें सबसे एक तो हमारी अमृतसर में हुई थी BSF मैराथन, उसको ही बताऊंगा मैं। और सबसे अच्छी तो जो माउंट आबू ब्रह्म कुमारी मैराथन हुई थी, इससे अच्छी कोई सुविधा नहीं हो सकती। इतनी अच्छी व्यवस्था और सब कुछ, रूट पे पानी वगैरह, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी हर सुविधा, और रेलवे स्टेशन से लेकर के स्टार्टिंग से लास्ट तक ड्रॉप करना, हर एक सुविधा, छोटी छोटी रुकने की, जाने आने की, इतनी अच्छी सुविधा दी जाए तो खिलाड़ियों में अपने आप में जोश होगा। हर कोई इंसान में जो भी अगर 40 साल एज होगी ना, वो भी सोच सके कि मैं भी मैराथन खेलूं। और ये एक भागना दौड़ करना, ये मतलब एक बहुत कठिन परिश्रम है, इसका खेल नाम दिया बहुत अच्छी बात है कि जो भी सुबह उठते हैं जल्दी और कोई रोड पे ऐसे रनिंग करते हैं वो देखते हैं तो हर कोई मोटिवेट होता है, हर कोई यही सोचता है कि कितनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं, वो इसके लिए कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, अपन सो रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, हर एक इंसान के अंदर विचार आता है। जी सर।
1: तो श्रोताओं आशा है कि आज आपने सुना गंभीरता से हमारे साथी मुकेश को, जो कि एक एथलीट हैं, जोधपुर शहर से आते हैं। आप भी इनकी कहानी से प्रेरणा लेंगे और इनकी कहानी से कुछ सीखेंगे। और उन्होंने बताया कि माउंट आबू में होने वाली दादी प्रकाश मनी मैराथन ने उनको एक अच्छा खुशनुमा अनुभव उनको दिया, और उन्होंने इस मैराथन में अपने साहस और अपने जज्बे की मिसाल कायम की। तो मुकेश आप इसी प्रकार से आगे दौड़ते रहें, और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आप भी देश के नाम रोशन करें, अपने प्रयासों में कभी कमी ना आने दें, और जो सहयोग आपके आसपास अवेलेबल हैं वो निश्चित रूप से आपको मिले। और सरकार से भी हम इस कार्यक्रम जुनून के माध्यम से निवेदन करेंगे कि वो आपको आशानुरूप सहयोग प्रदान करें। केज आप हमसे ऐसे जुड़े रहें, और आप भविष्य में हम जब भी चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से, जब आपके पास मेडल्स और होंगे तो हम आपसे और भविष्य में बातचीत करेंगे। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। श्रोताओं आप सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। थैंक यू मुकेश, जय हिंद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नमस्कार किसान भाई बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के शो में, मेरा गांव मेरा अंचल में। और हमारे साथ है डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी, जिनसे हम पिछले एपिसोड में बात की थी, 6 फफूंद के बारे में बताया था, जिनसे आपकी सारी खेती की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती हैं और एक बहुत ही सुंदर गुणवत्ता वाला फसल आप उठा सकते हैं, और वो भी किसी भी प्रकार का कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हुए। तो ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब से हमने सुनी थी पिछले एपिसोड में। तो आज हम लोग कुछ नए टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कीड़े मकोड़ों के लिए या मक्खियाँ जो भी हमारे खेती में आते हैं फल फूल सब्जियों के आसपास में, तो उन सभी को किस तरह से हम नेचुरल नए तरीके से हटा सकते हैं, ये सारी विधियाँ आज हम सुनेंगे डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी से, और वो भी कहानी के माध्यम से, क्योंकि डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी जो है बहुत ही सुंदर कहानियों का उदाहरण देते हुए बात को समझाते हैं, तो आपके दिल में वो बात जल्दी उतर जाती है, ये इनकी खूबसूरती है। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी का तहे दिल से स्वागत है।
1: तो किसान भाइयों, हम लोग बात कर रहे थे ऐसी जैविक खेती की विधियों पर जिनमें कीटनाशी जहरों का उपयोग नहीं किया जाता, और उसमें एक कहानी हमने फफूंदों की आपको पिछली बार सुनाई थी, और एक कहानी हम आज नई सुनाते हैं आपको, वो है फल मक्खी ट्रैप, खात्मा फल मक्खियों का। अब आप देखिए, फल मक्खियां जो हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। फल मक्खियां एक छोटी सी मक्खी होती है हमारे घरेलू मक्खी के बराबर की, केवल रंग में थोड़ा अंतर है, लाल कत्थई से रंग की होती है, और वो मक्खी आकर के चुपचाप हमारी फल जो हमारे लगते हैं जितने भी प्रकार के उनके ऊपर अंडे दे जाती हैं, चाहे वो लौकी हो, चाहे तोरी हो, चाहे टिंडा हो, चाहे खीरा हो, चाहे करेला हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे खरबूजा हो, चाहे तरबूजा हो, चाहे दूसरे फल हो, जितने भी हमारे बड़े बड़े फल हैं जो हम खाते हैं, उन सभी फलों पर ये मक्खियां आती हैं और अपने अंडे घुसा जाती हैं उन फलों के शुरुआत में, और इनके जो मैगट हैं बच्चे हैं ये फल को उस जगह से जिस जगह से निकलते हैं ये अंडे से खा खा करके फल को सड़ा देते हैं और टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं फल को। तो आप देखते हैं कि इनको रोकना किसी भी कीटनाशी से संभव नहीं है, क्योंकि ये सुबह ही सुबह आती हैं और अपने अंडे देके और रवाना हो जाती हैं, और किसी दोपहर के अंदर किसी बड़े पत्ते के नीचे रेस्ट करती हैं और फिर सुबह ही सुबह आती हैं फिर ये कर जाती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन फल मक्खियों का नियंत्रण तो हम कैसे कर सकते हैं, ये किसान भाइयों के लिए बड़ी रोचक कहानी है। तो ये जो कहानी जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, ये कहानी है फल मक्खियों की, और वो दोहा आप लोगों ने सुना होगा किसान भाइयों कि माखी गुड़ में फंसी रहे और रहे पंख लपटाए और हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बला है। तो हाँ, ये जो लालच है ये सभी जीवों के लिए बुरा है, चाहे हम हो चाहे हमारे दुश्मन हो, मगर हमारे जो कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे हमारे दुश्मन कीटों के लालची स्वभाव को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे नायाब तरीके हमारे लिए विकसित किए हैं जिनसे कि ये हमारे दुश्मन कीट अपने लालच में फंसकर और नष्ट हो जाएं। और इसी तरह का एक ट्रैप हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, उस ट्रैप का नाम है फल मक्खी ट्रैप। फल मक्खी जो है वो बड़ी दुष्ट मक्खियां हैं, चुपचाप आती हैं, और आपको मैंने बताया अभी लौकी तोरें खीरा ककड़ी और फलों में अंडे घुसा जाती हैं और इनके मैगट फलों को सड़ा देते हैं टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, और इन फल मक्खियों को ललचाकर नष्ट करने का जो ट्रैप है वो आज वैज्ञानिकों ने इजाद कर दिया है, और ये ट्रैप बहुत ही सस्ता आता है। मैं आपको किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि मुश्किल से 150 से 200 रुपए का खर्चा है, एक एकड़ में 3 ट्रैप ये लगते हैं, 3 ट्रैप केवल, और एक ट्रैप 70-75 रुपए का आता है। तो आप ये मान के चलिए कि 200-210 रुपए का खर्चा है, और इनको ट्रैप को डंडी, साधारण सी एक डंडी लेकर के, खेत में पड़ी हुई मिल जाती है डंडियां, पेड़ों से तोड़ सकते हैं और उस पे लगा के इस ट्रैप को लटका देते हैं जमीन से करीब 1.25 फुट ऊंचा, और जब ये ट्रैप वहां लटके रहते हैं तो इन ट्रैप के अंदर जो है वो एक ललचाने वाला पदार्थ, उन मक्खियों को ललचाने वाला पदार्थ खुशबू, वो अंदर इसका एक गिट्टा टंगा होता है, और उस गिट्टे पर जैसे ही मक्खी पहुंच करके रस चूसती है मर करके ट्रैप के अंदर गिर जाती है। तो यानी कि हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चौकाई चौका वाली बात है, ना तो कोई कीटनाशी छिड़कना है, ना किसी भी प्रकार का आपको विधि उपयोग में लानी है, ना परेशानी में आना है, ना ये देखना है फल मक्खी कब आई कब गई, केवल आपको करना है फल मक्खी ट्रैप नाम का यंत्र आपको खरीद करके बाजार से लाना है। फल मक्खी ट्रैप, फल मक्खी ट्रैप तो कुकर भी जितनी भी फसलें हैं, खीरा ककड़ी तोरई इनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, लौकी तोरई करेला इन सबकी फसलों में इनको लगाया जाना चाहिए। और जैसे ही आप इन खिट्टेदार जो एक गत्ते का खिट्टा टाइप इसके अंदर टमता है जिसमें वो खुशबू होती है, जैसे ही फल मक्खी अंदर आएगी वैसे ही इसे रस चूस करके मर करके उसमें गिर जाएगी। यानी फल मक्खी का आप पूरी तरह से अपनी फसल को बचा सकते हैं फल मक्खी से, यदि आपने 3 ट्रैप 200 रुपए के खर्चे के 3 ट्रैप आपने अपने खेत में लगा लिए हैं। ये बहुत ही शानदार कहानी जिसका नाम है फल मक्खी ट्रैप, खात्मा फल मक्खियों का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मैं किसानों तक पहुंचाना चाहूंगा। फल मक्खी ट्रैप ले आइए और फल मक्खी से निजात पाइए। ये बहुत ही सुंदर मैसेज, बहुत ही सुंदर एक आपको कहानी का भाग मैं आपको सुनाना चाह रहा था। ये किसान भाई इसका जबरदस्त तरीके से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये काम केवल फल मक्खी को रोकने के लिए है जहाँ फल मक्खियां नुकसान करती हैं, जहां पर आपके दूसरे कीट के लिए ये काम में नहीं आएगा। लेकिन फल मक्खियां कभी कभी हमारी फसल में, फल मक्खियां लौकी तोरई खीरा ककड़ी खरबूजा तरबूजा जैसी फसलों में तो ये फल मक्खियां बहुत सारा नुकसान कर देती है। यानी लगता है कि सारी तमाम की तमाम ही फसल जो है वो किसी ना किसी तरह प्रभावित हो जाती है इससे। तो मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूंगा कि एक विषाणुओं का उपयोग भी हमारी फसलों में किया जा रहा है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। और मैं एक नई कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, उल्टी लटकती लटें, कमाल एनपीवी दवा का। एनपीवी दवा से हम लटों का खात्मा कर सकते हैं बिना कीटनाशी जहर का उपयोग किए हुए। हालांकि आपने एनपीवी नाम सुना होगा, लेकिन एनपीवी दवा आपको ये बताना चाहूंगा किसान भाइयों के विशेष रूप से कि ये कीट विशिष्ट के लिए ही होती है। जैसे कि आपके यहाँ हरी लट दिक्कत कर रही है, हरी लटें आप जानते हैं टमाटर के अंदर लग जाती है, आपके कपास के अंदर लग जाती है, हरी लट आपके अरहर में भी नुकसान पहुंचाती है, आपके बाजरे में भी प्रॉब्लम करती है, ज्वार में भी लग जाती है। तो ये हरी लट बहुत ही विनाशकारी कीट है। तो हरी लट का यदि एनपीवी दवा आप ला रहे हैं तो एनपीवी दवा केवल हरी लट को ही मारेगा, दूसरी किसी भी लट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक बात सावधानी से समझने की है। अभी तक वैज्ञानिकों ने 2 ऐसे कीट हैं जिनकी एनपीवी दवा निकाली है, एक है हरी लट और एक है तंबाकू की लट। यानी दोनों फसलों के कीटों को शायद किसान भाई अच्छे से समझते हैं। मैं आपको एक सोनाराम जी की कहानी सुनाता हूँ, ये बेहद ही सुलझे हुए अनुभवी किसान है, पर ये 2 कीटों से हमेशा हार जाते हैं। खूब ही दवा छिड़क लेते हैं, जहर छिड़का लेते हैं, मगर हरी लट और तंबाकू की लट ये लट इनको बिल्कुल भी इनकी फसल को छोड़ती नहीं है। चाहे चना हो, चाहे सरसों गोभी हो, चाहे टमाटर अरंडी हो, चाहे बाजरा मूंग हो, चाहे अरहर हो, ये सब फसलों में ये 2 लटें नुकसान पहुंचाती हैं। तो सोनाराम जी बहुत परेशान होकर के फिर एक किसान मेले में गए हैं और वहां उन्होंने ये पाया है कि इन दोनों लटों को मारने के लिए एक दवा वैज्ञानिकों ने इजाद कर दी है एनपीवी नाम से। एनपीवी तंबाकू की लट और एनपीवी हरी लट, यानी वही दवा लानी पड़ेगी जो सी लट लगी हुई है। लेकिन गारंटी ये है कि यदि वो दवा एनपीवी नाम की दवा एनपीवी नाम की दवा यदि किसान ने पानी में मिलाकर के छिड़क दी तो 72 घंटों के अंदर ये सारी लटों को उल्टा लटका के मारती है। 72 घंटे के अंदर विनाश होना शुरू हो जाता है लटों का और बहुत ही प्रभावी नियंत्रण होता है। इस दवा में वास्तव में विषाणु होते हैं, उस कीट को रोग फैलाने वाला विषाणु वायरस इस दवा के घोल के अंदर होता है। किसान भाई एनपीवी नाम की दवा जब लाते हैं तो ये 250 ली दवा 250 ली, यानी कि 250 ली दवा का जो ml 250 ml की जो दवा आती है वो किसान भाइयों को 250 लीटर पानी में मिला करके, 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके, और हरी लट लगी है तो हरी लट की दवा और तंबाकू की लट लगी है तो तंबाकू लट की दवा जो मैंने आपको बताया एनपीवी हेलियोसिस और एनपीवी स्कोडेप्ट्रा, यानी एनपीवी हरी लट की दवा और एनपीवी तंबाकू की लट की दवा, ये दोनों अलग लगाती है। और जैसे ही आप इसका छिड़काव करेंगे बिना किसी जहर का उपयोग किए हुए, ये एनपीवी दवा आपकी फसल की लट को तमाम नष्ट कर देगी। ये बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीका है।
0: किसान भाई बहनों, अब यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर, मेरा गांव मेरा अंचल। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नहीं नहीं

0: आपकी थकान को ताजगी की खुराक, रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार किसान भाई बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के शो में, मेरा गांव मेरा अंचल में। और हमारे साथ है डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी।
2: अब हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही रोचक कहानी सुनाते हैं। आप लोग बोर हो गए होंगे सुनते सुनते, लेकिन ये कहानी बहुत ही रोचक है। इस कहानी का नाम है श्रेष्ठ दृष्टिया कृष्णिया। ये एक चिड़िया है जिसे कृष्णिया नाम से जानते हैं। बड़ी श्रेष्ठ दृष्टिया इसको इसलिए कहा गया है कि इसकी बड़ी तीव्र दृष्टि होती है। कहा यह जाता है कि एक बार हमारे पृथ्वी लोक पर भयंकर अकाल पड़ गया और पूरा क्षेत्र अकाल की चपेट में आ गया। सारी फसलें बर्बाद होने लगी और जिस फसल को बर्बाद करने के लिए पृथ्वी लोक पर ये अकाल के लिए जिम्मेदार जो चीज थी वो था दैत्य रूपी कीटों का पृथ्वी की फसल को नष्ट कर देना। तो दैत्य रूपी कीटों ने आक्रमण किया और फसल को नष्ट कर दिया, भयंकर अकाल पड़ने लग गया। नारद जो थे वो देवलोक पहुंचे, इंद्र से कहा, भाई नारद, ये भाई इंद्र देवता, ये कुछ मदद करिए। लेकिन फिर नारद जी को इंद्रदेव जी ने कहा, भाई मैं तो वर्षा वर्षा कराता हूँ, बारिश बारिश मेरे हाथ में है, मैं ये कीटों वीटों जैसे दैत्य रूपी कीटों के सामने कुछ नहीं कर सकता, आप तो जाओ भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान के पास। तो नारद जी गए भगवान कृष्ण के पास और भगवान कृष्ण ने उनको अपनी एक प्रिय चिड़िया दी जिसका नाम था श्रेष्ठ दृष्टिया कृष्णिया। कृष्णिया, वैसे आपको बताएं, आपको वैज्ञानिक नाम तो इस चिड़िया का है डिक्रूरस एडसीमिलिस। अब ये बड़ा मुश्किल नाम है, लेकिन आपको ये बता दें कि ये कृष्णिया नाम से जानी जाती है। अंग्रेजी में इसको किंग क्रो बोलते हैं और ड्रोंगो नाम की चिड़िया भी इसको कहा जाता है। ड्रोंगो, ड्रोंगो या किंग क्रो, यानी काले रंग की ये चिड़िया होती है, कौवे से थोड़ा भिन्न होती है। और ये चिड़िया जो है वो हमारे फसलों के कीटों के नियंत्रण के लिए विश्व की सबसे प्रभावी चिड़िया है। अब ये कहा जाता है कि देवरूपी नारद इसको पृथ्वी पर लाए थे, ये सब ये बात की सत्यता तो मुझे पता नहीं कितनी है, ये तो सब जातक कथाएं हैं, लेकिन ये कथाएं हमें ये बोध कराती हैं, हमें ये ज्ञान कराती हैं कि इस चिड़िया का कितना महत्व है हमारे लिए। किंग क्रो का, ड्रोंगो का कितना महत्व है। ये जो डिक्रूरस एड सिमिलिस जो चिड़िया है ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है, क्योंकि एक कहानी का मोड़ आता है इसी कहानी का कि जब नारद जी भगवान कृष्ण से इस चिड़िया को प्राप्त कर रहे थे कि भाई ये चिड़िया पृथ्वी लोक पे ले जाओ, ये जो दैत्य रूपी हमारे कीट हैं जितने भी तुम्हारे यहाँ जो काल फैला रहे हैं उनको ये नष्ट कर देगी चिड़िया। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु ये जो नष्ट कर देगी दैत्यों को तो उसके बाद तो दाने खाई, दाने खाएगी तो फसल नुकसान करेगी। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा कि नहीं भाई, ये दाने नहीं खाएगी, ये जो चिड़िया है ये कभी भी दाने नहीं खाएगी, यानी फसल के दाने नहीं खाएगी, ये बिल्कुल नहीं खाएगी, यानी ये केवल कीट खाएगी, फसल के दाने नहीं खाएगी। तो आज भी ये कहा जाता है कि जो किंग क्रो चिड़िया है या ड्रोंगो चिड़िया है ये कभी भी फसल का दाना नहीं खाती है, ये केवल कीट ही खाती है। और इसको आसानी से आप अपने खेत में बुला सकते हैं, जीवन पे आइए भाई, किंग क्रो चिड़िया, चिड़िया साहब आइए हमारे खेत में बैठिए, हमारी फसलों में कितने भी कीड़ों हैं उनको नष्ट करिए, बुला सकते हैं आप। बहुत ही आसान तरीका है ऐसा करने का, बहुत ही आसान तरीका। और वो आसान तरीका ये है कि आप एक हेक्टेयर क्षेत्र में 30 स्थानों पर चिड़िया के बैठने के डंडे लगा दें, परचर जिनको कहते हैं, एक डंडे के ऊपर क्रॉस डंडा बांध देते हैं और ताकि चिड़िया आराम से उसके ऊपर बैठ सके। बस केवल डंडे लगा दीजिए आप एक हेक्टेयर में 30 और अपने घर सो जाइए जाके, ये किंग क्रो अपने आप आएगा, ये ड्रोंगो चिड़िया अपने आप आएगी, डंडे पर बैठेगी और इसकी जो श्रेष्ठ नजर है उससे वो लटों को खाएगी। और लटों को वो ऐसे खाती है जैसे हम और आप रसगुल्ले खाते हैं, मतलब इनके लिए बड़ी प्रिय भोजन है ये, हमारी जो कीट की लटे हैं ये इन कृष्णिया जैसी चिड़ियाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इन चिड़ियाओं को हम, जो हमारी फसल को नष्ट नहीं करती हैं, हमारे फसल के दाने नहीं खाती हैं, केवल कीट खाती हैं, ऐसी चिड़ियाओं को यदि हम आमंत्रित करते हैं खेतों में तो हम बहुत हद तक कीटनाशी जहरों से अपना बचाव कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर कहानी कृष्णिया चिड़िया की मैं आप तक मैंने पहुंचानी चाहिए। मैं किसान भाइयों आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी विधियां वैज्ञानिकों ने इजाद कर ली हैं, बहुत सारी विधियां आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं। आपको एक माध्यम के साथ हम आप हर मेले में जाइए, मैं कहता हूं हर किसानों के मेले में आप आए, हर किसानों के प्रशिक्षण में आप पहुंचे, वहां वैज्ञानिक वहां विशेषज्ञ आपको इस तरह की बहुत सारी विधियां बहुत सारी बातें बहुत सारी वैज्ञानिक तरीके आपको बताने को पहुंचने को सीखने को मिलेंगे, जिनसे आप बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी खेती में ला सकते हैं। ये जो कीटनाशी दवाओं पर आपके बहुत सारे रुपए खर्च हो जाते हैं, ये सारे रुपए आपके बच सकते हैं। लाइए हम एक नई कहानी पर आते हैं, संध्या रोशन तो फसल सुरक्षित। यानी देखिए हमारे शास्त्रों में भी है, संध्या कालीन हम घर में भी एक दीपक जलाते हैं, ये बहुत सदियों से है। इसका क्या राज है, क्या महत्व है, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। हमारी संस्कृति में हर चीज का कोई वैज्ञानिक महत्व होता है, हमारे घर में भी हम संध्या में एक दीप जलाते हैं, तो हम क्यों ना एक रोशनी अपने खेत पर भी संध्या काल में करें। और ये देखिए जो कीट हैं हमारी फसलों के, उनको विनाश के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी रोशनी के यंत्र इजाद किए हैं, जिनमें एक यंत्र का नाम है लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप संध्या के वक्त जैसे अंधेरा होता है आप खेत पे जला दें, खेत पे जलाते ही जितने भी कीट पतंगों के पतंगे हैं कीटों के, वो सब इसमें फंस करके नष्ट हो जाते हैं। एक कीट का पतंगा आपने नष्ट कर दिया, समझ लो कि उसने 400-500 अंडे देके 400-500 लटे तैयार करनी थी, वो 400-500 लटे तैयार होने से बच गए। यानी कि आप इन लटों की माँ को, उन फूंदियों को, उन तितलियों को मारे, छोटी तितलियां जिसको कह सकते हैं, मौत कहते हैं जिनको, जिनको जो अपने बच्चे पैदा करके हमारी फसल को लट पैदा करने के लिए क्षमता रखते हैं, तो उनको हम बड़े आसानी से लाइट ट्रैप के द्वारा मार सकते हैं। यानी कि लेपिडोप्टर कीट जो लटें पैदा करने वाले कीट हैं, उनका 70% तक नियंत्रण केवल इस बात से हो सकता है कि हम 1-2 घंटे तक संध्या काल में अपने खेत पर रोशनी करें। और संध्या रोशन तो फसल सुरक्षित, इस नाम की इस कहानी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे भुवनराम जी हैं, यहाँ पर सब्जियों की खेती करते हैं, बहुत ही वो परेशान रहते हैं इस बात से, कीटों को मारने के लिए दह दवा रोज 2 दवा छिड़कते हैं, लेकिन कीट उनका पीछा नहीं छोड़ते। और उधर मोतीराम जी हैं, उनके पास एक किसान है हमारे सिरोही के अंदर, आप जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा उनको देख करके, वो तो अरे आराम से सब्जियों की खेती करते हैं और बहुत कम ही कीटनाशी कभी उपयोग में लाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ लगा हुआ है एक लाइट ट्रैप। सब्जियों के खेत में उन्होंने डंडा लगा के एक लाइट ट्रैप लगा रखा है, और जितने भी कीट है रात को शाम को फंस करके, 2 घंटे वो संध्या कालीन उसको जलाते हैं, फंस करके मर जाते हैं, उनके यहाँ पर कीटों का प्रकोप नहीं होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लाइट ट्रैप है ये बिजली से भी चलता है, और यदि बिजली की व्यवस्था ना हो तो ये सोलर लाइट भी आज उपलब्ध है। सोलर लाइट ट्रैप यदि आपने लगा दिया तो दिन में वो उसने सूरज की रोशनी में चार्ज हो जाना है, रात होते ही उसको अपने आप जल जाना है और आपके खेत में रोशनी करके वो सब कीड़ों को नष्ट कर देगा। ये लाइट ट्रैप की कहानी है, मैं आपको आप तक पहुंचाना चाहता था, बहुत ही सुंदर कहानी। एक कहानी की बात करेंगे, वो है नन्ना मित्र और पैनी मार। अरे नन्ना मतलब कितना नन्ना, अरे आलपिन की नोक के बराबर नन्ना। आलपिन की नोक के बराबर एक ऐसे कीट को हमारे वैज्ञानिकों ने पहचाना है, आलपिन की जो नोक है उसके बराबर की छोटे कीट को। यानी आप उसको यदि देखना चाहेंगे कीट को, तो आपको हेडलाइन से माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ऐसे इस कीट का बहुत ही ज्यादा उपयोग आज खेती में हो रहा है। किसान भाइयों मैं कैसे उपयोग होता है इस कीट का और ये कैसे काम करता है ये बताना चाहूंगा। इस कहानी का नाम है नन्ना मित्र और पैनी मार। इस कीट का नाम है जो हमारा मित्र है, ट्राइकोग्रामा कीट क्या करता है, जो हमारे दुश्मन कीट लटे पैदा करने के लिए हमारी पत्तियों पर जो अंडे देते हैं, एक एक कीट 400-500 अंडे देता है, उन 500-500 अंडों से 500-500 लटे निकलती हैं। ये लटे छोटी छोटी होती हैं पहले, बाद में बड़ी बड़ी होकर ये पूरी फसल को नष्ट कर देती हैं। तो ये जो लटे हैं ये पैदा होती हैं अंडों से, अंडे जो ये कीट के पतंगे हैं ये अंडे हमारी पत्तियों पर देते हैं। तो ये जो जैसे ही कीट के पतंगे हमारी पत्तियों पर 400-500 के समूह में अंडे देते हैं, उन अंडों पर ये नन्ना सा कीट जाकर अपने बच्चे दे देता है। उन अंडों के ऊपर जिनसे लटे निकलनी होती हैं उनमें ये अपने अपने अंडे घुसा देता है, और उस अंडे के अंदर उसका अंडा घुसने से क्या होता है कि इस कीट का जो बच्चा है वो इस अंडे के अंदर पनपता है और मूल लट पैदा होने से पहले ही नष्ट हो जाती है, यानी लट तो मर जाती है और इसके बच्चे, इस टिकोग्रामा के बच्चे पैदा होने लग जाते हैं। तो ये तकनीकी तो बहुत ही उम्दा है, हम ये जानते ही नहीं है कि कब रात के वक्त आकर के किस पतंग ने किस पत्ते के नीचे कितने बड़े खेत में कहां अंडा दे दिया, और यदि उन्होंने अंडे दे दिए तो हम खोज ही नहीं पाते। हम तो जब पता लगता है हमें, जब हमारी फसल नष्ट होने लगती है लटों से कि अरे हमारी तो फसल नष्ट हो रही है, लेकिन ये नन्ना कीट इस बात को फट पहचान लेता है कि कहां पर अंडे दिए गए हैं, ये खोज लेता है और उन्हें नष्ट कर देता

0: वहां पर स्टेपल करना है, बस केवल वहां पर टांग देना है। खेत के अंदर यदि आप इनको टांग देंगे तो इनसे निकलेगा ट्राइकोग्रामा कीट, और वो किसको ढूंढेगा, वो ढूंढेगा जहां जहां भी पतंगों ने अंडे दिए हैं, और जो अंडे दिए हैं उनके ऊपर ही अपने अंडे देकर के उनको नष्ट कर देगा। यानी ये बहुत ही प्रभावी विधि है ट्राइको कार्ड विधि। ट्राइको कार्ड आपको बाजार से खरीदने पड़ेंगे, ट्राइको कार्ड बाजार से खरीद के केवल खेत के अंदर लगाने हैं, बाकी आपका कोई काम नहीं है। फिर तो ये ट्राइको कार्ड से ट्राइकोग्रामा चन्नन्ना कीट निकल के अपना काम अपने आप करेगा, और सारी जितनी भी लटे हैं उनको, उनके अंडों को उनके अंडों के अंदर ही नष्ट कर देगा। कपास में, मक्का में, गन्ना में, चुकंदर में, सब्जियों में, बैगन में, हर इन सब तमाम तरह की फसलों में ट्राइको कार्ड्स बहुत ही उपयोगी कार्ड्स। ये बहुत ही सुंदर कहानी आपको नन्ना मित्र पैनी मार्क आपको सुना रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है। किसान भाइयों को इसमें कुछ भी नहीं करना है, किसान भाइयों को केवल ट्राइको कार्ड खरीद करके और खेत में लगाने हैं।
1: तो किसान भाइयों, सुना आपने, नए नए टेक्निक्स आपको अभी पता चले हैं। एक्चुअली में ये सारे टेक्निक्स हमारे पुरातन हैं और ये हमारे वैज्ञानिकों का एक बहुत ही सुंदर सहयोग हमें मिला है, ताकि वो इससे छोटे छोटे जीव जंतुओं के ऊपर भी वो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं और हमें सहज और सरल तरीका बताए हैं। तो इसलिए उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, और प्रकाश कुमार गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो इतनी सुंदर विधियाँ हमारे किसान भाइयों को आज बताएं, और इन सारे छोटे छोटे विधियों के माध्यम से हम कितना सुंदर और सफल खेती कर सकते हैं ये हमें पता चलेगा ही। तो मैं आशा करता हूँ किसान भाई बहनों ने इन सारी बातों को अच्छी तरह से कागज पर नोट किया होगा और फिर वो इसको अच्छी तरह से अपने खेती में इस्तेमाल करेंगे इन सारे तरीकों को, और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मुझे और डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी को दीजिए इजाजत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों को कृषि विशेषज्ञ राजेश सैनी का नमस्कार। आज चलते हैं सीकर के धौत ब्लॉक में स्थित खोखरों की ढाणी में और मिलते हैं धरती पुत्र सम्मान से सम्मानित प्रगतिशील कृषक रामचंद्र खोखर से। रामचंद्र प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती में पारंगत हैं और अन्य कृषकों को भी बांटते हैं अपने अनुभव और देते हैं परामर्श। आइए मिलते हैं रामचंद्र खोखर से और जानते हैं जैविक खेती के बारे में। रामचंद्र जी, आप थोड़ा बताइए जैविक खेती के बारे में, आपके विचार क्या हैं और आपको जैविक खेती की प्रेरणा कहां से मिली?
1: जी, मैं रामचंद्र खोखर धौत जगदम्बा किसान क्लब का समन्वयक। जैविक खेती की प्रेरणा हमें 2011-12 में जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट में जो एक पायलट प्रोजेक्ट चला था वहां से मिली। पहले हम जो पारंपरिक खेती हमारे पूर्वज करते थे वो ही करते, और जब से पायलट प्रोजेक्ट का अनुभव हमें हुआ तो हमने जैविक खेती की शुरुआत की।
0: खेती आप कब से करते आ रहे हैं?
1: जैविक खेती हमें 2011-12 से चालू की। और
0: कौन कौन सी फसलें आप लगाते हैं अपने खेत में?
1: खेत के अंदर इस वक्त बरसात की टाइम है, इस वक्त तो हम बाजरा, गवार, मूंगफली, चोड़ा ये लगाते हैं, और सब्जी में हमारा जो मेन है वो है तरबूज। इसके अलावा हम ये तुरई, लौकी, ककड़ी, भिंडी, टिंडसी ये सारी फसलें करते हैं।
0: खोखर साहब, हमने देखा कि आपके खेतों में, जब मैं पिछली बार आपके यहाँ आया था गांव में, मैंने आपके यहाँ देखा था कि आप प्लास्टिक कल्चर का काफी प्रयोग करते हैं, लो टनल्स का प्रयोग कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन का लिए, बूंद बूंद सिंचाई के लिए पाइप का प्रयोग कर रहे हैं आप। मैंने साथ ही देखा आप प्लास्टिक की मल्च का भी प्रयोग कर रहे थे।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम
0: इनके क्या फायदे है थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएंगे?
1: हम जो सब्जी खेती करते हैं ये सारी मल्च से, प्लास्टिक से करते हैं, और जब भी हमें अगेती फसल लेनी हो तो हम लो टनल का उपयोग इसमें करते हैं।
0: सर्दियों के टाइम में इसका उपयोग करते हैं?
1: बिल्कुल जी हाँ, सर्दियों में हम जनवरी में जो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है उस वक्त लो टनल से जो भी सब्जी हमें लेनी है वो तैयार करते हैं, और बाजार में अच्छी तरह से इसका भाव भी ज्यादा मिलता है, ये थोड़ी अगेती हो जाती है अन्य किसानों से।
0: खोखर जी, मैंने उस समय जब मैं आया था आपके गांव में, मैंने देखा था कि आपने लो टनल से यानी एक छोटी सुरंग नुमा चीज बना रखी थी और उसको फसल नीचे उग रही थी, बेल वाली फसलें अंदर होती और उसको ढक रखा था आपने प्लास्टिक से।
1: हाँ जी,
0: ताकि उसको पाले से बचाया जा सके और इस तरीके का।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: पाले खर्चा कितना आ रहा था आपको?
1: सर इसमें खर्चा में ये जो नॉन वोन ऊपर वाली लगाई ये हमारे एक बीघा के अंदर आई थी 3500 रुपए की।
0: और इससे फायदा कितना मिला, कितना मुनाफा आपको मिला?
1: इससे हमें काफी फायदा मिला।
0: एक बीघा में कितना मुनाफा आ गया?
1: एक बीघा का टोटल जो हमारा खर्च था वो 1500-1600 रुपए का आया, और हमारी जो इनकम है वो इसमें शुद्ध हुई हमें 35000 रुपए की।
0: अच्छा, तो आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक कल्चर या मल्च का या लो टनल्स के बारे में आप क्या राय देना
1: इसके बारे में? तो मैं किसान भाइयों को बहुत ज्यादा बताना चाहता हूँ कि अब जो समय है ये पानी की जो समस्या है, इस पानी की समस्या से निजात पाने के लिए ये जो बूंद बूंद और मल्च पद्धति है, अगर आप इससे खेती करोगे तो हो सकता है हम इसमें वाटर लेवल को आगे 15-20 साल तक और ज्यादा चला सकते हैं। इसमें 60-70% पानी की शुद्ध बचत होती है, 60-70%। बहुत ज्यादा जो ह्यूमिडिटी है ये ह्यूमिडिटी प्लास्टिक में बनती रहती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है इसमें।
0: इसका मतलब ये है आपका जो सूरज की धूप से जो वाष्पीकरण होता है रुक जाता है काफी हद तक।
1: बिल्कुल बिल्कुल, रुक जाता
0: है, पानी की बचत होती है। और देखा यह गया है कि आपका मान लीजिए 1 एकड़ में पहले खेती हो रही है तो उसके मुकाबले ये खेती का इलाका बढ़ जाता है,
1: बिल्कुल बढ़ जाता
0: है, पहुंच पाते हैं अगर आप इसके साथ मल्च अपना लेते हैं तो।
1: बिल्कुल भी आराम से
0: तक आप उसी पानी से खेती कर पाते हैं। मैं आपसे ये भी जानना
1: चाहूंगा, इसका एक बड़ा ये भी फायदा है कि इसका जो फल है उसका आकार और स्वाद है ना वो बड़ा ही, अन्य जो अपन खुले में करते हैं उसका आकार और जो स्वाद है वो बहुत ज्यादा मिठास वाला बनता है।
0: कई बार मैंने देखा था जब आपके तरबूज बाजार में जाते हैं तो अन्य जो तरबूज आते हैं उनमें कहीं ना कहीं दाग लगा होता है सफेद रंग का। हाँ। जब आप मल्च में इसकी खेती करते हो तो कहीं पे भी दाग ऐसा नजर नहीं आता, पूरा हरा ही
1: बस वो
0: या पूरा, उससे गुणवत्ता लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है और फिर
1: देखने में भी अच्छा लगता है और उसका भाव भी हमें अच्छा मिलता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, जो सब्जी जैसे 2 दिन में या 4 दिन में खराब होती है, लेकिन प्लास्टिक मल्च से जो अपन फसल लेते हैं वो 2-4 दिन की बजाय 7-8 दिन तक तो खराब होने का कोई नाम ही नहीं लेती है,
0: यानी उसको लंबे समय तक आप भंडारण कर सकते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल
0: खराब नहीं होती।
1: हाँ जी,
0: मैं यहाँ पे रामचंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो उत्पाद ले रहे हैं जैविक खेती के उत्पाद जो ले रहे हैं, आपने कहा, मैंने आसपास के गांव वालों से सुना कि आपके गेहूं दूसरे लोगों के मुकाबले अच्छी रेट पे जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी। कीमत पे बेच रहे हैं आप? बाजार में जब 1500 का भाव था तब सुनने में आया कि आप 2500 या 2800 के रेट से आपकी, तो उस संबंध में थोड़ा सा जानकारी दें हमारे किसान भाइयों को, क्या खास बात है आपके गेहूं में?
1: जी, गेहूं में खास बात यही है कि गेहूं का जो स्वाद है वो बहुत ही गजब है, और जो रोटी अगर हमारे गेहूं की एक बार किसी ने खा ली नहीं तो वो दूसरी बार भी हमारे गेहूं की खाएगा, क्योंकि हमारे गेहूं का जो स्वाद है वो अलग है। दूसरा, हमारे गेहूं की जो रोटी है वो सुबह से बनाई हुई रोटी शाम तक आप खा सकते हैं।
0: तो इसके पीछे कारण है जैविक खेती, किसी प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उर्वरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, खासतौर से गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रकार का केमिकल का छिड़काव नहीं करते हैं?
1: जी नहीं, हम जो फसल पे करते हैं वो भी सिर्फ नीम है हमारा, ये आंकड़ा है धतूरा, इसी का करते हैं। और ये गाय का जो गोमूत्र है, ये गोमूत्र इसमें बहुत ज्यादा गोबर से ही ज्यादा गुणकारी सिद्ध हुआ है, इससे स्वाद बनता है।
0: जब आपसे चर्चा पूर्व में भी की थी, पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो आपने कहा था देसी गाय अपने आप में एक काम धेनु है।
1: जी बिल्कुल जी।
0: तो देसी गाय का आपके जीवन में क्या महत्व है, थोड़ा सा वो भी बताएंगे?
1: जी, देसी गाय का तो जब से हमें ज्ञान हुआ तब से देसी गाय अगर है, देसी माँ, तो ये जमीन माँ है, वरना तो ये भी नहीं है, ये भी बंजर ही रहेगी। अगर देसी गाय अपना ली तो ये माँ है, इसको भी अपन बचा सकते हैं।
0: आप अपने उत्पाद कहाँ कहाँ बेचते हैं, कौन कौन से मार्केट में?
1: हम हमारे उत्पाद मैन हमारा जो जिला है सीकर, और सीकर में जहाँ तक हमें भाव मिलता है बेचते हैं। इसके अलावा हम नागौर, कुचामन, सुजानगढ़ और जयपुर, ये हमारी मैन मंडी है।
0: साथ ही रामचंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप जो तरबूज की खेती कर रहे हैं इस इलाके में, जो है धोद जो इलाका है आपका, की ढाणी भी जहाँ पे आती है
1: जी,
0: इसके आसपास के काफी किसान तरबूज की खेती करते हैं और मल्च और ड्रिप का समन्वय है उसके साथ करते
1: जी, जी।
0: तो आपके अनुभव क्या है तरबूज की खेती में, और क्या रेट से आपका तरबूज जाता है, और कहाँ तक आप इस तरबूज को पहुँचाते हैं?
1: देखिए, जहाँ तक तरबूज की बात आप पूछते हैं, तो मेरा अनुभव है, हमने जब 2011 में ये खेती स्टार्ट की थी, उस वक्त खाली मैं और मेरा साथी है सुभाष खोकर, तो हमने एक एक हेक्टर में ये शुरुआत की थी, और आज वो ही खेती है जिसको आज हमारे एरिया में 200 हेक्टर में ये हो रही है। तो इसका उत्पाद हमें मिला, हमने लोगों को बताया, काफी हद तक इसमें बढ़ोतरी हुई है और भाव भी काफी अच्छा मिल रहा है। ये सारा इसमें ज्यादा रोल है ये मल्च का है।
0: और सुभाष खोकर जी भी हमारे बीच में हैं, और मैं इनसे अब जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इन्होंने पहले ये केमिकल की खेती करा करते थे, हर चीज में केमिकल यूज किया करते थे, उर्वरक यूरिया डीएपी का इस्तेमाल किया करते थे, भरपूर कीटनाशकों का प्रयोग करते थे, लेकिन जब से ये इन्होंने जैविक खेती अपनाई है इन सबसे इन्होंने दूरी बना ली है, और किसानों को ये हमेशा कहते रहते हैं न तो जहर बेचना है न जहर उगाना है। आइए बात करते हैं सुभाष खोकर जी से, और मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि ये अपने किसान भाइयों को, अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को, अपने जिले के किसान भाइयों को, अपने राजस्थान के किसान भाइयों को, खास तौर से सेखावाटी के किसान भाइयों को क्या राय देना चाहेंगे, थोड़ा बताइए आप, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे उनको?
2: नमस्कार साहब, मेरा नाम सुभाष खोकर है, गांव दो जिला सीकर से हूँ, और मेरे इस इलाके में पहले यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो हमने देखा कि JKBT ट्रस्ट से देखा, कोई प्रशिक्षण लिए, उससे देखा कि यहाँ पे जो पानी की, हमारे 4 एकड़ जमीन है, उनमें से हम 2 एकड़ में ही सब्जी और फसल करते थे, तो आज मल्च और ड्रिप से अपनाने से हम पूरी 4 एकड़ में खेती करते हैं, और यहाँ पे अच्छा मुनाफा कमाया है, और इस ऐसे हम ड्रिप लगाने के बाद में जो अनार भी लगाई है 1 एकड़ में, उनका भी मुनाफा बहुत अच्छा आ रहा है, उनके में इंटरक्रॉप खेती भी करते हैं, जो जैसे कि तरबूज, घिया, ककड़ी, तुराई, ये भी करते हैं, तो एक तो साथ साथ में बगीचा भी तैयार हो गया हमारा, और साथ साथ में जो जैसे कि हम खेती भी उनमें करते रहते हैं, तो डबल इनकम हो गई उस प्रशिक्षण लेने से हमारी।
0: किसान भाइयों का और चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये फर्टिकेशन सिस्टम छोड़ो और जैविक अपनाओ।
0: खोकर साहब, आपका धन्यवाद। साथ ही मैं अभी फिर हमारे रामचंद्र खोकर जी से बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपके गांव खोकरों की ढाणी में एक किसान क्लब भी चल रहा है, कृपया उन किसान क्लब का नाम बताएं, और आप साथ ही हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि किसान क्लब से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और आपका जो किसान क्लब है इस क्षेत्र में क्या काम कर रहा है, और क्या कभी सरकारी डिपार्टमेंट से या नाबार्ड से आपको कभी सम्मान प्राप्त हुआ है?
1: जी जी सिंह साहब, किसान क्लब एक संगठन है किसान का, यूनियन ऑफ द स्ट्रेंथ, तो हमें इसकी प्रेरणा है ये जमनलाल कनीराम बजाज ट्रस्ट से मिली कि आप पे नाबार्ड से कुछ बातचीत कीजिए एमडी साहब से, और वो आपको किसान क्लब में शामिल करेंगे, बनाएंगे, और हमें जो भी आज सरकारी जो भी सुविधा आती है इसकी जानकारी है वो किसान क्लब के माध्यम से घर बैठे मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये, हमारे किसान क्लब का नाम जगदम्बा किसान क्लब रखा, जो कि आज टोटल जो हमारे सीकर जिले के 70 किसान क्लब हैं उनमें सबसे अच्छा चल रहा है। हमने नाबार्ड से जयपुर से पुरस्कार भी प्राप्त किया है, सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय पुरस्कार हमने प्राप्त किया है। और
0: मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में सीकर में एक धरती पुत्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, उसमें भी आपको सम्मान मिला, वो सम्मान प्राप्त करके आपको कैसा लगा और आपके क्लब के मेंबर्स को कैसा लगा?
1: जी, धरती पुत्र जो सम्मान समारोह था उसमें भी हमें सम्मान मिला, और हमें बहुत ज्यादा हमारे दिल में प्रफुल्लता आ रही है उससे कि इस तरह से अगर किसानों को समय समय पर जागृत किया जाए तो ये जैविक खेती का जो सिस्टम हम अपना रहे हैं ये बहुत ही जल्दी पूरे राजस्थान को कवर कर सकता है, और हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको जिंदगी

0: भी दे सकते हैं और काफी हद तक इसमें हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे और करते हैं।
1: प्लास्टिक मल्च जो आप काम में ले रहे थे वो कौन सी कंपनी का था और कहां से आपने प्राप्त किया था?
0: जी, ये शंकुल एसन कंपनी का था और हमने जयपुर से नागाजी नाम के एक डीलर साहब हैं उनसे मंगवाया था।
1: यानी सीकर में उपलब्ध नहीं था, फिर भी आपने हिम्मत करी और जयपुर से उसे मंगाया और अपने यहाँ पे नवाचार अपनाया।
0: जी, हमने जब अपनाया था उस वक्त सीकर में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, हम जयपुर गए, वहाँ जानकारी ली और वहाँ से लाए।
1: किसान भाइयों, ये थे आपके बीच रामचंद्र खोकर और सुभाष खोकर, जिनसे आज हमने उनके खेत पे जाके बात करी और उनसे रूबरू हुए। उन्होंने हमारे साथ जैविक खेती के बारे में बताया और अपने अनुभव बांटे। और चलते चलते किसान भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जैविक खेती को अपनाना होगा हमें। अगर वास्तव में हमें देश को खुशहाल बनाना है तो जैविक खेती एक मात्र उपाय है। अगर हमें अपने आने वाले पीढ़ी को अगर अच्छा भविष्य देना है तो उसका एकमात्र तरीका है जैविक खेती अपनाएं। और मैं साथ ही उन छोटे किसान भाइयों से भी जिनकी जमीनें काफी कम है उन्हें भी ये संदेश देना चाहूंगा कि जैविक खेती से जुड़े और अपने खेतों में अच्छा उत्पादन बढ़ाएं, अच्छी गुणवत्ता का पैदावार प्राप्त करें। और आओ आज हम सब ये प्रण करें कि जैविक खेती अपनाएंगे और अपने गाँव को, अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने देश को खुशहाल बनाएंगे। धन्यवाद।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मन की आंखों से प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूं। आमतौर पर मुझे आप हमराही में सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे खास लोग मिल जाते हैं जो वाकई में जिनके लिए हम कह सकते हैं कि मन की आंखों से उन्होंने कुछ किया है। आज ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी कहानी अपने आप में बहुत अलग है। और आप सब जानते ही हैं, हम इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए समाज में एक अलग अपना एक मुकाम हासिल किया है और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। न सिर्फ मेहनत के बल पर यह सब किया है, बल्कि उनका जीवन कई लोगों को प्रेरित भी कर सकता है, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए मन की आंखों से के इस विशेष कार्यक्रम में हम ऐसे ही लोगों को लेकर के आते हैं। आज मेरे साथ रीना भाटिया जी जुड़ी हैं। रीना भाटिया जी ब्लाइंड हैं और बहुत देर बाद इनकी आंखों की रोशनी गई। कई सारे हादसे हुए इनके साथ, बावजूद इसके इन्होंने दोबारा से खड़े होने का, उठने का, अपना एक अलग स्थान बनाने का निर्णय लिया और आज ये सफलतापूर्वक वो सब कर रही हैं जो ये करना चाहती थी। ये सीए हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। चलिए अब रीना जी से ही समझेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा। रीना भाटिया जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: तो संदीप जी,
0: जी सोचता हूँ आपने रीना जी की आवाज सुनी। आप रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जी रीना जी, तो हमारे सुनने वालों को बताइए जरा आपके बारे में कि आपको आंखों की तकलीफ कैसे हुई और जब इतने दिनों बाद, यानी इतनी लगभग 15-16 साल की एज के बाद ब्लाइंड हो, तो फिर कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं? आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया जरा बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जैसे संदीप जी, मैं सेकेंड ईयर बीकॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज से कर रही थी जब ऑयल मिक्सिंग ऑयल ड्रॉपसी का एपिडेमिक चला था, जिसमें ऑयल में कुछ लेड कंटेंट्स मिक्सिंग थी। मैं उसका विक्टिम थी, जिसकी वजह से मेरी सिर्फ विजन के अलावा पूरा बॉडी मोमेंट पैम्पर हुआ था, आवाज़ चलना sort of
0: रीना जी जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए। शायद बहुत लोगों को समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि अचानक से सेकेंड ईयर बीकॉम में जब आप थे हिंदू कॉलेज में, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया?
1: बेसिकली 1999 में कुछ ऑयल में मिक्सिंग चली थी, धारा और मस्टर्ड ऑयल में, जिसका अच्छा, पूरे इंडिया में इफेक्ट हुआ था। मैं उसमें से एक विक्टिम थी, जिसकी वजह से
0: मिलावटी ऑयल, मतलब बहुत ज्यादा लोग खाने लग गए थे ऐसा।
1: हाँ जी, कुछ ज्यादा ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में कुछ लेड कंटेंट्स की मिक्सिंग हुई थी। लेड कंटेंट्स बेसिकली पेस्टिसाइड्स में पाए जाते हैं, वो मिक्स हुआ था, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोगों को सफर हुआ था। बहुत सारे लोगों की जान तक गई थी और उसी का एक विक्टिम मैं थी, जिसकी वजह से जो जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया, डॉक्टर को पता नहीं था कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, और जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो पूरा रिएक्ट कर गया बॉडी में, जिसकी वजह से मैं कोमा में चली गई थी। 2.5 महीने तक कोमा में रहने के बाद जब मेरे को वापस होश आया, तब तक सिर्फ ना मेरी विजन, उसके अलावा मेरी आवाज, बॉडी मूवमेंट पूरा इंपैक्ट हो चुका था। बेसिकली ब्रेन का एक हिस्सा डेड हो चुका था, जो बॉडी कोऑर्डिनेशन को इंपैक्ट कर, कोमा के बाद 1 साल टोटल सब सीखा, बोलना चलना जैसे बच्चा सीखता है, घुटनों के बल चल के, फिर आगे उंगली पकड़ के चलना। मैं अपने सहारे से बैठ नहीं पाती थी, खाना खाना या सब कुछ पूरा डिपेंडेंट था, कुछ से कुछ भी नहीं कर पाना। विजन एक पार्ट था उसका। उसके ये मैं 6 साल घर में रही, फैमिली का बहुत सपोर्ट था, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, मेडिकेशन होता रहा, पर डॉक्टर्स ने कहा ज़्यादा सिर्फ इसका प्रॉपर कोई मेडिकेशन नहीं है न्यूरो सिस्टम में, सिर्फ इसका एक्सरसाइज फिजियो वगैरह से इम्पैक्ट होगा। उस ट्रीटमेंट से 6 साल घर में रहने के बाद जब मैंने थोड़ा सा रिज्यूमिनेट किया तो उसके बाद सोचना स्टार्ट किया कि आगे क्या, क्योंकि एकदम से ट्रॉमा कॉलेज लाइफ से जहाँ पढ़ रही हूँ चल रही हूँ अच्छे से, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो उससे बिल्कुल टोटल डिफरेंट लाइफ, जहाँ पे आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हो, टोटल घर पे हो, तो समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आ रहा था। पर फैमिली का बहुत सपोर्ट था, तो उन लोगों ने सोचना शुरू किया साथ में क्या हो सकता है। उसी दौरान मुझे दूरदर्शन पे एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ब्लाइंड लड़की अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी, अपनी ट्रेनिंग्स की, ब्लाइंड लोगों के लिए भी ट्रेनिंग्स और एजुकेशन फैसिलिटीज होती है जिससे वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। वो पता चला कि 2006 में मुझे हौसका नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड स्टडीज एंड डिसेबिलिटी स्टडीज का पता चला और मैं वहाँ पे आई जहाँ पे मेरे को बेसिक ट्रेनिंग्स, करियर काउंसलिंग्स और हायर एजुकेशन की गाइडेंस दी गई कि आगे क्या कर सकते हैं, और मेरे को वापस से कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्रेल मोबिलिटी, कुकिंग की सब ट्रेनिंग्स में डाला गया। इसके साथ में क्योंकि मेरे को पढ़ाई का शौक था, वापस मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की ओपन लर्निंग से, जिसके साथ में मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे बी कॉम ऑनर्स करना था। कार की कॉलेज में सिटिंग क्लासेस लेने स्टार्ट की, वहाँ पे मैं जाती थी क्लास लेती थी, एंड उसके बाद वापस अपने सेंटर आके अपनी रूटीन ट्रेनिंग्स को पूरा करती थी जिससे मोबिलिटी में भी हेल्प हो। ग्रेजुअली सेकेंड ईयर में जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे लगा कि ये एनफ नहीं है, मुझे सीए करना है वापस से, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम हुआ था ड्यूरिंग माई हिंदू कॉलेज, मैं अपने सीए का एंट्रेंस क्लियर किया था, तो मुझे इच्छा थी कि मैं वापस सीए परस्यू करूं, तो मैंने अपनी सीए की स्टडी साथ में शुरू की। एनजीओ की वजह से वॉलेंटियर सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, कॉलेज के बच्चे आके पढ़ाते थे और मैं रिकॉर्डिंग सुन के अपने वॉलेंटियर्स के सपोर्ट से और अपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग की हेल्प से मैं अपना बीकॉम और सीए इंटर पास कर पाई। तो कॉलेज के टाइम में प्रॉब्लम्स आई, जैसे मैं सिटिंग क्लासेस लेती थी, हमारी एक टीचर उतनी सेंसिटाइज नहीं थी, उन्होंने कहा क्या ही फ़र्क पड़ता है, ब्लाइंड हो रिकॉर्डिंग हम अलाउ नहीं करते, क्लास में लेक्चर्स रिकॉर्ड करना हम अलाउ नहीं कर सकते। दो काफ़ी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, पर ये एक टीचर थी, उन्होंने कहा नहीं आप एग्ज़ाम भी हम ऐसे नहीं राइटर नहीं दे पाएंगे, और वैसे आपका मेन ओपन से तो आपको कॉलेज के एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम मैटर नहीं करते। थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता था, सबसे ज़्यादा इशू आता था क्योंकि मेरे को थोड़ी सी मोबिलिटी का इशू भी था, बिकॉज ऑफ वो जो मेरी मोबिलाइजेशन चली गई थी, पैरालिटिक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, तो जब मैं रोड पे चलती थी काफी लोगों को लगता था कुछ ड्रग्स ले रखे हैं। तो दिव्य काम पूछने कि आपने कुछ नशा वशा कर रखा है क्या, तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन
0: की बात बता रहे हैं। कहाँ पे ऐसा लगता था?
1: जैसे मैं सड़क पे चलती थी क्योंकि वो
0: अच्छा
1: नॉर्मल नहीं थी, तो कई लोग अच्छा। आके रोक के पूछते थे मैडम आपने ड्रग्स ले रखे हैं, और इसी चक्कर में कई लोग को लगता था हाँ यंग लड़की है नशे में है, तो सॉर्ट ऑफ इट यूज़ को नेगेटिव। पर कभी कभी तो लगता था कुछ नहीं करना, पर मेरी पेरेंट्स और शालिनी का नाम मैम जो डायरेक्टर थी वो हमेशा कहती थी लोगों से कब तक डरोगे, बाहर तो निकलना है, जिंदगी तो जीनी है। उसके बाद उन्होंने मेरा पहला प्लेसमेंट लैब सेंटर के थ्रू हुआ एक लॉ फर्म में रियल जॉब, कि कब तक सेंटर में रहोगे बाहर निकलो लोगों के बीच निकलोगे तो समझ आएगा जिंदगी कैसी जीनी है, आगे सेल्फ भी तो एम्प्लॉयमेंट होना है। वहाँ पे मैंने लॉ फर्म में एज ए लीगल रिसर्चर की जॉब पार्ट टाइम ज्वाइन की। अब पहले अपनी सीए की पढ़ाई करती थी। सीए एंट्रेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें सीए के साथ ट्रेनिंग करनी होती है, फिजिकल ट्रेनिंग किसी सीए के अंडर आर्टिकल शिप। मोस्ट ऑफ दी सीएस ने मना कर दिया कि एक ब्लाइंड पर्सन आर्टिकल शिप कैसे करेगा, हम नहीं दे सकते। समझा के बहुत चैलेंजेस आए इसमें, बट फाइनली एक सीए फॉर्म में मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन की आर्टिकल शिप। बाकी सारे आर्टिकल्स की तरह ट्रेवल करती थी और कोशिश करती थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें नंबर्स हार्ड कॉपी में होते हैं, फिगर्स को वैलिडेट करना होता है। तो मैं किसी वॉलंटियर के सपोर्ट से या अपने कुलीग के सपोर्ट से उसको करती थी वो काम। पर एक दिन एक पार्टनर को पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो उन्होंने कहा आर्टिकल शिफ्ट नहीं कर सकते आप, ऐसे हम क्लाइंट पे तो नहीं भेजेंगे आपको। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा रहते, पर ठीक है। इसी तरह जैसे कुछ लोग मिलते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, वैसे मल्टीपल लोग मिलते हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरह मुझे बहुत सारे लोग मिले जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, इनकरेज किया कि नहीं आपको करना है आगे तो खुद ही पढ़ना है। मेरी सीए इंटर्नशिप में हमारे एक सर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, रीना आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है, लोगों को मेंटल डिसेबिलिटी होती है तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि किसी में कोई कमी हो के भी कोई कुछ कर पा रहा है, आपकी जगह खुद ही बनानी है। बस वो चीज पकड़ के आगे बढ़ना शुरू किया। फिर ग्रेजुअली सीए के फॉर्म्स में इंटर्नशिप के बाद मेरे को जॉब का सोचना स्टार्ट किया। इन बिटवीन बहुत सारे मैप के प्रोजेक्ट्स में मैं जुड़ी रही, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैम के साथ हमारे एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें ऑल ओवर इंडिया में 100 आईटी लैब सेट करनी थी। उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ट्रेवल किया बहुत सारे स्कूलों में अक्रॉस इंडिया, सब में ट्रेनर्स जो लोग ट्रेनिंग देनी थी बच्चों को उनको ट्रेन किया हमने, उनको अवेयरनेस सेशन लिया। इस तरह की एक्टिविटीज में मैं जुड़ी रही और ग्रेजुअली मैंने अप्लाई किया अर्नेस्ट यंग, एक सीए फर्म है, मल्टीनेशनल कंपनी, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में मानी जाती कंसल्टेंसी के लिए टास्क के लिए। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया 2012 में, टैक्स की सबसे बड़ी कंपनी एमएनसी जहाँ पे मैं आज भी जॉब करती हूँ। मैंने को अपॉर्चुनिटी मिली टू ज्वाइन एज अ ट्रेनी 2012 दिसंबर में, क्योंकि वो भी शोर नहीं थे कि मैं काम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और स्क्रीन रीडर्स का अवेयरनेस नहीं था। मैं फर्स्ट ब्लाइंड लड़की थी ईवाई में जॉब के लिए, जिन्होंने फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन जो हायर किया गया था। तो 9 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद काम देखते हुए उन्होंने मुझे परमानेंट रोल पे ले लिया, पर इशू था क्योंकि उनको एक्सेसिबिलिटी का अवेयरनेस कम था, तो इनिशियली स्क्रीन रीडर्स को इंस्टॉल करना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर के सॉफ्टवेयर्स अलाउड नहीं होते बड़ी बड़ी कंपनीज में। ग्रेजुअली अंडरस्टैंड किया, मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी कोलीग्स ने, सीनियर्स ने, उस सपोर्ट से उन्होंने एक जॉब्स का लाइसेंस लिया और आज की डेट में हमारी इंडिया कंपनी में, ईवा इंडिया में ऑलमोस्ट 5 to 6 प्लांट पीपल काम कर रहे हैं एंड हायरिंग मोर।
0: अच्छा, तो कुछ चीजें हैं रीना जी जो छूट रही हैं, जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को पता चले। एक तो मुझे बताइए कि बेसिकली आप दिल्ली में ही रहते थे शुरू से ही, बाय बर्थ?
1: मैं शुरू से दिल्ली में नहीं रहती थी बाय बर्थ, मेरा होम टाउन हिमाचल है। मेरे फादर एक प्राइवेट होटल इंडस्ट्री में जॉब करते थे, उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ शिमला से, तो मैं दिल्ली आई जब मैं 10th क्लास में थी। तो पर जब मुझे प्रॉब्लम हो उस टाइम में दिल्ली में ही थी। हाँ जी पापा की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई, ओबेरॉय क्लार्क करके एक होटल होता है सिविल लाइंस के पास, उसमें वो मैनेजर प्रोफाइल पे थे, तो हम लोग भी दिल्ली रिलोकेट हो गए थे शिमला से।
0: अच्छा, तो पापा वगैरह सब दिल्ली में रहते थे, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली में मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, एक ब्रदर है, मेरे पेरेंट्स हैं।
0: अच्छा, और फैमिली में किसी और को प्रॉब्लम इस तरह की रही?
1: नहीं नहीं।
0: अच्छा, नहीं। कि जो दूरदर्शन पे जो आप वीडियो देख रहे थे वो किस लड़की का था?
1: कोई अर्चना नाम सुना था मैंने उस टाइम, दो मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता, क्योंकि वो भी शायद मैं भारतीपुरम के बाय बर्थ प्लाइंट बच्चा था कोई, जिसने अपने एजुकेशन नए भारतीपुरम से की थी, तो उसने अपनी वीडियो में बताया कि किस तरह से ट्रेनिंग्स और एजुकेशन के साथ आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, कैसे जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल लाइवलीहुड जी सकते हैं।
0: तो सीए का जो आपने एग्जाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था आपका?
1: नहीं, सीए एंट्रेंस भी मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, उसके बाद सीए इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं हमारे, तो मेरा पहला ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, सेकंड ग्रुप इंटर का सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, फिर सीए फाइनल के दो ग्रुप्स होते हैं अगेन, जिसमें एक ग्रुप तो मेरा निकल गया था सेकंड अटेम्प्ट में, पर उसके बाद जॉब लग गई ईवाई में, तो काफ़ी सालों तक मैं दे नहीं पाई थी। एक दो अटेम्प्ट बीच में ट्राई किया, फिर क्योंकि जॉब के साथ वॉलंटियर सपोर्ट कम था, टाइम कम था, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगा।
0: ये सारे एग्जाम आपने सीए एंट्रेंस से लेकर के बाद में तक जितने भी थे वो सब स्क्राइब के थ्रू दिए या आपने इंडिपेंडेंटली दिए?
1: नहीं नहीं, स्क्राइब के थ्रू। रादर सीए एग्जाम देते हुए भी इतना इजी नहीं था, जब मैं इंटर का एग्जाम दे रही थी, बल्कि हमारे साथ मेरे नोन में एक और लड़का था मिलिंद करके, जो वो भी सीए एग्जाम दे रहा था, और उस टाइम सीए के लोग भी इतने सेंसिटाइज नहीं है मुझे लगता है, आज की डेट में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उस लड़के को उन्होंने ये बोल दिया था, उसके स्काइप के घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो उसको स्काइप चेंज करना था, उन्होंने कहा आप स्काइप चेंज करोगे आप अलाउड नहीं एग्जाम देना, आपका स्काइप इज एज गुड कि आप एग्जाम दे रहे हो तो आप रेटर चेंज नहीं कर सकते, एंड उस पर्सन ने सीए ड्रॉप करके लॉक किया है, और सेम इशू मेरे साथ आया था कि मेरे को कैब उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया था, रादर मैंने जब सीए अथॉरिटी से मिली कि ऐसा ऐसा स्कूल में ये इशू हुआ, उन्होंने कहा आप लोग तो राइटर के थ्रू पास होने के तरीके होते हैं, तो मेरी एक वॉलेंटियर ने केस किया था ये इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, जिस केस को मैं जीती थी, और उसके अकॉर्डिंग रूल बने थे कि स्काइप को आप सीए इंस्टीट्यूट राइटर फंड भी देगा और एक डिपॉजिटरी बनाएगा, जिसमें जो बच्चा है स्टूडेंट है सीए का, ब्लाइंड बच्चे को चॉइस मिलेगी, वो के थ्रू भी स्काइप अरेंज कर सकता है, पर्सनल कर सकता है, और स्काइप चेंज भी कर सकते हैं इसको गाइडलाइंस।
0: ओके, तो रीना जी, जब आपके साथ 1999 में जो हादसा हुआ, उससे पहले भी आपने सीए बनने का ही सोचा था या तब तक कुछ सोचा ही नहीं था?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तब मैंने सीए स्टार्ट करने की सोची थी, एक बार एंट्रेंस दिया था।
0: जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, तभी आप सीए ही बनना चाहते थे?
1: हाँ जी, हाँ जी, तभी मैं सीए एस्पिरेंट कर रहे थे।
0: ओके, तो सीए की जो स्टडीज हैं, उसमें मतलब आपको उनको पढ़ने में, उसकी तैयारी करने में, मतलब ब्लाइंड पर्सन होते हुए आपको क्या क्या चैलेंजेस रहे उसमें?
1: बेसिकली क्या होता है, स्टडीज में चैलेंज तो आता है बिकॉज हम नंबर्स में डील करते हैं। संदीप जी, बेसिकली हम सीए में बहुत सारे सब्जेक्ट में नंबर्स हैं, अकाउंट्स या मैथमेटिक्स रिलेटेड, तो उसको ईटेक से पढ़ना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है अपने आप में, क्योंकि जब हम ईटेक से पढ़ते हैं उसको जॉस के साथ, तो वो पहले पूरे कॉलम को पढ़ेगा बजाय हॉरिजॉन्टल पढ़ने के रोज वाइज, और हमारी रिक्वायरमेंट होती है रोज वाइज पढ़ने की, तो ये चैलेंज आता है। और वॉलेंटियर्स के लिए भी नंबर वाइज समझाना, क्योंकि कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग है क्या कैसे जाना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर आपकी को ये चैलेंज से एक्सेप्ट करते हुए उसको लेके चलना होता है। कुछ वॉलेंटियर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे को हाथ पे एज अ ड्राइंग बना के अपनी उंगली से किस तरह से ये चल रहा है, ऐसे प्रेजेंटेशन होनी है आपके, आपको अपने राइटर को इस तरह समझाना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में बनाएं, वो मेरे लिए थोड़ा इजी हुआ।
0: अच्छा, तो रीना जी बताइए, ये सीए में मतलब जो लोग सीए का एग्जाम देना चाहते हैं या जो सीए बनना चाहते हैं, तो कौन कौन से पेपर्स इसमें होते हैं, कौन कौन से बुक्स इसको इनमें पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए।
1: जरूर, बेसिकली सीए में आपकी अगर एंट्रेंस लेवल पे बात करते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और स्टैट्स होता है, बेसिक लॉ होता है, बेसिक बहुत बेसिक, और अब करंटली उन्होंने फिर से सिलेबस चेंज किया है, जिसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बेसिक लेवल पे क्या लिया। जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो ये दो एग्ज़ाम मेंटेड होते, और सबसे बड़ी बात 50% स्कोर करना मस्ट होता है। वैसे उसके बाद आपको इंटर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें मेरे टाइम में 8 पेपर्स थे, जिसमें अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, बिजनेस स्टडीज, ये सब एग्ज़ाम होते थे। एंट्रेंस में एक इकोनॉमिक्स का भी एग्ज़ाम होता है इसमें एंट्रेंस लेवल पे, और ये सब एग्ज़ाम के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट रहता है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, ये आपको एंट्रेंस लेवल पे होता है। इसमें भी आपको पर पेपर आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ता है, पर ओवरऑल आपको 50% स्कोर करना पड़ता है। अगर आपकी किसी पेपर में 40 से कम आ गए और या एग्रीगेट में 50 से कम आ गए, तो आपको पूरा ग्रुप वापस रिपीट करना पड़ता है, सारे के सारे चारों एग्ज़ाम, एक्सेप्ट अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 60 से ऊपर आए, वो वाला एग्ज़ाम आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ता। इसी तरह फिर इसी तरह फाइनल में फिर दो ग्रुप्स होते हैं। अब जो नए सिलेबस आए उसमें इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स कम कर दिए हैं, जैसे अब एक ओपन बुक एग्ज़ाम हो गया जिसमें एक सब्जेक्ट रादर दो सब्जेक्ट्स हटा दिए इन्होंने, और उसकी जगह एक ओपन बुक एग्ज़ाम कर दिया, और अदरवाइज उसमें भी आपका कंप्यूटर टेस्टिंग के एग्ज़ाम होता है, अकाउंट्स है, ये ऑडिट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मस्ट एग्ज़ाम है।
0: रीना जी बताइए कि ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स आप बता रहे हैं, लगभग ऐसा लग रहा है सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, है ना? तो आपने प्रीलिम्स में कौन सा स्क्राइब लिया था?
1: हमारी कंडीशन जो प्रिस्क्राइब है, आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट ले सकते हो। अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो इंटर लेवल हो चाहे फाइनल लेवल हो। सी ए, सी एस, सी डब्ल्यू, इनमें से किसी में एनरोल नहीं होना चाहिए।
0: तो ऐसे में है ना, ऐसे में ये पेपर

0: में टेबल बनेगा, इतने कॉलम्स, इस तरह से लिखना है उसको, कौन सी चीज कौन सी साइड में आएगी, लेफ्ट में राइट में, इस तरह से पता है। वो आपको अपने माइंड में पिक्चर इमेजेस बनानी पड़ेगी जैसा आपकी वॉलंटियर्स बताती जाए, ताकि आप वही चीज रिट्रेट कर सको अपने स्काइप को।
1: आपको सीए बनाने में मतलब आपके वॉलेंटियर्स का भी बहुत बड़ा रोल
0: यस,
1: है।
0: उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने कोई टेक्निकल कोचिंग्स नहीं ली, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं की, क्योंकि सीए की कोचिंग्स दो, एक तो दूर दूर होती है, ट्रेवल करना मुश्किल होता है, और ग्रुप में, एक ग्रुप में क्लासरूम में कम से कम 80 to 100 स्टूडेंट्स होते हैं, और आपका टीचर आपको ये व्हाइट बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे बता रहा होता है, और एक बच्चे को बताने के लिए वो स्पेसिफिकली सब कुछ वर्बल नहीं बोलेगा, तो इसलिए मेरे को, मैंने पूरी स्टडीज अपने वॉलेंटियर्स के थ्रू ही की है।
1: आपके वॉलेंटियर्स कौन रहे हैं?
0: मेरे वॉलेंटियर्स कॉलेज स्टूडेंट्स से आईआईटी के स्टूडेंट्स भी रहे हैं, और मेरे एग्जाम इंटर लेवल पे तो सारे एग्जाम 12th के बच्चों ने दिया।
1: अच्छा, अब ये तो रही प्रीलिम्स की बात, फिर मेंस में कौन था आपका स्क्राइब या किस लेवल का
0: सेम
1: था?
0: सेम
1: सेम।
0: बीकॉम ऑनर्स अंडर ग्रेजुएट
1: ओके
0: रिक्वायरमेंट ही है, अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए।
1: ओके, ये रिक्वायरमेंट है तो ये अच्छा। तब तक खैर आपने जब दिए तब तो वो तो 2013 वाली गाइडलाइंस भी नहीं आई थी।
0: नहीं, जब आप ही कहिए सीए के अपना पी, क्योंकि सीए के अपनी गाइडलाइंस पे ही चलता है, सीए के ऐसी कोई डिफरेंट गाइडलाइंस कोई और फॉलो नहीं करती, इसलिए अपने नाम से मेरे केस के बाद सिर्फ ये चेंज हुआ था कि हाँ, राइटर को राइटर फंड मिलेगा, और राइटर आप चेंज कर सकते हो। आज अगर मैं एक राइटर ले जा रही हूँ, नेक्स्ट पेपर में मैं कोई और को ले जा सकती हूँ, पहले जब मैंने अपने इंटर लेवल के एग्जाम दिए थे तो ये अलाउड नहीं था।
1: और मेंस में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन से सब्जेक्ट में आई आपको?
0: अकाउंट्स,
1: क्यों?
0: अकाउंट्स बेसिकली एक्चुअली एक तो पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, नंबर आपको एडिशंस बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लगता है बहुत शॉर्ट हो गया है, दो हमें 1.5 आवर एक्स्ट्रा मिलता है, और उसके अलावा भी लगता है टाइम बहुत शॉर्ट है, और उसमें राइटर की स्पीड, राइटर की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप बता रही हो पर राइटर क्या समझ पा रहे हैं आपको नहीं मालूम, तो थ्योरेटिकल एग्जाम में तो जो आपने बोल दिया वो उसने लिख दिया एज इट इज, पर यहाँ पे फॉर्मेट्स का है, आपकी पर्टिकुलर फॉर्मेट्स फॉलो होने चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, अगर आपने वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं दिया जो प्रिस्क्राइब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
1: अच्छा, तो अकाउंट्स के लिए स्पेशल आपने क्या किया उसकी प्रिपरेशन करने के लिए?
0: बस वही अंडरस्टैंडिंग इमेजेस का, मेंटल माइंड में इमेजेस बना बना के, ओके इस कॉन्सेप्ट का ये प्रेजेंटेशन है, इसमें इस तरह का लेआउट बनेगा, वही चीजें जो वॉलेंटियर्स से पूछती थी मैं कि इसमें कितने कॉलम्स है, क्या हेडिंग्स है, किस तरह से लिखा गया है, कौन सा आउटर कॉलम है, कौन सा इनर कॉलम है, वो वैसे ही आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको वॉलंटियर्स उतने एड्रेस कर पाएगा, तो उस तरह से समझ के हो गया।
1: ओके, कुल मिलाकर के बहुत मेहनत तब तो खैर करनी थी, अभी भी मेहनत कोई कम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है।
0: जरूरत, ये तो हर फील्ड के लिए मुझे लगता है सबके लिए जरूरी
1: बीकॉम
0: है।
1: बैकग्राउंड होना कितना जरूरी है सीए के लिए? कॉमर्स बैकग्राउंड होना कितना जरूरी
0: नहीं,
1: है?
0: ऐसा कुछ बहुत जरूरी नहीं है, अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओ तो आप कैच कर लोगे, जिसको कॉमर्स बैकग्राउंड होगा उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जब 11th 12th में पढ़ते हैं या बीकॉम में पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट हेल्प करते हैं आपको, पर ऐसा नहीं है कि अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
1: तो भाई रीना जी सीए बन गए और सारे एग्जाम क्लियर भी हो गए और ईवाई में जॉब भी मिल गई। जॉब
0: हाँ जी,
1: मिलने के बाद

0: क्या क्या मुश्किलें रही आपको?
1: देखो, जॉब मिलने के बाद शुरू में तो ऑफिस में ये एक्सेप्टेंस कराना कि हाँ ठीक है, आपको विजन प्रॉब्लम है तो आप भी और लोगों की तरह कर सकते हैं, वो एक चैलेंज रहता है। उसके बाद आज के डेट में जो चैलेंज आते हैं कि काफ़ी सारी बड़ी एमएनसी है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको विजन प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आती है चीज़ें आपको वो उस हिसाब से नहीं आती जो एक्सेसिबल हो। चीज़ें नॉन एक्सेसिबल होती है वो आपकी टीम पे डिपेंड करता है। मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कोलीग्स वगैरह बहुत सपोर्ट करते हैं, तो जहाँ पे उनको लगता है मेरा जॉब सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो मेरे को समझाते हैं कि ऐसा है। दो आज की डेट में 12 साल हो गए मुझे ईवाई के साथ काम करते हुए, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब पे काम कर रही हूँ, तो वो फर्क पड़ता है। आपको हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है विज़ाविज़ अपने अदर कोलिग्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रो करना है, अपने को प्रूव करना है, आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा।
0: अच्छा रेना जी, अभी आपका काम क्या रहता है ईवाई में?
1: मेरा काम है बेसिकली टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंसी में मैं काम करती हूँ, जिसमें हमारा है पीपल एडवाइजरी। इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज इंडिया आते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, उनकी पूरी टैक्स का कंप्लायंसेस इंडिया लॉस के अकॉर्डिंग देखना, स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं, उनको इंडिया टैक्स की ओरिएंटेशन देना कॉल होती है, इंडिया टैक्स ब्रीफिंग कॉल। उसके अलावा क्या टैक्स, कितना टैक्स डिडक्ट होना है, प्रोविडेंट फंड कंप्लायंसेस क्या है, और उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में सपोर्ट करना, ये सारा मेरा काम का पार्ट है। फिर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस इशू किया असाइनी को, तो उसके लिए उस रिस्पॉन्स बनाना और उसको फाइल करना है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, वो पार्ट ऑफ माय वर्क।
0: ओके, तो रीना जी, चूंकि बात अब आईटी की चल रही है यानी इनकम टैक्स की चल रही है और आप सीए हैं और इतनी अच्छी जॉब पर हैं, इतनी अच्छी कंपनी में हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे श्रोताओं को मिल जाए। ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ये आसान भाषा में समझाइए जरा।
1: बेसिकली अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, दो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसे हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि हम LIC में कंट्रीब्यूट कर दिया, हम प्रोविडेंट फंड में हमारी कंपनी हमारे कंट्रीब्यूशन लेती है, उस सब का हमें बेनिफिट मिलता है टैक्स के अगेंस्ट। या आपने आज कोई घर खरीदा उस पर इंटरेस्ट पे करें, हाउसिंग लोन पे करें, तो उस सबका बेनिफिट मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सब बेनिफिट्स घटा के जो आपकी इनकम आती है उस पे आपका टैक्स लगता था, गवर्नमेंट ने कहा उसके अब उस सबको ऑथेंटिकेट करना टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल एक चैलेंज बन गया, क्योंकि कुछ लोग ले फेक क्लेम भी ले लेते हैं। तो टैक्स अथॉरिटीज ने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, आप पुराने रिजीम को फॉलो करो जिसमें ATU मिलता है, जैसे हमें डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है 1,25,000 या 75,000 का, LIC प्रोविडेंट फंड वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो 1,50,000 का कॉमन कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम से कम होता है, उसके बाद हमें टैक्स लगता है। हमें HRA कंपनी हमें HRA अलाउंस देती है, अगर हम रेंट पे करें तो हम HRA एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेते हैं, हाउसिंग लोन पे हमें बेनिफिट मिलता है ओल्ड रिजीम में। अब न्यू रिजीम में उन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया कि जितने आपको इनकम मिल रही है बिना किसी बेनिफिट लिए आप पूरे का पूरे टैक्स को ऑफर कर दो, पर आपके टैक्स रेट हो जाएंगे कम। जैसे ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख की इनकम तक आपका 10% है, 10 लाख 5 से 10 लाख की इनकम तक 20% है, 10 लाख के 30% का टैक्स लगता है। अब न्यू रेजिम में उन्होंने क्या किया कि अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसमें भी अगर सारी इनकम मिला के आपकी 12 लाख से कम बैठ रही है तो जो आपका टैक्स बन रहा है 12 लाख तक, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको 0 टैक्स देना है। तो ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं
0: न्यू टैक्स रिजीम में। ये तो ठीक है, लगभग सबको मालूम है 12 लाख तक है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, इस तरह के स्लैब है। लेकिन इसमें भी हम क्या क्या डिडक्शन करवा सकते हैं, ये बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है।
1: बेसिकली इसमें ना बहुत लिमिटेड बेनिफिट्स अवेलेबल है। अगर आपको लिव इन कैशमेंट मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है, जो आपके बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, या आप जॉब छोड़ते हैं, वो सिर्फ आपको डिडक्शन वन टाइम वो मिलता है, अदरवाइज आपको एचआरए का नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिकल प्रीमियम दे रहे हैं, ये सब कुछ भी आपको अलाउड नहीं है। ईटीयू का डिसेबिलिटी बेनिफिट भी नहीं अलाउड है, तो सिर्फ वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट की सैलरी में से कम होता है। और इसमें ये बेनिफिट है कि आपको एक सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो सबको मिलता है, वो न्यू रिजीम में 75,000 भाई, ओल्ड रिजीम में 50,000 का है। 25,000 का वहां बेनिफिट आ जाता है।
0: और इंश्योरेंस में,
1: इंश्योरेंस वगैरह को कोई डिडक्शन नहीं मिलता न्यू रिजीम।
0: ओके ठीक है। तो रीना जी, कभी ईवाई को छोड़ के कहीं और स्विच करने का नहीं सोचा आपने?
1: अभी तो नहीं, क्योंकि मेरे को सोशल वर्क का बहुत शौक है। सबसे अच्छी बात कि हमारी कंपनी एक एनजीओ एक्टिविटीज रन करती है, जिसमें एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी चॉइस से पार्टिसिपेट कर सके। तो मैं उसका भी पार्ट इन्वॉल्व हूँ, उसमें रिपल्स इंडिया और रिपल इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम वीकेंड्स पे अपना टाइम निकाल के स्कूल जाते हैं, बच्चों को गाइड करने, अंडर प्रिविलेज को करियर काउंसलिंग देने, या प्लांटेशन ड्राइव। तो मैं इस तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हूँ। प्लस मुझे लगता है एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है, और जो मेरी नीड्स है मिल कंप्लीट हो रही है। तो अभी तो नहीं सोचा, लॉन्ग रन में जरूर इच्छा है कि मैं ईवाई छोड़ के वापस सीएसआर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ फुली, जिसमें मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन सोशल वर्क की तरफ दे सकूं।
0: ओके, तो यानी जॉब के साथ साथ सोशल वर्क भी हो रहा है ईवाई के साथ, ये एक आपको अच्छी लगती है ये बात। कभी अपना खुद का फर्म खोलने का नहीं सोचा आपने?
1: नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा इशू रहता है जब आप, एक तो नॉर्मली भी सीए फर्म जब आप खोलते हो, लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर जीतना बहुत आसान नहीं होता। आजकल इतनी सीए फॉर्म्स खुली है, कंपटीशन बहुत हाई है, खास तौर से जब आपको विजन प्रॉब्लम होता है तो लोग फाइनेंशियल नंबर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते आप पे कि आप कर पाओगे ठीक से उनका काम। तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना बहुत टाइम लेता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको कंटिन्यूटी नहीं रहती कि आपके पास फाइनेंशियल फ्लो बना रहे। और मुझे लगता है फाइनेंशियल फ्लो की डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आपको थोड़ी सी लिमिटेशन हो।
0: आज आपकी ग्रोथ को देख के फैमिली खुश है?
1: बहुत ज्यादा, उन्हीं के सपोर्ट और उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। मेरे पेरेंट्स, शायद मैं कभी ये करेज नहीं कर पाती घर से निकलने का, अगर मेरे पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते।
0: तो रिया जी, जो आपको प्रॉब्लम हुई थी उस समय 1999 में, अभी आईज इफेक्टेड हैं आपकी, और अभी और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं?
1: हाँ जी, सब ठीक है। देखिए, मेरे स्पीच में फिर भी थोड़ा सा इशू है नॉर्मल स्पीच से विज़विज़, और थोड़ा सा मुझे मोमेंट का इशू है, नॉर्मल थोड़ा सा मोमेंट वॉक में स्लर है। जैसे स्मूथ नॉर्मल इंसान चलता है, चाहे विजन इम्पेयरमेंट हो, तभी मुझे थोड़ा सा वॉक का इशू रहता, बैलेंस का इशू।
0: यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से मतलब वो ठीक नहीं हुए आप उसमें,
1: ये कह सकते हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट 80% बेटर हूँ, क्योंकि उस लेवल पे मैं जहाँ बिल्कुल खुद के सहारे से बैठ नहीं सकती थी, आज की
0: सही
1: डेट में मैं खुद के सहारे से ऑफिस आती हूँ, जाती हूँ, अपने आप अपना काम कर रही हूँ, इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ, अपनी कुकिंग वगैरह सब खुद करती हूँ, तो उस लेवल से आई फील काफी बेटर हूँ।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुल मिला के अब आप इन फ्यूचर मतलब टोटली सोशल वर्क ही करना चाह रहे हैं।
1: ये हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिला है सोसाइटी से, मेरे वॉलेंटियर से, तो मेरा इंक्लिनेशन है शुरू से कि मैं वापस कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और सोसाइटी को वापस कुछ दे पाऊँ।
0: बहुत अच्छी बात। अच्छा, लोग आपसे गाइडेंस लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कैसे?
1: मेरे को वैसे भी काफी लोग कॉल करते हैं, तो आप, मैं अपना नंबर बता सकती हूँ, वरना मेरी ईमेल आईडी reenabhatia2@gmail.com, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं।
0: जिसमें आप कंफर्टेबल हैं तो आपकी ईमेल आईडी हम बता देते हैं, रीना भाटिया 28। हाँ,
1: reenabhatia2@gmail.com।
0: अच्छा, रीना भाटिया 2। ओके,
1: हाँ
0: आर
1: जी,
0: डबल ई एन ए बी एच ए टी आई ए, है ना?
1: हाँ जी, हाँ
0: ओके, आर डबल ई एन ए बी एच ए टी आई ए 2@gmail.com।
1: जी। आगे आप मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं,
0: बताइए।
1: 9971931354 31354।
0: 3154। तो श्रोताओं, अगर आप रीना जी से सीए के बारे में या इनकम टैक्स के बारे में कोई भी आप अगर गाइडेंस लेना चाहें तो कॉल करने का कोई समय?
1: ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कभी ये होता है कि मैं ऑफिस में हूँ तो मैं कॉल उठा के बोल देती हूँ कि इस समय बात नहीं हो पाएगी, मैं अब वापस उनको कांटेक्ट कर लेती हूँ।
0: ओके, तो श्रोताओं आप ईमेल पे भी बने जा तक तो आप ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए रीना जी को, reenabhatia2@gmail.com। और अगर आप कॉल भी करेंगे तो अगर रीना जी फ्री हुई तो आपको जवाब देंगी, अदरवाइज नहीं देंगी। नंबर एक बार रिपीट कर देते हैं रीना जी,
1: 9971931।
0: 7171931354।
1: हाँ जी,
0: ओके, तो अब रीना जी जॉब के अलावा अभी इन दिनों में क्या क्या करती हैं आप, क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या क्या पसंद है आपको, कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हैं आप?
1: मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं बीच में ट्रैवल करती हूँ लोकल नियर बाय प्लेसेस में फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा मैं एक हमारे क्रिकेट फॉर ब्लाइंड वीमेन द मर्तनम ट्रस्ट के साथ मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, ब्लाइंड गर्ल्स को क्रिकेट ऑन द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मोटिवेशन सपोर्ट, खुद खेलती नहीं हूँ पर उनके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ। इसके अलावा मैप की कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे अभी भुवनेश्वर में उड़ीसा में फेबररी में गवर्नमेंट का एक जॉब फेयर आया था, उसके लिए मैं डिस्कशन के लिए गई थी, तो इस तरह के कुछ कुछ सोशल वर्क में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। पर्सनल में मुझे ट्रैवल और कुकिंग का शौक है,
0: सब जगह ट्रैवलिंग अकेले करते हैं रीना जी?
1: मोस्टली बाकी कुछ जगह फ्रेंड्स के साथ, जैसे मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह का शौक है तो फ्रेंड्स के साथ जाके रिवर राफ्टिंग, उसमें दो वो लोग अलाउ नहीं करते पर ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उनके साथ पैराग्लाइडिंग वगैरह इन सब एक्टिविटीज में मुझे शौक है, तो इसमें इन्वॉल्व रहती हूँ।
0: रीना जी, आपकी तरह जो लोग किसी परेशानी में हैं, जिनको लगता है कि बस अब लाइफ खत्म हो गई है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगी आप?
1: मैं कहूंगी लाइफ कभी खत्म नहीं होती, हर अंधेरी के बाद एक रोशनी चलती है, हमें सिर्फ हिम्मत हौसला रह के आगे बढ़ना और अपनी हिम्मत बना के उन चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और कारवा अपने आप बन जाएगा।
0: क्या बात है, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, कारवा अपने आप बन जाएगा। तो रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। और आपके लाइफ एक्सपीरियंस से इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स को बताने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, आप जो भी करना चाहती हैं वो सब कर पाएं, सक्सेस मिले और ज़्यादा आपको लाइफ में, हम यही आपके लिए विशेष देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब श्रोताओं।
0: तो श्रोताओं, ये सुना आपने प्रोग्राम मन की आंखों से रेडियो मधुबन पर। आप सब रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही हम नई नई शख्सियतों से आप सबको रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि अगर आप कहीं हिम्मत हार रहे हैं, आप कहीं डगमगा रहे हैं, आप अगर कहीं चलना शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी रास्ता मिल जाए।

रॉन्ग्स दैट कैन नॉट बी इरेज्ड फ्रॉम योर हार्ट। इसलिए लौट आई हूँ फिर से कार्यक्रम गुलदस्ता में, जो गीत हमारे दिलो दिमाग पर बरसों से हैं, जिसे हम मिटा नहीं सकते, उन्हीं गीतों को नए अनोखे अंदाज में आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर से आपका मन पसंद दिल पसंद कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं स्वर्णलता। हमेशा नए अनोखे अंदाज में उड़ती रहती हूँ आपकी खातिर। तो रेडी है ना आज के सफर पर हमारे साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सुनते हुए मुस्कुराते हुए। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कुछ अलग, कुछ खास, कुछ अद्भुत सुनने के लिए आपको ट्यून करना होगा रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और मैं हूं स्वर्णलता। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट कार्यक्रम गुलदस्ता। आज गुलदस्ता कार्यक्रम में हम हैं बिल्कुल बेफिक्र मोड में। आप भी बेफिक्र हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम पुराने गीतों के नए रूप को देखने के लिए आप सभी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम में, डोंट मिस द शो। वन एंड ओनली स्वर्णलता के साथ आप बिताएंगे पूरा एक घंटा। इस एक घंटे के सफर को यादगार करते हैं हम दोनों मिलकर। बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओरिजिनल बॉलीवुड क्लासिक्स को आप सुन रहे हैं नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में। वैसे हमारे पुकारने पर आप चले आते हो रेडियो मधुबन पर, ट्यून इन करते हो और फौरन हाजिर हो जाते हो, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और आपसे आज एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आप मुझे दे सकते हैं और मन ही मन मैं इसे पढ़ भी लूंगी, क्योंकि आपके भाव रीच हो जाते हैं, शब्दों से पहले भावनाएं पहुंच जाती हैं, है ना। तो ओरिजिनल बॉलीवुड क्लासिक्स को आज एक अनोखे अंदाज में सिंगर पेश कर रहे हैं, उसे एक रीइमेजिन्ड तरीका दिया जा रहा है, उसे नव कल्पना का रूप दिया जा रहा है। तो इस नव कल्पना को आप कैसे स्वीकारते हैं, स्वीकारते हैं, पसंद करते हैं, या फिर आपको किसी भी गीत का ओरिजिनल वर्शन ही पसंद है, क्या ख्याल है आपका? सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: पुराने गीतों को अगर कोई अपने स्टाइल में अपने अंदाज में गाए या उसमें कोई चेंजेस लाए म्यूजिक में, क्या आपको पसंद है? आपको पसंद है ऐसे चेंज्ड वर्शन को सुनना? तो आज के कार्यक्रम में उन लोगों को शामिल होना ही पड़ेगा जो ऐसे स्टाइल को पसंद करते हैं, अपना लेते हैं तुरंत। किसी की क्रिएटिविटी को तुरंत जो अपना लेते हैं वह सहज ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर कोई एक ही वस्तु के साथ लगाव लगाए बैठा रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद वह पीछे अपने आप को पाता है, वह कतार में अपने आप को पीछे पाता है क्योंकि वह आगे बढ़ ही नहीं पाता। हमें कई बार ऐसे चेंजेस को अपनाने पड़ते हैं

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: बॉलीवुड ओल्ड म्यूजिक को, ओल्ड मेलोडीज को सदाबहार गीत भी कहे जाते हैं। अब इन सदाबहार गीतों के जो ओरिजिनल वर्शन है, उनका न्यू वर्शन आ चुका है। सभी अपने अपने अंदाज में इसे गाते हैं। ओरिजिनल वर्शन का एक अनोखा अंदाज भी है जो अपने अनोखेपन को दर्शाते हैं इन गीतों के नए वर्शन में। तो आप सब इन्हें सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारा तो इस कार्यक्रम का यही लक्ष्य रहता है कि कुछ ना कुछ नया आपको दें और उस नएपन को आप दिल से कबूल कर लें। तो बने रहिएगा अंत तक आज के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह, क्योंकि आपका वादा है हमारा साथ हमेशा निभाएंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

साथियों, संगीत प्रेमियों का कहना है कि ओल्ड मेलोडीज का अपना ही एक दौर था, वह दौर कभी वापस आ नहीं सकता। पर हम कहते हैं कि आज की जनरेशन भी ओल्ड मेलोडीज गा रही है, और आज की जो जनरेशन है उसमें कुछ जो म्यूजिक लवर्स हैं, इन पुराने गीतों को एक अनोखे अंदाज में पेश कर रहे हैं, वह भी सही है। इससे नयापन आ जाता है, और नयापन कौन नहीं चाहता साथियों, है ना? हर चीज में तो नयापन हम ढूंढ रहे हैं, तो इसमें भी सही। री इमेजिन्ड न्यू वर्शन आज आप सुन रहे हैं इन सदाबहार गीतों के। तो आप बताइएगा, आपको ये गीत कैसे लग रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसे भी हमें बता सकते हो। आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो। तो ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक के आधुनिक वर्शन आपके लिए रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम गुलदस्ता में। तो अभी बैक टू बैक दो गीत हम सुनने वाले हैं।

0: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: कार्यक्रम गुलदस्ता में आज हम पुराने गीतों के, पुराने दौर के जो सदाबहार गीत हैं, उन गीतों के नए वर्षन हम सुन रहे हैं, जिसको रीमेक वर्षन भी कहा जाता है। और अभी हमने दो गीत बैक टू बैक सुने। फर्स्ट सॉन्ग किशोर कुमार का था ओ मेरे दिल के चैन, और सेकंड सॉन्ग एक डुएट सॉन्ग रहा इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा। अब साथियों, आपने देखा कि दूसरे गीत में इसके शब्द भी बदल दिए गए और उसको अपने तरीके से पेश किया गया, और वह भी बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, खूबसूरत लग रहा था, है ना। तो ऐसे ही गीतों को आज आप सुन रहे हैं जिसमें नवीनता है। बने रहिए और सुनिए अगला गीत।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मामा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? लाइक यस। तो मामा को बिल देता है, तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप 9 रुपीज बिल। मामा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा अनदर 5 रुपीज। मामा आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा वेरी टेरिफिक जॉब 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है, फिर क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है, और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इंडेब्टेड फॉरएवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा।
2: 4 दिन की जिंदगी है, हंसते गाते चलता चल, 4 दिन की जिंदगी है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए आगे चलता चल, 4 दिन की जिंदगी है, मुस्कुराते हुए हर लम्हा बिताते हुए आगे बढ़ता चल। फ्रेंड्स, आज स्वर्णलता को जाने की इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम के सारे गीत बहुत पसंद आए होंगे, और ऐसे ही गीतों को हम लेकर आएंगे। और जाते जाते आपको यही कहना चाहूंगी कि इमेजिनेशन इज द मदर ऑफ ऑल न्यू क्रिएशन। अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए कल्पना शक्ति की बहुत आवश्यकता है। कंप्लीट एकांत की स्थिति एक आनंददायक स्थिति है, जब कुछ नया अपने आप दौड़े चला आता है, और इस कल्पना शक्ति के लिए एकांत की स्थिति की भी बहुत आवश्यकता है। तो आनंद लेंगे हम बॉलीवुड हिंदी क्लासिक्स का हमेशा, क्योंकि ये सदाबहार गीत ही हमें कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह सदाबहार गीतों के साथ, नए नए गीतों के साथ। अब कौन से गीत पेश करने वाली हूँ, जरा देखते हैं। बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब, कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो हैं? घर में बाल बच्चे? बहुत अच्छी बात है, बस कुशल मंगल रहे। चलिए, आपकी प्रभा पंडितायन आपका प्रोग्राम पंडितायन में पेश कर रहे हैं आज का प्रोग्राम, और शुरू करते हैं सकारात्मकता से। सकारात्मक सोच न केवल सबसे अच्छा होने की उम्मीद रखता है, लेकिन ये स्वीकार करने के बारे में भी है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। विश्व नाटक कल्याणकारी है, तो हमेशा का सोचिएगा, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है, लेकिन वही चिड़िया जब मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको, तुम शक्तिशाली हो सकते हो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम नई दुनिया नए जमाने में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मध्य हैं एनवायरमेंटल साइंस एंड PhD इन कंजर्वेशन बायोलॉजी से डॉक्टर सुनील दुबे जी, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एनवायरमेंटल साइंस में, और प्रीवियस एपिसोड में भी हमने उनसे बातचीत की थी और हमने अरावली की कहानी जाना था, कैसे अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति के बारे में भी जाना था। इसके साथ साथ क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं प्राणी जगत में भी जो अरावली के क्षेत्र में रहा करते थे, और इसके साथ साथ इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हमने जाना था, परिवर्तन के बारे में भी सर से सुना था, और जनमानस रहा करते थे, और चंद्रावती नगरी के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना था। तो सर, मछलियों के बारे में भी पिछले एपिसोड में जिक्र किए थे, तो आगे हम सर से जानेंगे कि ये सब चीजें जो हमारे यहाँ हुआ करता था तो वो क्षय होने लगे हैं, और क्यों, और उसको कैसे हम बचा सकते हैं, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: देखिए, अरावली के उत्पत्ति से लेकर के और अभी तक उसमें जो बदलाव आए हैं वो पृथ्वी के उद्विकास, पृथ्वी के अपनी प्राकृतिक जो गतिविधियां हैं और उनसे होने वाले इसके जो भौगोलिक बदलाव हैं वो हमें दिखाई देता है। जब गोंडवाना लैंड यानी पूरी पृथ्वी पर ऊपर जो परतें बनी, फिर उनमें दरारें पड़ी, फिर वो प्लेटों के रूप में इधर उधर सर के अरेंज हुए, और आज जो अरेंजमेंट है महाद्वीपीय प्लेटें जो कहलाती हैं, लेकिन ये महाद्वीपीय प्लेटें जो वो स्थलीय भाग है जो हमको दिखाई देता है, लेकिन समुद्र भी उन्हीं प्लेटों पर ही भरा हुआ पानी है, और इस पूरे इन प्लेटों के नीचे दहकता उबलता लावा आज भी है, और ये जो ऊपर की जो पतली परत पृथ्वी की जो है ठंडी हुई, जिस पर हमारी अब तक 4 अरब साल में जो भी सभ्यताएं विकसित हुई है, अरावली का जो फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में यहाँ पृथ्वी पर जो जीवन की प्रारंभिक अवस्थाएं विकसित हुई थी लगभग 3.5 अरब साल पहले से लेकर के और अभी तक भी वो चल रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी उन अवस्थाओं का विकास अरावली के फॉर्मेशन के समय लगभग 2 अरब साल पहले अरावली के क्षेत्रों में भी हुआ, जिस पर मैंने पहले बात रखी। फिर अरावली का जो आज भारतीय उपमहाद्वीप जो एशिया से लग के टकरा करके जो हिमालय बना, और ये टकराहट अभी भी जारी है एशियन प्लेट के साथ में भारतीय उपमहाद्वीप की, और उसके कारण हिमालय में तो जो सेटलमेंट हो रहा है उस टकराहट से और गुरुत्व के प्रभाव में उनका नीचे सरकना और वहां पर भूस्खलन होना वगैरह, लेकिन उसके साथ अरावली के अंदर भी और बाकी के देश में भी जो पर्वतमालाएं हैं उनमें भी उन कंपनों से जो है वो बदलाव आते हैं। दूसरा, पृथ्वी के नीचे की प्लेट जो ठंडी हुई है वो नीचे और ठंडी होती जाएगी, जैसे दूध पर मलाई पहले बनती है तो पतली बनती है फिर मोटी बनती जाती है जब तक दूध पूरा ठंडा ना हो, तो उसी तरह से इन अंदर भूगर्भीय प्लेटों के बदलाव के कारण ये दो तरह की है, एक तो ये कि जो एक दूसरे से दूर जा रही है टूट करके, दूसरी जो तैरती हुई एक दूसरे की तरफ आकर के टकरा भी रही। तो अरावली के अंदर इन सब हलचलों से जो प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं वो तो है, और आज जो अरावली का फॉर्मेशन है आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसके अनुसार भी अरावली का जो पूरा राजस्थान के पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव है, पूरे राजस्थान का पारिस्थितिकीय तंत्र एक जैसा नहीं है। आज जो 12-13 हजार साल पहले जहां पर सिंधु और सहायक नदियों का पूरा बड़ा बहाव क्षेत्र था और वो फिर थार मरुस्थल में बदल गया, वो आज रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जिसमें लूनी और जो लूनी नदी आज भी थोड़ा सा बची हुई है जो अजमेर के नाग पहाड़ों से उसका पर्वत श्रेणियों से उसका उद्गम है, और आज वो अरब सागर में न जाकर के रेगिस्तान में ही समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ ये जो अरावली का जो अभी पहाड़ियों का जो ओरिएंटेशन है राजस्थान में, उनमें जो का उत्तरी भाग है, मध्य भाग है, दक्षिणी भाग है, लेकिन अरावली के पूर्व की तरफ में बहुत सारी नदियां जिनमें बनास है, माही है, बाणगंगा है, साहिबी है, गंभीरी है, वराह नदियां, इन सब के कैचमेंट बेसिन एरिया जो कहलाते हैं, यानी पानी इकट्ठा होकर के बहकर के इन नदियों के माध्यम से जाता है, और दक्षिण पूर्व में अरावलियों के दक्षिण पूर्व में जो चंबल नदी का बेसिन है और नदी घाटी है जिसको डांग क्षेत्र भी आगे हम कहते हैं। ये अरावली पर्वतमालाएं जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों की जल विभाजक रेखा का काम करती है राजस्थान से, तो ये इसका जो भौगोलिक महत्व रहा, उसके साथ में जो परिवर्तन प्राकृतिक आए उनके कारण आज जो अरावली में फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरावली के राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल less than 5% एरिया में हमारा वन क्षेत्र है, यानी जिनको हम सघन, मध्यम सघन और छितराया जंगल कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो पूरे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.86% ये लगभग का जो है, इसे आप less than 5% ले लें क्योंकि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं, ये केवल इतना वन क्षेत्र है। और ये वन क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ है राजस्थान में भी, वो है अरावली के जो पूर्व दिशा से लगे हुए जिले हैं, पूर्व दिशा में स्थित जिले हैं, उनमें राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 75% फॉरेस्ट वहाँ पाया जाता है। यानी वेस्टर्न पार्ट्स में बहुत कम वन क्षेत्र है जो अरावली के पश्चिम की तरफ जो कहलाते हैं, इसीलिए वो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, मरुस्थलीय जिले कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर शुष्क परिस्थितियां हैं, अर्ध शुष्क परिस्थितियां हैं। आज वहां रेगिस्तानी इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ रहा है, शुष्कता और बढ़ रही है, और उसके कारण जो है ये अरावली उस रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र और फिर इसके पूर्व की तरफ जो सघन वन, जो राजस्थान के कुल फॉरेस्ट का 75% है, और इसमें आपके पाली और सिरोही जिसमें माउंट आबू और यहाँ का जिला भी है, इनको भी मिला लें तो कुल वन क्षेत्र का 95% तो इन 22 जिलों में मिलता है। यदि आज राजस्थान के 50 जिले हुए, पहले हम 33 जिले थे उसमें से देखें, तो पूर्वी और दक्षिणी जिलों को मिलाकर केवल इनमें वन क्षेत्र बचा हुआ है, वो भी अरावली की कृपा से। क्यों? क्योंकि ये अरावली जो इसके वेस्टर्न पार्ट में जो परिवर्तन आया, प्राकृतिक परिवर्तन, नदी का जो बहाव क्षेत्र था वो मरुस्थल में बदला, लेकिन उस मरुस्थल के प्रसार को पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकने में अरावली एक अवरोधक के रूप में काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। और आज की जो लोगों की आजीविका है अरावली के कारण, पूरे राजस्थान का जो ज्योग्राफी आज प्रभावित होता है, वो सीधा सीधा लोगों की आजीविका को, यहाँ के लाइव स्टॉक को, यहाँ के अलग अलग मौसम के जो बदलाव हैं उनके साथ हमारे अनुकूलन, हमारे जीने की क्षमता को सीधा सीधा प्रभावित करता है। आज भी इस अरावली के कारण जो फॉरेस्ट मेंटेन्ड है उसके कारण और जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों को सपोर्ट मिलता है इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण, उसका फल है कि आज राजस्थान में देश की दूसरी सर्वाधिक पशुधन संख्या, 10% से भी ज्यादा देश का पशुधन राजस्थान में है। और उस पशुधन में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी पशु प्रजातियां जो हैं उनके पालन में राजस्थान पहले नंबर पर है। बकरी, ऊंट, गधा, इनके पालन में राजस्थान की पशु जो लाइव स्टॉक है, बकरियां, ऊंट और गधों की संख्या में वो राजस्थान देश में टॉप पर है। यहाँ पर भैंसों के पालन में राजस्थान देश में सेकंड नंबर पर है। आप सोच लीजिए, पूरे देश के, पंजाब, हरियाणा, मध्य भारत के, उत्तर प्रदेश के जो गंगा के और इनके मैदान है, बड़े बड़े सघन जन है, वहाँ भरपूर चारा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भैंस, जिसको इंडियन वाटर बफेलो भी कहा जाता है, यानी वो पानी में रहने की शौकीन है दिन में काफी समय, और वो उसको काफी चारा चाहिए होता है, लेकिन उसके पालन में भी राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है भैंस पालन में, और घोड़े और खच्चर के पालन में तीसरे नंबर पर है, भेड़ के पालन में चौथे नंबर पर है, गाय बैलों के पालन में भी देश में छठे नंबर पर है। आप जरा थोड़ा सा सोचें कि ये सारा जो पशुधन है, और आपको बहुत आश्चर्य होगा, श्रोताओं को भी ये बहुत आश्चर्य होगा जान करके कि इतना पशुधन इसके पालन में राजस्थान देश में अग्रणी है। और बड़े मजे की बात यह है कि इन अरावली इकोसिस्टम के कारण, अरावली के कारण राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्रों का जो वितरण है उसमें कुल पशुधन, यानी 51% से ज्यादा राज्य का जो पशुधन है, राजस्थान के आधे से ज्यादा पशुधन जो है वो शुष्क क्षेत्रों में पलता है।
0: जी,
1: आप सोच सकते हैं कि उन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आज भी कितनी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, कि वो ऊंटों का राज्य के जो ऊंट है लगभग उसमें से 85% ऊंट उस शुष्क क्षेत्र में है। राज्य की कुल भेड़ पॉपुलेशन का 75% अरावली के वेस्टर्न पार्ट में पलता है, 54% बकरियां वेस्टर्न पार्ट में पलती हैं, 40% के ज्यादा गाय बैल वेस्टर्न पार्ट में पलते हैं और 30% से ज्यादा भैंस अरावली के वेस्टर्न पार्ट में पलती है। आखिर ये सब अरावली इतना सपोर्ट या इसके वेस्टर्न पार्ट के इकोसिस्टम को ये इतना सपोर्ट कैसे दे देती है? और आपको भी बहुत आश्चर्य होगा, श्रोताओं को भी, क्योंकि जो पारिस्थितिकी का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और सामान्य विज्ञान में ये चीजें जब लोगों को पता नहीं चलती हैं तो उनको ये जानकारी बड़ी रोचक लगेगी कि हमारे अरावली और इसके दक्षिण और पूर्व में जितना हमारे जलाशय है, नदी, झील, तालाब, बांध, ये सब जो है, आपको बड़ा मजा आएगा जान करके कि यहाँ पर जो औसत मछली उत्पादन है वो देश के राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। आप सोच लीजिए, जो स्वच्छ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमारे यहाँ है, आर्टिफिशियल या बहुत सारे नेचुरल, जो अरावली के सपोर्टेड हैं, यहाँ के रिवर बेसिन्स के साथ में वो सपोर्टेड है, वो हमारा जो औसत उत्पादन है वो देश के औसत मछली उत्पादन से ज्यादा हमारे यहाँ पर राजस्थान में है। इन सब का जो नियमन है, इन सब का जो सपोर्ट है, उसको देने में अरावली इकोसिस्टम का बहुत बहुत बड़ा रोल है। अब इसके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसके कारण हो क्या रहा है कि राजस्थान में जो जैव विविधता की स्थिति है वो देश की लगभग 5.5% से ज्यादा पादप प्रजातियां राजस्थान में मिलती है। देश की जंतु प्रजातियों का लगभग 1% राजस्थान में मिलता है
0: जी।
1: यहाँ पर जो एल्गी है, पानी में रहने वाली शैवाल है, 280 से ज्यादा वैरायटी है। यहाँ पर 146 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां हैं। यहाँ पर 27 से ज्यादा छिपकलियां हैं, 35 से ज्यादा सांप है, 510 से ज्यादा पक्षी है, 95 से ज्यादा यहाँ पर स्तनधारी प्रजातियां हैं। इन सबको कौन सपोर्ट देता है? और फ्रेश वाटर पानी के कछुए और जमीन के कछुए दो तरह के होते हैं, टर्टल एंड टॉर्टोइस, वो भी 11 स्पीशीज अभी तक रिकॉर्डेड है। इन सबका सपोर्ट कौन करता है? अरावली। लेकिन वो आज की स्थिति में आपको ये सारा डाटा बता रहा हूं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, कमिंग टू पॉइंट, कि जो बदलाव है वो जब ये अरावली अपनी मूल संरचना में था, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान से लेकर के दक्षिण तक इसी तरह की माउंटेन सिस्टम थे, जो आज दक्षिणी राजस्थान और गुजरात से लगे एरिया में आपको अरावली के दिखाई देते हैं, राइट। हाई एल्टीट्यूड, बड़ी लंबी माउंटेन रेंजेस, कई किलोमीटरों तक जो पर्वत श्रेणियां हैं उस तरह की, ये जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लैंडस्केप तक इनका प्रसार उसी तरह से था, तब आप सोच सकते हैं कि यहाँ की जैव विविधता का कितनी प्रचुरता रही हो। और जो मैंने आपको बताया कि इसके पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के इसके ईस्टर्न बॉर्डर तक और वेस्टर्न में सहारा से लेकर के अरावली के वेस्टर्न बॉर्डर तक, ये दो बड़े इकोसिस्टम, बड़े ज्योग्राफिकल जोन की जो जैव विविधता थी, ये उनका कॉन्फ्लुएंस जोन, सम्मिश्रण जोन, यहाँ आकर के उनका वितरण मिलता था, ये उसका जोन रहा है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान करके कि आप उत्तर पूर्वी राज्य, जो आज बहुत सघन वन क्षेत्र से आच्छादित हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विशेष रूप से या वेस्टर्न घाट के, लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा कि वहां की जैव विविधता से ज्यादा डाइवर्सिटी हमारी अरावली की जैव विविधता में
0: जी।
1: क्योंकि ये दो बड़े बड़े ज्योग्राफिकल रील्स का कॉन्फ्लुएंस जोन बनती है और यही अरावली जो है वेस्टर्न पार्ट में जो डेजर्ट बन गया, सहारा, गल्फ का डेजर्ट और थार का मरुस्थल, जो पाकिस्तान और भारत, आज भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री पूरा थार उधर भी प्रसारित है, इसके फर्दर एक्सपांशन टूवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की तरफ इसके एक्सपांशन को ये अरावली ही रोक करके बैठा हुआ है। अब इसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, आज जो मैंने आपको मछली, मेंढक, कछुए, छिपकली, सांप, पक्षी, है ना, पानी के शैवाल, है ना, पादप प्रजातियां, इनकी जो स्थिति बताई और लाइव स्टॉक की जो स्थिति मैंने आपको बताई, आज ये हमारे अरावली के जो ज्योग्राफी में जो चेंजेस है, अब मैं आपको बताता हूँ उसका प्रभाव कहाँ आया। आज जब ये अरावली के पश्चिम में मरुस्थल नहीं था, तब यहाँ का पशुधन यहीं पलता था, लेकिन आज की स्थिति क्या है, जब इसके पश्चिम में जब शुष्क परिस्थितियां बढ़ रही हैं, तो उसके कारण बहुत सारी हमारे जो पशुपालक समुदाय हैं, पेस्टोरल जिनको हम कहते हैं पशुपालक समुदाय, वो इन पूर्वी अरावली के पश्चिमी क्षेत्रों में जब जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है तो ये अरावली से पूर्व की तरफ पार करके अरावली को मध्य भारत तक अपने पशुधन को ले जाते हैं हर साल। इनकी मजबूरी है क्योंकि यहाँ अरावली के पश्चिम में इनका पशुधन आज की तारीख में पूरी साल नहीं पल सकता है, उसका चारा खाना पानी वहाँ उपलब्ध आज नहीं हो पाता है। लेकिन आज भी ये पशुपालक जो मैंने आपको बताया कि बकरी, भेड़, ऊंट, गधे, घोड़े, खच्चर, इनकी संख्या में आज देश में अग्रणी है, लेकिन उसके बावजूद ये पशुपालक इन पशुओं को कैसे बचा के रखते हैं, ये एक मजबूरी है कि आज इनको देश के मध्य क्षेत्रों तक, मध्य भारत तक इनको लेकर के जाना पड़ता है। ये प्रवासन पहले नहीं था और ये प्रवासन की प्रवृत्ति जो है अभी भी बढ़ रही है, यानी आज भी। अब उसके कारण अब मैं अपने मुख्य उस पर आता हूँ कि जो बदलाव है, इस बदलाव से हुआ क्या हमारा, हमारे पशुधन का चारा तो खत्म हुआ और हमारी पशुपालक समुदायों को आज प्रवासन के लिए आज भी जाना पड़ता है, ये मजबूरी हो गई है। और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब ये हजारों लाखों का पशुधन हमारा मध्य भारत तक जाता है, आप क्या सोचते हैं कि ये पशुपालक जो है वो कहीं दर दर भटकते होंगे या ये कैसे कहाँ कहाँ पड़ाव डालते होंगे, कहाँ रुकते होंगे? ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ ये पड़ाव डालते हैं वहाँ लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे खेतों में जो अभी खाली पड़े हैं बुवाई से पहले, जब आप ये प्रवासन उसी काल में करते हैं, तो लोग कहते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे खेतों में पशु को बिठा लो, दो चार दिन यहाँ पड़ाव डाल लो। आप अंदाजा लगाएंगे ऐसा क्यों होता है?
0: क्योंकि पशुओं से ही फायदा होता है और जमीन भी उर्वरक बनता है,
1: यानी उनका जो एक्सक्रीटा है, उनका जो गोबर है वो वहां पर मुफ्त की खाद उन खेतों को मिल जाती है।
0: बिल्कुल,
1: ये एक बड़ा, ये आपस का जो मतलब ये जो एडजस्टमेंट है, ये हमारे पशुपालकों को का जो है जब ये प्रवास पर जाते हैं बड़ा उनको मिलता है। लेकिन हम इसे जो है अवसर ना देखें, हम इसको समस्या ही समझें, क्योंकि उनको प्रवासन जो करना पड़ता है, ये परिस्थितियां हम अब बढ़ती जा रही हैं, जिसको हमें रोकने की जो है वो आवश्यकता है। अरावली इकोसिस्टम में ही जो हमारी महत्वपूर्ण पादप प्रजातियां थी पहले, यहाँ पर के अरावली के जो फुटहिल एरिया और प्लेन एरिया थे और इनके चौड़े घाटी वाले जो एरिया थे जहां पर मिट्टी की मोटी लेयर होती थी, पानी रहता था, वहां पर महुआ के, चिरौंजी जिसको अचार भी कहते हैं, चिरौंजी के, महुआ के, बहेड़ा के, हरड़ के, तेंदू के, ये बीजा साल के, अर्जुन के, इनके बड़े बड़े जंगल थे, सीरीज किलोमीटरों तक इन पेड़ों की लाइनें रहती थी उन नमी प्रचुर एरिया में। और जो इनके हिल टॉप्स हैं उन पर कड़ाया, जो आप गर्मी में गम कड़ाया, कतीरा जो गोंद कहते हैं ना, जिसे पानी में भिगोते हैं, फूल जाता है, फिर उसे खाएं तो पेट में ठंडक रहती है, कतीरा गम कड़ाया कहलाता है, वो पेड़, कड़ाया का पेड़ अरावली के जो अपर स्लोप है जहाँ तेज धूप आती है गर्मी में, वहीं मिलता था। लेकिन हमने वो सब क्या किया, खत्म किया। आज हमारे ये सारे जो वृक्ष हैं, जो इनके फुटहिल एरिया में, मैदानी क्षेत्रों में या इनके ढलानों पर, इनके टॉप पर जो हमारे मिलते थे, जो महत्वपूर्ण पेड़ थे, वो हमारे पेड़ भी धीरे धीरे खत्म हुए। जब बड़े पेड़ खत्म हुए तो उनके साथ जो एसोसिएटेड मध्यम पेड़, बेलें, छोटी शाक भाजियां, हर्ब्स जिनको कहते हैं, झाड़ियां, इनकी डाइवर्सिटी में भी कमी आई है। और उसके साथ में जैसे नष्ट हुए तो वहां पर जो घुसपैठी अदेशज, यानी जो भारतीय लैंडस्केप में जो जिनका उद्गम नहीं हुआ है, विश्व के अन्य भागों में हुआ है, उनकी घुसपैठ बढ़ती जा रही है। इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो मध्य अरावली के भाग हैं, जयपुर, अजमेर, सीकर से लेकर के जयपुर, अजमेर, पाली, सिरोही, राजसमंद, यहाँ तक के जो मिडिल अरावली के भाग हैं, इनमें विलायती बबूल, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, और दक्षिणी राजस्थान में जो सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लगा इलाका, और ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद का जो इलाका है अरावली का दक्षिण, इसमें लेंटेना झाड़ी जो विश्व की 10 सबसे खतरनाक घुसपैठियों में से एक है सेंट्रल अमेरिका की, वो लेंटेना झाड़ी की घुसपैठ, उसके साथ में हिप्टिस सुआवियोलेंस एक घुसपैठी हर्ब जिसे वन तुलसी कह देते हैं, इत्यादि ये जो घुसपैठी प्रजातियां हैं वो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट के नष्ट होने के साथ साथ ये बढ़ती जा रही है। अब जो मैंने आपको बदलाव पहले कि हमारी बातचीत में भी मैंने आपको बताए कि हमारे जो बड़े बड़े एनिमल्स थे उनका कैसे यहाँ विनाश हुआ, उनके आवास नष्ट हुए, फिर उनके शिकारों के कारण जो उनका समापन हुआ, आज स्थिति क्या है कि हमारे राजस्थान में जो बचा है इन अरावली के सपोर्ट से, लेकिन बहुत सारी जो मानवीय दबाव है उसके कारण हमारे यहाँ पर ये जो बदलाव आ रहे हैं, नकारात्मक बदलाव, मानव जनित बदलाव, ये बड़े खतरनाक है। तो इन बदलावों में जो अभी जो आ रहे हैं वो है अवैध निर्माण, राइट, यानी हिल्स को मॉडिफाई करना। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, माउंट आबू के ऊपर जो नक्की झील है कितनी हाइट पर है आप सोचिए, देश की सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर माउंट आबू, और वहां गुरु शिखर से कुछ किलोमीटर नीचे रोड साइड में, मतलब कई कुछ मीटर अगर वर्टिकल एल्टीट्यूड देखेंगे तो कुछ मीटर नीचे, और सड़क मार्ग से देखेंगे तो कुछ किलोमीटर नीचे नक्की झील है। इतने ऊंचे पहाड़ पर, और ये केवल नक्की झील नहीं है, बहुत सारे गुरु शिखर तक और हाई पीक तक जाते हैं तो वहां रास्ते में जगह जगह बड़ी बड़े वाटर बॉडीज हैं। इतने ऊंचे पहाड़ में इतने बड़े बड़े जो वाटर रिजर्वायर हैं वो कैसे बने हुए हैं, है ना। दूसरी तरफ अगर हम उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और ये डूंगरपुर, हमारे राजसमंद, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों को देखें तो इनमें भी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, उनमें भी वाटर बॉडीज की संख्या गजब की है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो हिल रेंजेस हैं, इनके नीचे इनका जो चट्टाने हैं वो चट्टाने इतनी कठोर, इतनी सॉलिड है कि उनके ऊपर वो इतना बड़े बड़े जलाशय के वो सपोर्ट दे सकती हैं, उनके स्टोरेज को वो सपोर्ट दे सकती हैं,
0: राइट।
1: और इसी के कारण है कि हमारे इन जलाशयों के कारण हमारे अरावली इकोसिस्टम में, दक्षिण अरावली का एक और ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है।
0: जी सर, ये जो हरियाली की बात आप कह रहे हैं और पानी को जो स्टोर करके रखने की बात करें, नक्की झील जैसे 1200 मीटर अगर हम अबव द सी लेवल कहें तो उतनी ऊंचाई पर ये है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कई जगह पर अवैध निर्माण के कारण और मानवीय हस्तक्षेप के कारण, और कह सकते हैं हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी इन स्टेशंस को और बाकी जगहों को यूज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ आसपास की अगर हम बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात करें, जो आप बेसिन की बात कर रहे थे, तो एक जवाई और लूनी बेसिन की भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, और जिसको बचाने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत सोशल वर्कर लगे हुए हैं, इसके कारण आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, आपने जवाई का नाम लिया, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको वहां बताना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी जवाई क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ कि यहाँ पर तेंदुए बहुत रहते हैं, लेपर्ड्स।
0: जी, जी।
1: लेकिन जिन्होंने कभी जवाई जाकर के देखे तो एक होता है कि आपको वहां पर बढ़िया स्टे, लग्जरी, और दिन या रात में टॉर्च डाल के, रोशनी डाल के, कैसे भी आपको यथा संभव जो है लेपर्ड दिखा दें, बढ़िया खिला दें और आप पैसा फेंक के आ जाए तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक प्रत्यक्ष दर्शी के तौर पर वहां कुछ देखने के लिए जाएंगे तो वहां पर जवाई क्षेत्र में आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो पहाड़ियां हैं जहां जिन पर तेंदुए रहते हैं वो 40-50 किलोमीटर के विस्तार में

0: ज्यादा होना, पहली चीज आवास कहाँ है, दूसरा भोजन कहाँ है, तीसरी सुरक्षा कहाँ है। तो उसका एक बड़ा यूनिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जवाई क्षेत्र में अरावली का जो विस्तार है, भले ही चितराई चितराई पहाड़ियां हैं, ये असल
1: जी
0: में जो आपको दूर से पहाड़ी दिखाई देती है वो एक पहाड़ी नहीं है, यानी वो एक लैंड मास नहीं है।
1: जी
0: बड़े बड़े शिलाखंडों के टुकड़े हैं ढेर में रखे हुए, और ये ग्रेनाइट की फॉर्मेशंस है, ज्यादातर इनमें ग्रेनाइट की प्रचुरता है। यानी पृथ्वी के जब उद्विकास में, जब जो चट्टाने लावा के ठंडे होने से और उसके कायांतरण से बनी, और उनमें और उसके उससे जो ग्रेनाइट, जो हार्डेस्ट रॉक भी कहलाती हैं, उन बड़ी बड़ी चट्टानों के ये ढेर हैं। इन ढेरों को कहते हैं टोर, TOR, टोर। और इन बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेरों के ऊपर धीरे धीरे जो है वो धूल मिट्टी वनस्पति और उनके होने के कारण धीरे धीरे इनके बीच की जो दरारें फिल हो गई, तो आज आपको दिखता है पूरी एक पहाड़ नहीं,
1: जी
0: लेकिन आपको उसमें दिखता है छोटी छोटी गुफाओं में कहीं कहीं लेपर्ड अंदर घुस रहे हैं। हाँ, तो अपन सोचते हैं कि वहां छोटे छोटे पॉकेट होंगे, कहीं कहीं ये घुस के बैठ जाते होंगे, उनमें रेंग करके घुस के और बस उसमें रह रहे होंगे।
1: जी
0: ये पॉकेट अंदर इन चट्टानों के ढेर के बीच में इतने बड़े बड़े इंटर स्पेस है अंदर, जिसमें आप मतलब बड़े बड़े कमरे निकल जाए।
1: ओके जी
0: अगर आप माउंट आबू में अरबुदा देवी की पहाड़ी पर जाएं,
1: हाँ
0: एक
1: जी
0: स्थान में बता रहा हूँ,
1: जी
0: अरबुदा देवी की पहाड़ी है, रात में भी भालू आते रहते हैं और वहां मंदिर क्षेत्र में भी विचरण करते हैं। बड़ा प्रसिद्ध जगह है अरबुदा देवी का। उस मंदिर में खुद जब वहां जो विग्रह देवी जी का अंदर रखा हुआ है, उनमें भी उन चट्टानों के नीचे से खिसक करके अंदर जाना पड़ता, और अंदर आप देखिए, आप अच्छी खासी 15-20 फीट तक की हाइट का जो है वो वहां चैम्बर है जहां
1: जी
0: पर वो मूर्ति स्थापित है।
1: हाँ जी
0: ये एक समझने की बात है, एक एक एग्जाम्पल है कि जवाई क्षेत्र में भी, अरावली के वेस्टर्न पार्ट में, ये जवाई क्षेत्र में ये इतना इम्पोर्टेंट जो हैबिटाट, ये गर्मी में ठंडी रहते हैं पॉकेट्स और सर्दियों में गर्माहट में रहते हैं, और यहाँ पर लेपर्ड सुरक्षित रूप से अपना प्रजनन कर सकते हैं। रही
1: जी
0: बात खाने की, तो वहां का पशुपालक समुदाय इनके साथ में बड़े आराम से रहता है, क्योंकि वहां पर जो वन्य पशु हैं और पालतू भेड़ बकरी भी हैं, वो लेपर्ड उनको हंट करते हैं, और उससे उन पशुपालकों को कोई दिक्कत नहीं है। कारण कारण इसका बड़ा यूनिक है। ये माना जाता है कि यदि बकरियों के झुंड में, भेड़ों के झुंड में लेपर्ड के घुसने से, उससे जो पैनिक, उनमें डर और हार्मोनल एकदम इंक्रीज जो उनके अंदर होता है, उसके कारण वो बीमार नहीं पड़ते साल भर।
1: जी जी
0: उसी तरह से जैसे अरावली के कुछ भागों में, जिसमें हम अलवर की बात करें, वहां पर जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जहां पर पशुपालक भैंसे खूब पालते हैं, वहां पर भी यही है कि वो उनको समस्या नहीं होती कि जंगल में भैंस चरने गई और टाइगर ने और लेपर्ड ने मार दी। क्यों? क्योंकि उनका जो परंपरागत ज्ञान है उसके अनुसार उनका ये कहना है कि जब अन्य भैंसों के झुंड में, जब अन्य मादा भैंसों को जो ये पैनिक क्रिएट होता है उस टाइगर के अटैक या उसके कारण होने वाले भय के कारण, तो अगले सीजन में वो फीमेल काफ को ही जन्म देती। तो उनका ये कहना है कि साहब, हमारी तो एक भैंस मारती है तो चार पाड़ी जन्मती है। अब आप ये
1: जी
0: सोचिए कि ये जो जवाई का क्षेत्र है, ये अरावली इन लेपर्ड, एक जो हमारी आज बिग कैट्स में, यही मुख्यतः राजस्थान में बचा है, टाइगर तो बहुत थोड़े से रह गए हैं, इनको एक सुरक्षित हैबिटाट रिफ्यूज देने का काम करती है। माउंट आबू का जो इलाका है वो इन लेपर्ड के साथ साथ में भालू की बहुत बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट करता है।
1: जी
0: दक्षिण अरावली का जो भाग है वो इनको बड़ी संख्या में सपोर्ट करता है, और यही इसकी ब्यूटी है अरावली की, कि इसका जो फॉर्मेशन है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, चट्टानों का जो फॉर्मेशन है, बदलता हुआ जो फॉर्मेशन है, वो यहाँ जीव जंतुओं के आवास प्रदान करने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो हमें ये भी समझना चाहिए।
1: जी तो ये लूनी और जवाई बेसिन की बात आपने कही, वहां पे गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो भी समझते हैं इन चीजों को, और ये साइंटिफिक तरीके से उन्होंने समझा है। अगर हम पढ़े लिखे लोगों की बात करें और जो अभी राजस्थान के इस क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे माउंट आबू सिरोही के क्षेत्र में है और चाहे लूनी और जवाई बेसिन की भी बात कर ले, हम जाते हैं वहां देखने के लिए और वो एक टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन टूरिज्म के साथ साथ हमें और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? स्पेशली बोटैनिकल।

0: बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कुछ चीजें हैं, जैसे पहले मैं ध्यान दिलाता हूं आपका कुछ कुप्रथाओं के बारे में, परंपरागत कुप्रथाओं के बारे में,
1: जी
0: कि दक्षिणी राजस्थान में ये कुप्रथा बहुत ज्यादा है। यहाँ एक पेड़ मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पेड़ है, सेमल, बॉम्बेक्स सीबा, जिसका
1: जी
0: तना, उसकी आदत है कि वो सीधा ग्रो करता है। उस पेड़ पर छोटे छोटे कांटे भी लगते हैं, उस पर बड़े सुंदर फूल आते हैं, औषधीय महत्व भी है और हमारे हिल इकोसिस्टम का बड़ा महत्वपूर्ण पेड़ है।
1: जी
0: लेकिन उस सेमल को हमारे यहाँ होली में, होलिका का जो स्तंभ बनता है उसे बनाने के लिए काटा जाता है, और ये होड़ रहती है कि सेमल का ही स्तंभ लगाएं। सवाल ये है कि पूरे देश में जहां सेमल नहीं है, अरावली उत्तर से लेके दक्षिण तक, बाकी के अरावली में, मध्य में और उत्तर में कहीं सेमल नहीं है, या चित्र कहीं कहीं इक्का दुक्का होगा, वहां पर होली का स्तंभ कैसे लगता है? ये कहीं प्रिस्क्राइब भी नहीं है धर्म में कि सेमल का स्तंभ लगाएं। ये एक जो बैड हैबिट है, इसने सेमल की पॉपुलेशन को अरावली से खत्म कर दिया। एक कुप्रथा है कि होली के पहले, मतलब होली के पहले के साल में कभी भी, ये मान्यता मानना, दक्षिण राजस्थान के कई इलाकों में जो है वो ये कुप्रथा प्रचलन में है, कि मेरी ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं मगरा बावजी यानी हिल गॉड को पीलिया पीलिया चढ़ाऊंगा। ये पीलिया चढ़ाना क्या होता है, मैंने जो मन्नत मांगी वो पूरी हो गई तो मैं हिल टॉप पर जाऊंगा, उस अमुक हिल टॉप पर जाकर के मैं पीला कपड़ा चढ़ाऊंगा, अगरबत्ती लगाऊंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, मेरी मन्नत पूरी करी मगरा बावजी आपने, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको अग्नि स्नान कराऊंगा, यानी मैं नीचे आकर के और उस मगरा बावजी को आग के हवाले कर दूंगा, अग्नि स्नान।
1: जी
0: ये जो कुप्रथा है, ये हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अरावली का जो यूनिक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसको बड़ा तेजी से नष्ट कर रही है ये कुप्रथा। ये जो सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग है, जैसे कड़ाया खत्म कर दिया हमने जंगलों से, एक पेड़ होता था खिरनी, राइटिया टिंटोरिया, उसकी लकड़ी से खिलौने बड़े अच्छे बनते थे, कार्विंग उसमें बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन ओवर एक्सप्लोइटेशन ने उस पेड़ को समाप्त करके रख दिया। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्वाद है कि हमें सीताफल स्वाद में बड़ा अच्छा लगता है, आप इसके नाम पर मत जाइए, फल के नाम पर मत जाइए, किसी भी धर्म से मत जोड़िए, ये सेंट्रल अमेरिका का ओरिजिनेटेड प्लांट है और ये बड़ी घुसपैठी प्रवृत्ति का है, इसके पत्ते बकरी भी नहीं खाती है, इसकी झाड़ियों में कोई पक्षी निवास भी नहीं करते हैं, और ये पारिस्थितिकीय जो विकास होता है उसमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जो हमारे मॉस और फर्न है, उनके डेवलपमेंट का सबसे बड़ा अवरोधक है, और ये गजब का घुसपैठिया प्लांट है जो आज हमारे स्वाद के कारण अरावली के इकोसिस्टम में फैलता जा रहा है, क्योंकि हम इसे
1: बिल्कुल
0: पसंद करते हैं खाने के लिए, और इसलिए ये जंगलों में बहुत बेतहाशा रूप से हमारी नेटिव जो सैकड़ों दर्जनों दूसरी प्रजातियां हैं उनको हराता हुआ ये प्रसारित होता जा रहा है। जिस तरह से अरावली इकोसिस्टम जो है वो हमारे यहाँ के पहाड़, जहां पर बर्फ नहीं है लेकिन फिर भी ये पहाड़ बरसात में पानी पीते हैं, और उसके बाद भी ये जो मॉइस्चर को रिटेन रखते हैं, क्योंकि उनकी रॉक्स ऐसी हैं जिसमें जियोलॉजिकली बाउंड वाटर, इनके अंदर चट्टानों के बीच में जो जगह है उनमें जो भरा हुआ पानी है, उसके कारण हमारे यहाँ साल भर बहने वाले झरने इन्हीं अरावली में पाए जाते हैं। आप सोचें कि वो साल भर बहने वाले झरने, ये जो नदियां हैं, बनास नदी, ये कहाँ से निकलती है, कुंभलगढ़ के एरिया से निकलती है, ईस्ट बनास और वेस्ट बनास दोनों तरफ में इसके जो शाखाएं जाती हैं, एक बंगाल की खाड़ी में पानी जाता है, एक अरब सागर में जाता है, इसमें साल भर पानी कहाँ से फीड होता है, कहाँ से आता है, कोई बर्फ के पहाड़ थोड़ी जमे हुए हैं। हमारे जो इन अरावली इकोसिस्टम से जितनी सारी नदियां निकल रही हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, चंबल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, बाणगंगा का कहाँ से हो रहा है, लोनी का कहाँ से हो रहा है, गग्गर का कहाँ, ये सब जो नदियां हैं, इन नदियों का उद्गम इन अरावली पर्वतमालाओं में संचित होने वाले जल से है, ये उसी से फीड होती है, और ये इन पहाड़ियों पर जो पाई जाने वाली जो वनस्पति है, जो हमारी नेटिव वेजिटेशन है, जो प्रकार है, टॉप से लेके बॉटम तक और प्लेन तक, इन वनस्पतियों में आपस में जो तालमेल है, इनकी जड़ों के साथ में जो फंगस कवक जिसको हम कहते हैं, वो एक एसोसिएशन में रहता है, जैसे माइकोराइजा कहते हैं, एक प्रजाति का माइकोराइजा दूसरी प्रजाति के माइकोराइजा के साथ में भी तालमेल करके किलोमीटरों तक ये फंगस, बड़ी बारीक कवक के तंतु जो हैं, ये किलोमीटरों तक से पानी और न्यूट्रिएंट ला करके इन पेड़ों को देते रहते हैं, और अरावली के जो नॉन ग्लेशियल ये पहाड़ हैं, जहां पर साल में आधे से ज्यादा सूखा और गर्म रहता है, तब भी ये सघन जंगलों से, हरे भरे जंगलों से दक्षिण अरावली जो है वो भरी रहती है। यही मध्य अरावली के उन क्षेत्रों में भी है जहां पर अभी भी जंगल बचे हुए हैं, तो वो अपना खुद से सर्वाइवल कैसे करते हैं, उसमें अरावली का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात। जो जवाई का या जो लूनी का जो बेसिन आज जो खत्म हुआ हमारे कारण, पहले लूनी बेसिन जो है ये सरस्वती नदी का एक महत्वपूर्ण पार्ट था, हिमालय से जो फीड होने वाली नदियां थी उनके साथ में राजस्थान से, अरावली से ओरिजिनेट होने वाली लूनी नदी ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाती थी, लेकिन आज ये बरसाती नदी बन के रह गई। उसका नुकसान क्या हो रहा है? आज हमारे पशुपालक सब पलायन कर रहे हैं। आग लगाने से क्या हो रहा है कि हमारे अरावली के जंगल सूख रहे हैं, जल रहे हैं। उनसे जो ओरिजिनेट होने वाले नदियां हैं, झरने हैं, साल भर जो जल धाराएं फूटती थी, समाप्त हो रही हैं। मॉइस्चर घट रहा है, हीट बढ़ रही है। उसके साथ हमने इन पहाड़ों को खोद खोद करके अपने हित के लिए हमने उन पर बड़े बड़े भवन बना दिए, बहुत सारे पर्यटन स्थल बना दिए। अपनी मर्जी से हम उनका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उन पहाड़ों का। डेवलपमेंट के कई तरीके हो सकते हैं, सघन वन क्षेत्रों से ऊपर के होकर के एलिवेटेड रोड बन सकते हैं, लेकिन उन्हीं सघन अरावली के जंगलों को काट करके, पहाड़ों को काट करके राजमार्ग निकाले जाते हैं एलिवेटेड रोड के बारे में सोचने की बजाय। ये बड़ी विचलित करने वाली परिस्थितियां जो है वो जो बन रही हैं, इसके कारण अरावली इकोसिस्टम बहुत बड़े थ्रेट में है, खतरे में।
1: जी सर, जैसे शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है ना, फिर लूनी जवाई है, फिर शेखावटी वाला है, फिर जो घग्गर कहते हैं, तो इन सब में जो आपने टोटली बदलाव के बारे में बोला है, लेकिन इन सब में हमें क्या योगदान देना है, ये क्षेत्र और शुष्क
0: हाँ,
1: ना हो जाए।
0: जो हमारे 5वीं 6ठी कक्षा से जो हमारे भूगोल पढ़ाया जाता है ना,
1: जी
0: वो भूगोल हमें किताब में पढ़ाया जाता है। आप
1: जी
0: याद करें, क्या आपको कभी भी स्कूल समय पर भूगोल आपको पढ़ाया गया? क्या आपको आसपास के एरिया में भी ले जाके भूगोल दिखाया गया?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, कायांतरित चट्टाने आपको पढ़ाई गई, आपने कभी देखी?
1: नहीं,
0: आप जहाँ रहती हैं वहां पर मिलने वाली चट्टानों को क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकती हैं कि आग्नेय है, कायांतरित है या अवसादी है? मैं आपको कहूँ कि माउंट आबू में जो ज्यादातर चट्टाने, जो पर्वत श्रेणी है सब बनी हुई है, ये अभी भी इनमें अवसादी चट्टानों का बाहुल्य ज्यादा है, कायांतरित चट्टानों का बाहुल्य कम है। और माउंट आबू का, गुरु शिखर, ये पूरा एरिया भी धीरे धीरे अभी और सेटल होगा, ये खिसकेगा,
1: जी
0: खलन होंगे।
1: जी
0: ठीक है, तो ये जो मैं आपका ध्यान क्या करें, उसके पहले जरूरी है कि हमारे दिमाग में, हमारे ज्ञान में, हमारी नॉलेज में इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को
1: थोड़ा
0: समझाएं,
1: और
0: भरा
1: बेहतर होगा।
0: भरा जाए।
1: जी
0: इतिहास आप पढ़ती हैं, आहड़ सभ्यता आपने पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता और ये सब आपने पढ़ी, कभी कोई अटेम्प्ट आपने देखा हो स्कूल जीवन में या हिस्ट्री में? जब आपने ग्रेजुएशन भी किया हो, मैं गारंटी देता हूँ ग्रेजुएशन तक में भी, एमए तक में भी, कई जगह, ज्यादातर जगह कोई हिस्टोरिकल प्लेस ले जाकर के आपको बताया गया हो और उसकी हिस्ट्री पे आपको डिसर्टेशन करने के लिए बोला गया हो स्कूल में, कोई प्रोजेक्ट या कॉलेज में? नहीं होता। हमारे हिल स्केप्स को देखना, समझना, वहां के इकोसिस्टम्स को समझना, यानी अब जंतु विज्ञान विषय में हम केवल जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जंतु के आवास के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जंतु जिन पादप प्रजातियों पर निर्भर होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जंतु के भीतर जीवन को प्रभावित करती है उसकी बायोलॉजी को कहते हैं उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे।
1: जी
0: उसी तरह से पादप विज्ञान में भी यही कहानी होती है, उसी तरह से भूगोल में होती है, उसी तरह से इतिहास में होती है, उसी तरह से समाजशास्त्र में होती है कि आप समाजशास्त्र में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, इन सभ्यताओं के बारे में पढ़ लेंगे। मानव सभ्यताएं थी, क्या पहनते थे, ओढ़ते थे, क्या करते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि उस समय उनका जो नेचुरल बायोडायवर्सिटी थी वो क्या थी, इनका वहां पर सेटलमेंट वही वही अमुक जगहों पर क्यों डेवलप हुए थे। तो जो हमारा रोल है वहां से शुरू होता है कि हम हमारे जो स्कूल क्यूरिकुलम है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो क्यूरिकुलम है, इनमें इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जो है वो बढ़ाएं। ठीक है, बच्चों को ज्ञान लेने के लिए कॉन्टेक्स्ट दें, स्पून फीडिंग ना करें, रॉट लर्निंग ना करें, रटाने की कोशिश ना करें। मैं आपको और बड़े आत्मविश्वास से मैं आपको ये बता रहा हूं कि आयुर्वेदाचार्य जो औषधियों के बारे में ज्ञान रखते हैं, वे उस औषधि पादप को पहचानना और उसका जो भौगोलिक वितरण है वो किस हैबिटाट में मिलेगा वो नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जो जानते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ
1: जी,
0: लेकिन अधिकांश परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपने भूगोल पढ़ा और आपके सामने जो है आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आपने वनस्पति विज्ञान पढ़ा है लेकिन आपको सामने जो फ्लोरा दिख रहा है कहीं आप जा रहे हैं तो आप उन स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम ध्यान नहीं देते, हरा हरा देखते हैं। तो ये जो चीज हम क्या कर सकते हैं, इस ज्योग्राफिया को समझना आवश्यक है। बच्चों को हम वहां ले जा करके उन चीजों के बारे में बताएं, समझाएं, अपनी हिस्ट्री को जाने, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इकोलॉजिकल हिस्ट्री जो कहलाती है, इनको हम जानने समझने की कोशिश करें। इकोसिस्टम लेवल पर हम भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, उसके साथ में जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, उनको उस पर समझने की कोशिश करें, इकोसिस्टम के लेवल पर, राइट। आप उनको टुकड़ों टुकड़ों में करके समझने की कोशिश न करें। यदि ये करेंगे तो फिर हम लोगों को ये समझ में आएगा कि आज हम हमारे घरों के बाहर जो अच्छा दिखने वाले सौंदर्यात्मक एक्जोटिक प्लांट लगा रहे हैं हम वो नहीं लगाएंगे। हमारे जंगलों में जो विलायती बबूल, लेंटेना झाड़ी और ऐसी दर्जनों घुसपैठी प्रजातियां बढ़ रही हैं, ये कुछ प्रजातियां हमारी दर्जनों सैकड़ों अन्य देशी यहाँ की प्रजातियों को जो खत्म कर रही है, तो हमको समझ में आएगा कि क्या इन दो चार घुसपैठी प्रजातियों से फिर हमारा इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ये जो नॉलेज है, ये जो नॉलेज है, दूसरी चीज ये तो देखिए प्रशासनिक निर्णय लेने होंगे कि यदि आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आप इको फ्रेंडली डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते, आखिर उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच सकते, राइट। सघन वन क्षेत्रों से होकर के पहाड़ों को काट के राजमार्ग निकालने की बजाय आप एलिवेटेड रोड और टनल, उनके बारे में ज्यादा क्यों नहीं सोचते, है ना। इसका बहुत बढ़िया मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके राजस्थान में हमारे मावली एक जगह है, इधर उदयपुर चित्तौड़ के बीच में, वहां से आपके पाली मारवाड़ स्टेशन है वहां तक ट्रेन चलती है। और ये ट्रेन जब मावली से होकर के यहाँ एक जगह है राजसमंद जिले के पास में गोरम घाट, और उसके पहले कामली घाट स्टेशन पड़ता है। ये जो कामली घाट स्टेशन है उसके बाद कुंभलगढ़ सेंचुरी का बड़ी बड़ी ऊंची और गहरी गहरी घाटियों वाला सघन वन का क्षेत्र आता है मारवाड़ से पहले। तो यानी कामली घाट से मारवाड़ के बीच में ये बड़ा सघन वन क्षेत्र है। आप जानते हैं वहां पर रेलवे लाइन ब्रिटिश टाइम की डाली हुई है। कैसे डाली है? वहां पर करीबन आप समझ लीजिए कई दर्जन तो छोटे बड़े पुल है जिन पर से पटरी निकाली हुई है, जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया है, ठीक है। चार पांच बड़ी टनल है और 10-12 छोटी छोटी टनल है जिनमें से होकर के रेल निकल जाती है। ऊपर नीचे चारों तरफ सघन जंगल ज्यों का त्यों इंटैक्ट है। बरसात के सीजन में और पोस्ट मानसून सीजन में कामली घाट से और इस जंगल के बीच में एक स्टेशन आता है गोरम घाट, वहां तक जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये भीड़ क्यों उमड़ती है? वो केवल मजा, हरा बहते हुए बड़े ऊंचे झरने वहां गिर रहे हैं उन पहाड़ों में, अब बह रहे हैं, हरियाली हो रही है, और गोरम घाट स्टेशन पर उतर के घने जंगल में उतर गए, झरने में नहाने उतर गए, वापस आ रहे हैं। यानी इस रेलवे लाइन का महत्व आप समझ सकते हैं, ये रेल लाइन किस सोच के साथ में कितना इको फ्रेंडली तरीके से डाली गई। ये चीज हमने अरावली के संदर्भ में, अन्य क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? राजमार्गों के बारे में हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? राजमार्गों के निर्माण में भी जब हमारे इकोसिस्टम, ये अरावली, हमारे वन्य जीव रहते हैं मैडम, हर साल हमारे सैकड़ों जीव जंतु रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: दर्जनों हमारे तेंदुए, हमारे जो छोटे जानवर हैं, सेही हैं, तेंदुए हैं, जंगली बिल्लियां हैं, बिच्छू हैं, सांप तो अनगिनत, छिपकलियां तो अनगिनत, आप समझ लीजिए ये मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। इसके साथ में हमारे जो डियर एंटीलोप्स हैं वो भी मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि इनके वितरण के क्षेत्रों के बीच बीच में आपने क्या करा, चौड़े चौड़े सड़क मार्ग बना दिए। अरे तो इनके लिए अंडरपास या ओवर ब्रिज आप नहीं बना सकते थे क्या? वो डाइवर्सिटी, उसको वहां पर रहने का हक नहीं है क्या? ये जो एक हिल माउंटेन इकोसिस्टम है जिसके साथ में हमारे दूसरे सारे जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी जुड़ी हुई है, क्या इसके अंदर हम ऐसे डेवलपमेंट करेंगे जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दे? तो वो डेवलपमेंट हमारे किस काम का? एक सीमा भी होनी चाहिए कि हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में भले ही आपके पर्यटन स्थल हो, भले ही आपके निवास स्थल हो, भले ही आपकी कमर्शियल एक्टिविटी हो, एक लिमिट के बाद में आगे उनका फर्दर एक्सपांशन नहीं होगा। एक लिमिट हो कि इसके अलावा इतने क्षेत्रफल से ज्यादा और ज्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और झुंझुनू सीकर तक अरावली की हालत हो गई है, वो दक्षिणी अरावली तक बहुत जल्दी हो जाएगी। जो मैंने आपको लास्ट बात में भी कहा था कि ये बहुत जल्दी हो जाएगी, ये कितना जल्दी हो जाएगी, ये बड़े जानलेवा जो बदलाव है हमारे खुद के कर्मों से, इसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। जिस गति से हम जो विनाश कर रहे हैं अरावली का, तो ये स्थिति कुछ सालों में ही हो सकती है, दशक भी ना लगे इसमें, और ये हम इसका खामियाजा बस फिर भोगने के लायक रह जाएं, क्योंकि ये रिवर्ट बैक वो परिस्थितियां लाने में फिर तो हमको शताब्दियां लग जाएंगी।
1: जी सर, बिल्कुल। हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसे टूरिज्म का बढ़ावा हो रहा है और आपने जिक्र किया कि रास्तों के कारण जब जानवर रास्तों में आ जाते हैं, या फिर कई बार हमारे
0: डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट
1: डेवलपमेंट के कारण, और कई बार रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी है, हम जानवरों को रास्ते में खाना भी खिलाते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें पुण्य जमा होता है, तो इस प्रकार से भी हम उनको हानि पहुंचा रहे हैं, हम उनके पास जाकर के भी उनको हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे जवाई में हम देखने जाते हैं तेंदुआ, लेकिन टॉर्च डालते हैं, फिर लाइट जलाते हैं रात को, तो वो भी हम सभी जानते हैं कि जानवरों के लिए सही नहीं है। और इसके साथ साथ अगर शुष्क की बात कर रहे हैं, मरुभूमि के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो बहुत कम समय में ये विस्तार हो सकता है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो किन किन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है?
0: देखिए, ये एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि ये समझ बढ़ाने में शुरुआत होती है हमारे घर से।
1: जी,
0: क्योंकि आज जो माता पिता की आज की जो पीढ़ी है, यानी जो 40 साल, 50 साल और 60 साल तक के भी माता पिता हैं, खुद उनके दिमाग से जो परंपरागत ज्ञान और अपनी जो इकोलॉजिकल हिस्ट्री है, पारिस्थितिकीय इतिहास, जियोलॉजिकल भूगर्भीय इतिहास, चट्टानों की बनावट, जो भूगोल उन्होंने देखा बचपन में, खेला, पले बड़े, पुश्तैनी मकान, जमीन जायदाद जो भी उनका रहा, वो आज 50-60 साल तक की जो माता पिता की पीढ़ी है, उनके दिमाग से ये चीजें लुप्त तो हो रही है। उसका इफेक्ट पड़ रहा है कि आने अब उनके छोटी जो जनरेशन है, युवा और बच्चे, इन सबके दिमाग से ये ज्ञान जो है वो निकल रहा है। सब्जेक्ट हो गया है स्कूल कॉलेज में केवल पढ़ने और पास होने के लिए, और पढ़ कर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पास हो गए, फॉर एग्जाम्पल आप IAS बन गए और आप कलेक्टर बन गए, तो आप तो होशियार हो गए, आप पढ़ के पास होके आए हैं, और जो उसको पास नहीं कर पाए वो तो मौत हो गए, क्यों? आप कलेक्टर बन गए तो आप होशियार हो गए, और वो कलेक्टर, अब आप ये बताइए कि वो कलेक्टर अपने किसी सलाहकार के कहने से या अपने फायदे को ध्यान में रख करके आपके लैंडस्केप में हजारों की संख्या में तंजानिया, अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र का कोनोकार्पस पेड़ ला करके आपके यहाँ पर ठोक दे, लगवा दे, बहुत आया इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन करके, और विरोध करने वालों को जेल में सड़ा दे, थानों से उनको धमकी दिलवा दे, या उनको दूसरे तरीकों से जो है वो चुप कर दे, तो आप उस ज्ञान का क्या कहेंगे? क्या वो व्यक्ति ज्ञानी हो गया और होशियार हो गया और देश और समाज के लिए लाभदायक हो गया? नहीं होगा। यदि पारिस्थितिकीय दृष्टि से देखेंगे तो वो सबसे बड़ा शत्रु हो गया। आज मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं राजस्थान वन विभाग के साथ 25 साल से मेरे रिलेशन बने हुए हैं, मैंने ऐसे ऐसे अधिकारी देखे हैं, और उनमें मेरे गुरु भी हैं, एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश शर्मा, जिनसे आप किसी भूगोलिक क्षेत्र का नाम लो, वहां का प्लांट, एनिमल, सब कुछ वो बिना देखे भी बता देंगे, उनको इतना ज्ञान। लेकिन जो नए IFS पास करके आए हैं, उन्होंने अपने इच्छित विषयों में किसी में भी, इंजीनियरिंग में, मैथ्स में, एग्रीकल्चर साइंस तक में, फॉरेस्ट्री तक में उन्होंने पास किया होगा, और वो सब्जेक्ट लेकर के उन्होंने जो है वो IFS पास कर लिए, लेकिन जब उनका पाला फील्ड में पड़ता है, ड्यूटी में, फील्ड ड्यूटी में, जंगल में वनों को बचाना और वन्य जीवों को बचाने में ड्यूटी करने में उनका पाला पड़ता है, तो बड़े आश्चर्य की बात होती है कि जो महाशीर मछली स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, बहते पानी के पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण, एक बड़ी महत्वपूर्ण मछली थी राजस्थान के सभी तरह के जलाशयों, ऊंचाई वाले, नीचाई वाले, नदियों में सब जगह जो मिलती थी महाशीर, वो महाशीर को बचाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है? 2 फीट के एक्वेरियम में उसके बीजों को पालना। आप सोचिए इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू उनके जो पारिस्थितिकी प्राकृतिक तालाब झील हैं, वहां पर भी उनके लिए छोटे एनक्लोजर बना करके, केज बना करके वहां के उनको बीजों को पालना, उनकी संख्या बढ़ाने तक की सोच नहीं रही। आप समझिए कि कैंपा प्लांटेशन के नाम पर, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के नाम पर जो है, जिन हिलस्केप में, जिन पहाड़ी क्षेत्रों में, जिन मैदानी क्षेत्रों में जो प्रजातियां नहीं पाई जाती वो बेतहाशा लगा दी गई, ये समझ कहाँ चली जाती है? ये समझ केवल प्रशासनिक निर्णय, सलाहकारों की बातें मानना या ऊपरी निर्णयों को मान करके उनका पालन करने तक रह जाती है, उसमें जो ज्ञान है उसका पूरी तरह से सफाया हो जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है परिवारों से, हमारे संस्कारों से, हमारी जो परंपरागत रीति रिवाजों से, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी पीढ़ियों को और खुद भी हम नेचुरल एरियाज में जाएं, देखें, इन पहाड़ों को देखें, इन मैदानों को देखें, अरावली के विभिन्न भागों में जाकर के देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि अजमेर, जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इधर लगा हुआ इधर का इलाका, वहां पर ही गढ़ और किले बने, तो दक्षिणी राजस्थान में माउंट आबू के इलाकों में ऐसी ऊंचाइयों पर बड़े बड़े गढ़ और किले क्यों नहीं बन पाए, हमें सोचना पड़ेगा। तो ये जो ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये जो नदियों के बहाव, नदी घाटियां जो अरावली से नॉन ग्लेशियल नदियां जो इतनी, जिनका उद्गम है, जब हम इन जंगलों को जला देंगे या इनमें हम बड़े बड़े हमारे आमोद प्रमोद के स्थान बना देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, लोगों को आर्टिफिशियल वाटर बॉडी में वाटर पार्क बना करके वहां मौज मस्ती करवाएंगे, तो आप कब तक इस पानी को मेंटेन कर पाओगे, कहाँ से लाओगे? और उसके साथ में आपकी जो माइक्रोक्लाइमेटिक परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, वहां जो हीट बढ़ रही है, वहां जो सूरज की पराबैंगनी विकिरणों की तीव्रता बढ़ रही है, वहां का जो पूरा नेचुरल साइकिल है, इकोसिस्टम की सेवाएं वो सब जो खत्म हो रही है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, जिन मधुमक्खी, तितली और इन छोटे छोटे कीटों की दया से हमारे फसल और पेड़ पौधों पे फल बनते हैं, वो पॉलिनेटर हमारे खत्म होते जा रहे हैं, उनके निवास हम नष्ट करते जा रहे हैं, तो हमारा क्या हश्र होगा? मेरा यही कहना है कि जितना ज्यादा हम इस ज्ञान को लेने के लिए परिवारों से ये प्रयास शुरू करेंगे कि जब परिवारों के स्तर पर घरों के सामने वे पेड़ पौधे लगाए जाएं जो आपको फल, फ्रूट, आश्रय, पक्षियों को, जीव जंतुओं को आश्रय देते हों, जो आपकी देशज प्रजातियां हों, नेटिव स्पीशीज हों, वो बहुत सारी प्रजातियां लोगों को बड़ा एक बड़ी तकलीफ है कि हमारे यहाँ पतझड़ के मौसम में कुछ प्रजातियां, पूरे राजस्थान की सारी प्रजातियां पत्तों को नहीं चढ़ाती गर्मी में, ठीक है, लेकिन ये बड़ा भ्रम है कि वो प्रजातियां पत्ते झड़ा देती हैं, तो ऐसे पेड़ मत लगाओ। अरे 10 दिन में, 15 दिन में उनमें फिर से कोपल आ जाती हैं और फिर से वो पूरे के पूरे छा जाते हैं। आपको 10 दिन का, 15 दिन का साइकिल तक वो मंजूर नहीं है, ऐसी सोच को त्याग दो, ऐसी सोच को मत रखिए। आपके घरों के बाहर आप ऑर्नामेंटल प्लांट, वो भी एग्जोटिक, आप वहां लगाएंगे तो ना तो आपके पहाड़ बचेंगे, ना आपके मैदान बचेंगे, आप के जो खाने पीने की जो उत्पादन है इन नेचर से जो हमें मिलती है चीजें, वन उत्पाद जो आज आपको मिलते हैं, नेचुरल एरिया से भी हमको जो हजारों लाखों टन में जो उत्पाद मिलते हैं वो बड़ी तेजी से कम हो जाएंगे और हम केवल मैदानी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड वेराइटी के गेहूं को उगा करके और उसकी बनी डबल रोटी को खा के जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो ये ज्ञान जो है, इसका जो ज्ञान को आत्मसात करना, ज्ञान को जानने का प्रयास परिवारों से शुरू होना चाहिए, आपके घरों से शुरू होना चाहिए कि आपके गमले में आप गुलाब लगाइए, गेंदा लगाइए, आप मोगरा लगाइए, आपको जो अच्छा वो लगाइए, लेकिन अगर आप एक गमले में थोड़ा धनिया बो दें तो वो आपको जब भी सब्जी दाल आप बनाएंगे तो उसमें डालने के लिए आपको ताजा शुद्ध धनिया आपको उपलब्ध होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: आप अपने घर में थोड़ा सा पालक बोलें, थोड़ा सा आप मेथी बोलें, तो क्या ये आपको फायदा नहीं देंगे? या आप ये चाहेंगे कि जो प्लांट केवल देखने में अच्छा लगता है और एग्जोटिक वैरायटी हो, वो भी लोकल वैरायटी ना हो, आप उसे लगा लेंगे तो अब आपको उससे क्या मिल रहा है? बाकी का धनिया, पुदीना, मेथी, पालक तो आप लेने बाजार जा रहे हो और आपकी जो कमाई है उस पर खर्च हो रही है, तो उससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो ये जो छोटी छोटी छोटी छोटी सोच है, ये सोच जो है परिवारों से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि परिवारों से ही पढ़े लिखे बच्चे पैदा होते हैं, परिवारों से ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, और परिवारों से ही वो फिर बाद में प्रशासनिक अधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो उनके दिमाग में वो संस्कार परिवारों से जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो फिर आने वाले अधिकारी हमारे जनप्रतिनिधि वो वही करेंगे जो आज 40-50 साल तक के लोग कर रहे हैं, और जो नए आ रहे हैं पढ़े लिखे लोग उनमें जानकारी का नितांत अभाव है, और वो आधी अधूरी जानकारी के साथ मन मर्जी से वो करेंगे जो उनके लिए आत्मघाती होगा। इस आत्मघात को रोकने का तरीका है अब परिवारों के स्तर से प्रयास करना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, परिवारों के स्तर से प्रयास करना, ताकि आपकी पीढ़ियां ऐसे ही ज्ञान के साथ में आगे की तैयार हो सके। रही बात स्कूलों की, हमारी शिक्षा प्रणाली की, उसमें मेरा एक निवेदन है हमारे शिक्षकों से कि इस पेशे में आने का कारण पैसा कमा करके घर में एसी लगाना, गाड़ी खरीदना, प्लॉट खरीदना, जेवर खरीदना और अपने बच्चों को दूसरे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना या बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाना और अच्छी खासी पे स्केल लेना, ये पेशा शिक्षक का तो नहीं है। तो कैसे शिक्षक बने? आपके विषय को बच्चा बाहर प्रैक्टिकल तरीके से उस विषय को अप्लाई कर सके, तब तो शिक्षा का उद्देश्य सफल हुआ। लेकिन जब वो बच्चा जिस विषय को पढ़ के आगे पास हुआ, दुर्भाग्य की बात है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक डॉक्टरेट किया हुआ बच्चा भी जब बाहर गया और वो अपने सामने अपने विषय से संबंधित चीजों को देख के रिलेट नहीं कर पाता है, इससे ज्यादा बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। तो ऐसी शिक्षा देने की बजाय वो शिक्षा दी जाए जो मैं शिक्षक रहा हूं, 10 साल कॉलेज के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, एमएससी करवाई है। आज मेरे बच्चों ने झुंझुनू जिले के अंदर 1048 हेक्टेयर का जंगल, सेल्वेडोरा पीलू का जंगल था, छिन्न भिन्न खंड खंड हो रहा था, मानवीय दबाव से नष्ट हो रहा था। मेरे बच्चों ने उस पर अनुसंधान कर करके, मेरे एमएससी के बच्चों ने उसको संरक्षित करने में रोल किया। आप सोचिए, आज वो कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है, वहां पर ब्लैक बक और चिंकारा, काले हिरण और चिंकारा जो है वो छोड़े जा रहे हैं। वो 1048 हेक्टेयर का जंगल जो है वो हमने शहर से लगा हुआ झुंझुनू बीड कंजर्वेशन रिजर्व है, वो एक एग्जाम्पल, यानी प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाली बात है ना, कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर न घनेरे। पर उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन जो स्व आचरण में नहीं लेते लेते हैं वो लोग बहुत कम होते हैं। आज हमने उत्तर पूर्वी राजस्थान झुंझुनू जिले में पीलू जैसे महत्वपूर्ण पेड़ का जंगल आपको दे दिया, और वहां पर ब्लैक बक, चिंकारा, स्पाइनी टेल लिजार्ड, सांडा और रेड सैंड बोआ, दो मुही सांप, घोड़ा पछाड़ सांप जिसको रॉयल स्नेक भी कहते हैं, इन सब का हैबिटाट, जाऊ चूहा, जंगली बिल्ली, इन सब का हैबिटाट हमने आपको दे दिया। जो सब्जेक्ट पढ़ा उसको अप्लाई किया, ठीक है। तो यही अगर इस तरह की और आपकी अपनी विशेषज्ञता से और अच्छे प्रयास आप करें, ऐसे प्रयास करें जो आपकी आने वाली पीढ़ियों भी उस ज्ञान को लेकर के काम में ले सके, ऐसे मॉडल बनाएं। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, तो हमारी पारिवारिक शिक्षा और हमारी औपचारिक शिक्षा, इन दोनों में ये इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बाकी जैसे ये ज्ञान ऐसे बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा, तो जरूर फिर जब निर्णयकर्ता हमारे बच्चे होंगे, डिसीजन मेकर बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, तो वो उचित निर्णय ले पाएंगे। ये मेरा अंतिम इसमें अरावली को बचाने के लिए मेरा कथन।
1: थैंक यू सो मच सर। और जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिकल हम क्या कर रहे हैं समझने के बाद, और प्रैक्टिकल अपने देश को, अपने एरिया को, अपने लोकल जो एरिया है, जैसे आपने कहा पत्थरों को पहचानो, मिट्टी को पहचानो, और जो लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो आप शिक्षा को वो प्रैक्टिकल रूप से आप कार्य में लगाएं और उसे पहचानें। और सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा, हमें मैदान में उतर करके उस थ्योरी को अप्लाई करना होगा। बहुत खूब सर, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। फिर आदि के एपिसोड्स में हम राजस्थान को और बेहतर तरीके से जानेंगे, इसके पर्यावरण के बारे में, ऋतुओं के बारे में, जनजातियां, और क्या कुछ हम कर सकते हैं, कैसे हम और बचा सकते हैं चीजों को, जैसे आपके स्टूडेंट्स ने बचाया है पीलू के जंगल, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो श्रोता सुन रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: अभी बजे है रात के 11, 1 मिनट के स्वचिंतन से टेंशन होगी 9-2-11।

नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो हैं? घर में बाल बच्चे? बहुत अच्छी बात है, बस कुशल मंगल रहे। चलिए, आपकी प्रभा पंडितायन आपका प्रोग्राम पंडितायन में पेश कर रहे हैं आज का प्रोग्राम, और शुरू करते हैं सकारात्मकता से। सकारात्मक सोच न केवल सबसे अच्छा होने की उम्मीद रखता है, लेकिन ये स्वीकार करने के बारे में भी है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। विश्व नाटक कल्याणकारी है, तो हमेशा का सोचिएगा, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है, लेकिन वही चिड़िया जब मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है, पर माचिस की एक तीली लाखों पेड़ जला सकती है। कोई चाहे कितना भी महान काहे ना हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। वर्तमान का कटु सत्य आपके समय का, जरा इस पर आप गौर जरूर करना, और ऐसी स्थिति से जरूर बचना जिस घर में बड़ों को छोटों से डर लगने लग जाए, उस घर में समझ लेना कि कलयुग प्रवेश कर चुका है। आपसे करबद्ध प्रभा पंडिताएं निवेदन करती है कि कभी भी अपने घर में ऐसी छवि मत बनाना जिससे कि तुम्हारे ही घर का पूज्य पुरुष तुमसे ही डरने लगे और वो तुमसे अपने मन की बात न कह सके। यदि ऐसी छवि तुमने बना ली है तो खुद का ही विश्लेषण कर समझ लेना कि तुम कितना ही धर्म करना, एक दिन तुम्हारा पता निश्चित है। ईश्वर न्यायाधीश है खुद का विश्लेषण करने का तरीका। अगर आपकी ओर एक उंगली उठे तो समझना कि आपका अपमान, अगर अंगूठा का इजहार हो तो समझना आप कामयाबी की ओर है। अंगूठे से उंगली मिले तो समझना आपके कार्य लाजवाब है। यही तो हमारी जिंदगी का हिसाब है कि नहीं? अगर वाकई में आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। कहा कि ठोकर खाकर जो इंसान गिर जाए वो उठ जाता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ पाता। चिंता कहीं ना करो, चिंता कभी ना करो, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, लेकिन चलो उही मार्ग पर जो सत्य और मानवता का मार्ग हो। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं खुद है। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है कि नहीं? और एक बात जरूर याद रखें, माफ करें, दिल साफ करें। हम सभी से जाने अनजाने में न जाना कितना गलतियां होती है, किंतु गलती का एहसास होना, अर्थात अपने गलत कर्म का भान होना और गलती के लिए माफ़ी मांग लेना, उस गलती के बोझ को समाप्त कर देता है। गलती होना वास्तव में गलती तो है, पर इतनी बड़ी नहीं। परंतु अपनी गलती को महसूस न करना, ये उससे भी भारी गलती है। महसूस नहीं किया तो स्वयं के बदलने के द्वार बंद हो जाते हैं और वही गलती बार बार दोहराई जाती है। तो क्या करिएगा, समझ गए? तो सच्चे दिल से माफी मांगने का अर्थ है कि हम वो गलती को इतनी गहराई से महसूस करें कि दोबारा कभी भी किसी के भी साथ वो गलती ना दोहराए। अगर एक व्यक्ति बदला लेकर दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है तो ये प्रयास में वो खुद भी नीचे उतर जाता है, और दूसरी ओर क्षमा करके व्यक्ति स्वयं भी ऊंचा उठता है और सामने वाले को भी ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। यदि चित्त में ईर्ष्या घृणा द्वेष की अग्नि धधक रही है तो वो चित्त को भारी कर देती है। तो सदा याद रखिएगा, ऐसा बोझिल मन भगवान के किस काम का जो पहले से ही भरा है।
भगवान उसमें और कब भरेंगे। इसलिए प्रतिदिन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर और दूसरों की गलती के लिए क्षमा देकर मन को खाली अबस कर लीजिए, तभी शांति के सागर परमात्मा की शांति की किरणें अंदर प्रवेश करेगी। अपने शरणागत जीव को प्रभु हर प्रकार के अनिष्ट से बचा लेते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु आश्रित जीव के जीवन में कभी कौरव कष्ट ही नहीं आता हो। सच बात तो ये है कि प्रभु आश्रित जीव धर्म पथ का अनुगमन करता है, और जो धर्म पथ का अनुगमन करता है उसकी राह कभी भी आसान नहीं होती। ये प्रभु शरणागति की महिमा ही तो है कि दुर्गम परिस्थितियों में भी शरणागत के मन में एक विश्वास और एक सकारात्मकता सदैव बनी रहती है, और वो ये कि मेरे प्रभु मेरे साथ ही हैं, फिर मैं चिंता काहे करूं। और उनका ये विश्वास ही उन्हें पांडवों की तरफ बड़े से बड़े विघ्न से भी लड़ने का आत्मबल प्रदान कर देता है। जौन प्रकार एक अबोध बालक निर्भय होकर सर्प के संग खेलने लग जाता, सांप के संग, और अग्नि में भी हाथ डालने लग जाता है। वो नहीं जानता कि इसमें मेरा तनिक भी अहित होने वाला है, मगर उसके माता पिता अच्छे से जानते हैं कि किसमें उनके बालक का हित है और किसमें अहित। इसी प्रकार हम जीव को भले ही नहीं पता हो कि किसमें उसका हित है और किसमें अहित, फिर भी प्रभु को सब कुछ पता है। और माता पिता की भांति ही माँ जानकी और प्रभु राम अपने शरणागत की रक्षा करते हैं और उसको हर प्रकार के अनिष्ट से भी बचा लेते हैं। प्रभु शरणागति अथवा धर्म के मार्ग पर आपको कष्ट जरूर हो सकता है, मगर आपका अहित कभी नहीं हो सकता। ये बात गांठ में बांध लीजिए। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन ये असंभव को भी संभव कर देते हैं। एक तस्वीर देखी हम, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और एक छोटा सा बच्चा उसको माथे पे चूम रहा है। एक अपने आने वाले कल को और एक अपने गुजरे हुए कल को, यही जीवन का चक्र है तो क्या समझे। ये आसमान में उड़ने वाले परिंदों, ए आसमान में उड़ने वाली परिंदो, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की। इस पिंजरे का दर्द क्या होता है अब समझ चुका है आज का इंसान भी। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो ये दुनिया का रिवाज है। कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं, दूरी हो जाती है। ध्यान रहे कि चुभ जाती हैं बातें कभी कभी, चुभ जाती हैं बातें कभी कभी और लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से ही हार जाते हैं। आप सब तो दुनिया में रहते हैं, बहुत कटु अनुभव से जिंदगी के इस पड़ाव तक पहुँचे होंगे, फिर भी कई बार मन में आता है कि बात भी कह दें तो कहीं लगी हो चोट तो उसमें थोड़ा सा मरहम का काम हो जाएगा। कई बार आप अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं, पर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके जैसा जीवन जीने की चाह रखते हैं। तो आज से क्या करिएगा, अपने जीवन से संतुष्ट रहें। हमारे पास परमात्मा जी ने जो दिया है लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छा दिया है। ये दुनिया नहीं चलती अगर पांच स्त्रियां हर पुरुष के जीवन में नहीं होती। कौन कौन सी? माँ, बहन, बहू, बेटी या पत्नी। चालाक बनकर तो किसी को केवल कुछ देर तक ही मोहित किया जा सकता है, परंतु जहाँ दिल जीतने की बात आती है वहाँ तो केवल सरल और सहज होना ही जरूरी होता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कई बार एक चुप्पी कई भ्रमित दूषित वातावरण को सुगम कर सही दिशा प्रदान कर देती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी दूसरे की चुगली करता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी किसी और के सामने चुगली करता होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान अपनी भूल में से भी बहुत कुछ सीख सकता है।
सबको शुभ भावना शुभकामना के गिफ्ट देने वाली अपने आप को भाग्य विधाता मास्टर भाग्य विधाता समझे। देखिए आपका जीवन कितना खुश मिजाज होगा। माटी का संसार है खेल सके तो खेल, माटी का संसार है खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में है पूरा विज्ञान उसके आगे है फेल। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और उसका सिमरन दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। तो आज से क्या करिएगा, समझ गए होंगे ना? अरे कहा नहीं समझेंगे, परमा पंडिताइन के साथ 12 साल सुन के तो अब हमसे भी ज्यादा समझदार हो गए हैं। चलिए यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। सुनिएगा मीठा सा गीत, के बाद फिर आपसे बतियाते हैं।

देखिए भाई, एक पते की बात बता रहे हैं, हमेशा दूसरे से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखें। काहे कि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर रहें और स्वयं पर विश्वास रखें तो आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। जीवन का सत्य ही है, मनुष्य जैसे सोचता है वैसे ही गुण कर्म स्वभाव वाला बनता जाता है। यदि मनुष्य श्वास श्वास परमात्मा का गुण, उनका दिव्य कर्म तथा उनकी संपत्ति की याद में रहे तो वो भी दिव्य मन दिव्य बुद्धि वाला बन जाता है। एक राजपूत कोई निश्चय और याद होने के कारण कि वो राजकुमार है, स्वभावतः खुशी साहस धन खुमारी रहती ही है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्यात्मा निश्चय पूर्वक मनन करती है, मैं तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो त्रिलोकी नाथ परमात्मा का बच्चा हूँ, सारा ब्रह्मांड का स्वामी का बालक हूँ, तो ऊकी मस्ती आनंद अतीन्द्रिय सुख और शक्ति के अनुभव का पारावार नहीं रहता। परमात्मा हर वक्त आपके साथ है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो आपको कब कहाँ और कैसे कैसे बचाता है, लेकिन आप फिर भी उसको कोई मौका मिलता है तो गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात मन में बैठा लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और जिसमें निश्चित आपकी ही कोई भलाई छिपी हुई है। इसलिए हर तरह का अभिमान और जिद छोड़कर जो भी कुछ हो रहा है उसे खुशी खुशी से स्वीकार करें। दया और कृपा इका सागर होने के नाते वो कभी भी आपको दुख नहीं देता। कौन? परमात्मा जी, गॉड जी। अभी तो दुखों से छुटकारा पाने का राह जरूर दिखाता है। प्रभु ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। प्रभु को पाने का एक ही लक्ष्य बनाए, जीवन की सार्थकता यही में है। आप बरसों से अपने आप को कोसते आ रहे हैं पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब आप खुद का समर्थन करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अब केवल समाधान होंगे, समस्या नहीं। सदा स्मृति रहे कि आप कौन हैं, एक शांत स्वरूप और वरदानी आत्मा है। जीवन का सत्य ये भी है कि मिनट घंटे दिन माह वर्ष बदल सकते हैं, लेकिन हमारे किए अच्छे बुरे नहीं बदलते। का कर्म बुरे काम पीछा करते ही रहते हैं, अच्छे काम बचाते ही रहते हैं। आज मनुष्य जीवन के बुनियादी व नैतिक सत्यों से अवगत है परंतु इन पर अमल नहीं ना करता। इनमें जीवन में सरलता नहीं आ पाती और जो सरल नहीं होगा उसमें परमात्मा की साधना नहीं कर सकता। राजयोग सहज राजयोग की साधना के लिए मन बुद्धि का सरल और सहज होना जरूरी है, जो कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति व इसका मनन करने से ही संभव है। तो क्या करिएगा, संतुष्टता दिलाता है योग, जो कि कई जन्मों तक संस्कारों में समाई रहती है। मानव जीवन पुण्य और पाप का मिश्रण है। अज्ञान और दुर्ज्ञान से पाप उत्पन्न होता है और सद्ज्ञान से पुण्य उत्पन्न होता है। कर्मों से संस्कार बनते हैं, संस्कार ही से ही गुण बनते हैं, गुण से प्रकृति बनती है, प्रकृति से सृष्टि बनती है और सृष्टि ही शरीर है। भला या बुरा, रुग्ण या स्वस्थ, सुंदर या कुरूप, स्पष्ट है कि मनुष्य का जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका शरीर बनता है। जन्मों जन्मों से संचित कर्मों का प्रतिफल ही शरीर है। शरीर ही वो फल है जो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। सत्कर्म से सुफल और दुष्कर्म से कुफल प्राप्त होता है। वर्तमान शरीर पुराने सांस्कृतिक परिवेश का फल है। कर्मों के फल भोग सुनिश्चित होते हैं, उनसे कोई बच नहीं ना सकता। कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है, देव मानव दैत्य सभी को। जीवन में सब कुछ एक निवेश की तरह ही होता है। प्रेम, समय, साथ, खुशी, सम्मान और अपमान, जितना जितना हम दूसरों को देते जाएंगे, समय आने पर एक दिन वो ब्याज सहित हमें अवश्य वापस मिलने वाला है। कभी दुख के क्षणों में अपने को अलग थलग पाओ तो एक बार आत्मनिरीक्षण अवश्य कर लीजिएगा कि कब जब अब
जब मेरे अपनों को अथवा समाज को मेरी जरूरत थी तो मैं उन्हें अपना समय दे पाया था। कहा है कि हम दूसरे से तो बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कहा हम दूसरों को कुछ दे पाए थे? कहा किसी के दुख में मैं कभी सहभागी बन पाया था? आपको अपने प्रति दूसरों के उदासीन व्यवहार का कारण स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कभी जीवन में अकेलापन महसूस होने लगे और आपको अपने आसपास कोई दिखाई न दे जिससे मन की दो चार बात करके मन को हल्का किया जा सके, तो आपको एक बार पुनः आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। क्या आपकी उपस्थिति कभी किसी के अकेलेपन को दूर करने का कारण बन पाई थी अथवा नहीं? अपने आप चिंतन कीजिएगा, आपको अपने एकाकी जीवन का कारण स्वयं समझ आ जाएगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा में हम लोग गाते हैं कि देवी द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण को एक बार एक छोटे से चीर का दान किया था और समय आए पर आवश्यकता पड़ने पर विधि द्वारा वही चीर देवी द्रौपदी को साड़ियों के भंडार के रूप में लौटाया गया। सुना है ना आप सबने? तो अच्छा बुरा, मान अपमान, समय साथ, दुख सुख के जो कुछ भी आपके द्वारा बांटा जाएगा, देर से सही मगर एक दिन आपको दोगुना होकर मिलेगा जरूर, तय है। तो आपको डिसाइड करे कहा है, का दे कहा है, वही लौट के आने वाला है। सूर्योदय के लिए सूर्य को अंधेरे से, हरियाली के लिए वसंत को पतझड़ से, और गंगा स्वरूप होने के लिए एक नाले को कंकर पत्थरों से टकराना अथवा लड़ना ही होता है। ठीक इसी प्रकार बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए मनुष्य को बुरे दिनों से अवश्य लड़ना पड़ता है अथवा तो बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ता है। प्रभु श्री राम ने लंका को जीता मगर जीतने से पहले कितनी कितनी विषमताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप सब तो जानते हैं ना। पांडवों ने महाभारत युद्ध जीता अवश्य, मगर उसके मूल में भी अनगिनत कठिनाइयां और विपत्तियां ही छुपी हुई हैं। निसंदेह जीवन यात्रा ऐसी ही है। यहाँ पर किसी चीज को वृक्ष बनने के लिए एक लंबी अवधि तक सर्वप्रथम जमीन में मिट्टी के नीचे दबना होता है। समय आने पर वो बीज अंकुरित तो हो जाता है मगर उसके बाद भी कभी तीखी धूप तो कभी कड़ाके की सर्दी का सामना करते हुए न जाने काका विषमताएं अपने ऊपर झेलनी पड़ती है। यही तो जीवन है, यही तो प्रकृति है। धीरे धीरे वो बढ़ने जरूर लगता है मगर यहाँ भी पग पग पर उसकी डगर आसान नहीं होती है। कभी आंधे, कभी तूफान, कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि का सामना करते हुए वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष का रूप ले चुका होता है। अब कभी अपने पत्तों द्वारा, कभी अपनी टहनियों द्वारा, कभी अपनी लकड़ियों द्वारा, कभी अपनी शीतल छांव द्वारा, तो कभी अपने मधुर फलों द्वारा परोपकार और परमार्थ करके एक वंदनीय और सम्मानित जीवन जी पाता है। याद रखिएगा, दिन बुरे हो सकते हैं मगर जीवन नहीं। धैर्य, साहस, सावधानी और प्रसन्नता का कवच परिस्थितियों को भी आपका दास बना सकता है। जो डटेगा वही टिकेगा और वही बढ़ेगा। समझ गए? तो तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हमारा पहला मंदिर ये कोई और नहीं बल्कि हमारा शरीर है। हम इंसानों को भगवान की अवधारणा सिखाई जाती है, सही या गलत। हम गायों के घर आने तक बहस कर सकते हैं, ये हमारी दुनिया का एक सच है। कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों को विश्वास करना सिखाया गया है और वे इसका धार्मिक रूप से पालन करते हैं। इस मुद्दे पर हमारा मत अलग है। हमारा पहला मंदिर हमारा शरीर है, हमारी आत्मा हमारा देवता है, ईश्वर का अंश है। हम प्रार्थना करने के लिए अपनी आत्मा के साथ संरेखित करते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया से कर्मकांड से गुजरते हैं वो मुझसे सहमत नहीं हो सकते। हमें पृथ्वी पर अपनी यात्रा के दौरान अपनी आत्मा को अपने शरीर में रखना है। इस मंदिर के रख रखाव के लिए केवल श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसे महान आकार में बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। रोजाना व्यायाम से हमारा शरीर चमकता है और आलस्य से सुस्त हो जाता है। हमें ईंट और पत्थर के मंदिर को भी बनाए रखना चाहिए।

यदि आप संपूर्ण संतुष्ट व स्वस्थ नहीं तो ये सब भी मुरझा जाएगी। अतः जीवन से सब अंगों को संवारने से पहले स्वयं का वास्तविक रूप संवारना बहुत आवश्यक है। ये सही है कि जरूरतें इंसान को एक दूसरे से जोड़ के रखती है, लेकिन जब तक आपस में व्यवहारिक सरलता सहजता नहीं होती, जरूरतें भी संबंध की पकड़ को ढीली कर देती है। लाइफ में हर समस्या के अंदर उपहार अवश्य होता है, इसलिए कभी समस्या का सामना भी करना पड़े तो निराश नहीं होना चाहिए। का पता जो अंत हम अपेक्षित कर रहे हो अंत उससे भी अधिक सुंदर हो। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के गुण का अनुभव करें और सदैव आशावादी रहें। हमें नेकी करने के बदले में कुछ पाने की आस नहीं रखना चाहिए, इससे आपका किया पुण्य घट जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात नेक कर्म करके दरिया में बहा देना, उसे किसी को पता ना चले। एक हाथ से दे तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। कहे कि जितना चुपचाप दिया जाए उतना ही अच्छा है, जिसे पता चलना होगा उसे खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा दान ही वास्तव में शुद्ध होता है, इससे ही दानी व्यक्ति प्रसन्नचित होता है, उसके अंदर एक फैलाव आता है, प्रेम से भरपूर हो जाता है, वास्तविक आनंद की महसूसता होती है। जबकि अधिकांशतः लोग कुछ देते हैं तो उसके पीछे सोचते हैं कि हमें प्रशंसा मिलेगी, नाम मनसान बढ़ेगा, प्रसिद्ध होंगे, लेकिन ये दान नहीं ना है। ये भाव हमें बोझ उत्पन्न करता है, अहंकार बढ़ाता है। परमात्मा पर पूर्ण भरोसा, अपने कर्मों पर विश्वास, सकारात्मक सोच के साथ सदैव खुश रहना, ये सारी बातें आपकी आंतरिक ऊर्जा को निरंतर गतिशील और बढ़ावा देती है। तो क्या करिएगा, जान गए ना। चलिए ही बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, के बाद फिर आपसे बताती है। सुनिएगा एक गीत, छोटा सा विराम ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।

0: जल शक्ति है, जल जीवन है, जल है तो कल है। आइए सुनते हैं रेडियो मधुबन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कहते हैं।
1: सामान्यतः हमारे परिवारों में क्या होता है, कोई बच्चा अगर एक्सट्रावेगेंट हो जाता है तो बहुत सारा खर्चा करने लगता है, तो क्या कहते हैं कि जो है पैसे को पानी की तरह बाहर है, मतलब पानी को हमने ऐसा मान लिया है कि इसका कोई मोल नहीं है। अब हमको इस मिथक को तोड़ करके समाज के मन में इस बात को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पानी को पैसे की तरह बचा करके काम में लेना है। और अगर हम इसके लिए कामयाब हो जाएंगे तो हमारे देश में जितने प्रकृति ने संसाधन दिए हैं आने वाले कई शताब्दियों तक हम देश को जल समृद्ध बनाए रख सकें।
0: रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे थे जल है तो जीवन है, जल बचाएं जीवन बचाएं।
2: देखिए भाई, जिंदगी के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो, कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। और जब ऐसा आप करिएगा तो देखिएगा अपने आप रास्ते खुलते हैं कि नहीं। ये एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोनो तैयार नहीं है। हमें ये बात पर ध्यान देकर पड़ेगा। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुना तो नहीं है। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए ये कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को। कितनी अच्छी बात है ना, चिंता इंसान को जीते जी जलाती है और चिता तो कहती है कि मैं मुर्दों को जलाती हूँ और तू जिंदों को। किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में। कहानी तो एक दिन सभी को बनना ही है, जब चले जाएंगे तो कहानी ही ना बन जाएगी, और कहाँ याद करेंगे लोग। जैसे कहानी में कोई पात्र को याद करते हैं, ऐसे कभी कभार आपको याद करेंगे। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। बड़ा हुआ तो का हुआ, जैसे पेन खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा पर काहे में है, आपकी वो लंबाई चौड़ाई में नहीं, विनम्रता में। समय बहरा है कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। दिल से साफ रहोगे तो बहुत लोगों के खास रहोगे, ये बात भी बहुत पते की है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी जरूरी है। कई बार बहुत सच्चाई से भी का हो जाता है, मन उदास हो जाता है। कभी कभी गलत फहमी भी जी लिया करिएगा भाई, वो भी बहुत सुख देती है। सूर्योदय की हर्षित बेला पर आपको सभी को हम बहुत याद करते हैं और कहते हैं, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन में कुछ ऐसा ही है, समझ गए ना। एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है, ये बात को भी याद रख लीजिएगा, नहीं तो छोटी छोटी बात में उबलते पानी की तरह भाप बन के उड़ गए। बस जिंदगी तो, और चाहेंगे ही लोग भी चाहेंगे कि ऐसी आप बलबला जाएं और हवा बन के भाप बन के उड़ जाएं। धैर्यता, शांति, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, काहे कि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है ना तो प्रार्थना। हमेशा खुश रहा करिए, काहे कि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं दिल से होता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जीवन का दस्तूर है और हर कोई इसका मुक्त भोगी है। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड, बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड। आजकल हमारी जिंदगी कुछ ऐसी ही चल रही है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके हर तकलीफों का ब्रह्मास्त्र है। जीवन एक विद्यालय है, इसमें कठिनाइयां, परीक्षा और समय शिक्षक का काम करते हैं। तो भैया परीक्षा में पास होए का है तो वो तो समझ के जीना होगा। अच्छे जरूर बनिए लेकिन साबित करने में अपना समय मत गवाइए। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए कि नहीं? कहे कि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाए के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग पूछ ही लेते हैं, है कि नहीं? दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो। कहा है कि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अभी उत्तम लोग संकट आए तो भी शुरू किया हुआ काम नहीं छोड़ते। आपका जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए परीक्षाएं आएगी, लेकिन आप उन परीक्षाओं को देखकर अपना काम, अपना लक्ष्य मत छोड़िए। और हमेशा याद रखिए, क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। इससे बचिएगा और जितना बचिएगा उतना अच्छा रहेगा। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या फिर रिश्ता। ये कौन कह रहा है पता है? अब्दुल कलाम जी कह रहे। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। आपको तय करना है क्या करे का है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। तुम्हारे दिमाग ही, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। खुपरिया में कोनो बात हो गई होगी छोटी मोटी, लेकिन बार बार वही याद कर करके आपका सामने समस्या बना लेता है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। इच्छाओं को कम कर दीजिए, जिंदगी वैसे ही हल्की है। इच्छा ही तो इंसान को अच्छा नहीं बनने देता। और ही चाहिए, और ही चाहिए, और ही चाहिए। अरे चुपचाप बैठ जाइए ना, भगवान जौन दिया उसमें संतुष्ट रहिए, अपने आप जीवन में शांति रहेगी। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, देखिएगा भाई अपने आप आपकी जिंदगी में हर कुछ वैसा ही घटित होगा जैसे आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए फिर जो कहा कि इन बातों को जरूर याद रखिएगा। छोटी छोटी बात कहते हैं लेकिन आप सब तो समझते हैं ना इन छोटी बातों में कितना गहरा अर्थ होता है। और जो इस बात को समझ ले तो उसने सब कुछ समझ लिया, और जिसने सब कुछ समझ लिया तो अपने आप जीवन उसका तो बेहतर हुई भी करेगा ना। और यही तो पर्व पंडिता ने आप सबके लिए दुआएं करती है। तो देखिए भाई, जब भी कोई समस्या आए तो ये तीन काम करें। समस्या का सामना करें, उससे लड़ो और समस्या को समाप्त करो। आत्मशक्ति पर विश्वास करें और आप ये कर सकते हैं। मन कमजोर तो परिस्थिति समस्या, मन कमजोर तो परिस्थिति समस्या, मन स्थिर तो परिस्थिति चुनौती, और मन मजबूत तो परिस्थिति अवसर। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोनो बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर करके थक जाए और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुराकर बोले आपसे मिलकर खुशी हुई, है कि नहीं? यदि फूल को भगवान के गले की माला बनना है तो उसे अपने पेट में सुई की नोक से छेद करवाना ही पड़ेगा। सोने के टुकड़े को यदि भगवान के गले का हार बनना है तो उसे भट्टी में गलना ही पड़ेगा, और चंदन को भगवान के माथे पर लगना है तो उसे पत्थर पर घिसना ही पड़ेगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य को धर्म पर चलना है तो उसे कठिनाइयां सहते हुए त्याग के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, अर्थात हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना या सहन भी करना पड़ेगा। ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हर पल उनको याद करें, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये वही कमाई है बंदे जो काम तेरे आएगी, जन्म जन्म की भटकन से तुमको मुक्त कराएगी। मुश्किल हो हालात तो याद तुम आते हो, मुश्किल हो हालात तो याद तुम आते हो, मन हो उदास तो याद तुम आते हो। यूं तो जिंदगी में अपनों की बहुत भीड़ है बाबा, पर जब जरूरत पड़ती है तो साथ तुम ही निभाते हो। ऐसा परमात्मा जी को बोलिए मन की बात, जब कहीं अब ऐसी बात आए तो, भावना आए तो प्रकट करिए, परमात्मा को अच्छा लगता है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ऐसा अनुभव कहता है। अच्छे जीवन का आकलन ना ही अंग्रेजी बोलने से, ना ही अच्छे कपड़े पहनने से, और ना ही ठाट बाट वाली जीवन शैली से होता है, बल्कि अच्छे जीवन का आकलन तो ये है कि कितने लोगों के चेहरे खिलते हैं जब वो आपका नाम सुनते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बात है लेकिन ही जीवन को हमारे श्रेष्ठ बनाती है। त्याग और नाश ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वयं की इच्छा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ को छोड़ना त्याग, तथा स्वयं की इच्छा ना होते हुए किसी वस्तु अथवा पदार्थ का छूट जाना नाश कहलाता है। प्रकृति का अपना एक शाश्वत नियम है, और वो यही कि मान पद प्रतिष्ठा वैभव कुछ भी और कहीं भी यहाँ शाश्वत नहीं रहता। ये दुनिया प्रकृति का नियम है, हर चीज परिवर्तन होती है। सूर्य सुबह अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उदय होता है और शाम होते होते उसका प्रकाश क्षीण होने लगता है, और दिन में प्रचंड प्रकाश फैलाने वाला वही सूर्य अस्तांचल में कहीं अपनी रश्मियों को छुपा लेता है। रात्रि को चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेरता है, मगर वो भी सुबह होते होते कहीं प्रकृति के उस विराट आंचल में छुप सा जाता है, सदा कुछ भी नहीं रहने वाला। इसलिए बांटना सीखिए, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, समय हो, खुशी हो, धन हो, अथवा कोई अन्य वस्तु। जिन फलों को वृक्ष मारा बांटा नहीं जाता, जिन फलों को वृक्ष द्वारा बांटा नहीं जाता, एक समय उन फलों में अपने आप सड़न आने लगती है, और उस सड़कर वृक्ष को भी दुर्गंध युक्त कर देते हैं। यही प्रकार समय आने पर प्रकृति द्वारा सब कुछ स्वतः ले लिया जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप बांटकर अपने यश और कीर्ति की सुगंधी को बिखेरना चाहते हैं, या संभाल कर संग्रह और आसक्ति की दुर्गंध को रखना चाहता है। आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसा चाहे। दो हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु दो हाथ जोड़कर करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। शांति एवं स्थिर दिमाग जीवन की प्रत्येक लड़ाई का ब्रह्मास्त्र है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल, अगर उस आप नहीं तो चमकता चेहरा कौन काम का। होड़ करनी है तो संस्कारों की करो, फैशन का कहा है वो तो आती है जाती है। जो स्नेह हमें दूसरों से मिलता है वो हमारे चरित्र का ही एक तोहफा है। ज्ञान का मनन, चिंतन और ईश्वरीय सेवाएं ही हमारे पुण्य का खाता बढ़ाती हैं, जिससे संस्कारों में परिवर्तन के लिए हमें हिम्मत और उल्लास मिल जाता है और परिवर्तन संभव हो जाता है। कहते हैं कि जीवन में जो कुछ करो, जितना मर्जी धन खर्च करो, सबसे सहयोग लो वो, पर जीवन से मुसीबतें तब तक समाप्त नहीं होती जब तक हमारा स्वयं का अंदर व्यवस्थित नहीं है। काहे कि ध्यान रहे कि हमारे अंदर का अस्त व्यस्त होना ही इस जीवन की हर समस्या का मूल कारण है। इसलिए हमें सर्वप्रथम स्वयं को ही भीतर से व्यवस्थित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, गजब कृपा है आपकी परम परमेश्वर भगवान। हर नई सुबह नए जीवन के समान होती है, इसलिए बच्चा बनकर हर सुबह का मजा ले। दिन में एक ईमानदार नौजवान की तरह पूरी मेहनत से काम करें, और सायंकाल में एक समझदार बुजुर्ग और शांत चित्त संत की भांति पूरे दिन में किए कर्मों का मनन करें। कहते हैं कि जन्म के समय मात्र सांसें होती हैं, नाम नहीं, और मृत्यु के समय केवल नाम होता है, सांसें नहीं। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ध्यान रहे कि अपनी सोच को ऊंचा करने मात्र से ही हर बड़ी चीज छोटी दिखने लग जाती है। काहे कि ऊंचाई से हर चीज छोटी लगती है। तो आइए हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं। यही बात पर चलिए गीत सुन लेते, फिर और समय बचा तो बतियाएंगे।
3: धर्म का मूल पाप मूल है अभिमान, तुलसी दे आमत सोड़िए रे जब लग घट में प्राण।

0: फिर से कहते हैं, मेहनत उसकी लाठी है, मजबूत उसकी काठी है। मेहनत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी काठी है, विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। जिनकी गैर मौजूदगी में हर मंजिल दूर है, जो आपके ख्वाबों को पूरा करता वो मजदूर है। क्यों ना आज से हम भी कड़ी मेहनत कर अपने और दूसरों के ख्वाबों को पूरा करें। भाषा मानव का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारी, हिम्मत से पतवार संभालो, फिर कैसे रहेगा दूर किनारा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा, हम रोए ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। कहते हैं कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर सफलता का कारण भी निर्विघ्न कोशिश ही होती है। ध्यान रहे कि दूसरों पर भरोसा करते समय होशियार रहिएगा, क्योंकि देखने में फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको महत्व आप दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोनो महत्व ही ना हो। कैसा है जिंदगी का तेरा ये फलसफा, एक इंसान के इस दुनिया में आने की खबर तो सबको पहले से ही हो जाती है, मगर जाने की खबर उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। इसलिए धन्यवाद करें उस सृष्टि रूपी रचनाकार परमात्मा का, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना ऐसे अद्भुत तरीके से की है कि हर इंसान अंतिम समय तक जीने की राह पर अग्रसर रहता है। कहते हैं कि एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। ध्यान रहे कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी। ध्यान रहे कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी भी। पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए, इसलिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। चिंता संत के जीवन में भी होती है और चिंता संसारी के जीवन में भी होती है, मगर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क भी होता है, और वो ये कि संत परमार्थ के लिए चिंतित रहता है और संसारी स्वार्थ के लिए। संसारी स्वयं के लिए चिंतित रहता है तो संत समष्टि के लिए चिंतित रहता है। संत और संसारी के बीच का जो भेद होता है वो कर्मगत नहीं अपितु भावगत होता है। दोनों में बाह्य स्थिति का नहीं अपितु अंतः स्थिति का भेद होता है। संसारी भी क्रोध करता है और संत भी क्रोध करता है। संसारी लोभ करता है और संत में भी लोभ देखने को मिल जाता है। संसारी भी अर्जन करता है और संत भी अर्जन करता है। और तो और, संसारी अगर संग्रह करता है तो संत भी संग्रह करता है, मगर दोनों में क्रिया भेद शून्य होने के बावजूद भी भाव में जमीन और आसमान जैसा अंतर निहित होता है। प्रकृति का नियम है कि खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही बाहर वापस निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। लेकिन कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिनों, हफ्तों, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। मनमानियां तो बचपन में होती थी जनाब, अब तो हर बात पर मन को ही मारना पड़ता है कि नहीं। अब अंत में यही कहेंगे, मीठा झूठ बोलने से लाख गुना बेहतर है कि कड़वा सच बोल दिया जाए। ऐसा करने पर हमें सच्चे दुश्मन भले ही मिल जाएंगे, परंतु झूठे दोस्तों से मुक्ति मिल जाएगी। पुरानी कहावत है कि जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से बेहतर है किसी ज्ञानी के साथ फर्श पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि क्रोध, पछतावे, चिंता और कुरन में अपना समय बर्बाद ना करें। ये जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है, परंतु यदि खुश और मस्त रहें तो इस जीवन में सुख भी अपार मिलते हैं। ये कड़वा सत्य है लेकिन सही भी है। जीवन में आजमा कर देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन की यात्रा आरामदायक हो तो अपेक्षाओं के सामान को कम करें, संतुष्ट मनी बन संतुष्टता का अनुभव करें। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। इतनी इस बात याद रख लीजिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। रिश्ता चाहे कोई हो, एक बात पक्की है, जिनसे हम आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। और जब ये बात समझ आ जाएगी तो आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाहकर भी आपको आपके लक्ष्य से दूर ना कर पाए। दवा सिर्फ दवा की बोतलों और गोलियों में नहीं होती। व्यायाम दवा है, सुबह की सैर दवा है, उपवास दवा है, चिकित्सा दवा है, परिवार के साथ भोजन करना दवा है, हंसी और हास्य भी दवा है, गहरी नींद भी एक दवा है, एक दोस्त का साथ मिल जाना दवा है, हमेशा खुश रहना ही दवा है, सकारात्मकता ही दवा है, नियमित योग करना भी दवा है, कुछ मामलों में मौन और एकांत दवा है, और एक अच्छा दोस्त एक अचूक दवा की दुकान है। चलिए ही के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।
1: अभी बजे हैं रात के 12। एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: अरे लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ का वरते जाओ,
1: राम राम भाई,
0: को तो
1: राम राम।
0: लाग्यो सावण बाद वो। राम राम भाई कंचन, राम राम। आओ भाई
1: गीत पूरो हो गयो।
0: अरे गीत तो चलता रहे।
1: मने लाग रहे हो कि जब तक जेठ है चाल रहे हो, जब तक थारे जेठ के महीना के गीत चाल सी।
0: बिल्कुल कंचन, मन तो जसो महीनो लागे वणी महीना को यू लागे अणी को गीत यो है, अणी को गीत यो है, तो मैं दोहराती रहूं।
1: खैर जीवन एक आनंद में रहे, और मैं ज्ञान कहूं कि ज्ञान प्रकृति में विभिन्न रंग है, वो विभिन्न रंग आपने भी श्रोता बंधु की जीवन में वे एंजॉय कर सका।
0: हाँ, एंजॉय कर सका। और गीत एडो माध्यम है कंचन, हाँ, कि मन खुश हो जावे, प्रसन्न हो जावे।
1: बस बात मत पूछो, और आज ही नहीं, आज तो बल्कि ज्ञान कहे कि लोक गीता की फिर भी कमी आ गई है। अपना तो पुरखा भी आनंद का एक बहुत बड़ा माध्यम ही गीत में चुनता।
0: हाँ बिल्कुल, अरे कहीं भी बात कहनी वेती ना तो गीत का माध्यम कहता। पर चलो अणी बात ने आप पछे करा। हाँ। अपना सगला सॉरी अपना सगला श्रोता बंदोरो स्वागत करा। हाँ गावरी बातें कार्यक्रम में। हाँ। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: तो कंचन जैसे ना अपने गीत की बात छिड़ी।
1: हाँ।
0: तो मैंने पारसिया याद आ रही।
1: हाँ, सुना भी
0: पारसिया याद आ रही कि पारसी का माध्यम जमयराज ने कतरी चीजा पूछ लेता। जमयराज ससुर जी ने पूछ लेता, पहली मर्यादा गणी होती।
1: ओहो,
0: प्रत्यक्ष रूप में। हाँ,
1: आड़
0: ही
1: सीधे सीधे तो कोई बात ही नहीं होती,
0: बात ही नहीं होती।
1: और आपनो राजस्थानी कल्चर बात कह देना, और बहुत होले होले से।
0: हाँ,
1: काई बात है, अठे तो मर्यादा और मान की जटे बात है, बठे राजस्थान में अव्वल है,
0: अव्वल है। आप गीत का माध्यम बोलते और सामने वालों किने सुना रहे वो समझ जाता,
1: वो समझ जातो,
0: और सामने वाला के कई जवाब देनो वो भी दे देता। गीत का माध्यम से तो देख, मने अटे एक गीत याद आ रहे कि एक सेठ जी है, ठीक है, घना कंजूस है,
1: कंजूसा
0: कंजूस सेठ, सेठानी दो ही कंजूस।
1: ओ
0: ठीक है, सेठ जी के किराना की दुकान है, सेठानी पड़ोस में क्योंकि बच्चों हुओ जो सूरज पूजा हो रही तो गीत गावागी,
1: गीत गावगे।
0: अबे अटीनु सेठ जी के बेसन छा रहे हो।
1: हाँ।
0: अबे देखियो घराक परो जाए तो आपने रुपया की कमाई मारी जाए तो चलो घरू लेना हूँ, दुकान पे खत्म हो गयो जो।
1: हाँ।
0: घर आया तो ठा पड़ी कि सेठानी जी तो पड़ोस में गीत गावा गया।
1: अबे कौन,
0: अबे हाँ अबे कई करा सेठ जी के, वे अगर वे ऊट ना जाये तो पता से रह जाये। पहली पता सा बांटता हा जदी बचे सेठ जी क्यों, अबे कई करान कई नहीं, कई तो उपाय करनो पड़ी। तो सेठ जी बटू आवाज दे, सुनो कागा सुनो ओ सवा सेठानी ने तो बोल जो। तो सेठानी का आवाज गी के तो सेठ जी की आवाज लाग रही,
1: सेठ जी की आवाज लाग।
0: तो सेठानी जी विचार की दो, सेठ जी कई कई काम आया पर। हाँ। अबे है गीता को एंड
1: एंड, और एंड को उठड़ो मतलब आपनो बस ये बात ने भाई, मैं महिला हुआ के वास्ते घणी अच्छी तरह पहचान सके।
0: बिल्कुल, तो या तो आपने तो ठाई है कई
1: मतलब जनरली ज्ञान को हुआ है।
0: हाँ, अनूठ पर आ जावे
1: ये बात नहीं है पर।
0: बिल्कुल, पर सही कह रही तू कंचन के लास्ट में ही जो भी बटे जो लास्ट में ही बटे और उठन करा गया तो आजकल तो शर्म रही कोई ना, आजकल देवी को नहीं। तो पहला तो कही एक थोड़ा के आन परा जाता तो घरे भेज देता।
1: हाँ।
0: तो वे क्यों अबे कही करा माने ठा पड़ गई बेसन छारियो। तो वे बटू शुरू की दो गीत गा रहा। अबे गीत में सूरज पूज रहा है तो सूरज को गीत गा रहा,
1: सूरज का,
0: और सेठानी जी ने एड़ा एड़ा गीत आवे लोगन ठाई नहीं पड़े, और वे देखे गए सेठानी जी गा रहा जो इस राइट है,
1: जो ही राइट है, चाहे कुछ भी गाओ।
0: हाँ, तो सेठानी जी क्यों देखो, चाबी मेड़ा पे पड़ी बेसन डब्बा में पड़ो, चाबी मेड़ा पे पड़ी बेसन डब्बा में पड़ो, डाबो आलिया में पड़ो तकड़ी खुटी पे पड़ी, तकड़ी खुटी पे पड़ी बाट घटी में पड़ो, थोड़ो तोल लीजो सा तो रख लीजो सा, सूरज बल उगी आजी। तो सेठ जी वाकी बात समझ गया, और वाको काम भी वे गयो, सेठानी को भी काम वे गयो। तो पहली गीता में ही समझा देता,
1: गीता में ही समझा देता। तो ज्ञान भी देखो राजस्थान में बहुत आन कान मान मर्यादा की भूमि है।
0: बिल्कुल,
1: तो भाई गीता के माध्यम से बहुत से काम हो जाता है।
0: बिल्कुल अनि वैसे में जेठ महीना को गीत गा रही चाल तो रही है भाई जेठ महीना और जेठ महीना तो
1: तब तो
0: कई क्यों तब तो महीनो है तो पसीनो तो होवे होवे
1: सही बात
0: और अटे मैंने तेजा जी की भी बात याद आ रही है कि तेजा जी यो तो गीत में गायो हूँ तेजा जी की तो आपा घनी बात की दी हाँ और भी कर जदि तेजा जी की जयंती दिवस आई जदि
1: बिल्कुल
0: पर बस यो ही है कि जेठ असाढ़ महीनो चाल रहे है ना यो गर्मी रहे
1: खबर
0: एडी गर्मी में आप जाओ तो क्योंकि साथ ही साथ में अधक मास भी चल रहे पुरुषोत्तम महीनो तो ये गर्मी में आपा बाने निकला विका पहले सो बार सोचना पड़े
1: हाँ
0: पर फिर भी निकल वो तो देखो हरेक काम तो घर बैठे कोनी होवे
1: हरेक काम घर बैठे हुए कोनी नौकरी पे कोई यान थोड़ा ना है कि जेठ महीने पूरे एक महीने चाल से तो आपा छुट्टी लेर बैठ जावा
0: सही
1: या बारे कोई सामान लेवा जाना है तो आपा इंतजार ही करता रहे कि जेठ टले तो मैं जाऊं यान थोड़ी होवे
0: वो नहीं होवे पर हाँ अपने स्वास्थ्य को ध्यान आपा रख सका कि जावा का पहले आपा या तो केरी को पन्नो बनान पीन जावा या पा नींबू को शरबत पीन जावा
1: बस बस बस बस
0: कई एडी चीजा लेनी ताकि वो लू को प्रभाव अपना शरीर पे नहीं पड़े
1: लू को प्रभाव अपने शरीर पे नहीं पड़े आपने डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है शरीर में पानी की कमी नहीं हुआ है
0: हाँ।
1: क्योंकि कई हुआ है गर्मी में देखो भी आप बाहर निकला तो पसीनो आवे
0: पसीनो
1: और पसीनो आवे तो कई की को लॉस हुआ पानी को लॉस हुआ है
0: सही है
1: पानी को लॉस हुआ है ग्लूकोज की कमी हो जावे डिहाइड्रेशन जिन्हें कमा पा तो ज्ञान की चीजा से बचवा के वास्ते आपने भी प्रिकॉशन आपा नहीं लेनो है
0: बिल्कुल
1: बरसात आ रही है बरसात थोड़ी रुक सी मने ही तो छातो लगानो पड़ सी
0: हाँ, आपा सोचा कि बरसात बंद हो तो मैं बहाने निकलो पर वे को कतरे उपाय है आप छातो लेन निकलो बहाने रेनकोट पहन निकलो
1: हाँ तो यानी गर्मी है
0: हाँ।
1: तो आपा ये नहीं है कि भैया आपा काम धंधो छोड़ बैठ जावा पण कही है कि थोड़ो वो बात दूसरी है कि भी सुबह चले जावा कई काम ज्ञान का भी तो हुआ है कि भी आप सुबह शाम कर लेवा तब भी चल जावा
0: बिल्कुल
1: तो भी काम सुबह शाम कर लेवा और देखो टावरा ने भी ये विषय में आपा अवेयर कर सका
0: बिल्कुल कर सका
1: पहले देखो ना आपा कई करता भी एसी कूलर तो अभी होया पहले तो खिड़की के मायने गीलो टाट लगा देता
0: हाँ।
1: और वासो जो झीनी झीनी करके हवा आती ना वो की तुलना थारो कोई भी एसी नहीं कर सके
0: देख भाई पहले खुला घर होता
1: हाँ।
0: खुला घर को घणो फर्क पड़े अब आज तो सबके बिल्डिंग की बिल्डिंग है
1: हवा हाँ, तो कटु
0: हवा आवे कटु हवा आवे पहले तो खुला खुला घर एक अटे एक वटे एक अटे बच्चे भी गेप
1: सही बात
0: और डबल मंजिल तो बहुत कम ही सिंगल सिंगल मंजिल तो आपा थोड़ा कटी अरे कतरी बार तो आपा घर का बाहर तो पानी डाल देता
1: हाँ
0: ताकि वो ठंडक रहे
1: छत ने गीली कर
0: हाँ
1: ऊपर ही सोता
0: छत ने हाँ छत ने गीली कर देता ऊपर सोता हो कई हवा चलती और कई नींद आती ठंडी ठंडी हवा अब आज तो छत पे तो जाने के जावा ही भूल गया
1: अभी तो टाइम ही अलग आ गया खेल तो समय समय की बात है आपा बात कर रहा कि भी हाँ कि आपा खान पान ने बदल सका
0: हाँ।
1: सलाद ज्यादा से ज्यादा लेवे
0: हाँ।
1: बजाय तले भुनिया
0: हाँ।
1: और यान का चीजा खावा की
0: तेज मसाला वाली चीजा है हाँ। तले गुली चीजा है या कौन थोड़ो बचनो
1: बस यान कह सका आपा गरिष्ठ भोजन से बचनो
0: हाँ।
1: और तरल चीजा ज्यादा से ज्यादा
0: हाँ। तरल चीजा ज्यादा खानी लाइट चीजा ज्यादा खानी
1: बस मिर्च मसाला तेल घी से थोड़ो सो अभी परहेज करवा
0: हाँ हाँ घी भी ठीक है पर तेल तो ज्यादा नहीं लेना चाहिए
1: सही बात है बिल्कुल सही है
0: तो देखा आपा केरी को पन्नो बना क्योंकि कच्ची केरी तो बन खूब मिले
1: हाँ।
0: तो कच्ची केरी ने लियाओ लान धो काढ़ो धोनवी का छिलका उतार दो
1: छिलका
0: उतारन वाने बॉईल कर दो बॉईल कर और पछे वो जो गुद्दो है बिना हाथ मसल दो
1: हाथ मसल लो
0: मसल अगर मिक्सर में वे या हैंड मिक्सी वे तो आप ही कौन चला दो
1: हाँ।
0: और नहीं वे तो हाथ ही मसल दो
1: हाँ हाँ।
0: छावे जतो
1: थोड़ो पानी डालन हाँ। बस वो झट हो जावे
0: पछे छान दो बिना छान पछे आप तड़को कर दो थोड़ा सा घी की बूंदा डालनी और घी की बूंद में आप थोड़ा सा हींग डाल दो सौंफ और जीरो डाल दो और वो बघारी में डाल दो
1: ठीक
0: है हाँ और राई डालनी है यो बघारी में डाल दो पछे इमें शक्कर डालन हला लो बढ़िया हिला दो ताकि शक्कर गुल जावे तो ये केरी को पन्नो वे गयो और हींग तो बस यानी
1: कालो नमक डाल दे काम आवे
0: हाँ कालो नमक डाल दो
1: जीरो
0: कालो नमक जीरो था आपा बघार में डाल दी दो जीरो सौंफ और हींग ये आप वगार में डाल दा पछे वो वगार भले आप अनि में डालो केरी को जो आप गुदाने मसालन यो शरबत बना रखे है आप जूस काट रखे हो भले में डालो भले यो इमें डाल दो गैस बंद कर दो इन्हें कोई उकालना तो है नहीं और शक्कर डालना अच्छी हिला दो
1: और कई टाइम चल जावे
0: हाँ
1: खराब
0: अरे पूरा दिन चले
1: वही
0: अगर फ्रिज में यदि तो अच्छी बात है नीवे तो पूरा दिन चल जावे
1: हाँ।
0: खाटी चीजें कई बिगड़े
1: सही बात है तो जे वो लूने है घणो बचाओ
0: हाँ तो अब एडी स्थिति में आपने बाने जानो वे तो आप थोड़ा तो पीन चलिया जाओ
1: बस
0: और पाछा आया बाद थोड़ा 10 मिनट बैठो विका बाद आप केरी को पन्नो पाछो पी लो
1: हाँ
0: तो नहीं तो लू लागे नहीं हैजा में आवा नहीं जीव घबरावे और
1: ना पानी की कमी हो
0: हाँ, नहीं पानी की कमी होवे अपनो स्वास्थ्य भी हो आप अपनो काम पाचो कर सका पर कंचन चल टेम हो गयो है गीत सुनवा को तो
1: सुना दे भी
0: हाँ तो ये गीत सुनन पाचा आवा हाँ
1: अच्छा आवा
0: तो बढ़िया रीजो कार्यक्रम घावरी बाता में सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: काकड़ी मतीरा आपी खावा चाला ए, काकड़ी मतीरा आपी खावा चाला ए, सखीरी सखीरी सखीरी खेता मेले चालू आपी धूम मचावा रे, सखीरी खेता मेले चालू आपी धूम मचावा रे।
2: वाह वाह वाह भाई, गर्मी और वटे बात कर रही है तू, खेता मचान खीरा और काकड़ी खावा की।
3: हाँ बिल्कुल, तो कंचन चलो अपना सगला श्रोता बंधुरो पाछो स्वागत करा हाँ घावरी बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM,
3: सुनता रहो
2: मुस्कुराता रहो।
3: तो भाई देखो, आप गर्मी की बात कर रहा और गर्मी के सीजन में के तो सुबह सुबह खेत में जावान के शाम को जावा तो घणो अच्छो लागे,
2: घणो अच्छो लागे।
3: एक तो ठंडी ठंडी हवा चले और एक कहिए कि खेत में ताजा चीज तोड़ी खादी छुट्टी
2: बस। पूरी मौसम में भाई ज्ञान मान ले कि जटा पानी है नहीं बट है तो खेता के अंदर खीरा काकड़ी लागेड़ा ही हो।
3: हाँ, बिल्कुल,
2: खीरा तरबूज
3: एडी चीजा। देखो आपा खेत मु घरे तोड़न लान खावा और खेत में बेटन खावा वणी को भी स्वाद तू देख जे घणो फरक आ जावे,
2: घणो फरक आ जावे। और देख प्रकृति में मैं ध्यान कहूं कि वे प्रकृति भी काई प्लानिंग सु चाले,
3: वो तो है।
2: अबे गर्मी है तो देखो खीरा आ रहा है बाजार में।
3: हाँ,
2: जो पानी को भंडार है,
3: बिल्कुल
2: जी में पानी पानी भरेड़ो है।
3: खरबूजा है,
2: खरबूजा है, तरबूज है।
3: हाँ,
2: जी में 90% पानी है,
3: बिल्कुल
2: है। तो ये सब आपा खावा तो आपा ने पानी की तो कमी हो वही को नहीं,
3: कमी भी नहीं होवे, स्वास्थ्य भी अपना अच्छो रहे। और देख गर्मी में कहिए कि ज्यादा अपने भोजन नहीं भावे।
2: हाँ वो बात बिल्कुल सही है,
3: तो एक आधी रोटी खा लान ये चीजा खा लान जितना आप काम हो जावे,
2: बस पेट भरो भरो रहो।
3: हाँ, पेट भरो भरो रहो और ऐसे ठंडी ठंडी और पानी वाली चीजें लेवा की इच्छा हो।
2: बस तो वही मैं कहूँ कि देखो प्रकृति भी क्या, अभी गर्मी पड़ रही है तो पानी से भरपूर फ्रूट्स मिल रहा है।
3: देखो प्रकृति के तो कमाल ही है। हाँ, सीजन का अनुसार फल देवे,
2: सीजन के अनुसार की भी कई खाने हो।
3: हाँ,
2: खावा को टाइम
3: यही सियालो वे चौमास वे फ्रूटी चेंज हो जावे। हाँ,
2: तो अबे सियाला में तो तरबूज खानो पसंद कर। हाँ,
3: ये वो क्या तासीर का अनुसार, देखो
2: तासीर के अनुसार। और हाँ, देख तरबूज का ये मीठो भी जदी हो है। पुराना लोग कहता है कि अबे लू चालवा लाग गई तो तरबूज और खरबूजा मीठा हो गया।
3: हाँ,
2: तो जान की गर्मी पड़े नहीं तो वे प्राकृतिक रूप से मीठा हुआ है।
3: बिल्कुल,
2: अभी तो ठीक है कि केमिकल सुकाई का ही नहीं हो रही हो तू भी।
3: हाँ, अभी तो 12 ही महीना सब चीजा मिल रही कंचन।
2: हाँ,
3: पर फिर भी आपा आटे यही के वो छावा सीजनेबल चीज ही खानी।
2: हाँ, सीजनेबल चीज का ही है कि बिना किसी केमिकल सु, बिना किसी पेप्टिसाइड सु, बिल्कुल एकदम प्राकृतिक तरीके से पकेड़ी जो चीज आपा ने लाभ करे नी, लाभ भी करे सस्तो भी पड़े,
3: सस्तो भी पड़े। ऑफ सीजन में लो यही तरबूज 100-100 रुपए किलो भेजा यहाँ करे
2: वही। तो ये वास्ते आपा ने मौसम के अनुसार खाने चाहिए और नई पीढ़ी ने भी वही संदेश है अपना कि भाई हाँ बजाय आकर्षण के कि हाँ। भैया बेचाल मैं सीजन से हट के कोई चीज खा रही हूँ, अरे थे खा रहे हो पिया भी ज्यादा दे रहे हो और साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी खिलवाड़ कर रहे हो।
3: अरे कंचनानी बात पे मैंने बात याद आ रही कि मैं दो छोरिया ने देखी मॉडर्न जमाना की, ठीक है दो ही पन्नियोड़ी ही, पर आजकल देखो पन्नी नहीं पन्नी ठाई नहीं पड़े, आजकल पेरवेश चेंज हो फल फ्रूट खरीद रहे है सब ऑफ सीजन का। एडी गर्मी में भी ऑफ सीजन का फ्रूट और सीजन को एक भी फ्रूट नहीं खरीदा।
2: अरे भी बठे का ये स्टेटस को मामलो,
3: बस वही बात है। एक दूसरी सक्की मैंने पूछो कि तू सीजन का अनुसार तो फ्रूट ही नहीं खरीद रही और सब बिना सीजन को ही तू खरीद रही, तो कहे भाई स्टेटस को मामलो है ये तो बनवा एड़ा सस्ता है। अब एप्पल है 200 रुपए किलो, अनार है 250 रुपए किलो, तो यहाँ की वैल्यू है तो सीजनेबल चीज का ही खानी। मैंने सुन रही वे बात मैंने आश्चर्य हो कि ये पड़ोड़ी छोरिया भी एडी गड़बड़ करे, वही था सस्तो महंगो क्यों देखो, ज्यादा पैसा है तो कि मैं भी सदुपयोग करो भी को
2: चीजें मैं सदुपयोग कर रही हूँ। हाँ,
3: पर फायदा तो वो ही करी जो आप सीजनेबल खाओ।
2: हाँ,
3: तो मौसम का अनुसार चीज नहीं खाओ तो बाकी सोच पे मैंने आश्चर्य हो
2: स्टोर कर रखियो है तो भी न्यूट्रिशन कतरो कम हो जाए। अरे भाई आपने विज्ञान तो बतावे है कि भाई एक घंटा के अंदर ही कोई चीज आप वो पेड़ से अलग कर दिया ना तो काफी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जावे।
3: बोलो,
2: और तो आपा स्टोरेज करा खाली कही है, कई बार तो आप फेज काम में ले रहा वाक चीज ने, खाली एक भौतिक रूप से काम में ले रहे वाक को, न्यूट्रिशन तो टोटली जीरो पा जा रहा
3: है बिल्कुल,
2: तो पीसा भी ज्यादा देनो आ रहे।
3: हाँ, और वे के चेहरा की प्रतिक्रिया देख मैंने एडो लागे मैंने यू सस्ती चीजा हूँ जाने एलर्जी वे।
2: हाँ,
3: जबकि वह मौसमी फल है वही फायदो करे, पर देखो अपनी अपनी सोच है,
2: सोच है सोच है।
3: वहां मैं भी देख रही तो मैं भी क्यों अच्छा या कि एडी सोच है, पर या की सोच आपा नहीं बदल सका
2: खेर बचपन मान सका आपा एक अनुभव है।
3: हाँ,
2: तने और मने अनुभव है बेटाबर है
3: बिल्कुल, और कह रहे कि मेहमान आई कल है।
2: हाँ,
3: तो मेहमान ने ये रखो गई
2: स्टेटस क्या दिखाओ।
3: हाँ, तो भाई मेहमान आओ चाहे कोई भी हो, मेहमान भी जब खुश हो कि आपने हाँ भाई मौसमी फल है।
2: और देखो आत्मिक रूप से अगर आप मेहमान ने भी सच्चे रूप में प्यार कर रहा है तो कहिए भाई वाने भी अठे सस्ते और महंगे की बात नहीं है, स्वास्थ्य वर्धक चीज देवा ना
3: बस। आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो रहा तो सबके हेल्थ को ध्यान रखा,
2: सही बात है, बजाय आकर्षण के, आकर्षण थोड़ी परोसनो मेहमान क्या कर।
3: पर चलो आपा अटे खैर आपा की क्या आलोचना नहीं करा, एक सोच है जो आपा सबने बताई। हाँ कि भाई यदि सोच है तो अच्छी बात है, लेकिन आप सोच ने बदलो मौसमी फल खाओ।
2: हाँ,
3: वहाँ कोई सीजन आई यदि आप प्लान खा जो
2: बस,
3: क्योंकि अब गर्मी है और गर्मी में पानी वाली चीजें ही फायदों करे,
2: मतलब प्रकृति भी आगे हाथ बढ़ान देवे।
3: हाँ,
2: कि ए खाओ अब थे
3: बिल्कुल,
2: या थोड़ा समय
3: थोड़ा समय जाई और देखो जामुन ही जामुन
2: बस,
3: खजूरिया खजूरिया लागी
2: खजूरो,
3: तो सीजन के अनुसार ही फल देवे ने प्रकृति, तो भी कोई इशारा ने समझो
2: समझो, सही बात है।
3: और देख भाई कंचन मौसमी फल खावा तो आप ये सब बीमारियों बचा रहे, क्योंकि गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो या कोई भी ऋतु हो इंसान को काम कभी नहीं रुके।
2: हाँ, सो तो है,
3: वो दौड़तो ही रहे चलते ही रहे भी को काम वो करी है, ठीक है कोई भी काम नहीं रुके, पर स्वास्थ्य को ध्यान अपना हाथ में।
2: हाँ, आप थोड़ा ध्यान दे ले वा, तो भाई जो दवा दारू पर अपन पैसा लग गए या स्वास्थ्य ने जो हानि हुआ है अपन बच सका
3: बिल्कुल, और बच्चा भी बचे, आपा खावा बच्चा ने खिलावा तो बच्चा भी वे समझ आई कि हाँ अणी मौसम में यो फल खाना,
2: यो फल खानो है।
3: आज आपा कई भी बात करा तो आपा प्रैक्टिकल आपने साथ में जो भी वही बात आपा करा,
2: वही बात करा। और कठे कठे तो कहिए मैं यान भी देखियो, कठे में गई 24-25 साल को एक टाबर पूछ रहे हो बाकी वहां पूछ रही भाई कई सब्जी बनाऊ, गवार फली बनाऊ या वो कई चमड़ा की फली बनाऊ, वो बोलियो ये दोनों सब्जी मैंने तो ठाई को नहीं, कौन सी सब्जी हो गवार फली कौन और चमड़ा फली कौन, तो ज्ञान की नई पीढ़ी की स्थिति है 24-25 साल का टापर पूछ रहे
3: बोलो
2: हैं, वठे कहिए कि बाकी माता जी बना दिन, और मैंने भी वठे रवा को अवसर मिलो जब मैं देखी है सारी प्रैक्टिकल में चीजा, तो वो बड़े चटकारे ले खा रहे हो।
3: हाँ, नई साग लागी ना,
2: नई साग लागी।
3: हाँ,
2: अच्छा मैं पूछो कि आज ये सब्जी गवार की फली भी और चमड़ा की फली भी है साथ ही मिक्स कर बनाई।
3: हाँ,
2: और इनमें कतरो रफेज है हार्ट के वास्ते ब्लड प्रेशर के वास्ते, तो वो काई कहो माता जी थे मने अतरा दिन में क्यों ही या से परिचय करायो।
3: अच्छा,
2: आप परोसे आप बनावा तो टाबर ने ठा पड़ी नहीं
3: बिल्कुल,
2: आप यह नहीं सोच लो टाबर ने चोखो नहीं ला के, अरे थे बनाओ तो सही है,
3: बनाओ तो सही। हाँ, नहीं लागे तो दो सब्जी बना दो थोड़ी बस, थोड़ी।
2: हाँ,
3: तो बच्चों खा रहे हो नहीं खा रहे हो आप ध्यान रखो
2: बस बस,
3: तो अपने आप ही खाए। और कंचन मने तो अटे बात याद आ रही, कतरा ही फल जो पहला मलता वे तो बिल्कुल ही बंद हो गया।
2: हाँ भाई बिल्कुल सही,
3: अब देखो रायना बहुत कम देखवा मिले, टिमरू देखवा ही नहीं मिले,
2: तो गायब ही हो गया,
3: गायब ही हो गया, कतरा फल गायब हो गया,
2: डांसरा फालसा।
3: हाँ,
2: रानी मेवा। हाँ, तो देखवा मिले
3: वही तो, और जो है मौसमी फल वे भी आपा नहीं लावा तो यहाँ क्यों बच्चा जैसे गवार फली के साग की ठाई नहीं पड़ी,
2: ठाई नहीं
3: पड़ी कई होवे।
2: हाँ,
3: वही स्थिति आ जाए,
2: वही स्थिति आ जाए।
3: तो आपा सबने रेडियो का माध्यम यही मैसेज देवा कि भाई मौसमी फल लाओ मौसमी सब्जियां लाओ, तो बच्चा को भी नॉलेज बढ़ी और आप सब स्वस्थ रहे। वो
2: अबे देखे तू मोटी मोटी बात करूं तो थेला पे खाइए मोटी मोटी सब्जियां मिले, अरे अपना सहतूत नहीं देखा पूरी गर्मी।
3: हाँ, बोलो सहतूत देखो ही नहीं मिल रहा, कटे कावे एक आधी बार खत्म
2: बस। तो अबे या बता कि भाई नई पीढ़ी ने काही आप परोसा,
3: सही है वो बच्चा एक इतिहास बनन रह जावे।
2: हाँ,
3: कहानियां जो आप कहवा वे पचे कहानी बन जावे।
2: तो यहाँ के वृक्ष लगावा पे भी ध्यान देना चाहिए, अपनी संस्कृति और ये चीजा यहाँ संचित रही।
3: बिल्कुल, पौधा का प्रति तो आजकल ज्यादातर लोगों को प्रेम बढ़ रहा है। और खेरा पावर भी बात करा, पर बस यो गर्मी को मौसम है, ध्यान राख जो, सावधानी राख जो, और भाई तू भी ध्यान उजाजे।
2: बिल्कुल,
3: आप जय भाई, राम राम।
2: राम राम भाई, राम।
3: आप सुन रहे रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM,
3: सुनता रहो
2: मुस्कुराता रहो।

0: देश के साथ।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो आइए, कार्यक्रम सफलता का आधार मूल शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और पिछले एपिसोड में उन्होंने सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है, इस विषय को लेकर बहुत ही अच्छी बातें शेयर किया था। तो आज हम लोग चाहेंगे कि हम सफलता क्यों चाहते हैं। आज का हमारा जो विषय है, जो आप सभी को भी लग रहा होगा कि ये ऐसा कैसा विषय है ना, हम सफलता क्यों चाहते हैं, सभी सफल बनना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो चाहत है, क्या रीजन है कि हम सफल होना चाहते हैं या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके इर्द गिर्द हम लोग बातचीत करेंगे। और आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, एक नया जो है आयाम आपको मिलने वाला है आज के इस विषय को सुनने के बाद। तो आइए राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा में।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: जी। कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया।
1: चलिए, मेरा सवाल वही रहेगा कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, इस विषय पे क्यों बोलना चाहते हैं आप?
2: आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, चाहना ही क्यों है।
1: हाँ,
2: ये इच्छा ही क्यों है कि हम सफल ही हों। तो इसके पीछे पहले हम थोड़ा, जैसे हमने हमारा जो पहला एपिसोड हुआ
1: जी जी जी जी,
2: उसमें हमने चर्चा की थी, तो आज भी थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं।
1: हाँ,
2: ताकि हम उसको क्लियर कर सकें और हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको समझ लग सके और उसको हमारे पिछले एपिसोड के साथ वो लिंक कर सके।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं।
1: जी जी जी,
2: जैसे फॉर एग्जाम्पल, सफलता क्यों चाहते हैं लोग? वैसे दुनिया में देखते हैं कि लोग सफल हैं। एक बहुत बड़ा जो ड्रीम हमारे आजकल के यूथ्स के मन में है, या जो मीडिया में दिखाया जाता है, नॉर्मली एड्स में दिखाते हैं, कोई सफल व्यक्ति होता है तो दिखाते हैं उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी होती, कोट पैंट पहना होता है, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, बहुत बड़ा घर होता है, बंगला होता है, वो ऐसे चलता है जैसे पता नहीं उसको दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति वही हो। तो बच्चों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में, यूथ्स के मन में ये होता है कि सफलता माना कि बहुत सारा मेरे पास धन हो जाए, पैसा हो जाए, मैं पैसा कमा लूंगा, या

0: कोई मैं जो बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या जो उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, वो मैं बन जाऊंगा। या फिर तीसरा एक तरह का हम कहें, जब हमने स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में जाकर के पूछा तो कहते हैं हम इसलिए सफल होना चाहते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स का नाम होगा, मान होगा, शान होगा, या हमारा भी मान शान होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब हम उनसे ये पूछते हैं कि अभी अगर आपके पास धन होगा तो क्या होगा, आप कहते हैं बहुत बड़ा पैसा होगा तो बहुत बड़ी गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा उससे क्या होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो फिर हम आराम से रहेंगे, घर होगा तो आराम से रहेंगे, बहुत बड़ा घर होगा, अच्छा आराम से रहेंगे तो उससे क्या होगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अच्छा उससे हमें शांति रहेगी, खुशी रहेगी और संतुष्टता रहेगी, अच्छा खुशी रहेगी, शांति रहेगी, संतुष्टता रहेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अल्टीमेटली उनसे हम जब ये सवाल पूछते हैं कि अगर आप किसी प्रोफेशन में भी हो तो इंजीनियर बन जाओगे तो फिर क्या, सपोज वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, अगर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगी बहुत अच्छी मेरे को, मैं बहुत अच्छी जॉब करूंगा, बहुत अच्छी से क्या मतलब है, जिसमें ज्यादा पैसे हो, ज्यादा पैकेज मिले, 40 लाख 50 लाख, तो ज्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही बात कि बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, माँ बाप आराम से रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर हम आराम से रहेंगे, आराम से क्या मतलब है, खुशी होगी, शांति होगी, संतुष्टता होगी। तो ऐसे ही जब उनको पूछते हैं, माँ बाप को इज्जत मिलेगी तो फिर क्या होगा, हमें भी इज्जत मिलेगी ना, अच्छा इज्जत मिलेगी तो क्या होगा, स्वाभिमान होगा, स्वाभिमान से क्या मिलता है, स्वाभिमान से अपने आप को संतुष्टता मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो अल्टीमेटली सफलता क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम खुशी चाहते हैं,
1: शांति चाहते,
0: प्यार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आ रही है कि हम बाहर से चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हम दूसरों से चाहते हैं, हम चाहते हैं पैसे से हमको खुशी मिल जाए, हम चाहते हैं हमें प्रोफेशन से खुशी मिल जाए,
1: बिल्कुल
0: हम चाहते हैं कि दूसरे हमें दें, जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा या मेरा बड़ा घर होगा, जैसे कई बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने हमें जवाब दिया कॉलेज में कि अपने लिए वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, बट दे हैव ए ड्रीम फॉर द पेरेंट्स, अपने माँ बाप के लिए कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, तो वो इज्जत चाहते हैं।
1: आई थिंक मुझे लगता है राजेश जी आपने जो बात छेड़ी है और इस पर लग रहा है कि हम लोग अगर अल्टीमेटली हम खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन बात हो जाती है उसको, उसका जो मेन सोर्स है उसको ना जानकर हम आधारित हो रहे हैं, डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं, पैसा होगा तो ये होगा, फिर ये करने से ये होगा, माना ऑलवेज हम लोग डिपेंड कर रहे हैं बाहर की चीजों से,
0: राइट
1: और हमेशा हमारी जो चाहना है वो अंदर की है, शांति प्रेम की,
0: राइट,
1: जो कहीं बिकती नहीं है और मिलती नहीं है बाहर,
0: राइट राइट।
1: तो शायद यहां ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोग जो है सफल होने का सही अर्थ को समझ सकते हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस,
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्र अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये जो विषय है मैंने कहा था कि आपको एक अंतर्दृष्टि मिल जाएगा, एक इनसाइट की तरफ आपका जो है फोकस राजेश जी आपको करना चाहते हैं, तो शायद आप उस फोकस की तरफ ध्यान देंगे, अगर आप अपना टारगेट क्या है, आपको क्या चाहिए, अगर इस पर आप अगर फोकस करेंगे तो वो चीजें तो बाहर से मिलनी ही नहीं है, फिर इसका मतलब हमारा जो हम जो सफल होना चाहते हैं, चाहे पैसा कमा लिया, गाड़ी बंगलो वगैरह सब कुछ आ गया, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं फिर भी हमारा जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होगा,
0: राइट
1: तो उस पर्पस तक पहुंचने के लिए हमें जो है कुछ और चीजें करनी है जो राजेश जी ही शायद बताने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग अब सफलता क्यों चाहते हैं ये तो आप समझ गए होंगे, इसके पीछे का जो मोटो है वो आपको पता चल गया, अब आगे बढ़ते हैं। राजेश जी सुनाइए।
0: तो हमने सफलता को जैसे हमने अभी जाना कि खुशी है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, संतुष्टता है, हम ये चाहते हैं, लेकिन हम बाहरी रूप से चाहते हैं और हमने इसको कंडीशन्ड कर दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कंडीशन माना ये होगा तो ये होगा, जैसे हमने कल माइंडसेट की बात की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि मैं अगर 1000 रूपये कमाऊंगा तो ही मैं खुश होऊंगा, लेकिन हमने देखा था कि एक 210 रूपये कमाने वाला व्यक्ति भी जिसने 800 रूपये कमाया उससे क्या है, वो खुश है। तो हमने कंडीशन्ड कर दिया है अपने आप को।
1: बिल्कुल।
0: कि मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो ही मैं खुश हो सकता हूं, अगर मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा तो मैं खुश नहीं हो सकता। कंडीशन कर दी, शर्त रख दी हमने कि ये होगा तो ही ये होगा, लेकिन ये भी माइंडसेट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है, तो फिर सच्ची शांति खुशी आनंद है कहाँ? बाहर तो हम भटकते ही रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: अगर आज ये है तो कल ये है, परसों ये, हमारी नई नई कंडीशंस बनती रहती हैं। अगर आज आपने, जैसे मान लिया ट्वेल्थ के स्टूडेंट है, आपने डिसाइड किया 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होऊंगा, नहीं आए तो आप दुखी, आ गए तो आप खुशी। उसके बाद आपने नई एक माइंड सेट कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे को यही IIT में एडमिशन चाहिए
1: और यही जगह पे चाहिए
0: और यही, और उस जगह पे नहीं मिला मेरे को किसी छोटे से कॉलेज में मिल गया तो मैं दुखी। हमने तो यहां तक देखा है कि स्टूडेंट सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। अरे मेरा तो लाइफ का ड्रीम ये था, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि ड्रीम मेरा क्या है। क्या मुझे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या अंदर जो मुझे चाहिए? क्योंकि बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो भी क्या होगा? मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन अगर छोटे में भी मिल गया तो खुशी शांति वो कहां है? प्रश्न यही आता है ना? क्या बड़े कॉलेज में, ज्यादा पैसे में, बड़े घर में खुशी शांति आनंद है या कहीं और है? तो आजकल के स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को असफल समझते हैं। असफल इन द सेंस के मान लीजिए इंजीनियर नहीं बना, वो तो उसका मींस है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: खुशी शांति आनंद प्राप्त करने का जो आपने माइंड सेट कर लिया था वो तो उसका मींस है, लेकिन अल्टीमेट हमारा एम नहीं है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारा एम इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, अगर मैंने वो नहीं प्राप्त किया तो मैं क्या हूं, असफल हो गया। लेकिन सफलता वो नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आज लोग पैसे को मींस मान रहे हैं, अपने प्रोफेशन को मींस मान रहे हैं, दूसरों से प्राप्त हुई इज्जत को मींस मान रहे हैं, तो यहां बहुत बड़ी गलती हो रही। इस चीज को हमें लिए समझना जो है वो बहुत बहुत बहुत जो है वो
1: जरूरी है।
0: जरूरी है
1: राजेश जी, काफी अच्छा आपने बताया और मुझे लगता है कि यहां पर एक आत्मचिंतन की बात मेरे समझ में आ रही है कि हम लोग जो ड्रीम्स देख रहे हैं, हम लोग जो सपने सजाए हैं और जो छोटी छोटी हमारी गोल्स आते जाते हैं और हम लोग एक के बाद एक गोल्स हमारा नया बनता जाता है और उसमें कहीं ऊपर नीचे हो जा रहे हैं तो हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि हम लोग अपनी जो मेन जो पर्पस है उससे भटक कर और फिजिकल चीजों में कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इच्छाओं को रख रहे हैं और वो पूरा नहीं होने के कारण हम लोग बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड केस जैसे आपने बताया ये सारी चीजें कर रहे हैं। कई बार माता पिता की भी अपेक्षा बच्चों से रहती है कि डिस्टिंक्शन में आना चाहिए, मेरा बच्चा बना सबसे हाई अच्छा एजुकेटर। तो अब वो बच्चा अगर हाई नहीं कर पाता है, डिस्टिंक्शन में उसका नंबर नहीं आता, तो माता पिता के डर से भी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं।
0: उसका भी कारण ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, और एक्सपेक्टेशंस बचपन से डाल देगी। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारा कंपटीशन का जमाना,
1: बिल्कुल,
0: तो कंपटीशन बच्चों में आया कहां से? कंपटीशन आया बचपन से। मुझे याद है एक बार मैं स्कूल में गया, वहां पेरेंट्स की मीटिंग हो रही थी, एक फर्स्ट ग्रेड का छोटा सा बच्चा होगा। तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग खत्म होती है, बच्चा बाहर निकलता है अपनी मम्मी के साथ, और जैसे ही उसकी मम्मी बाहर निकलती है उसको मारना शुरू कर देती कि तू तो फेल हो गया मैथ्स में, मैंने तुझे इतने बढ़िया स्कूल में डाला, हम तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, तू फेल हो गया। तो बच्चे को ये लग गया कि जब तक मार्क्स नहीं आएंगे
1: तब
0: मेरे को
1: मां
0: बाप प्यार नहीं मिलेगा, मेरे को चीजें नहीं मिलेगी, मेरे को खुशी नहीं मिलेगी।
1: तो ये रॉन्ग प्रोग्राम भी क्रिएट हो गया उसके साथ।
0: ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग, ये कंडीशनिंग जो अभी आपने भी बात की कि जो हमने कंडीशनिंग कर दी है
1: जी जी जी,
0: कि खुशी कहीं और है और हमारे समाज ने ही, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे सिस्टम ने उसको जो एक अनकंडीशन चीज है जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इस पहलू को क्लियर करें, जैसे आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया
1: जी, जी,
0: कि व्हाट आर द रीजंस, ये कंडीशनिंग के रीजंस क्या हैं, ये बचपन से हम में जो है वो
1: ये ऐसे लगता है कोई एडवर्टाइजमेंट हो गई भाई, फ्री में आपको ये मिलेगा और छोटे अक्षर में लिखा रहता है कंडीशन सप्लाइड, और वो हम पढ़ते नहीं, हम तो ऊपर की चीजों को देख रहे हैं और जंप कर दिया। जब वो कंडीशन अप्लाइड में हमको सारी चीजें पता चल जाती है, अरे ये तो गड़बड़ है। तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं आज के समय में, माता पिता हो या बच्चे हो, सभी लोग जो है ना एक टारगेट अचीव करने के चक्कर में अपने मूल्यों को, माता पिता को अपना बच्चों से प्यार है वो जताना है, जब एग्जाम में पास हो गए तो मैं अब अच्छा होगा, ऐसा थोड़ी अपन ने कंडीशन करके प्यार किया था इस बच्चे को जन्म देने का, ये थोड़ी तुमने एप्लीकेशन डाला था।
0: इसीलिए तो कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ने रखी है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और उनको ये लगता है कि बच्चा मेरा आईआईटी में जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, एम्स में जाएगा तो बहुत सारा धन कमाएगा, तो धन कमाएगा तो बहुत सारा पैसा होगा। हमने जो पेरेंट्स के मन में ये हमने जो मुश्किलें झेली हैं, दुख झेले, इनको ना झेलने पड़े, लेकिन वो दुख सुख जैसे हमने लास्ट एपिसोड में पाया वो कहीं और है और उनके मन में भी ये गलत फहमी है, उन बेचारों को भी समझ नहीं है, इसलिए ना समझ होने के कारण वो ऐसा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लैक ऑफ नॉलेज, माना खुद का नॉलेज नहीं है और
0: रियल ट्रू नॉलेज है वो नहीं है, सत्य नॉलेज नहीं है,
1: नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है एक दौड़ की तरह रन कर रहे हैं लेकिन कहीं शांति नहीं मिल रही है।
0: राइट और एक जो दूसरा कारण मैं बताना चाहूंगा, एक साइकोलॉजिकल रीजंस है, हम सफलता क्यों चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन एक साइकोलॉजिकल रीजंस है। जैसे एक शब्द सफलता है, जैसे सफलता शब्द हमारे माइंड में आता है, हमारे मन में आता है, तो वो सफलता शब्द जुड़ा है एक खुशी के साथ, एक शांति के साथ, एक संतुष्टता, नेचुरल है,
1: नेचुरल है।
0: और ब्रेन हमारा जो है, जिसको न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जो अच्छे शब्द हैं, जब हम सुनते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए सफलता शब्द है, वो एक पॉजिटिव शब्द है, किसी की हम प्रेज करते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने आज शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, है ना, तुमने आज बहुत अच्छा भाषण किया है, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम किसी की भी किस तरह प्रशंसा करते हैं, पॉजिटिव शब्द बोले जाते हैं, तो वो पॉजिटिव वर्ड जो है ब्रेन में एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: और उन चेंजेस को हम न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं, जब ब्रेन की एमआरआई की जाती है तो पता लगता है हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एग्जीक्यूटिव स्किल्स बढ़ जाती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, और जिसके कारण पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स हमारे ब्लड में जो है रिलीज होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन और उसका अपोजिट क्या है, नेगेटिव शब्द, जैसे सफलता का जो नेगेटिव शब्द है वो असफलता है। जैसे ही हमारे मन में असफलता शब्द आता है, या तो हमें वो दिखता है, मन में सोचते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमको रियलाइज कराते हैं, या हमारे दोस्त या हमारे समाज हमको रियलाइज कराते हैं कि ये व्यक्ति असफल हो गया है, इसको इज्जत नहीं मिलेगी, वो हमें इज्जत नहीं देते, वो हमें खुशी नहीं देते। कई बार हम अपने अंदर अपने आप से नहीं डरते लेकिन दूसरों से डरते हैं, दूसरों का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, पेरेंट्स का प्रेशर, समाज का प्रेशर, कि वो हमें इज्जत नहीं देंगे, हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमको बड़ा नहीं समझेंगे, हमें अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, तो उनके डर के कारण ही भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता, वो चाहता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, सफलता ही चाहिए। क्योंकि ये जो असफलता वाला शब्द है, ये जो नेगेटिव वर्ड है, जब हमारे अंदर जाएगा, या तो हम उसको सोचेंगे, क्योंकि तीन कारण हैं, या तो आप सोचते हैं, या तो आप बोलते हैं, या आप सुनते हैं, दूसरे माना आपके माँ बाप आपको बोलते हैं, आपके दोस्त आपको बोलते हैं, आपको समाज वाले आपको बोलते हैं, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ब्रेन के ऊपर, जैसे पॉजिटिव इफेक्ट बोला पॉजिटिव वर्ड्स का, ऐसे उल्टा होता है नेगेटिव, तो जैसे पॉजिटिव वर्ड्स जाते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे जब नेगेटिव शब्द जाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ये जो है ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, ये रिलीज होते हैं, जो कि हमें एंग्जाइटी पैदा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं, और यही स्ट्रेस अगर लगातार बना रहे तो ये लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी बन जाती है, टेंशन बन जाती है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे हमें चिंता हो जाती है, या कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहेंगे वो उदास हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये
1: बिल्कुल
0: भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम असफलता शब्द को सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजेश जी काफी अच्छी बातचीत आपने की आज, और मुझे लगता है कि सफलता क्यों चाहते हैं, ये आपने वास्तविक जो स्वरूप है उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया, इनसाइट मना हमारी अंतर्दृष्टि को आपने जगाने की कोशिश की इसके साथ में, और बहुत सारे पहलू हैं, मुझे लगता है कि आगे हम लोग अनेक पहलुओं पर बात करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते राजेश जी मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे।
0: मैसेज जैसे हम चाहते क्या, खुशी चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं आनंद, तो उसको प्राप्त करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थियों से या जो भी हमारे श्रोतागण हैं वो करें। हम चाहते हैं खुशी, लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि वो हमने कंडीशन कर दी, लेकिन वो अनकंडीशनड होनी चाहिए, उसका निराधार होनी चाहिए, उसका कोई आधार नहीं चाहिए
1: होना चाहिए।
0: तो उसको हम बताने से पहले हमारे श्रोतागण, हमारे विद्यार्थी इसके ऊपर प्रयोग करें और खुद ही खुद हम चाहते हैं कि वो समझें इसको, इससे पहले कि हम अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करें, वो इसको खुद ही समझे और जान लें और हम जो बातें बताएं वो हमारे साथ रिलेट कर सके कि हाँ ये जो बात करी हमने अनुभव कर लिया। तो उसके लिए एक उनको संकल्प देंगे कि आई एम ए हैप्पी बींग, मैं एक खुशी का सितारा हूं।
1: क्या बात,
0: आई एम ए हैप्पी स्टार। अपने आप को ये संकल्प भी देंगे और देखेंगे भी अपने मस्तिष्क के मध्य में, जैसे सितारे चमकते सबको बहुत अच्छे लगते हैं, खुशी देते हैं, तो मैं भी एक खुशी का सितारा हूं। आई एम ए स्टार ऑफ हैप्पीनेस। दिन में 10 बार इसको सोचें और समय मिले तो बैठ करके देखें अपने मस्तिष्क के मध्य में ये सितारा चमक रहा है, और बार बार उसका अनुभव करने की कोशिश करें, रियलाइज करने की कोशिश करें, न केवल स्वयं को लेकिन जो भी व्यक्ति सामने आता है घर में, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, जैसे वो सामने आए, जैसे मैं खुशी का सितारा हूं, सामने वाला भी खुशी का सितारा है। और दिन में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करें, और सुबह भी 10 बार लिखें उठते ही, रात को सोने से पहले 10 बार लिखें, और मैं समझता हूं नेक्स्ट डे व्हेन यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपने अंदर एक अजब सी खुशी, एक अजब सी सफुर्ती, एक अजब सा उमंग और उत्साह पाएंगे।
1: चलिए राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया, और जो बातें आपने बताई हैं वो मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा जो सफलता क्यों चाहिए, उसके पीछे का रीजन उनको समझ में आ गया। और आखिरी में जो संदेश में आपने बताया कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, निराधार है खुशी, प्रेम, शांति, आनंद पाने के लिए आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को थॉट दीजिए, जिस तरह के थॉट राजेश जी ने बताया, आई एम अ हैप्पी सोल, मैं बहुत ही खुशनुमा आत्मा हूं, इस तरह से अपने आप से कनेक्ट होते रहें, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर आपके साथ जुड़ेंगे, और फिर से एक बार राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आप सभी को अपने निराधार खुशी सफलता को प्राप्त करने के लिए ढेरों खुशियां। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। संगीत प्रत्येक मानव जीवन में अपरिहार्य है। संगीत मानव को रूप, रस, छंद में सूक्ष्ममंडित करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि मानव को पूर्णता प्रदान करता है। संगीत से ही हमें आनंद की अनुभूति कर औरों को भी हम आनंदित करा सकते हैं। संगीत जैसा निष्पाप साथी और बंधु संसार में और कोई नहीं बन सकता, इसलिए संगीत इतना सर्वप्रिय होता है। तो आइए, संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ जी, गीता जी, आपको भी और सबको दिल से स्वागत करती हूँ।
0: आज श्यामली जी हमें आगे क्या सिखाने वाले हैं?
1: हाँ, पिछले एपिसोड में हम राग केदार शुरू किया है, आज तो उसका स्वरलिपि दे दिया था, आज तो बंदिश दे देंगे, थोड़ा तान करेंगे, विसर करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा जानकारी दे देते हैं। हाँ। ये जो राग है कलन ठाटकी है, करीमा सुधमा दोनों ही यूज होता है।
0: ओके।
1: और गा थोड़ा वीक है, इसलिए हमने कहा था वर्जित है गा अवरोह में, एकदम वीक, जैसे गा वर्जित स्वर है लेकिन कभी कभी गा वीक है, इसके लिए ज्यादा ठहरते नहीं है।
0: हाँ।
1: जो स्वर में ठहरते हैं वो ठहरते नहीं है। तो हम तो करके सुनाएंगे, फिर दोबारा समझा देंगे। और जो नी विवादी स्वर है उसको भी थोड़ा दिखाएंगे, कैसे करना है, कैसे लगाना है
0: जी।
1: तो और भी एक वाइटल मैसेज है कि इसमें जो हम जब कोई राग करते हैं, सा पा सा गुटी दबा कर करते हैं हारमोनियम में, तो इसमें मा वाइटल स्वर है, इसलिए क्या करेंगे, मा को सा करके करेंगे
0: जी,
1: पानी लगाएंगे, सा मा ज्यादा ब्यूटी आती है, सा मा सा करके करेंगे।
0: ओके।
1: ठीक है।
0: हाँ।
1: तो आगे थोड़ा जो आज स्थाई अंतरा दे देते हैं, जो बोल है बंदिश जो है, बोल थोड़ा सुना देते हैं लिसनर को। अगर किताब पेन लेकर बैठते हैं तो अच्छा है
0: जी।
1: तो स्थाई का जो बोल है, मोरा बोले रे सावन की रूत वन वन डार डार, बहुत सुंदर जो बंदिश है, सावन की महीने की जो है, जब मोरा बोल रहे हैं, मोर बोलते हैं, इसका छवि इसमें है। मोरा बोले रे सावन की रूत बन बन डार डार, बन बन में मोरा बोलते हैं सावन की ऋतु में। और अंतरा जो है, आज पिया घर आए मोरे सजनी ले हू बलैया बार बार, दोबारा बोलती हूँ, आज पिया घर आए मोरे सजनी ले हू बलैया बार बार। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने पिछले एपिसोड में जो स्वरलिपि दिया है, शायद लिसनर बहुत अच्छा से उसको निभाए है, प्रैक्टिस किया है, तो प्रैक्टिस बिना तो कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करना चाहिए। और आ करके हमने बताया कि आकर सहित करेंगे तो बहुत अच्छा है
0: जी।
1: तो अभी हम क्या करेंगे, जब स्वरलिपि के साथ ये दे देंगे, ये बंदिश बैठा देंगे, बहुत सहज से वो कर सकते हैं। ठीक है
0: जी जी।

हमने जो स्थाई का थोड़ा दिखाया है पहले रिजल्ट को, पिछले एपिसोड में बताया कि ये जो एक तल की ऊपर जो विलंबित है इसमें एक तल के जो 12 मात्रा है, 12 के साथ अगर 4 इंटू करेंगे तो 48 मात्रा होंगे। तो एक एक मात्रा में चार चार मात्रा प्लस होता है। तो हमने बताया कि मुकरा जो होता है सोम के चार मात्रा आगे से शुरू होता है, जैसे मोरा बोली, बो के ऊपर मोरा, बो के ऊपर सोम है। फिर से मैं दोहराती हूँ, ठीक है।

0: ये हमने जो स्थाई का जो है, स्थाई का जो बोल है, हमने जो धुन दिया था, स्वरलिपि दिया था, उसमें बैठा दिया। अगर लिसनर बहुत अच्छा से वो प्रैक्टिस किया है स्वरलिपि को, ये जो हमने बंदेज दिया है वो बैठने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, आसानी से सहजता से बैठ जाएंगे
1: जी।
0: ठीक है
1: श्यामली जी, आपसे और भी आगे केदार राग में सीखेंगे, मगर अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक में हम केदार राग से संबंधित एक मीठे से प्यारे से गीत का आनंद लेंगे। पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले श्यामली जी से हमने केदार राग की स्वर लिपि के साथ बंदिश भी सीखी, अब आगे श्यामली जी हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, स्थाई तो हो गया, अभी अंतरा बाकी है
0: जी।
1: अंतरा फिर से स्वर लिपि करके रिपीट करती हूँ और उसके साथ बंदिश बैठा देती हूँ।

0: क्या किया, ताई किया, स्थाई के बंदिश किया, अंतरा का बंदिश किया, उसके साथ बिस्तर किया। इतना जल्दी नहीं होंगे, गुरु के पास तो शिक्षा जरूर लेना है। थोड़ा सा नमूना दिखाया, थोड़ा दुगुण चार गुण ऐसे किया, थोड़ा आकर के किया है, थोड़ा लिसनर अच्छे से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, गुरु के पास शिक्षा लेंगे तो कर सकते हैं बहुत अच्छा से। क्योंकि ये विलंबित जो है 48 मात्रा की है ना, पूरा आवर्तन घूम के आना है, एकदम मैथमेटिकली उसको करना है।
1: आप जैसे बोलते हैं वैसे अभ्यास भी हमारे श्रोता मित्र करते होंगे, रियाज भी करते होंगे। श्यामली जी, आज आप हमारे लिए खास कौन सा गीत लेकर आए हैं जाते जाते?
0: हाँ, बहुत सुंदर एक हमने भजन लाए हैं, नरसी भगत जो अच्छा। फिल्म है, बहुत पुराने फिल्म है, हेमंत कुमार जी और के साथ मानना जी, मानना दे जी भी है और के साथ और भी साथियां हैं, तो बहुत सुंदर। दर्शन दो घनश्याम, बहुत सुंदर
1: जी।

0: आप ऐसे गाएंगे तो जरूर घनश्याम भी देंगे दर्शन। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, भक्तिमय वातावरण हो गया
1: जी।
0: श्यामली जी, समय करता है इशारा इजाजत लेने का। पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9914151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 107.8 एफएम द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक महिला अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था के बीच किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
1: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी माँ रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की माँ बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती है और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहाँ क्या चल रहा है।
2: बीनणी, ए बीनणी, कटे परीगी, मारा पगणा दुख है, थोड़ा दबा तो।
3: माँ जी, मने घना चक्कर आ रहा है माँ जी, मारी तबियत ठीक कोनी, सुबह 4 बजा की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजा तक काम कर रही हूँ, अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
2: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, अनि दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 60 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी।
3: माँ जी, आपको समय अलग हो।
2: सामने बोल रही हूँ, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोले।
4: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
3: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रो, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठाई रहा हूँ।
4: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
3: थाने खबर है कि मारो पूरा टाइम चल रहा, मारो सु काम कोनी हो रहे हो, क्या समझाऊं थाने, आ आ मारो पेट दुख रहे हो। आ
4: पुष्पा, पुष्पा कई होयो थारे, माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई होयो।
2: अरे कई नहीं होयो, जा दाईमा ने बुला ला, बालक ने जन्म दिवाली पीड़ा है। बिनणी सुन, मारे तो पोतो ही चाहिए।
5: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
2: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
5: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बिनणी और बालक दो ही घना कमजोर है, यहाँ को ध्यान रख जो, मैं जाऊँ, राम राम।
2: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान रखो।
3: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
2: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता दड़ता मूर्ति, छोरिया ने घने माथा पर नहीं बिठानी।
3: सो जाए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

शांति। आज 21 जून 2026 और आज सारे विश्व के अंदर 177 देशों में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को विशेष इसीलिए चुना गया क्योंकि साल का सबसे लंबा दिन 21 जून को माना जाता है। 22 जून से फिर सूर्य दक्षिणायन के तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। आज के दिन के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति का मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है और योग के माध्यम से ही इस संतुलन को बनाए रख सकता है। इसीलिए परमात्मा ने भी जब श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को योग सिखाया तो उसमें विशेष उन्हें यही प्रेरणा दी कि हे अर्जुन, योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करना, अपने इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करना, क्योंकि जब इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करता है तभी व्यक्ति अपना मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन सहज बना सकता है।

अपने जीवन के अंदर सहजता से संतुलन ले आ सके। योग माना ही संतुलन, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता, इन दोनों का संतुलन जरूरी है। कर्म और योग के बीच का संतुलन आवश्यक है। व्यवहार और परमार्थ के बीच का संतुलन जरूरी है। तो ऐसे संतुलन की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य इसी परिवर्तन के विषय पर है, लेकिन बाबा ने जो परिवर्तन कहा है उसको बहुत सूक्ष्म स्तर से आरंभ करने की जरूरत है। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर तीन भाग्य की रेखाएं चमकती हुई देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक के रूप में शिक्षा का भाग्य, और तीसरा है सतगुरु के द्वारा वरदानों का भाग्य। बाबा कहते हैं, भाग्य की चमक सभी की एक जैसी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, पालना एक जैसी ही दी है, और वरदान भी एक जैसे दिए हैं, फिर भी भाग्य की चमक सबकी एक जैसी नहीं है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है, चाहे आगे आने वाले हैं, पीछे आने वाले हैं, लेकिन हर एक अपने अधिकार से यही कहते हैं, मेरा बाबा। इस मेरा बाबा मानने से आप बाबा के बन गए हैं और बाबा आपका बन गया है। ये परमात्मा प्यार सिर्फ अभिसंगम पर ही प्राप्त होता है, और बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं, यही कहते हैं, वाह बच्चे वाह, आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। बच्चों के दिल का भी यही गीत है, वाह मेरा भाग्य वाह। बाप दादा पूछते हैं, सबसे ज्यादा प्यार किसका है? तो बाप कहते हैं, बच्चों का प्यार भी कोई कम नहीं है, प्यार के सब्जेक्ट में सभी पास हैं। तभी तो मेरा बाबा कहते हैं, सभी जानते हैं बाबा का प्यार तो सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी बाबा इतना बच्चों को नशा चढ़ाता है कि बच्चों का प्यार भी कम तो नहीं है, प्यार के सब्जेक्ट में सभी को बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि पास है। प्यार में तो सब पास है, लेकिन अभी समय प्रमाण आवश्यकता क्या है? स्व परिवर्तन की, और स्व परिवर्तन में भी विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, इसकी आवश्यकता है। परिवर्तन तो बाबा कहे करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, लेकिन अभी स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए, क्योंकि समय अनुसार बाबा समय का भी इशारा देते हैं और कहते हैं, समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है, तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। बस इतना तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए परिवर्तन का, संकल्प किया और हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसे समाप्त हो जाए, अयथार्थ माना फालतू संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए जैसे कि कागज पर बिंदी लगाओ। दृढ़ संकल्प के संकल्प है कौन सा? करना ही है। तो बाबा पूछते हैं, क्या कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए? मनाए, इस सेरेमनी को तो बड़े धूमधाम से मनाना है। जैसा लक्ष्य हिम्मत का रखा, वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बाबा कहे लक्ष्य और लक्षण को एक करना है, फॉलो ब्रह्मा बाप, जो भी

संकल्प बोल कर्म करो, पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। बाबा स्मृति दिलाते हैं, जब सरेंडर हुए तो क्या संकल्प किया? बाबा ये तन मन धन सब आपका। जब आपने तन मन धन तीनों अर्पण किया, बाबा स्मृति दिलाते कि जब आपने तन मन धन तीनों अर्पण किया तो आपका शरीर बाप के सेवार्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवार्थ रहा, तो यह जो संस्कार है देह अभिमान के, देह भान के, ये होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं देह अभिमान बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जो भी ब्राह्मण बने उन सभी का बाबा से वायदा है, तन मन धन बाप का है, मेरा नहीं है। तो ये संस्कार जो पैदा होते हैं वह देह भान या देह अभिमान में होते हैं। आज भी वायदा बाबा सभी से लेते हैं कि संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में वो यही संस्कार है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर विघ्न न आए तो संस्कार समाप्ति करो। अभी ये प्रत्यक्षता होनी ही है, ये स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता होगी। जैसे ही संस्कार परिवर्तन किया तो बाबा कहे एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता होगी, विघ्न भी समाप्त होंगे और प्रत्यक्षता भी होगी। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन कि हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना, शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा, भावार्थ रिप्लेस करना है। अगर संस्कार परिवर्तन किए और वो संस्कार की जगह, पुराने संस्कार की जगह खाली रही तो पुनः वो संस्कार वापस आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने चार्ट में शुभ भावना, शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखकर उसको रिप्लेस करो। किसी भी समय किसी का भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा के प्रति कम है या नहीं है। अगर अमृत वेले से ये संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है वो पूरा कर सकेंगे। बातें तो आएगी, बाबा कहते बातों का काम है आना, लेकिन आपका काम है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। उसके लिए जैसे बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले आए, आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से, शिव बाबा के सहयोग से आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहे। हिलाने वाली बातें आते भी अचल रहे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा देखते हैं कि बच्चों ने भी बहुत प्रोग्राम बनाए हैं। ब्रह्मा बाप तो अकेला था उस समय, और कोई साथ नहीं था, और फिर भी हिम्मत रखी। बाबा कहे आप तो बहुत है, बहुत साथी है। तो फॉलो फादर, सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे, साथी बच्चे समझते हो ना, तभी तो कहते साथ में चलेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। सिर्फ आप सभी एक बात करो, और वो एक बात बाबा विशेष अटेंशन में खिंचवा रहे हैं कि साधारण पुरुषार्थ को अभी तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। लेकिन उसके लिए बाबा ने देखा कि कहां कहां अलबेलापन भी बच्चों में आ जाता है, वो ही जाना है। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ज्ञान के हिसाब से निश्चित है, लेकिन अलबेलेपन में भी यही शब्द आते हैं कि हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। एक है पुरुषार्थ के ये शब्द और दूसरे हैं अलबेलापन के शब्द। लेकिन ये अलबेलापन के शब्द है उसकी निशानी क्या? तो बाबा कहते हैं उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी,
शक्ल में वो खुशी की झलक नहीं दिखाई देंगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी तो होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती है। इसलिए बाबा इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प कराते हैं कि यही दृढ़ संकल्प रखो, बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, अपने चेहरे और चलन से और उसके लिए संस्कार परिवर्तन करना ही है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर तीन भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। बाप दादा हरेक बच्चे के भाग्य की रेखाएं मस्तक पर चमकती हुई देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य, और तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तीनों भाग्य चमकता हुआ देख रहे हैं। बाप टीचर सतगुरु के रूप में पालना पढ़ाई और वरदानों का भाग्य बाबा हरेक बच्चे के मस्तक पर चमकता हुआ देख रहे हैं। हर एक का मस्तक तीनों भाग्य से चमक रहा है। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा है। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना? पूछते बाबा कि क्या जैसे बाप दादा भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं, वैसे आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना? बाप दादा ने देखा, क्या देखा? भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की चमक सभी की एक जैसे नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है, कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती है। वैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। बाबा ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, बाबा ने सबको एक जैसा एक ही समय पर भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, पालना एक जैसी दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आदि रत्न व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है। बाबा चाहे पहले आए हो लास्ट में आए हो, सबको एक ही मुरली द्वारा पालना देते हैं, पढ़ाई मिलती है, वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। तो पालना भी एक ही देते हैं मुरली द्वारा, पढ़ाई भी मिलती है, वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली अलग नहीं होती, एक ही होती है, लेकिन नंबरवार चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। हरेक के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। चाहे आगे आने वाले चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा बाबा। किसी से भी पूछो, बाप से प्यार मिला है? तो फलक से कहते हैं, मेरे को बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। हर एक अपने अनुभव से कहते हैं और फलक से कहते हैं कि मेरे को बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। ये मेरा बाबा दिल से कहने वाले
क्या फलक से कहते हैं, जितना दिल से कहते उतना नशे से भी कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है। बाबा कहते हैं हर एक क्या इतना ही नशे से कहते हैं कि मेरा प्यार बाबा के प्रति बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। बाबा का प्यार पहले मेरे से ही है, क्योंकि प्यार ही बाबा की पालना है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरे बाबा मानने से आप बाबा के बन गए। जैसे ही दिल ने स्वीकार किया मेरा बाबा, तो आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया। आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लेन में आए हो ना, पूछते बाबा। सभी जो भी मधुबन पहुंचे तो प्यार के प्लेन में पहुंचे हैं। प्यार ने खींच के सभी को यहाँ लाया है। बाबा के प्यार ने ही सबको खींच करके यहाँ ले आया है। सभी प्यार से आराम से पहुंच गए। यह परमात्मा प्यार सिर्फ अभी संगम पर प्राप्त होता है। भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ सारे कल्प में संगम युग पर मिलता है। भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं। जब बाबा ऐसे प्यार की पात्र आत्माओं को देखते हैं तो क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। यही गीत बाबा के दिल से निकलता है। आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना, पूछते बाबा। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना, आपकी दिल भी यही गीत गाती है, वह मेरा भाग्य वाह। बाबा कहते हैं बाबा तो आप सबको देख करके यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। लेकिन जब आप उस नशे में रहते हैं तो आपका दिल भी ये गीत गाता है, वाह मेरा भाग्य वाह। ये गीत गाते रहते हो ना, बाप को भी खुशी होती है कि ये सभी बच्चे अधिकारी है। अपने को कोई भी परमात्मा प्यार में कम नहीं समझते हैं। प्यार में सब पास है। प्यार में बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, सब पास है। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार किसका है, तो कौन कहेंगे। सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है। बाप भी कहते हैं कि प्यार के सब्जेक्ट में सभी पास है। तब मेरा बाबा कहते हैं ना, तो प्यार के सब्जेक्ट में सब बच्चे पास है। और इसीलिए दिल से कहते मेरा बाबा कितना प्यार है वह हर एक जानता है। हमारा बाबा के साथ कितना प्यार है वह हर एक अपने आप को जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास है, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्व परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। प्यार में तो हर एक बच्चा पास है, लेकिन बाबा कहते अभी समय प्रमाण आवश्यकता है स्व परिवर्तन। सिर्फ स्व परिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्व परिवर्तन में विशेष क्या परिवर्तन करना है, तो स्व परिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन इसकी आवश्यकता है। तो बाबा ने अंडरलाइन करा दिया कि स्व परिवर्तन में भी स्वभाव परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन उसकी आवश्यकता है।
अभी स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। समय की गति को देखते हुए बाबा यही इशारा देते हैं कि स्व परिवर्तन तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन और उसमें भी स्पीड अभी गति जरा फास्ट चाहिए। बाबा कहते करते भी हो, स्व परिवर्तन करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, पहले भी बाप से वायदा किया, वर्ष के आरंभ में जैसे ही नए वर्ष प्रारंभ हुआ तो बाबा याद दिलाते हैं कि पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए उसकी गति और फास्ट चाहिए। आप सभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए उस अनुसार हर एक का तीव्र पुरुषार्थ है या और होना चाहिए? बाबा कहते आप क्या फील करते हो कि जो पुरुषार्थ की गति है वो ठीक है समय अनुसार या और तीव्र गति चाहिए? क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता उसकी डेफिनेशन बाबा बताते, संकल्प किया और प्रैक्टिकल हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसा समाप्त होना चाहिए कैसा, जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ, बस एक सेकंड में बिंदी लग गई। ऐसे बाबा कहे अयथार्थ संकल्प समाप्त होना चाहिए। कितने में लगेगी? अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्पों को इतना फास्ट परिवर्तन करना चाहिए, महसूस हुआ और बस समाप्त। क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं ये कर सकते हो? पूछते बाबा, क्या ऐसी तीव्र पुरुषार्थ की गति कर सकते हो? परिवर्तन में है हिम्मत? जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, वह हाथ उठाओ। बाप दादा बच्चों का दृढ़ संकल्प देख मुबारक देते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दृढ़ संकल्प के संकल्प है, क्या है दृढ़ संकल्प का संकल्प? करना ही है, करना ही है। तो आज की सभा में सभी ने यह दृढ़ संकल्प किया है ना? आपने देखा, दादियों ने देखा, बाबा दादियों से पूछते हैं कि आपने देखा, दादियों ने देखा, सभी ने, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, देखा। तो कल से बाबा को कितनी खुशी होती है सबने हाथ उठाया तो, कि कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए। बस इतने लोगों ने हाथ उठा दिया तो बाबा कहे स्वभाव संस्कार के समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए, मनाए। जिन्होंने हाथ उठाया वो हाथ उठाओ, सेरेमनी मनाए। पूछते बाबा, इसकी सेरेमनी तो बड़ी धूमधाम से मनाना, स्वभाव संस्कार के परिवर्तन की सेरेमनी को तो बाबा कहे बहुत धूमधाम से मनाना। जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सहज हुआ ही पड़ा है।
इसीलिए बाबा कहे जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। जब लक्ष्य है ही बाप समान बनने का तभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप, ये लक्ष्य और लक्षण को समान करना है। जो भी संकल्प बोल कर्म करो पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। बाबा कहते दुनिया में तो कॉपी करना मना है लेकिन बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। निराकार बाप के लिए तो कहेंगे उसको देह नहीं तो देह भान क्या है, लेकिन ब्रह्मा बाप देहधारी रहे है ना। वास्तव में देखो आप जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। उस समय काफी भाई बहने विदेश के सरेंडर हुए थे तो बाबा कहते सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ, जो सरेंडर है वो हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया, स्मृति दिलाते बाबा क्या संकल्प किया, बाबा ये तन मन धन सब आपका। ऐसे किया ना, किया किया था, इसमें हाथ उठाओ। तो अभी सरेंडर किया, मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप को सेवार्थ शरीर दे दिया, जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर सेवा अर्थ शिव बाबा को दे दिया, तो ब्रह्मा बाप जानते थे कि यह मेरा शरीर नहीं, सेवा अर्थ है। तो जब आप अपने तन मन धन तीनों अर्पण किया तो आपका शरीर बाप के सेवा अर्थ निमित्त है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे बाबा कहे आपने किया, जब तीनों तन मन धन अर्पण किया तो आपका शरीर बाप के सेवा अर्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवा अर्थ रहा तो आपका शरीर आपका नहीं है।